नमस्कार, FM 102.5 MHz पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 14 दिसंबर सन 2026 सुबह के 5:55 और ठीक 53 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि ब्रिक्स देशों में सहयोग की प्रेरणा हो और मानवता की प्रगति के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाखिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर पूरे देश में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर महीने में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होंगे। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। श्री शाह उद्घाटन सत्र में हिंदी को बढ़ावा देने और इसके कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTEL गैया पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। इसे विनायक चतुर्थी या गणेश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले उत्सव का आज पहला दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। विविध भारत

वंदन वार, सुनिए आज का चिंतन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है, यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी हर भूल उसे कुछ शिक्षा दे सकती है। आइए अब सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

अपने अनोखे रूप और गुणों से श्री गणेश देते हैं जीवन के अनमोल सूत्र। मन में विश्वास की ज्योत जले तो जीवन पथ उजला ही दिखता है।

बस यही है प्रार्थना, सभी के मन के विश्वास और आस्था की डोर को स्वयं से बांधे रखना और इस जीवन के हर विघ्न को हरना। श्री गणेश।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

झरोखा के तुरंत बाद 6:35 से आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस। आज सुनिए 311वां भाग। सुबह 6:45 से संगीत सरिता में सुनिए श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। 14वीं कड़ी आज सुन सकते हैं। कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। सुबह 7 से भूले बिसरे गीत हम है राही प्यार के कार्यक्रम सुन सकते हैं 7:30 से। 8 से सुनिए समाचार प्रभात त्रिवेणी कार्यक्रम का समय 8:15 का और 8:30 से नए जमाने की गीत चित्रलोक कार्यक्रम के साथ। सुबह 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है फिल्मकार जीपी सिप्पी पर और 10 से सुनिए उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। फिल्मकार विमल रॉय की सुपुत्री रिंकी भट्टाचार्य से मंदाकिनी जोशी की बातचीत सुन सकते हैं। सुबह 11 से रंग तरंग 12 से हिंदी में समाचार 12:05 से यादों की महफिल। दोपहर 1 से सुरीला सफर और 2 से त्रिवेणी का पुनः प्रसारण। दोपहर समाचार का समय 2:15 का है और दोपहर 2:30 से आप सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। 3 से सखी सहेली और शाम 4 पिटारा के अंतर्गत आज सेहत की बातें सेहतनामा कार्यक्रम के अंतर्गत पोषण इस विषय पर बातचीत सुनिए आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी कड़ी। शाम 5 छाया गीत का पुनः प्रसारण और 5:30 से तराने नए पुराने। शाम 6 से हिंदी में समाचार और 6:05 से जारी रहेगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। शाम 6:35 से संध्या रंजन में सुनिए भक्ति संगीत। 6:45 से संगीत सरिता के अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आज सुनिए 14वीं कड़ी। कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। फौजी साथियों की सेवा में प्रस्तुत होगा कार्यक्रम जयमाला शाम 7 से और 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है वजूद। नाटिका दीप शिखा आप सुन सकते हैं रात 8 से हवा महल में। लेखन गिरीश का, निर्देशन डॉक्टर अचला नागर का।

आज के फनकारी कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात 9:30 से भी। फिल्मकार जीपी सिप्पी पर केंद्रित है आज का ये कार्यक्रम। रात 10 बजे से छाया गीत और 10:30 से ढलती जाए रात। 11 बजे से आप सुन सकते हैं कार्यक्रम रंग तरंग का पुनः प्रसारण। ये थे आज के मुख्य कार्यक्रम जिनका विवरण आपने सुना झरोखा में। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस आज 311वां भाग।

अंगद के मुख से कई रावणों के उपहास की कथाएं सुन रावण तिरस्कार भरे स्वर में बोला, मूर्ख वानर, मैं वही रावण हूं जिसकी भुजाओं का बल कैलाश पर्वत को ज्ञात है, जिसका पराक्रम स्वयं महादेव जानते हैं, जिसने अगणित बार अपने सिर काट और चढ़ाकर उनकी पूजा की थी, दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथियों के विशालकाय दांत मेरी छाती से टकराकर गाजर मूली की तरह टूट गए थे, मेरे चलने मात्र से पृथ्वी ऐसे डोलती है मानो भूकंप आ गया हो, मैं वही जगत प्रसिद्ध रावण हूं। क्या ये सब तूने अपने कानों से नहीं सुना जो मुझे छोटा समझ एक मनुष्य की बड़ाई करता है? तू कितना अज्ञानी है अब मैं समझ गया। रावण के वचन सुन अंगद श्री राम की महिमा और अनंत शक्ति का बखान करते हुए कहते हैं, तू मूर्ख है जो श्री राम को साधारण मनुष्य, हनुमान को वानर, कामदेव को धनुर्धर, कल्प वृक्ष को एक सामान्य पेड़, गरुड़ को मात्र एक पक्षी और शेषनाग को एक मामूली सर्प समझता है। यदि तूने श्री राम से वैर मोल लिया तो ब्रह्मा और रुद्र भी तेरी रक्षा नहीं कर सकेंगे।

0: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। आइए अब सुनते हैं इस श्रृंखला की 14वीं कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना श्रृंखला की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। और स्टूडियो में हमारे साथ हैं जाने माने शास्त्रीय गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे जी। शकुंतला जी, किराना घराने के बहुत से गायकों ने सुबद्ध संगीत या उपशास्त्रीय संगीत जिसे कहते हैं लोकप्रिय किया है गा करके, तो खास तौर से ठुमरी और दादरा जो हम सुनते अलग अलग गायकों की आवाज में, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे।
2: जयंत जी,
1: जी
2: किराना घराने की ठुमरी है
1: जी,
2: जो ठुमरी बाकी नॉर्मल ठुमरी से थोड़ी अलग है।
1: अच्छा,
2: वैसे डायरेक्ट ठुमरी अगर आपने बोला तो उपशास्त्रीय अथवा सुगम शास्त्रीय संगीत में राग और शब्द को समान महत्व आता है। और इस घाट में विशिष्ट स्वर वाक्य में बंदिश के शब्दों में सौंदर्यपूर्ण गुम्फन करके शब्द का अर्थ और उसका भाव अधिक स्पष्ट करना और उसका जो गान प्रकार है उसका यही उद्दिष्ट है। और राग तो दिखाई देता है लेकिन कभी कभी उसके अर्थ के कारण राग का नियम एकदम काटेकोर ऐसा पाला नहीं जाता है,
1: सटीक तरीके से उसका पालन नहीं होता।
2: शब्दों का भावनिक आशय समृद्ध करने के लिए
1: जी
2: राग के बाहर के स्वर लाए तो उसमें कुछ हमने गैर किया ऐसा नहीं होता है।
1: अच्छा,
2: उपशास्त्रीय गान में शब्दों को भी महत्व है उतना ही जितना स्वर को भी है
1: जी।
2: स्वर वाक्य शब्दों का हाथ पकड़ के ही आता है। बोल बनाओ और बोल बाट
1: जी,
2: ये इस स्वर वाक्य का एक अलग विशिष्टता है। बोल बाट यानी क्या, लय के अंग से जो आती है ठुमरी वो बोल बाट। बोल बनाओ यानी स्वर के अंग से आती है ये ठुमरी।
1: अच्छा,
2: ठुमरी है तो थोड़ी संत गति भारदस्त उसका स्वर लगाओ, और दादरा अगर है तो थोड़ा सा चंचल और खेल करी ऐसा होता है
1: जी। जी,
2: इस घाट के एक प्रस्तुति में आलाप के माध्यम से शब्दों को पकड़ के
1: जी,
2: उसको पकड़ के आने वाले स्वर वाक्य और इस्तेमाल हम करते हैं, इसके कारण तान सरगम इत्यादि प्रकार को यहाँ कुछ भी वाव नहीं है।
1: अच्छा,
2: राग जब दूसरा स्वर ठुमरी में आता है, राग का अलग का स्वर
1: जी,
2: तो हम धीरे से इसको अंदर आने देते हैं।
1: अच्छा,
2: और उसको हम मिश्र कहते हैं, मिश्र गारा ऐसा करके वो उसको अंदर लेता है और
1: जी, जी, जी, जी।
2: उस अंग से अंदर आता है। सुगम और शास्त्रीय प्रकार सादर करते समय आवाज का जो पोत ढंग जो हमें बदलना पड़ता है
1: जी, जी।
2: शब्द फेंक विशिष्ट पद्धति में करनी पड़ती है। स्वरोच्चार और स्वर बांधनी ये भी अलग ढंग से करनी पड़ती है। इसीलिए आलाप ख्याल का और ठुमरी का ये बात सुनने वाले के समझ में आते हैं, ठुमरी है या आलाप है। ये नॉर्मल ठुमरी का ये जो हो गया
1: जी, जी, जी।
2: अभी किराना वाली ठुमरी और इसमें क्या फर्क है ऐसा आप अगर पूछे, भाव प्रधानता स्वर प्रधानता ये किराने घराने की ठुमरी की एक अभिव्यक्ति दिखाने की विशेषता है। शुद्ध मधुर और सुरीले स्वरों का प्रयोग जो होता है इसी घराने के प्रमुख विशेषता से ये भाव आया हुआ है।
1: अच्छा,
2: धीमी गति से प्रस्तुत की गई ठुमरी
1: जी,
2: उसका गायन अपेक्षाकृत शांत संयमित शैली में किया जाता है जिसे भाव स्पष्ट रूप से उभारते हैं। कर्ण स्वरों का प्रयोग, मेंड स्वर, कर्ण स्वर, मुरकी तथा सूक्ष्म स्वर लगाव जो सब हमारे किराने घराने की शैली है
1: जी।
2: किराना घराने में मुख्यतः बोल बनाओ की ठुमरी यानी गायन के साथ जिसका अर्थ के साथ भाव के साथ इसका विस्तार होता है
1: जी।
2: और ठुमरी में गीत के बोलों का भाव जो विस्तार पूर्वक और भावपूर्ण प्रस्तुतिकरण किया जाता है। अभी हम खास ठुमरी सुनेंगे खान साहब अब्दुल करीम खान की, और ये बहुत ही गारा राग में है
1: जी।
2: जादू भरे नैन वो बहुत पॉपुलर है और बहुत ही अच्छी ढंग से गाई है।

0: जयंत जी
1: जी,
0: ठुमरी की प्रस्तुति अत्यंत मधुर, कोमल और भावपूर्ण होती है। आपने तो अभी सुन ली
1: जी।
0: इस घराने की ठुमरी में मुख्यतः श्रृंगार और भक्ति रस की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है, वो किराना घराना है।
1: वाह।
0: प्रमुख कलाकार उस्ताद अब्दुल करीम खां, पंडित भीमसेन जोशी, डॉक्टर प्रभात रे, विदुषी माणिक वर्मा आदि, पंडित फिरोज दस्तूर, पंडित सवाई गंधर्व आदि कलाकारों ने किराना घराने की ठुमरी और उसकी विशिष्ट पहचान लोगों तक पहुंचाई है। विशेष रूप से डॉक्टर प्रभा अत्रे ने ठुमरी के सौंदर्य और भाव पक्ष को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। उन्हीं ने गाया हुआ एक बहुत ही अच्छा दादरा है, लेकिन उसका थोड़ा ढंग बदल के मैं गाती हूँ।

0: किराना घराने की ठुमरी में
1: जी
0: तकनीकी चमत्कारी की अपेक्षा स्वर सौंदर्य, भाव अभिव्यक्ति और मधुरता को अधिक महत्व दिया जाता है।
1: जी जी जी,
0: ये तो इसका थोड़ा अनुभव अगर आपको अभी इस दादरा में आया तो पावन हो गई मैं।
2: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, आज आपने सुनी इस श्रृंखला की 14वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश के
1: नमस्कार, यह है आकाशवाणी उज्जैन। समय हुआ है सुबह 7 बजे का और हम आपके लिए लेकर आए हैं राजाधिराज बाबा महाकाल के चरणों में समर्पित हमारी विशेष प्रस्तुति महाकाल वंदन।

जय श्री महाकाल। अवंतिका की इस पावन धरा पर आज की सुबह बहुत ही मंगलकारी है। आइए अपने दिन की शुरुआत उस परमपिता के चरणों में ध्यान लगाकर करें जो कालों के काल हैं और समस्त जगत के आधार हैं।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से प्रसारित हमारा विशेष कार्यक्रम महाकाल वंदन। बाबा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें और आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री महाकाल।

FM 102.5 MHz पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए हम आपको आज प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। सुबह 7:20 पर होगा प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन। आठ बजकर 30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का विशेष प्रोग्राम उज्जैनी आरजे। नौ बजकर 10 पर आप सुनेंगे पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ दिल्ली से। नए फिल्मी संगीत का विशेष प्रोग्राम बॉलीवुड बीट्स आप सुनेंगे 9:40 पर। दस बजे सुनिए कार्यक्रम उज्जैन दर्शन। सखियों का प्रोग्राम महिला सभा आपके लिए लेकर आएंगे 10:30 पर। मुंबई से रंग तरंग कार्यक्रम होगा 11:00। दिन में 12:05 पर सुनिए यादों की महफिल। दोपहर 1:00 सुनिए सुरीला सफर। दो बजे सुनिए फिल्म संगीत। सदाबहार नगमे पेश किए जाते हैं 2:30 पर। सखियों का अपना प्रोग्राम सखी सहेली सुनिएगा 3:00। चार बजे आप सुनेंगे सेहतनामा। आकाशवाणी उज्जैन से संध्याकालीन सभा में 5:00 सुनिए युवा श्रोताओं की अपनी पसंद का कार्यक्रम युवाणी। 6:00 भजन संध्या का कार्यक्रम होगा। 6:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। 7:00 भोपाल से 7:10 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार। 7:21 पर अपने उज्जैन

रात के 10:30 पर प्रोग्राम होगा राग रजनी, शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों की जानकारी। यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को है। अब प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण हम भोपाल केंद्र से करेंगे।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमाज। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं, समाधान का इकोसिस्टम। हिंदी दिवस के मौके पर आज भोपाल में भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान का होगा शुभारंभ। प्रदेश में बड़ा पुलिस फेरबदल, 137 अफसरों के तबादले और प्रदेश में 3 मानसूनी सिस्टम सक्रिय। आज 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का कल समापन हुआ। समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधान का एक इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली डिक्लेरेशन साझा विजन और भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। पीएम मोदी ने ब्रिक्स देशों से योजनाओं और फैसले को समयबद्ध तरीके से जमीन पर उतारने की अपील की। उन्होंने सम्मेलन की सफलता के लिए सभी सदस्य देशों का आभार जताते हुए 2027 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करने वाले चीन को शुभकामनाएं दी।
1: मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रिलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले 2 दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
0: आज देशभर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है। इस मौके पर आज भोपाल स्थित भारत भवन में 2 दिवसीय भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान का आयोजन किया जाएगा। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाम 4 बजे करेंगे। 2 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर के वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, कवि मातृभाषा, संस्कृति और भारतीय जीवन मूल्यों पर संवाद करेंगे। प्रदेश में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। शासन ने 10 आईपीएस और राज्य पुलिस सेवा के 127 अधिकारियों समेत कुल 137 पुलिस अफसरों के तबादले किए हैं। गृह विभाग ने कल देर रात इनके आदेश जारी किए, जिसमें डीएसपी, एसडीओपी, सीएसपी और एसीपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। कई अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय से मैदानी पदों पर भेजा गया है, जबकि कई अफसरों की दूसरे जिलों में नई जिम्मेदारी तय की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एनडीए के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन भी शामिल होंगे। श्री शाह ने बताया कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इसी साल अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर उनके सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे हो रहे हैं।
2: 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक हम एक माह सेवा संकल्प अभियान के रूप में चलाएंगे। इस सेवा संकल्प अभियान पूरे राष्ट्र में चलेगा। राष्ट्र की हर प्रशासनिक इकाई, हर जिले में, हर लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में और बूथ तक सेवा संकल्प अभियान को लेकर हम देश की जनता तक

0: पहुंचने वाले हैं।
1: वहीं दूसरी तरफ उज्जैन में सेवा संकल्प अभियान के तहत 17 सितंबर को क्षिप्रा नदी के घाटों और महाकाल महालोक क्षेत्र में 25 लाख से ज्यादा दीप जलाए जाएंगे। शाम 7 बजे होने वाले आयोजन के लिए पूरे क्षेत्र को 7 सेक्टर और 250 सब सेक्टर में बांटा गया है। इनमें दीप जलाने के लिए करीब 25,000 वॉलंटियर्स तैनात किए जाएंगे। प्रशासन की ओर से हर सब सेक्टर में दीप, तेल, कपूर, माचिस और अन्य जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। आयोजन को जीरो वेस्ट रखने के लिए सफाई और कचरा प्रबंधन की भी विशेष व्यवस्था की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है और राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि भगवान गणेश ज्ञान, समृद्धि और शुभ शुरुआत के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि ये पवित्र पर्व सभी को जीवन में नए संकल्पों के साथ तरक्की के रास्ते पर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी गणेश चतुर्थी और तीज के पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सभी के मंगलमय जीवन की कामना की है।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश के साथ शिवपुरी जिले में भी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है। जिले के कोलारस जनपद के ग्राम खरे की किंता शाक्य इसकी जीवंत मिसाल है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शिवपुरी संवाददाता रंजीत गुप्ता।
3: किंता राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राम जानकी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी। समूह से उन्हें पहला 10,000 रुपए का लोन मिला, जिससे उन्होंने छोटी सी किराना दुकान शुरू की। समय पर लोन चुकाने से उनकी साख बढ़ी। दूसरा लोन 30,000 रुपए का मिला, जिससे उन्होंने फेरी लगाने के लिए एक गाड़ी खरीदी। पति गांव-गांव जाकर सामान बेचने लगे, जिससे आय कई गुना बढ़ गई।
4: मेरा नाम किंता शाक्य है, मैं कराई से हूँ। मैं जब समूह में नहीं जुड़ी थी, तब मैं हमारे घर के कुछ ऐसे ही हालात, लेकिन हमारा परिवार बहुत बड़ा है। हम पे 5 बीघा का जमीन है, पूरा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा कुछ तरह नहीं होता था। फिर समूह बनने थे गांव में, हमने आजीविका मिशन समूह बनाया, उसमें हम जुड़े थे। हम आजीविका मिशन का, हमारे मंत्री इनका हम धन्यवाद दिल से करते हैं।
3: एक समय संसाधनों के अभाव से जूझने वाली किंता साक आज न केवल अपने पूरे परिवार को एक सशक्त और समृद्ध आर्थिक आधार दे चुकी हैं, बल्कि गांव की अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं। शिवपुरी से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं रंजीत गुप्ता।
1: सागर जिले के बंडा के जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी शिवांजय राजपूत को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी कठुआ नाला जंगल के रास्ते अपने गांव छापरी जाने की कोशिश कर रहा था, तभी पुलिस ने घेराबंदी की। पुलिस का दावा है कि शिवांजय ने 3 राउंड फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने 2 राउंड गोली चलाई और एक गोली उसके पैर में लगी। आरोपी पर पुलिस अधीक्षक की ओर से 30,000 रुपए का इनाम घोषित था और उसके खिलाफ शराब तस्करी के 3 मामले पहले से दर्ज है। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा,
5: सागर के अंदर हमारी पुलिस और प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। ये एक आपराधी का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है, ये हमारी प्रतिबद्धता है। लाइन एंड ऑर्डर लेकर के हम बिल्कुल लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। होने वाली घटना पर हमारी कठोरता जारी रहेगी।
1: प्रदेश सरकार ने अगले 5 साल में प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी दिशा में पिछले 1.5 साल में रोजाना दूध का संकलन 8,73,000 किलो से बढ़कर जुलाई 2026 में करीब 12,00,000 किलो हो गया है। प्रदेश में 26,000 दुग्ध सहकारी समितियां बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। छिंदवाड़ा के मोखेड़ में स्थित कुकड़ी खापा जलप्रपात में कल नागपुर के 4 युवक अचानक बड़े पानी के बीच फंस गए। करीब 150 फीट ऊंचाई से गिरते पानी के नीचे चट्टान पर बैठे युवक करीब 1.5 घंटे तक मदद का इंतजार करते रहे। सूचना मिलते ही पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और करीब 150 फीट गहराई में उतरकर रस्सियों की मदद से चारों को सुरक्षित बाहर निकाला। भोपाल में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक कृष्ण मोहन झा की पुस्तक डॉक्टर मोहन भागवत संदेश का विमोचन विधानसभा परिसर में आयोजित समारोह में किया गया। पुस्तक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत के राष्ट्र चिंतन, भारतीय संस्कृति, सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विचारों को संकलित किया गया है। लेखक कृष्ण मोहन झा ने बताया कि अलग अलग विषयों पर डॉक्टर भागवत के विचारों को एक जगह प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ये पुस्तक तैयार की गई है। प्रदेश की हॉकी खिलाड़ियों खैदम शिलिमा चानू और कृष्णा शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन किया है। चीन में हुए महिला जूनियर एशिया कप 2026 के फाइनल में भारत ने मेजबान चीन को 1-0 से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब जीता। शिलिमा चानू ने भारतीय टीम की कप्तानी संभाली जबकि कृष्णा शर्मा ने जापान और पाकिस्तान के खिलाफ गोल कर जीत में अहम योगदान दिया। और अब बात मौसम की। प्रदेश में कल इंदौर उज्जैन ग्वालियर संभाग में एक साथ 3 मानसूनी सिस्टम सक्रिय रहे जिससे कई जिलों में तेज बारिश हुई। बड़वानी में नदी नाले तालाब उफान पर है जबकि इंदौर मुरैना रतलाम समेत कई इलाकों में भी बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक आज उज्जैन नीमच मंदसौर रतलाम राजगढ़ गुना और श्योपुर में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा भोपाल समेत कई जिलों में हल्की से तेज बारिश का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर में समर्थन मूल्य पर धान ज्वार और बाजरा की खरीदी के लिए जिले में 6 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। खंडवा और नर्मदापुरम में गणेश चतुर्थी के साथ गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई है। ग्वालियर में तिगरा जलाशय में क्षमता से ज्यादा पानी आने पर कल शाम 3 गेट खोलकर सांक नदी में पानी छोड़ा गया। डिंडोरी में सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को लेकर मंत्री संपतियां उइके ने अधिकारियों के साथ बैठक की। मंडला कलेक्टर राहुल नामदेव धोटे ने कान्हा से लगे भानपुर खेड़ा में स्वास्थ्य शिविर का जायजा लिया और बैगा ग्रामीणों से संवाद किया। कटनी में जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में करीब 160 बच्चों और युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सीहोर में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण जागरूकता कार्यक्रम चल रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधान का इकोसिस्टम। हिंदी दिवस के मौके पर आज भोपाल में भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान का होगा शुभारंभ। प्रदेश में बड़ा पुलिस फेरबदल, 137 अफसरों के तबादले और प्रदेश में 3 मानसूनी सिस्टम सक्रिय। आज 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये नमस्कार उज्जैन FM 102.5 MHz पर मैं हूँ आपकी उद्घोषिका हिमानी और आप सुन रहे हैं आपका प्रिय कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन।

बाबा महाकाल की पावन अलौकिक और अवंतिका नगरी से आप सभी प्रिय श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सोमवार की ये पावन और ऊर्जावान सुबह आपके जीवन में नया ज्ञान, उमंग और अपार प्रसन्नता लेकर आए। श्रोताओं, आज 14 सितंबर का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए अत्यंत गर्व का दिन है, क्योंकि आज हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मना रहे हैं। साथ ही आज से गणेशोत्सव का पावन पर्व भी आरंभ हो रहा है, जिसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी अवंतिका तो प्राचीन काल से ही विद्वानों, कवियों और भाषा साधकों की नगरी रही है। तो आइए बाबा महाकाल के चरणों में वंदन करते हुए करते हैं आज के इस खूबसूरत व ज्ञानमयी सफर की शुरुआत इस मधुर शिव भक्ति गीत के साथ।

श्रोताओं, अब वक्त हो चला है हमारे विशेष सेगमेंट समाचार पत्रों से का। आइए उज्जैन और आसपास की महत्वपूर्ण खबरों पर एक नजर डालते हैं। गणेश चतुर्थी आज, शहर में गणपति उत्सव की धूम। आज देश भर के साथ ही उज्जैन में भी गणेश चतुर्थी का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। शहर में जगह जगह भगवान गणेश की स्थापना की गई है। घरों और सार्वजनिक पंडालों में विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है और गणपति बप्पा के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। गणेश उत्सव के दौरान धार्मिक आयोजनों के साथ सामाजिक और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संदेश भी देखने को मिल रहे हैं। श्रद्धालु भगवान गणेश से सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। हरतालिका तीज आज हरतालिका तीज का पर्व भी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर सुहागिन महिलाएं और युवतियां भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना के लिए व्रत रखेंगी। महिलाएं सुखी दाम्पत्य जीवन और पति की दीर्घायु की कामना के साथ इस व्रत का पालन करेंगी। सोमवार को बाबा महाकाल की भस्म आरती। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज सोमवार तड़के भस्म आरती संपन्न हुई। सोमवार भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है और इस दिन बाबा महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह रहता है। भस्म आरती से पहले परंपरागत पूजन प्रक्रिया के अनुसार गर्भगृह के पट खोले गए। इसके बाद भगवान महाकाल का पूजन अभिषेक और आरती संपन्न हुई। भस्म आरती के दौरान श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री चिंतामन गणेश को लगेगा 56 भोग। उज्जैन के प्रसिद्ध श्री चिंतामन गणेश मंदिर में भगवान गणेश को 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को 12 दिनों तक लड्डू का प्रसाद वितरित किया जाएगा। इस धार्मिक आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है और बड़ी संख्या में भक्त भगवान चिंतामन गणेश के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। बाबा रामदेव के जन्मोत्सव पर निकला जुलूस। उज्जैन में बाबा रामदेव के जन्मोत्सव के अवसर पर जुलूस निकाला गया। श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ इसमें सहभागिता की। जन्मोत्सव के अवसर पर भंडारे का आयोजन भी किया गया जिसमें लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। आई लव भारत कार्यक्रम में 3,000 विद्यार्थियों ने ली नशा मुक्ति की शपथ। उज्जैन में आयोजित आई लव भारत कार्यक्रम में करीब 3,000 विद्यार्थियों ने नशा मुक्ति की शपथ ली। इस्कॉन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने, राष्ट्र प्रेम और सकारात्मक जीवन शैली के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को अच्छे विचारों और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का संदेश दिया गया। 300 से अधिक पांडालों में मिट्टी के गणेश। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए इस वर्ष उज्जैन शहर में 300 से अधिक सार्वजनिक पांडालों में मिट्टी से निर्मित गणेश प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव महायोजन समिति की ओर से कृषि मंडी में मिट्टी से निर्मित गणेश प्रतिमाओं का वितरण किया जाएगा। इस पहल के माध्यम से लोगों को पर्यावरण के अनुकूल गणेश उत्सव मनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। 17 सितंबर से सेवा से संकल्प अभियान। मध्य प्रदेश में 17 सितंबर से सेवा से संकल्प अभियान शुरू होने जा रहा है। इसके तहत उज्जैन में एक बड़े दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। योजना के अनुसार शाम के समय शहर में करीब 25 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। रामघाट, दत्ताखाड़ा और महाकाल लोक के साथ ही शहर के घरों और दुकानों पर भी दीप जलाए जाएंगे। इस आयोजन के माध्यम से उज्जैन को दीपों की रोशनी से सजाने के साथ सेवा और संकल्प का संदेश दिया जाएगा। शिक्षकों का सम्मान और AI पर परिचर्चा। उज्जैन की अवंतिका यूनिवर्सिटी में रविवार को शिक्षकों का सम्मान किया गया। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

यानी एआई की बढ़ती भूमिका और इसके प्रभावी उपयोग को लेकर परिचर्चा भी आयोजित की गई। कार्यक्रम में शिक्षा के बदलते स्वरूप और तकनीक के बढ़ते प्रभाव पर चर्चा की गई तथा शिक्षण प्रक्रिया में एआई के उपयोग को लेकर विचार साझा किए गए। आज देशभर में मनाया जाएगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस। आज 14 सितंबर को देशभर में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर हिंदी भाषा के महत्व और उसके प्रचार प्रसार को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हिंदी के प्रति सम्मान और इसके आधिकारिक प्रयोग के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस हमें अपनी भाषा और उससे जुड़ी संस्कृति, साहित्य और परंपराओं के महत्व को समझने का अवसर देता है। इस दिन हिंदी भाषा के संरक्षण, संवर्धन और दैनिक जीवन में इसके सहज प्रयोग को बढ़ावा देने का संदेश दिया जाता है। तो ये थी आज के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित उज्जैन की महत्वपूर्ण खबरें। इन्हीं खबरों के साथ समाचार पत्रों से मैं फिलहाल इतना ही। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन 102.5 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, 14 सितंबर का दिन हमारे इतिहास में बहुत विशेष है। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद देवनागरी की लिपि में हिंदी लिखी को हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। ये निर्णय प्रसिद्ध साहित्यकार व्योहार राजेंद्र सिंह जी के 50वें जन्मदिन के अवसर पर लिया गया था, जिन्होंने काका कालेकर, मैथिली शरण गुप्त और सेठ गोविंद दास जैसे दिग्गजों के साथ मिलकर हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए अथक प्रयास किए थे। बाद में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर वर्ष 1953 से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जो भारत की भाषाई विविधता को एक सूत्र में पिरोती है। आइए अपनी राष्ट्रभाषा के गौरव को समर्पित सुनते हैं ये सुंदर गीत।

श्रोताओं, जब हम भाषा और साहित्य की बात करते हैं तो हमारी उज्जैनी का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। महाकवि कालिदास, बाणभट्ट से लेकर आधुनिक काल के पंडित सूर्य नारायण व्यास, महान व्यंग्यकार शरद जोशी और राष्ट्र प्रेम के गीत रचने वाले कवि प्रदीप जी जैसे महारथियों की कर्मस्थली रही है हमारी अवंतिका। संस्कृत की समृद्ध ज्ञान धरा से ही हिंदी की सरिता विकसित हुई है। मालवी बोली का अपनापन और हिंदी का लालित्य जब हमारे उज्जैन में मिलता है तो संवाद में एक अलग ही मिठास खुल जाती है। आइए इसी माटी के गौरव को नमन करते हुए सुनते हैं ये भावपूर्ण गीत।

साथियों, आज हिंदी केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ रही है। दुनिया भर में 60 करोड़ से भी अधिक लोग हिंदी बोलते हैं और ये विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। फिजी देश में तो हिंदी को आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा ऑक्सफर्ड डिक्शनरी में हर साल नए हिंदी शब्दों को शामिल किया जा रहा है। आज का युवा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हिंदी में विचार व्यक्त करने में गर्व महसूस करता है। भाषा वही जीवित और जीवंत रहती है जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में आत्मीयता से करते हैं। आइए इसी सांस्कृतिक चेतना के नाम सुनते हैं ये ऊर्जावान गीत।

श्रोताओं, आज से गणेशोत्सव का पावन पर्व शुरू हो रहा है। प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी बुद्धि, ज्ञान और विवेक के देवता हैं। सच्चा ज्ञान यही है कि हम अपनी भाषा, संस्कृति और सामाजिक दायित्वों के प्रति सजग रहें। इस गणेशोत्सव में आइए संकल्प लें कि हम अपने शहर उज्जैन को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण अनुकूल बनाएंगे। मिट्टी के गणेश जी की स्थापना करें और त्यौहार की खुशियों में सभी को शामिल करें। साथियों, समय का चक्र लगातार आगे बढ़ रहा है और बातों ही बातों में आज का सुप्रभात उज्जैन अब अपने समापन की ओर पहुंच गया है। आज हमने हिंदी दिवस के इतिहास, अवंतिका की ज्ञान परंपरा और गणेश चतुर्थी के मंगलमय आगमन पर चर्चा की। उम्मीद है आज का ये अंक आपके सोमवार की शुरुआत को हिंदी के गौरव और नई ऊर्जा से भर गया होगा। बाबा महाकाल और भगवान श्री गणेश से प्रार्थना है कि वे आप सभी के जीवन से विघ्न दूर करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सुनते हैं आज के कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

साथियों, इसी के साथ सुप्रभात उज्जैन का आज का ये विशेष अंक यहीं संपन्न होता है। अब मुझे दीजिए अनुमति, मैं आपकी उद्घोषिका हिमानी आपसे लेती हूँ विदा। कल सुबह ठीक 7:20 पर फिर होगी मुलाकात आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन में, सिर्फ आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz पर। आप हमें न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। तब तक के लिए

0: 2025-26 के राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की। भारतीय चालक दल के 13 सदस्यों को बचाया गया। धीरज बोमा देवरा ने मैक्सिको में तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाज बनकर इतिहास रचा। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार महिला एशिया कप का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के नेताओं का दिल्ली में हुए शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए आभार व्यक्त किया है। 2 दिन के शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: पिछले 2 दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
0: शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल थे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलूपो सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शिखर सम्मेलन में उपस्थित थे। भारत ने 12-13 सितंबर 2026 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें समूह के 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। श्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान अंतिम 3 दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें भी की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगी। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा।
2: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे। भारतीय न्याय संहिता जो बनाई है, इसने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भारतीय आधार देने का काम किया है और कई सारे राज्यों में सजा कराने का दर का एक ही साल में 30% वृद्धि हुआ है।
0: श्री शाह ने कहा कि 3 तलाक को समाप्त कर दिया गया है, जिससे मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार मिले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर श्री शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A को बिना किसी विवाद के हटा दिया गया है।
2: राष्ट्रीय सुरक्षा में धारा 370 और 35A हटाना जो असंभव माना जाता था, रक्त की एक भी बूंद गिराए बगैर, एक भी गोली चलाए बगैर धारा 370 आज पास्ट बनकर खड़ी है और कश्मीर पूर्णतया भारत के साथ जुड़ा है।
0: श्री शाह ने कहा कि सरकार ने 5 दशकों से चले आ रहे नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है और देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 14 से अधिक शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 महीने के राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान की घोषणा की है। यह अभियान जन भागीदारी के माध्यम से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूत करने के लिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। मुंबई में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह अभियान भाजपा, एनडीए के सहयोगी दलों, स्वयंसेवी संगठनों और देश भर के नागरिकों द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस अभियान में सेवा ज्योति कलश यात्रा, वडनगर वाराणसी सेवा यात्रा, सेवा से मेरा योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवाचे रंग, राष्ट्र संगे और सेवा प्रथम नवाचार चुनौती शामिल है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृहमंत्री अमित शाह आज नवी मुंबई में हिंदी दिवस 2026 कार्यक्रम और 6वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
5: महाराष्ट्र के नवी मुंबई में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य महाराष्ट्र की समृद्ध भाषाएं, सांस्कृतिक और साहित्य परंपरा के साथ हिंदी के जीवंत संबंधों को रेखांकित करना है। उद्घाटन सत्र में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वर्ष 2025-26 के लिए राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और वरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन में शामिल होंगे। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTL गाइया पर कल हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि जारी खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों को बचाने में सहयोग के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। भारत ने तनाव को तत्काल कम करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की सलाह दी है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच आज ओमान में होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। इसमें होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर जहाजों की आवाजाही की व्यवस्था पर चर्चा की जानी थी। ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी ने कल देर शाम इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज सलालाह में होने वाली बैठक को आम सहमति बनाने के क्रम में स्थगित किया गया है। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार कुछ क्षेत्रीय देशों के अनुरोध पर ईरान और ओमान ने संयुक्त रूप से ये निर्णय लिया। यमन की सेना ने लाल सागर के तट पर ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों के ठिकाने पर हमले किए हैं, जबकि हौसियों ने यमन की सरकार का समर्थन कर रहे पड़ोसी देश सऊदी अरब को निशाना बनाया है। यमन की सरकार ने लाल सागर तट पर और अधिक सैनिक भेजने का फैसला किया है। पिछले सप्ताह हौसी विद्रोहियों ने महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर मोखा और बाब अल मंदेब जलडुमरु मध्य में एक द्वीप पर कब्जा कर लिया था। पूरे देश में

0: गणेश चतुर्थी का त्योहार आज पूरे महाराष्ट्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घरों और मोहल्लों में भक्ति गीतों, आरती और गणपति बाप्पा मोरिया के जयघोष के बीच लोग गणपति बाप्पा का स्वागत कर रहे हैं। मुंबई में कई गणेश मंडल सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का भी आयोजन कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे और बेस्ट ने विशेष गाड़ियों की व्यवस्था की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तर प्रदेश में भी आज से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कजरी तीज मनाई जा रही है।
2: लखनऊ के झूलेलाल वाटिका पर भव्य गणेश उत्सव का शुभारंभ होगा। गोमती के किनारे आज से शुरू होकर 25 सितंबर तक चलने वाले इस गणेश उत्सव में 13,000 स्क्वायर फीट का वातानुकूलित वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया है, जहां भक्त बैठेंगे और गजानन की चिट्ठी लिखेंगे। उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कजरी तीज पर्व आज मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं शिव पार्वती की पूजा करेंगी और निर्जला व्रत रखेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बाल विकास, पोषण और प्रारंभिक प्रोत्साहन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में यूनिसेफ इंडिया की विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल के बाल रोग और नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331-04-81 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
3: भारतीय तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व खिलाड़ी बन गए हैं। मैक्सिको में कल उन्होंने जापान के नाकानिशी जूनिया को रोमांचक शूट ऑफ में हराया। क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप 2026 जीत लिया है। भारत ने कल फाइनल में श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को 184 रन का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी। भारत की ओर से सैफ अली वर्मा ने 39 गेंदों में 68 रन बनाए और स्मृति मंधाना ने 39 गेंदों में 59 रन का योगदान दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय महिला टीम को एशिया कप जीतने पर बधाई दी है। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 156 रन बनाए। जवाब में भारत ने 13 ओवर और 4 गेंद में 3 विकेट पर 157 रन बनाकर जीत हासिल की। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 32 गेंदों में 82 रन बनाए और अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
1: इसके अलावा जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने न्यूयॉर्क में अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर अमेरिकी ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब भी जीत लिया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने भारत की मेजबानी में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने ब्रिक्स नेताओं का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, जय हो दिल्ली, अब पेचिंग में मिलेंगे। सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान हिंदुस्तान में है। पत्र लिखता है, खनिजों को हथियार न बनाए। अमर उजाला की सुर्खी है, ब्रिक्स का अब साझा लक्ष्य सर्वजन हिताय। राजस्थान पत्रिका ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट लिमिटिंग ओवरशूट के हवाले से लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग की पहली लड़ाई हारे, दशकों तक रहेगा ज्यादा गर्मी का दौर। लोकसत्ता ने स्वदेश लौटने पर विचार कर रहे लोगों पर लिखा है, पश्चिमी सपनों पर वीजा की कैंची, भारत लौट रहा टैलेंट। अमरीका, यूके, कनाडा से शुरू हुआ रिवर्स ब्रेन ड्रेन। दैनिक भास्कर ने सोशल मीडिया अटेंशन पर लिखा है, डिजिटल दौर में शॉक कंटेंट का खेल जिंदगियां बर्बाद कर रहा। हिंदी दिवस पर आज कई समाचार पत्रों ने विशेष आलेख प्रकाशित किए हैं। हिंदुस्तान ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, निबिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश की धड़कन है हिंदी।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे देश में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। आज हिंदी दिवस भी मनाया जा रहा है। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 रन

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए।
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे,
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: वेलकम बैक दोस्तों, FM 102.5 MHz पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उज्जैनी RJ हिमानी के साथ। दोस्तों कभी आपने बैठकर इस बात पर विचार किया है कि हम सुबह से लेकर शाम तक अनगिनत शब्द बोलते हैं, लेकिन उन हजारों शब्दों के शोर में कोई एक छोटा सा शब्द ऐसा होता है जो किसी उदास इंसान का पूरा दिन संवार देता है। किसी परेशान साथी को बस इतना कह देना कि चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, या किसी थके हुए इंसान को दिल से एक सच्चा धन्यवाद कह देना। ये छोटे छोटे शब्द किसी जादू से कम नहीं होते। ये शब्द सामने वाले के चेहरे पर वो मुस्कान ले आते हैं जो शायद पूरे दिन में गायब थी। आइए शब्दों की इसी मिठास को अपने जीवन में घोलते हैं और सुनते हैं ये बेहद शानदार गाना।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, आज 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस है, लेकिन आज हम सिर्फ किसी इतिहास या औपचारिक तारीख की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बात जबान और बोली की है, जिसमें हम अपने दिल के सबसे करीब वाले एहसासों को बयां करते हैं। जब हम बेहद खुश होते हैं, जब अपने किसी करीबी पर स्नेह जताते हैं, या जब किसी के साथ बैठकर अपने मन की बात साझा करनी होती है, तो हमारे मुंह से वही शब्द निकलते हैं जो सीधे हमारी आत्मा से जुड़े होते हैं। अपनी भाषा के शब्दों में जो मिठास, अपनापन और सच्चाई होती है, उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। चलिए इसी अपनेपन को महसूस करते हैं और सुनते हैं ये मेलोडियस गाना।

FM 102.5 MHz पर हिमानी आपके साथ है। श्रोताओं, जैसे एक सही और सकारात्मक शब्द किसी के जीवन में आशा की किरण जगा सकता है, ठीक वैसे ही जल्दबाजी या गुस्से में बोला गया एक गलत शब्द किसी के दिल को बहुत गहराई तक ठेस पहुंचा सकता है। अक्सर चोट के घाव तो भर जाते हैं, लेकिन कड़वे शब्द इंसान के मन में लंबे समय तक चुपते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि अपनी वाणी और अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। जब आप किसी हताश इंसान से कहते हैं कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है, तो ये कुछ शब्द उसे फिर से खड़े होने की अपार शक्ति दे देते हैं। आइए इसी भरोसे के नाम करते हैं ये सुंदर गीत।

FM 102.5 MHz पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जैनी आरजे हमानी के साथ। दोस्तों, जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं या अपनी ज़िंदगी में किसी बड़े लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो किसी अपने के कहे हुए प्रोत्साहन भरे बोल आप ये बिल्कुल कर सकते हैं, हमारे हौसले को नई उड़ान दे देते हैं। आपके कहे हुए चंद सकारात्मक शब्द किसी के सपनों की ढाल बन सकते हैं और उसे असफलता के डर से उबार सकते हैं। तो क्यों ना आज हम अपने आसपास किसी की सहारा करें। चलिए ऐसी पॉजिटिव वाइब के साथ सुनते हैं ये सुपरहिट गाना।

FM 102.5 MHz पर सुरों का कारवां यूं ही जारी है। कभी कभी जिंदगी में ऐसे लम्हे भी आते हैं जहां शब्द थोड़े कम पड़ जाते हैं और आंखों की खामोशी या चेहरे की एक छोटी सी मुस्कान सब कुछ बयान कर देती है। लेकिन जब वही अनकहे एहसास खूबसूरत शब्दों में ढलकर भारतीय संगीत का हिस्सा बनते हैं तो वो एवरग्रीन नगमे बन जाते हैं। बॉलीवुड के यही नटखट प्यारे और अर्थपूर्ण शब्द तो हैं जो हमारे मूड को मिनटों में तरोताजा कर देते हैं। आइए सुनते हैं ये चलबुला लव सॉन्ग।

FM 102.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम जैनी आरजे। दोस्तों, जब किसी से दिल का सच्चा रिश्ता जुड़ता है तो इंसान को बड़े बड़े और भारी भरकम शब्दों की जरूरत नहीं होती। बस दिल की गहराई से निकले सादे और सच्चे शब्द ही सामने वाले के मन में सीधे उतर जाते हैं। अपनी बात को सादगी और सच्चाई के साथ कहना ही सबसे बड़ी कला है। आइए प्यार और मिठास से भरे इसी एहसास में डूबते हैं एवरग्रीन रोमांटिक ट्रैक के साथ।

दोस्तों, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमारा आज का ये सुहाना सफर अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। उम्मीद है कि शब्दों की इस मिठास और विचारों की इस यात्रा ने आपके सोमवार की सुबह को ढेर सारी सकारात्मकता और आनंद से भर दिया होगा। आइए सुनते हैं आज के इस कार्यक्रम का ये अंतिम रूहानी गाना।

दोस्तों, इसी के साथ आज का ये खास कार्यक्रम उज्जैनी आरजे यहीं संपन्न होता है। अब अपनी दोस्त आरजे हिमानी को दीजिए इजाजत, लेकिन आकाशवाणी उज्जैन से जुड़े रहिएगा, क्योंकि ठीक 9:40 पर आपके लिए लेकर आ रही हूँ लोकप्रिय बॉलीवुड गानों का कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स। सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz। मीठा बोलिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ का 11वां एपिसोड दिल्ली रिले।

श्रोताओ, आर्थिक आत्मनिर्भरता जो है वो सिर्फ कमाई तक सीमित नहीं होती। असली मजबूती तब आती है जब अपने पैसों को हम समझते हैं, सही फैसले लेते हैं और भविष्य को सुरक्षित बनाते हैं, यानी फिजूल खर्ची से बचते हैं। हम अपने पैसे को जानें, हर खर्च पर नज़र रखें कि कौन सा ज़रूरी है और कौन सा फिजूल, और धन संबंधी जो है वो जानकारियां धीरे धीरे बनाएं कि कहाँ हम जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस तरीके से जो है वो हम उसका उस अपने पैसे को जो है वो और अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं, कैसे हम स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो हमें वित्तीय समझ जो है वो अपनी बढ़ानी चाहिए और मजबूत करनी चाहिए।

0: मेरी है। विज्ञान पढ़ाते हुए मुझे लगभग आज 16-17 साल हो गए हैं और मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि विद्यार्थियों को विज्ञान सिर्फ कक्षा में नहीं पढ़ाया जा सकता, विज्ञान तो हर चीज में है, विज्ञान तो प्रकृति के हर जगह पर है। तो कोरोना के समय मुझे रियलाइज हुआ, आपने सुना होगा कि कोरोना में लोग कहते थे कि काढ़ा पियो, तो काढ़ा पीने की जब बात आती है तो काढ़े में जो जो चीजें मिलाई जाती है तो मेरे विद्यार्थी उन चीजों को पहचानते ही नहीं है। कितनी अजीब बात है कि आप अर्जुना रेस्ट बाजार से खरीद कर पी रहे हैं और आपको ये नहीं पता है कि आपके आंगन में लगा हुआ पेड़ ही अर्जुन है, तो अर्जुन की छाल को आप उबाल कर पी सकते हैं। तो यहाँ से मुझे रियलाइज हुआ कि जिसको भी आप जानोगे नहीं उसको आप मानोगे नहीं। तो यदि आप कंजर्वेशन संरक्षण की बात करते हैं तो सबसे पहला कदम जो है वो है आइडेंटिफिकेशन। जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जब तक आप चीजों को अपने आसपास के पक्षियों को, पशु को, इंसेक्ट्स को, ट्रीज को जब तक आप पहचानेंगे नहीं तो आप कंजर्व कैसे करेंगे, तो उनका संरक्षण कैसे होगा। हमारे आसपास इतनी सारी जैव विविधता थी, लगातार कई जीव जो है वो खत्म होते जा रहे हैं और जब कोई बड़ी विपदा आती है तब हमें लगता है कि हमने ऐसी क्या गलती की। तो यहाँ पर मुझे लगा कि विद्यार्थियों को प्रकृति से जोड़ना बहुत जरूरी है और उसके लिए सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन।
1: बहुत ही आपने खूबसूरती से बताया कि आइडेंटिफिकेशन यानी जागरूकता सबसे पहला स्टेप है। जो आपने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात की उसमें प्रमुख सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट्स आप जो आपको लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट था, उसका बहुत प्रभाव हुआ बच्चों पर और उनकी इन्वॉल्वमेंट हुई, उसके बारे में बताएं।
0: मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कई बार इस बात को कहा है कि विद्यार्थियों में साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करिए। तो विद्यार्थियों में साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे डेवलप होगा, सिर्फ बायोलॉजी को क्लास में पढ़ लेने से डेवलप नहीं होगा। तो इसी तरह से एक बार मैं अपने 11th बायो के बच्चों को कंजर्वेशन पढ़ा रही थी तो मैंने विद्यार्थियों से पूछा क्या आपको लगता है कि हमें किसी जीव को कंजर्व करने की जरूरत है। तो मेरे एक विद्यार्थी ने खड़े होकर कहा कि मैम पहले एक छोटी चिड़िया आया करती थी गौरैया, तो जब मैं नानी के घर जाता था बहुत सारी गौरैया आती थी, हम

0: बहुत चावल खिलाया करते थे, आजकल वो दिखती नहीं है। तो मैंने कहा ओके क्या कारण है कि वो खत्म हो गई। तो किसी एक बच्चे ने रैंडम कहा कि मैम रेडिएशन। तो आई सेड आपने कहाँ पढ़ा कि रेडिएशन कारण है? तो बोले नहीं मैम सब जगह आ रहा है सोशल मीडिया पे कि रेडिएशन के कारण बर्ड्स खत्म हो रही हैं। तो मैंने कहा ऐसे नहीं, यू फाइंड आउट द रिसर्च पेपर्स और फिर कारण पढ़िए, देयर आर मेनी रिसर्च पेपर ऑन स्पैरोज। तो हमने एक साल सिर्फ यही काम किया कि हमने रिसर्च पेपर्स निकाले और उसका मुख्य कारण खत्म होने का जानने की कोशिश की। तो बच्चों ने कंक्लूजन में लिखा कि गौरैया की नेस्टिंग साइट खत्म हो रही है। क्यों खत्म हो रही है? क्योंकि मॉडर्न आर्किटेक्चर जो है वो गौरैया को कहीं भी अंडे रखने की जगह नहीं दे रहा है। तो जो आज हम मॉडर्न बिल्डिंग बना रहे हैं, जो आज हम अपने घर बना रहे हैं, उन घरों में कहीं भी गौरैया के अंडे रखने की जगह ही नहीं है। जबकि पहले जब हमारे खपड़े के घर होते थे, अर्थन टाइल्स होती थी, तो वहां कई जगह जगह होती थी जहां पर वो अंडे अपने रख पाती थी। गौरैया एक ऐसा जीव है, जब हमने खेती शुरू की वो हमारे साथ चला आया और जंगलों से हमारे साथ आके हमारे घरों में रहने लगा। धीरे धीरे उसकी जो नेस्टिंग की कला थी वो खत्म हो गई। अब वो प्रॉपर नेस्ट नहीं बनाता है, वो कहीं पर भी जहां जगह होती है वहां पर अंडे रख देता है। तो थोड़ी सी घास रखता है और अंडे रख देता है। तो फाइनली ये निकला कि भाई हमें गौरैया के लिए नेस्टिंग साइट बनानी पड़ेगी। तो फिर ये हुआ कैसी नेस्टिंग साइट बनाई जाए। 2021 में और 20 में जब हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किए थे उस समय कहीं पर भी प्रॉपर स्पैरोज के लिए नेस्टिंग बॉक्स नहीं थे। तो मैंने बच्चों से कहा कि आपको जैसा लग रहा है वैसे बनाइए। तो बच्चों ने इतनी क्रिएटिविटी उसमें दिखाई, मतलब भूसे से घर बनाए, मिट्टी से बनाए कि ठंडा रहेगा, फिर उसमें जो है शू बॉक्स से घर बनाए। तो मैंने उनसे कहा कि जो भी आपने घर बनाया इसको अपने घरों में लगा दीजिए और देखिए गौरैया इसको अडॉप्ट करती है कि नहीं, क्योंकि रहना तो उसी को है। तो हमने देखा कि जो शू बॉक्स थे उसमें गौरैया आके रहने लगी। तो वो पहली बार जब किसी बच्चे ने मुझे बोला कि मैम वो वेंटिलेटर के ऊपर जो मैंने शू बॉक्स रखा था उसमें गौरैया ने बच्चे दिए हैं, अंडे हैं उसके अंदर, तो वो जो खुशी थी, मतलब आई हैव गॉट गूज बम्स। तो वो मतलब कि यस दिस इज वर्किंग एक्चुअली। फिर ये हुआ कि ठीक है तो इस तरह के बॉक्सेस होने चाहिए और फिर हमने उन बॉक्सेस को बनाना शुरू किया। तो पहली बार जब लकड़ी के बॉक्सेस हमने बनाए तो हमने रियलाइज किया कि उसके अंदर दूसरी बर्ड्स एंटर कर रही थी। तो हमने देखा कि मैगपाई रॉबिन एंटर कर रही है, ब्राह्मणी स्टर्लिंग एंटर कर रही है, तो कुछ गड़बड़ है। तो देन वी रियलाइज कि होल साइज बहुत बड़ा है तो हम इसका होल साइज थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो हमने होल साइज छोटा किया। देन वी रियलाइज कि उसकी छत के ऊपर कबूतर बैठ जाता है और कबूतर जो गौरैया है वो शाय बर्ड है, तो कबूतर आके अंडे दे देगा तो वो अंदर आएगी नहीं। तो फिर हमने उसकी जो रूफ है वो स्लैंटिंग कर दी ताकि उसके ऊपर जो है वो कबूतर ना बैठ पाए। देन वी रियलाइज कि प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, फिर हमने उसके दोनों तरफ होल कर दिए। देन वी रियलाइज कि अंडे कई बार फूट जाते हैं, उसमें चींटियां लग जाती है, तो फिर हमें रियलाइज हुआ कि नीचे भी होल होना चाहिए ताकि वो पानी नीचे से निकल जाए। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली 4 ईयर्स कंटिन्यूस जब मेरे बच्चों ने वर्क किया तो हमने इंडिया के फर्स्ट साइंटिफिकली प्रूवन स्पैरो बॉक्सेस बनाए। आप कोई भी नेस्ट बॉक्स लेने जाएंगे उसमें हमेशा स्टिक होती है, पर हमने एक्सपेरिमेंट करते समय ऑब्जर्व किया यदि घोंसलों में आगे स्टिक लगी होती है तो उसमें दूसरी बर्ड आकर बैठती है। बच्चे जो होते हैं वो सोचते हैं माँ आई है और वो बाहर फेस निकालते हैं और वो खा जाती है, तो इसलिए हमने इससे स्टिक हटा दी। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली दिस इज व्हाट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी।
1: बिल्कुल।
0: तो मेरे बच्चों ने 4 साल में प्रॉपर नेस्ट डेवलप किए। और अगर हम अचीवमेंट की बात करें तो अचीवमेंट ये है मैम कि आज इसको हम डिफरेंट स्टेट्स में डिलीवर कर रहे हैं, इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। हमने इसको मुंबई भेजा, जयपुर भेजा, पुणे भेजा, कई जगह से डिमांड आती है, नोएडा भी भेजा, और नोएडा में 1.5 साल के बाद अभी हमें पता चला कि गौरैया आने लगी। तो ये जो रिजल्ट्स हैं, फिर इस प्रोजेक्ट को अभी हमने जून में 42 कंट्रीज से कंजर्वेशनिस्ट आए थे, एशिया कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस जो काठमांडू में हुई है नेपाल में, वहां पर हमने इसको प्रेजेंट किया। 42 कंट्रीज से जो लोग आए थे, जो प्रॉपर साइंटिस्ट है, कंजर्वेशन का काम किया हुआ है, उन्होंने जब इस वर्क को देखा तो दे सेड कि इस तरह का वर्क अगर हम करते हैं तो इसमें बहुत सारा फंड चाहिए होता है, एंड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड। हाउ इज इट पॉसिबल दैट द स्टूडेंट्स ऑफ 9th एंड 11th क्लास आर डूइंग दिस टाइप ऑफ वर्क? सो वी गॉट लॉट्स ऑफ एप्रिशिएशन फ्रॉम देयर।
1: सो बहुत ही, मतलब कहें कि आपने जो अचीव किया वो एक कम लागत पे भी किया, और इसमें जो इन्वॉल्वमेंट आप बता रही हैं बच्चों की, क्या बच्चों के द्वारा और कम्युनिटी लेवल पर भी इसका इंटरेस्ट जागा लोगों का?
0: जब हमने परफेक्ट मॉडल्स डेवलप कर लिए तो हमें ये रियलाइज हुआ वी नीड फंड फॉर इट सो दैट वी कैन ऑल्सो इलैबोरेट दिस वर्क। तो हमने फिर मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी को अप्रोच किया, और सबसे अच्छी बात है कि बच्चों ने प्रेजेंट किया उनके सामने, और हमने उनसे कहा कि बिकॉज गौरैया जो है वो भी वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत आती है तो इसलिए वी नीड फंड्स फॉर इट, एंड लकली वी गॉट 1 लाख रुपीज फंड फ्रॉम देम। एंड जब हमने जो बॉक्सेस बनाए उस 1 लाख रुपीज से, वो हमने हमारे अवधपुरी के पूरे टेम्पल्स, गुरुद्वारे और जितनी रिलीजियस प्लेसेस थी वहां पर लगाए। तो वहां पर लगाने का एक बेनिफिट ये था कि जो बर्ड है उसको आसानी से दाना मिल जाता है, पानी मिल जाता है, और अगर नेस्टिंग साइट भी मिल जाता जाती है तो उनका नंबर आसानी से इंक्रीज हो सकता है। और उसके बाद मेरे बच्चे इसको कंटिन्यूसली अब ऑब्जर्व करते हैं, तो दे यूज टू से कि मैम अभी उसमें थर्ड टाइम नेस्टिंग हो रही है और इसमें इतने अंडे हैं, इतने बच्चे उड़ गए। तो दिस होल ऑब्जर्वेशन दे आर राइटिंग एंड वी हैव पब्लिश्ड आवर वर्क नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली।
1: सो एवरेज एडॉप्शन रेट क्या है, और कोई जो हमारे श्रोता अगर वो भी प्रेरित होकर पहल करना चाहे कैसे वो बना सकते हैं और वो भी दे सकते हैं ये घर एक आशियाना गौरैया को?
0: तो हमारा जो मिशन है वो है कि हर घर गौरैया घर होना चाहिए, क्योंकि आप जहां आज अपने घर बना रहे हैं वो जीवों के ही थे। तो बेसिकली आज हम कहते हैं ना कि लेपर्ड हमारे घरों में घुस गया, टाइगर हमारे घरों में घुस गया, ये उल्लू हमारे घरों में आ रहे, हमारे घरों में नहीं आ रहे, हम उनके घरों में चले गए हैं। तो इसलिए उनका भी आशियाना बना रहे ये जरूरी है। तो जब हम इसके डिजाइन की बात करते हैं, जो होल साइज है वो हमने 1.5 से 2 इंच रखा है, इससे बड़ा होल साइज करने पर बड़ी बर्ड्स इसके अंदर जाने लगती है। दूसरा, प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए हमने होल बनाए हैं ताकि हवा जो है प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। इसमें नीचे होल्स हैं ताकि कभी अगर पानी इकट्ठा हो तो वो पानी निकल सके। इसका जो रूफ है वो हमने स्लैंटिंग बनाया है ताकि कोई पिजन्स वगैरह इसके ऊपर ना बैठ पाए। और कोशिश ये करनी है कि इसको विंडो या वेंटिलेटर के पास लगाएं या जहां पर आपका एसी लगा हुआ है। दूसरी, हमें ये कोशिश करनी है कि जहां पर भी आप इसको लगाएं उसके ऊपर रूफ होनी चाहिए ताकि पानी इसके ऊपर ना गिरे। और दूसरा, आप जो गौरैया है वो हमेशा वेंटिलेटर से एंटर करने की कोशिश करती है। आजकल हमने अपने रोशनदान में भी जाली लगा दी है, सब चीजों में जाली लगी है, तो गौरैया अंदर आ ही नहीं सकती है, तो इसके लिए सबसे अच्छी जगह वो है। दूसरा, इस पर हम किसी भी तरह का पेंट यूज नहीं करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन से या रोड पर जो बॉक्सेस मिलते हैं वो बहुत कलरफुल होते हैं। हम भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को देते हैं, इसका जो एडॉप्शन रेट है वो 86% है मैम, तो हमने कई बार देखा कि जब हमने इसको दिया तो लोगों ने इसका होल साइज बड़ा कर दिया, ये सोच के कि इतनी छोटे में कैसे एंटर करेगी। और दूसरा, कई बार लोग इसको येलो ऑरेंज कलर का पेंट कर देते हैं, इसमें ग्लासेस लगा देते हैं, क्योंकि ह्यूमंस लाइक एवरीथिंग टू बी ब्यूटीफुल, उनको हर चीज ऐसा सुंदर चाहिए, जबकि कोई भी बर्ड्स मैम कभी ये नहीं चाहती कि उनका
1: ये ज्यादा नेचुरल हैबिटेट से
0: कि उनका नेस्टिंग साइट कहाँ है ये किसी को भी पता चले। तो अक्सर इसको छुपा कर लगाना चाहिए, और हम इसका कलर ऐसा रखते हैं मुल्तानी मिट्टी या गेरू से, ताकि ये कैमोफ्लाज कर जाए वॉल के साथ आसानी से, तो ये दिखना नहीं चाहिए। कोई बर्ड ये नहीं चाहती कि उसका नेस्टिंग साइट किसी को भी पता हो। दूसरा, इसमें दाना पानी नहीं रखना है, इसमें कहीं पर भी अगर आप पानी के लिए बनाते हैं, बैठने के लिए बनाते हैं या दाने के लिए बनाते हैं, तो इसमें दूसरे जो बर्ड्स हैं वो आकर बैठते हैं और उसके वो प्रेडेटर्स हो सकते हैं, उसको चिक्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
1: जी, तो बहुत ही आपका सराहनीय ये प्रोजेक्ट है, एंड आई एम श्योर कि बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि गौरैया तो हमारे जीवन का बहुत एक इम्पोर्टेंट, उसको कहा ही कॉमन हाउस स्पैरो जाता है।
0: आई वुड लाइक टू ऐड जस्ट वन थिंग इन दिस क्वेश्चन, ये आता है कि क्यों हमें लगा कि गौरैया को बचाना जरूरी है, गौरैया हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये हमें सोचना बहुत जरूरी है। तो गौरैया जो है मैम ये ह्यूमंस के साथ रहती है, बहुत कम ऐसी बर्ड्स हैं जो ह्यूमन कम्युनिटी के साथ रहती है, गौरैया उनमें से एक है। और ये क्या करती है कि जब इसके बच्चे अंडा फोड़कर बाहर आते हैं तो उनको हाई प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, और उस हाई प्रोटीन के लिए ये हमारे बगीचे में जितने भी लार्वाज हैं, जो हमारी नालियों में है, जो हमारे पौधों में है, जो हमारे गमलों में है, उससे लार्वा को चुन चुन के अपने बच्चों को खिलाती है। और ये वही लार्वाज हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमारी फूड चेन में एंटर करते हैं। तो यानी यदि आप एक छोटा सा गौरैया घर नहीं लगाते हैं तो आप हर महीने किसी न किसी रोग या बीमारी की वजह से डॉक्टर को विजिट करते हैं, क्योंकि जो कम्युनिकेशन जो आपके डिजीज हैं जो आसानी से फैल सकते हैं, उन डिजीजेस को रोकने का एक ही तरीका है कि जो आपके पास लार्वाज हैं आसपास, जो आपकी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको आप खत्म करें। तो खत्म करने का ये नेचुरल तरीका है, ये बायो पेस्टिसाइड्स हैं, बायो इंसेक्टिसाइड्स हैं, और दूसरा तरीका है आप केमिकल्स डालेंगे।
1: तो आप जो कह रही हैं कि इतने सारे आपने छात्रों को इसमें इन्वॉल्व किया है, जो खुद उन्होंने अपने आप रिसर्च की और बहुत एक कहें कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रही उनकी, तो उनके जो आसपास के जो उनका घर वाले हैं या उनके फ्रेंड्स हैं उनमें भी वो जागरूकता फिर एक तरह से एक डोमिनो इफेक्ट होता है।
0: यस यस ऑफ कोर्स मैम, जब मैं किसी बच्चे को कुछ सिखाती हूँ तो वो बच्चे से अभिभावक और अभिभावक से कम्युनिटी में जाती है। तो जब ये स्पैरो बॉक्सेस मेरे बच्चे घर में बनाते हैं या लगाते हैं तो सबकी नजर जाती है, और जब उसमें चिड़िया आती है या अंडे देती है तो सिर्फ वो नहीं देख रहे हैं, इवन उनके दादा दादी बताते हैं कि हमारे यहाँ पहले बहुत आया करती थी। तो इस तरह से एक पूरा घर, एक पूरा समुदाय, एक पूरी कम्युनिटी धीरे धीरे उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो हमने एक दिया, बाद में वो 10 बनाते हैं, तो अब उनको ये पता है कि मेरे घर में अगर सोफा का कुछ लकड़ी बच गई है या डोर बनाते समय कुछ बच गया है तो उसको काट कर हम स्पैरो हाउस बना सकते हैं।
1: तो ये लकड़ी से ही बनता है या गत्ते से भी या किसी और मटेरियल से भी?
0: अगर आपको सिर्फ एक सीजन के लिए लगाना है तो आप गत्ते से भी बनाकर लगा सकते हैं। स्पैरो आसानी से आ जाती है अगर आप एक नॉर्मल शू बॉक्स लेते हैं और उसमें होल कर देते हैं। जो सबसे बड़ा डर है मैम वो ये है कि उसमें पानी एब्जॉर्ब करेगा और वो फूल जाएगा, तो उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार चींटियां आ जाती हैं जो बच्चों को नुकसान पहुंचाती हैं, कई बार वो वीक हो जाता है और टूट जाता है, गिर जाता है, कई बार हवा ऊपर से गिर जाता है, तो इसलिए हम एक सेफ नेस्टिंग जो है उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं।
1: और एक और जो आपकी पहल जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे, जो पेड़ों को लेकर आपने जो जागरूकता बच्चों में जो QR कोड सिस्टम आपने इंट्रोड्यूस किया है, थोड़ा सा ये बताएं।
0: मैम सेम आई वुड लाइक टू मेंशन, कोरोना के बाद जब बच्चे मेरे पास आए, कोरोना में हम लोगों ने ही सभी बच्चों को इंसिस्ट किया कि स्मार्टफोन्स खरीदिए, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करिए। तो ऑनलाइन क्लासेस लगभग 1.5 साल चली और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरे बच्चों को सोशल मीडिया की आदत पड़ गई। तो जब पेरेंट्स मेरे पास आए तो उन्होंने बोला कि मैम हमारे बच्चे जो हैं वो मोबाइल ही हाथ से नहीं छोड़ते हैं। तो मुझे ये लगा कि वो टेक्नोलॉजी को जानते हैं, अब उस टेक्नोलॉजी का कैसे यूज किया जा सकता है दैट आई हैव टू सी, बिकॉज उनके हाथ से मोबाइल छुड़ाना इज नॉट द सोल्यूशन, बट मोबाइल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, ये एक समस्या थी मेरे साथ। मैं एज अ क्लास टीचर आई वॉज फेसिंग दिस। एंड दूसरी तरफ मेरे बच्चों को मैं बायोडाइवर्सिटी पढ़ा रही थी, तो मैंने देखा कि मेरे ही स्कूल में जो लगे हुए पेड़ है बच्चे उनके भी नाम नहीं बता पा रहे, मतलब वो सिर्फ कुछ पेड़ों के नाम जानते हैं, वो पीपल और बरगद में अंतर तक नहीं जानते हैं। तो मुझे लगा कि अगर वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट है। तो मैंने एक दिन 9th क्लास में बच्चों से पूछा कि क्या हम पेड़ों को कैसे पहचान सकते हैं, तो एक बच्चे ने कहा कि मैम जैसे हम अपना नाम बताते हैं, यदि वो भी अपना नाम बता दें खुद ही तो हम पहचानने लगेंगे। तो मैंने कहा इसके लिए क्या किया जाए, तो देयर वाज अ स्टूडेंट चाहत मिश्रा इन द 9th क्लास, सो ही सेड कि मैम QR लगा देते। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड कि QR लगा देते हैं, कैसे QR लगाओगे? तो बोले मैम आप देखिए ना, आपके लैपटॉप में QR लगा है, ये पेन में लगा हुआ है, हर चीज में, बुक्स में QR लगे हुए हैं, पेड़ों पे QR क्यों नहीं लगा सकते, 2021 की बात है ये। तो मैंने कहा लगाते हैं फिर, तो चलिए आप लोग QR बनाइए, फिर बना लोगे? तो दे सेड यस। बच्चे कभी ना नहीं कहते मैम, कुछ भी कहिए तो दे लाइक हाँ कर लेंगे ना मैम, दे नेवर से कि नहीं होगा, इवन आई वाज ब्लैंक कि कैसे होगा। तो अगले दिन 5 QR कोड बन के पेड़ों पे लग गए मैम, और हमने उन सबको स्कैन किया, देयर वर ग्लिचेस, उनमें से एक भी चल नहीं रहा था लेकिन QR बन गए थे। तो उससे एक होप डेवलप हुआ कि हम बना सकते हैं। फिर बहुत सर्च किया तो इंडिया में कहीं पर भी नहीं मिल रहा था जिन्होंने ये काम पहले किया हो, इंडिया के बाहर एक दो जगह मिला पर वो जिस तरीके से लगा रहे थे वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो फिर हमने कहा कि ठीक है QR बनाते हैं। तो QR बनाने के लिए सबसे पहले आपको बॉटनिकल सर्वे करना पड़ेगा कि आपके स्कूल में कौन से पेड़ हैं, कितने प्रकार के हैं और कितने नंबर में हैं। तो ये एक बॉटनिकल सर्वे शुरू हुआ, तो हमने फाइंड आउट किया कि हमारे स्कूल में टोटल इतने पेड़ हैं और इतने प्रकार के हैं। तो शुरू किया कि इस पेड़ का QR बनाना है। अब ये काम जो है वो काफी डेप्थ में जा रहा था और इतना टाइम आप स्कूल में दे नहीं सकते क्योंकि स्कूल में बच्चों के फिक्स पीरियड होते हैं, क्योंकि जूम मीटिंग हम पहले सिखा चुके थे बच्चों को, तो हमने उसको यूटिलाइज किया और हम डेली 8 से 9:30 नाइट में बच्चों के साथ मिलने लगे। ऑलमोस्ट 50-55 स्टूडेंट्स 9th के सभी सेक्शंस के
1: बच्चों में बहुत उत्साह था।
0: सो वो बच्चे कनेक्ट होते थे और हम डिस्कस करते थे कि क्या क्या लिखना चाहिए, QR में क्या क्या होना चाहिए। तो फाइनली 1.5 साल की मेहनत के बाद हमने प्रॉपर QR बनाया जिसमें इंग्लिश नेम, उसका हिंदी नेम, साइंटिफिक नेम होता था और हम ये चाहते थे कि आप जिस जगह रहते हैं उस भाषा का भी विवरण उसमें होना चाहिए क्योंकि कम्युनिटी अगर स्कैन करे तो उसको पता हो। तो हम सिर्फ इंग्लिश नहीं चाहते थे, हम उसको हिंदी में भी चाहते थे, बाद में कई लैंग्वेजेस में बने ये। तो हमने उसको बनाया और उसमें इन्फॉर्मेशन दी कि ये पेड़ आपको कितना ऑक्सीजन देता है, इसका मेडिकल यूज क्या है और इसके अलावा ये सब तो हमें नेट से मिल रहा था लेकिन उसके बाद ये आया कि हमारी कम्युनिटी में इसका कैसे यूज करते हैं। तो मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो गाँव से आते हैं तो वो कई तरह से, जैसे अमलतास की फली है वो अपने गाय भैंस को खिलाते हैं डाइजेशन के लिए और आज इसको हम पढ़ रहे हैं रिसर्च में कि अमलतास की फली इस तरह से यूज हो सकती है। कदम का जो फूल होता है हम कभी नहीं जानते थे उसके फल को खाया जाता है, पर मेरे बच्चे ने बताया कि मैम इसकी तो हम चटनी बना के खाते हैं, तो हमने उसमें विधि लिखी अगर आपको इसको खाना है तो चटनी कैसे बनाई जाए। तो जब आप इसको स्कैन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस फ्रूट की चटनी कैसे बनाई जाती है। फिर हमने साइंटिफिकली पढ़ा तो पता चला कि अगर अक्टूबर नवंबर में जब ये फल आता है यदि आप इसे खा लेते हैं तो दिसंबर जनवरी में आपको सर्दी खांसी बुखार कुछ नहीं होगा।
1: कोई भी जो विजिटर है जो भी वहां से गुजर रहा है स्कैन करिए और आपको
0: Yes, you don't need any app for it. Simply with the QR scanning, आप उसको स्कैन कर सकते हैं। फिर इस प्रोजेक्ट के बारे में हमारे वहाँ कमिश्नर मैम थी तन्वी हुड्डा, she came to know about it. तो she called us कि can we do it in all the parks of our area? तो she gave the responsibility of 72 parks. तो हमने 72 parks में QR कोडिंग की मैम और हर बच्चा जो है जो उस पार्क के पास रहता था वो वहाँ जाता था सुबह वॉक करने अपने पेरेंट्स के साथ, वहाँ के जो लोग थे उनसे पूछता था कि इस पेड़ का नाम क्या है और वो लिखता था कि ये पेड़ इतने हैं, ये पेड़ इतने, फिर हमने QR कोड्स लगाए। मोर देन 4,000-5,000 ट्रीज अभी तक हम QR कोडिंग कर चुके हैं। फिर हमने पन्ना टाइगर रिजर्व में लगाए, फिर हमने मुकुंदपुर में लगाए, ऐसे कई टाइगर रिजर्व्स में हमने QR कोडिंग की एंड फिर पुणे में किया, हमने सिखाया इसको बैंगलोर में सिखाया। तो वो एक छोटे से जिले से जो काम शुरू हुआ था वो पूरे इंडिया में फैल गया और फाइनली मिशन लाइफ के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने इस प्रोजेक्ट को लिया और लास्ट मार्च में सभी इंडिया के स्कूल्स में इस प्रोजेक्ट को मस्ट कर दिया गया। अब सभी स्टेट ICSE और CBSE बोर्ड के स्कूल्स में ये हो रहा है।
1: बहुत ही मतलब एक इनोवेटिव पहल है जिससे एक इंटरेस्ट डेवलप होता है बच्चों का? और जो दूरगामी फायदे क्या है, क्या आपको पता लगता है कि कितनी बायोडायवर्सिटी है, नहीं है, किस तरह के सजेशंस या पॉजिटिव आउटकम्स क्या आती हैं?
0: अगर हम पॉजिटिव आउटकम्स की बात करें तो यहाँ पे दो चीजें मैं देखती हूँ। एक कम्युनिटी की तरफ से अगर हम देखें तो जब मेरे बच्चों ने ये डेटा निकाला, मैम बॉटनिकल सर्वे किया, तो जब हमारे पास रिजल्ट आया कि किस पार्क में कितने पेड़ लगे और उसको जब हमने एनालाइज किया, दिस इज व्हाट इज रिसर्च, तो हमने देखा कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज है हमारे एरिया में वो रॉयल पाम था। दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि मेरा एरिया जेरोफाइटिक एरिया है नहीं, तो ये रॉयल पाम का नंबर सबसे ज्यादा कैसे हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि प्लांटेशन में आप रॉयल पाम सेलेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब आप महुआ काटते हैं, शीशम काटते हैं, आम, बरगद, नीम, महानीम, कहां गए सब? ये सब कहां गए? जंगल जलेबी कहां गया? आपने इन सबको काट के और प्लांटेशन में क्या लगा दिया? रॉयल पाम। क्यों लगा दिया रॉयल पाम? क्योंकि उसकी मेंटेनेंस कम है। तो इस तरह से क्या हुआ कि मेरे नेटिव पेड़ सारे गायब हो गए, और अगर नेटिव पेड़ गायब हो जाएंगे तो पूरी बायोडायवर्सिटी खत्म हो जाएगी। उस पेड़ से जो मेरे इंसेक्ट्स रिलेटेड है, जो मेरे बर्ड्स रिलेटेड है, जो मेरी बटरफ्लाईज रिलेटेड है, एक पेड़ के खत्म होते ही वो सब खत्म हो जाएगा, और धीरे धीरे उस एरिया की पूरी बायोडायवर्सिटी खत्म हो जा रही है, हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो ये बहुत जरूरी है हम ये सोचे कि यदि हम कोई पेड़ काट रहे हैं, यदि हम शीशम काट रहे हैं, महुआ काट रहे हैं, बरगद काट रहे हैं, हम लगा क्या रहे हैं? क्या हम वहां उस एरिया के नेटिव पेड़ लगा रहे हैं? सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, यदि आप क्यू आर कोड या पीबीएल का इम्पैक्ट की बात करें कि इसके रिजल्ट क्या है, तो आज से 4-5 साल पहले एक स्टूडेंट था युवराज, वो मेरे साथ क्यू आर कोडिंग करता था। उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी, उसके फादर नहीं थे, तो कई बार ऐसा होता था कि युवराज से जब बात करो तो वो रोने लगता था अचानक से। बाहर से जब लोगों से इंटरेक्ट करके आता था तो कहता था मैम वो तो ऐसा कह रहे हैं, और बहुत जल्दी हार जाता था। पर वो प्रोजेक्ट करते समय मैंने उसमें देखा कि कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, और फिर जब वो कमिश्नर सर से मिल रहा है, कलेक्टर सर से मिल रहा है, जब उसकी फोटो न्यूज़पेपर में आ रही है, तो इससे कॉन्फिडेंस उसमें धीरे धीरे डेवलप हुआ। और फिर उस बच्चे को क्योंकि क्यू आर कोड बनाना था तो उसको टैब मिल रहा था, उसको मेरा लैपटॉप मिल रहा था, तो उसको धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। और अभी जुलाई में मुझे पता चला कि उस बच्चे ने IIT रुड़की ज्वाइन किया है।
1: कितना मतलब एक एक्सपैंड होता है आपका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है जो छात्रों का। और कोई ऐसा एग्जाम्पल आप बता सके कि जो उन्होंने ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के दौरान सीखा उसको आगे जाके उनको उसकी हेल्प हुई हो?
0: एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट है मैम, जब मैंने टीचिंग स्टार्ट ही किया था तो आई यूज टू गिव दिस प्रोजेक्ट टू माय स्टूडेंट्स। तो 9th क्लास में देयर वाज स्टूडेंट, बच्चों को मैंने एक प्रोजेक्ट दिया था कि आपको अपनी सिटी में जो बर्ड्स मिलती हैं उन बर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, और उन बर्ड्स को आइडेंटिफाई करके आपको बताना है कि उनका नाम क्या है, उनकी फोटोग्राफ्स आपको लेनी है। तो उस बच्चे ने वो प्रोजेक्ट किया, एंड देन कुछ साल पहले दिल्ली से मुझे एक कॉल आया और वो बच्चा मुझे कॉल करके बोलता है कि मैम मैं विनायक बोल रहा हूँ, मैम आपने मुझे 9th में साइंस पढ़ाई थी, तो he said कि आज मैं UPSC का इंटरव्यू देके आया हूँ। तो I congratulated him and then he was like कि मैम आपको पता है आपने 9th में मुझे एक प्रोजेक्ट दिया था जो बर्ड्स के ऊपर, तो आज मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आपने कोई भी ऐसा काम जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है प्रैक्टिकली किया है? तो बोलता मैम वो 9th में जो मैंने बर्ड्स का आइडेंटिफिकेशन किया था, मैं सुबह कैमरा लेके जाता था, बर्ड्स की फोटो खींचता था, गूगल से मैच करता था, और कितना डिफिकल्ट होता था उस काम को करना, वो सारा मैंने आज डिस्क्राइब किया। एंड देन आफ्टर फ्यू डेज आई सॉ इन द न्यूज़पेपर दैट इज UPSC ranking was 47.
1: Wow.
0: So that is an achievement, ma'am.
1: Yes, yes. आपको लगता है कि ये जो experience इनको मिलता है project based learning में, जैसे आप कह रही हैं कि वो research जो stage है उसमें भी involved होते हैं, और जिस तरह से धीरे धीरे dynamic changes होते हैं project में, उसको एक success तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से involved रहते हैं बच्चे, तो आपको लगता है कि पूरा उनका जो mindset है for life, ता उम्र के लिए वो एक जो conservation है, हमारी प्रकृति के प्रति प्रेम है, उसके संरक्षण के प्रति जो जागरूकता है, वो आपको लगता है कि उन्हें हमेशा वो रहेगी, उनका पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी बन जाती है?
0: जो 40 स्टूडेंट्स या 50 स्टूडेंट मेरी क्लास में आज बैठते हैं, मेरा ये मानना है कि कल समाज वही बनाएंगे। आज जो समाज हम देख रहे हैं, यदि हम उसमें कुछ बुराइयां देख रहे हैं या कमियां देख रहे हैं, ये समाज कभी किसी दिन किसी टीचर की क्लास में बैठा होगा, और आज जो मेरी क्लास में बैठा है ये आने वाली पीढ़ी है, ये कल समाज की नींव रखेगी। जरूरी नहीं है कि मेरे क्लास में जितने विद्यार्थी बैठे हैं वो सभी के सभी डॉक्टर्स या इंजीनियर्स बन जाएं। तो यहाँ पर मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं अपने विद्यार्थियों को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बना, मैं उन्हें इस चीज के लिए समझा पाऊं, सेंसिटाइज कर पाऊं कि प्रकृति हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना आप प्रकृति से लेते हैं कुछ तो उसके बदले में उसे दीजिए। हमें प्रकृति को बचाने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। तो ये जो सेंसिटाइजेशन है, यदि हम इस कच्ची उम्र में कर पाते हैं तो वो जीवन पर्यंत उनके साथ जाता है। जैसे मेरा एक विद्यार्थी है मैम, वो इंजीनियर है, तो वो बहुत पहले पढ़ाया था मैम, 2010-11 में पढ़ाया था, सबसे पहला बैच था मेरा, तो उस बच्चे को जब हम क्या करते थे, नेस्टिंग साइट्स ढूंढते थे कि चलो आज देखते हैं कहाँ कहाँ नेस्टिंग साइट्स हैं गांव में, जाते थे मेरे साथ और नदी के किनारे नेस्टिंग साइट ढूंढते थे। तो बड़ा मजा आता था कि ओपन बिल की नेस्टिंग साइट है, ये ईग्रेट्स की नेस्टिंग साइट है, वो वहां पढ़ाया और खत्म हो गया और बच्चे ने मैथ्स ले लिया। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले मुझे उसका मैसेज आता है कि मैम मैं यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की लाइन डाल रहा था तो मैंने वो ना डायरेक्शन चेंज करा दिया मैम। आई सेड क्यों, क्या हुआ? तो ही वाज लाइक मैम वहां पे तो नेस्टिंग साइट है, तो ईग्रेट्स की और ओपन बिल्स की नेस्टिंग साइट है, तो वो पेड़ नहीं काटना मैम, बिकॉज दे नो कि ऐसी कई माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो कई हजार किलोमीटर उड़कर बार बार इंडिया आती है, और जब वो इंडिया आती है तो वो उसी पेड़ को ढूंढती है, उसी एरिया को ढूंढती है, तो इन एरियाज को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। यदि वो पेड़ वहां पे नहीं है और बिल्डिंग बन गई है, क्योंकि वो उसका ब्रीडिंग सीजन है, वो ब्रीडिंग सीजन मिस

0: आउट हो जाएगा। तो इसलिए इन नेस्टिंग साइट्स को पहचानना बहुत जरूरी है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा बच्चा किस फील्ड में है, लेकिन नेचर से कनेक्ट होना तो सभी के लिए जरूरी है। मैं
1: बिल्कुल जरूरी है हमारे खुद के भविष्य के लिए भी। सो डॉक्टर शुक्ला, जैसा आप कह रही हैं कि हर एक जो नागरिक है वो आगे चलकर किसी भी फील्ड में जाए, लेकिन जो पर्यावरण का संरक्षण है वो तो हम सभी के भविष्य के लिए, हमारे जो आने वाली पीढ़ियां उनके भविष्य के लिए भी बहुत ही जरूरी है, जैसा हम देख ही रहे हैं। एक और जो आपकी पहल है बीजों को लेकर, सीड को लेकर, उसके बारे में आप हमें बता सकती हैं, उसका क्या है ये पहल और उसका क्या उद्देश्य है?
0: मैम, इसकी कहानी भी इसी तरह से शुरू हुई थी कि एक बार मैं थर्ड फ्लोर पे खड़ी हुई थी और मैंने देखा कि नीचे से जो गार्बेज व्हीकल थी वो निकल रही थी और लोग क्या कर रहे थे, आम के बीज को काली पन्नी में बांधकर और उसमें डाल रहे थे। तो मैंने अपने विद्यार्थियों को यही समझाया कि बीज कचरा नहीं है, क्योंकि बीज को जो आप कचरे की गाड़ी में डाल रहे हैं वो कचरा है ही नहीं। दूसरा, बीज का जो मौलिक अधिकार है, उसको मिट्टी पानी मिल सके, आपने वो भी खत्म कर दिया। तो और वो बीज का एक पोटेंशियल है कि हर बीज जो है या तो 40 दिन में या 1.5 महीने में वो उगाता है, अगर उतने दिन में उसको मिट्टी पानी नहीं मिला तो बीज खत्म। इस तरह से लाखों बीज हम भारत में हर साल बर्बाद कर। तो इस यहां से ये मुहिम शुरू हुआ कि हम जो बीज है उसको गार्बेज व्हीकल में नहीं डालेंगे। तो फिर इसको लेकर हमारी नगर निगम कमिश्नर मैम से बात हुई कि मैम क्या हम बीज को अलग से इकट्ठा कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने गाड़ियों में थैलियां डलवाई और पूरे एरिया में लोगों से रिक्वेस्ट किया कि बीजों को अलग से दीजिए और इन बीजों को हमने बोरियों में कलेक्ट किया। तो जब ये काम कौन कर सकता था, मेरे विद्यार्थी पूरे शहर में फैले होते हैं तो वो हर जगह अपने अपने एरिया में बता रहे थे और इस तरह से हमने बीजों को कलेक्ट किया। और यहाँ पर ये हुआ कि स्कूल में कैसे कलेक्ट करेंगे, तो हमने स्कूल में डस्टबिन के साथ सीड बीन्स रखे। तो मेरे विद्यार्थी जो सीताफल खाते थे वो सीताफल के बीज लाके उसमें अलग से डालते थे, जो आम खाते थे वो आम लाके अलग से डालते थे। तो यहां से सीड बीन्स का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ और इस मुहिम के चलते हम नगर निगम के साथ मिलकर आम के उस साल लगभग 6,000 बीज और सीताफल के लगभग 10,000 बीज बचा पाए थे और वो 6,000 में से 2,500 पेड़ हमने डेवलप किए थे।
1: बहुत ही मतलब एक नेचुरल रिसोर्स है देखा जाए तो। ये एक और जो आपका कॉन्सेप्ट है प्लांट्स में इमोशन है, ये क्या तथ्य है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं और इसका क्या फायदा है?
0: एक बार क्लास में ही पढ़ाते हुए मैंने जगदीश चंद बसु जी के बारे में जब अपने विद्यार्थियों को बताया तो मैंने कहा था कि वो कहते हैं कि उनमें फीलिंग्स होती है, उनमें भावनाएं होती है, वो फील करते हैं। तो मेरा एक बच्चा खड़ा होकर कहता है कि मैम सच में फील करते हैं क्या वो हमारी बात समझते हैं? तो मैंने कहा करके देखते हैं। तो विद्यार्थी बड़े एक्साइटेड होते हैं, यस मैम कर सकते हैं क्या? मैंने कहा करते हैं। तो हम दो पौधे लाए और दोनों पौधे जो है वो बराबर साइज के थे, एक जैसी मिट्टी थी, एक जैसे गमले थे, एक जैसे सूरज की रोशनी मिल रही थी और हम नाप कर दोनों में पानी डालते थे, बराबर खाद डालते थे। बस एक डिफरेंस जो था, हमने 5 बच्चों का एक ग्रुप बनाया जो पेड़ों से बात करता था। तो एक ग्रुप जो है वो उस पेड़ को ग्रेटिट्यूड शो करता था, अप्रिशिएट करता था, और जो दूसरा ग्रुप है वो थोड़ा क्रिटिसाइज करता था। तो उसकी जो लैंग्वेज होती थी वो रफ होती थी और क्रिटिसाइजिंग होती थी। तो मैंने इनसे कहा कि आप बात करिए इनसे, लेट्स सी कि कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो जब बच्चों ने बात किया, 1 महीने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट थे, तो जिससे हम नेगेटिवली बात कर रहे थे उसकी ग्रोथ ज्यादा थी। तो मुझे लगा कि शायद हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ तो है जो हम गलत कर रहे हैं। तो फिर दे सेड कि नहीं मैम ऐसा तो नहीं हो रहा है। मैंने कहा लेट्स कंटिन्यू विद द प्रोजेक्ट, अभी रोकते नहीं है इसको। हमने अगले महीने फिर उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया तो मैम इसकी जो ग्रोथ थी जिससे हम नेगेटिवली बात कर रहे थे उसकी ग्रोथ थोड़ी सी रुक गई और इसमें नई पत्तियां निकलने लगी। तो हम नोट करते थे कि इसमें नई लीफ आ रही है, स्केल से नापते थे कि कितनी बड़ी होगी। 3 महीने आते आते मैम जो पौधा जिसको क्रिटिसाइज करते थे वो मर गया और जो दूसरा वाला पौधा था वो हरा था। तो मतलब अब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो जिन बच्चों ने ये प्रोजेक्ट किया, जब उन्होंने पीपीटी प्रेजेंटेशन इस प्रोजेक्ट का दिया, तो वो बच्चे जितनी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे उतने अच्छे से तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। तो अब मेरे बच्चे सुबह आते हैं तो पेड़ों से हेलो करते हैं, मैं खुद हेलो करती हूँ, बात करती हूँ।
1: तो बहुत ही कहें कि दूरगामी इसके प्रभाव है और लगता है कि ये विन विन सिचुएशन है एंड बच्चों के लिए भी उनकी जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है उसमें आपको लगता है कि इसका बहुत अहम भूमिका है।
0: यस मैम, हमने एक और मूवमेंट शुरू किया है जिसमें हम बच्चों को पेड़ों को हग करने के लिए कहते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज हग अ ट्री मूवमेंट। तो जब वो पेड़ों को हग करते हैं, देयर इज अ साइंटिफिक रिपोर्ट जो ये कहती है कि अगर आप सिर्फ 28 सेकंड्स तक अगर किसी पेड़ को हग करते हैं तो आपके अंदर एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है और ये वही हार्मोन है जो मदर को हग करने से रिलीज होता है। और मैंने बच्चों के फेस पे एक्सप्रेशन चेंज होते हुए देखे हैं।
1: डॉक्टर शुक्ला बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई आकाशवाणी स्टूडियोज में और आपने इतने विभिन्न पहलुओं पर इतने विस्तार से बताया और एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आपको सम्मानित किया है भारत सरकार ने उसके लिए।
0: थैंक यू सो मच मैम मुझे यहाँ बुलाने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ एक लाइन आखिरी में बोलना चाहूंगी, महात्मा गांधी ने कहा था बी द चेंज यू वांट टू सी इन द सोसाइटी और मुझे खुशी है कि हम वह परिवर्तन हैं। धन्यवाद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे गौरैया और पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष योगदान देने वाली तथा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अर्चना शुक्ला के साथ खास बातचीत। संवाद का संचालन कर रही थी सोनू सूद। कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप ऐप न्यूज ऑन AIR

0: और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमारे ईमेल podcast.airnews@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: नमस्कार उज्जैन FM 102.5 MHz पर मैं हूं आपकी दोस्त आरजे हिमानी और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम बॉलीवुड बीट्स। आज 14 सितंबर है और सोमवार की इस खूबसूरत और ताज़ा सुबह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हफ्ते की ये नई शुरुआत अगर बॉलीवुड के ऑल टाइम फेवरेट और सुरीले गानों के साथ हो तो पूरा हफ्ता एकदम सेट हो जाता है। अब हम बॉलीवुड के ऐसे सदाबहार और जोशीले गानों का मजा लेंगे जो आपकी सुबह को मिठास और मस्ती से भर देंगे। तो बस अपने रेडियो का वॉल्यूम बढ़ाइए और इन्जॉय कीजिए। शुरुआत करते हैं फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी के इस बेहद मज़ेदार ट्रैक के साथ।

FM 102.5 MHz पर आप सुन रहे हैं बॉलीवुड बीट्स। श्रोताओं, प्यार और एहसासों का ये सफर आगे बढ़ रहा है। अब वक्त है एक ऐसे गाने का जो दिल को सुकून और गहरी तसल्ली देता है। फिल्म तमाशा का ये बेहद खास गाना अरिजीत सिंह और अलका याग्निक की जादूगरी से भरा है, जो आपकी सुबह को एक अलग ही गहराई देगा।

श्रोताओं, अब गाने की इस प्लेलिस्ट में थोड़ा सा रेट्रो स्वैग, जैज और विंटेज अंदाज जोड़ते हैं। फिल्म परिणीता का ये गाना आपकी बीट्स और अलग ही आवाज के लिए आज भी उतना ही ताजा लगता है। सुनिए क्लासिक और जादुई नगमा।

श्रोताओं, हमारा ये सुहाना कार्यक्रम अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है, लेकिन समापन तो एकदम जादुई और दिलकश होना चाहिए। फिल्म रॉकस्टार का ये आइकॉनिक गाना और एआर रहमान का संगीत आपकी सुबह को यादगार बना देगा। मोहित चौहान की रूहानी आवाज में सुनिए ये शानदार गीत।

क्या शानदार और सुरीला समापन था। आकाशवाणी उज्जैन 102.5 मेगाहर्ट्ज पर सोमवार का ये सात दिन खूबसूरत गानों के बीच कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। उम्मीद है बॉलीवुड बीट्स ने आपकी सुबह को एकदम तरोताजा और खास बना दिया होगा। अब अपनी दोस्त आरजे हिमानी को दीजिए इजाजत, अपने दिन को मुस्कुराते हुए एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

नमस्कार। धर्म, आध्यात्म, आस्था और बाबा महाकाल की पावन नगरी उज्जैन की माटी से आप सभी प्रिय श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम उज्जैन दर्शन में। मैं हूं आपकी उद्घोषिका हिमानी, आकाशवाणी उज्जैन 102.5 मेगाहर्ट्ज पर। अवंतिका नगरी के दिव्य पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा का ये सुहाना सिलसिला यूं ही जारी रहता है। श्रोताओं, आज सोमवार की ये पावन सुबह बेहद खास और अलौकिक है, क्योंकि आज से भाद्रपद का गणेशोत्सव यानी गणेश चतुर्थी का महान पर्व आरंभ हो रहा है। आज का दिन हमारी उज्जैनी के लिए अत्यंत मंगलमय है, क्योंकि अवंतिका नगरी तो सिद्ध गणेश पीठों की नगरी रही है। जी हाँ, आज उज्जैन दर्शन में हम आपको यात्रा कराएंगे उज्जैन के अति प्राचीन और सिद्ध गणेश मंदिरों की, विशेष रूप से श्री चिंतामन गणेश मंदिर, श्री बड़े गणेश जी और गोंघाट स्थित मंचामन गणेश धाम की। तो चलिए, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए शुरुआत करते हैं इस पावन यात्रा की, इस अति मधुर और दिव्य गणेश वंदना के साथ।

श्रोताओं, उज्जैन दर्शन में सबसे पहले बात करते हैं मुख्य शहर से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में पवित्र शिप्रा नदी के समीप स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री चिंतामन गणेश मंदिर की। मालवा क्षेत्र के इस दिव्य धाम का सभा मंडप इसके पत्थर के निर्माण और नक्काशीदार खंभे पर मारकालीन वास्तुकला का अनुपम सौंदर्य दर्शाते हैं। सदियों से इस लंबे सफर में मराठा शासनकाल के दौरान भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण किया गया है। यहाँ एक ही गर्भगृह में भगवान गणेश के 3 स्वरूप चिंतामन, इच्छामन और सौभाग्यमन विराजमान है, जो भक्तों के जीवन से समस्त चिंताओं का नाश कर सुख समृद्धि बरसाते हैं। आइए बप्पा के चरणों में नमन करते हुए सुनते हैं आज का अगला भक्तिमय गीत।

श्रोताओं, उज्जैन दर्शन में अब रुख करते हैं महाकाल प्रांगण के समीप स्थित ऐतिहासिक श्री बड़े गणेश जी की मंदिर का। इस मंदिर की स्थापना महर्षि पंडित सूर्य नारायण व्यास जी के पूज्य पिता श्री द्वारा की गई थी। यह स्थापित भगवान गणेश की विशाल और अत्यंत आकर्षक प्रतिमा सिंदूर, गुलाल, गुड़, तीर्थों के जल और औषधियों से निर्मित है। इस प्रतिमा के मस्तक पर त्रिशूल अंकित है और इनके मध्य में भगवान पंचमुखी हनुमान जी भी विराजे हैं। बड़े गणेश जी महाराज को ज्ञान, बुद्धि और ज्योतिष शास्त्र का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ दर्शन करने मात्र से ही साधकों को अपार बुद्धि और सिद्धि की प्राप्ति होती है। चलिए गणपति बप्पा की भक्ति में डूबते हुए सुनते हैं ये सुंदर भक्ति गीत।

FM 102.5 मेगाहर्ट्ज पर उज्जैन के पौराणिक और ऐतिहासिक वैभव की बातें लगातार जारी हैं। श्रोताओं, अब बात करते हैं प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर गोघाट क्षेत्र मंचामन कॉलोनी में स्थित श्री मंचामन गणेश मंदिर की। परमारकालीन ये मंदिर लगभग 1000 वर्ष प्राचीन माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के मन की हर मुराद पूरी होती है और लोग अपनी तमाम चिंताएं प्रभु के चरणों में छोड़कर असीम शांति पाते हैं। मंदिर के ठीक सामने ऐतिहासिक सूर्यकुंड स्थित है, जहाँ सूर्योदय की प्रथम किरणें सीधे गणेश जी की प्रतिमा को स्पर्श करती हैं। पौराणिक और ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार चक्रवर्ती सम्राट राजा विक्रमादित्य स्वयं यहाँ पूजन करने आते थे और आज भी उज्जैन में पंचांग के प्रकाशन के पूर्व उसका विमोचन सबसे पहले मंचामन गणेश जी के चरणों में ही अर्पित किया जाता है। आइए इसी पावन भावना के साथ सुनते हैं अगला भक्ति गीत।

श्रोताओं, गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर उज्जैन के इन सभी सिद्ध गणेश पीठों में तड़के से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। चिंतामन गणेश जी, बड़े गणेश जी और मंचामन गणेश जी का आज तड़के दिव्य महाभिषेक, सिंदूर श्रृंगार और मोदक का महाभोग अर्पित किया गया है। मंदिर प्रांगणों की वास्तुकला और मालवा की ये पारंपरिक धार्मिक शैली हमें अवंतिका के स्वर्णिम इतिहास की याद दिलाती है। ये आस्था का ऐसा केंद्र है जो युगों युगों से श्रद्धालुओं की धार्मिक चेतना का स्तंभ बना हुआ है।

श्रोताओं, उम्मीद है कि उज्जैन दर्शन में आज उज्जैन के सिद्ध गणेश मंदिरों की ये पौराणिक, ऐतिहासिक और भक्तिमय यात्रा आपको अवश्य पसंद आई होगी। भगवान श्री गणेश जी आप सभी के जीवन को सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य से भर दें। उज्जैन दर्शन के आज के संग में बस इतना है। अब अपनी उद्घोषिका हिमानी को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz पर। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। गणेश चतुर्थी की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। FM 102.5 MHz पर प्रस्तुत है सखियों का खास कार्यक्रम महिला सभा।

नमस्कार सखियों, मैं हूं आपकी रेडियो मित्र अनामिका। स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम महिला सभा में। सखियों, आज विघ्नहर्ता मंगलकर्ता श्री गणेश चतुर्थी का शुभ दिवस है और हिंदी दिवस का पावन दिन भी। आप सभी को इन दोनों शुभ दिवसों की अनेक शुभकामनाएं। सखियों, प्रत्येक महिला सभा में हम विविध विषयों, जानकारियों और समाधान के साथ आप सभी से रूबरू होते हैं और इनके साथ में बहती है सुरीले गीतों की ठंडी बयार। तो सखियों, आज की महिला सभा में हम चर्चा करेंगे त्योहारों के संग खुशियों के अनूठे रंगों पर। साथ ही हम मिट्टी के गणेश, प्रकृति का अनुपम संदेश भी आप श्रोताओं से साझा करेंगे। और हिंदी दिवस का विशेष अवसर है तो हिंदी और हिंदी दिवस से जुड़ी विशेष चर्चा को साझा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित होंगी हिंदी अध्ययनशाला की पूर्व आचार्य डॉक्टर गीता नायक जी। उनसे भी हम हिंदी के महत्व पर चर्चा करेंगे और इन चर्चाओं और बातचीत के बीच सुनते रहेंगे मधुर गीत भी। तो चलिए सखियों, महिला सभा के विशेष अंक का आगाज करते हैं गणपति जी की आराधना के सुंदर मनोरम गीत के साथ।

सखियों, त्योहारों की बात हो और गणपति बप्पा का स्मरण न हो, ऐसा कैसे संभव है। आज पूरे भारतवर्ष में गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है और इसी दिन से गणेशोत्सव का शुभारंभ भी हो रहा है। भगवान गणेश हमारे आराध्य हैं, बुद्धि के देवता, विवेक के प्रतीक और विघ्नहर्ता। लेकिन इस बार हम गणेश जी के एक और सुंदर संदेश के साथ स्मरण कर रहे हैं, मिट्टी के गणेश, प्रकृति का अनुपम संदेश। मिट्टी जिससे हमारा शरीर बना है, मिट्टी जिससे अन्न उगता है, मिट्टी जिससे हमारा घर, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता जुड़ी हुई है, और उसी मिट्टी से जब गणपति की सुंदर प्रतिमा आकार लेती है तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं हमारे घर आकर

में आशीर्वाद दे रही हो। आज आवश्यकता है कि हम गणेश उत्सव को आस्था के साथ पर्यावरणीय जिम्मेदारी से भी जोड़ें। पर्यावरण अनुकूल मिट्टी की प्रतिमाओं और प्राकृतिक सामग्री से सजावट की दिशा में देश में कई पहले हुई है। तो इस गणेश उत्सव पर हम क्या कर सकते हैं? मिट्टी की गणेश प्रतिमा को प्राथमिकता दे सकते हैं, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, सजावट में फूल, पत्तियाँ, कपड़ा, बांस और अन्य प्राकृतिक सामग्री का उपयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक और अनावश्यक थर्माकोल को कम कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, उत्सव के बाद भी प्रकृति की देखभाल की ओर एक सार्थक कदम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि सखियों, भगवान गणेश को पूजना केवल उनके सामने दीप जलाना नहीं है, उनके संदेश को जीवन में उतारना भी है। गणेश जी का बड़ा मस्तक कहता है बड़ा सोचिए, बड़े कान कहते हैं अधिक सुनिए, छोटी आंखें कहती है सूक्ष्मता से देखिए, और उनका वाहन मूषक हमें याद दिलाता है कि जीवन में छोटी से छोटी शक्ति का भी महत्व है। तो फिर प्रकृति की छोटी सी चिंता क्यों ना करें? हम अपने बच्चों को भी यह संस्कार दे सकते हैं कि गणेश जी की सुंदरता केवल प्रतिमा की ऊंचाई में ही नहीं, बल्कि हमारी भावना और हमारे पर्यावरण सम्मान में भी है। और बप्पा आए तो खुशियां लाए, और बप्पा खुशियों के साथ ही प्रकृति के रूप में हमारे बीज बस जाए। सखियों, भारत त्योहारों की भूमि है। अनेक त्योहार गणेश उत्सव के साथ प्रारंभ हो जाएंगे। यहाँ हर पर्व अपने साथ खुशियों की सौगात, संस्कृति की सुगंध, रिश्तों की मिठास और अपनत्व का अनमोल संदेश लेकर आता है। हमारे त्योहार हमें याद दिलाते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी समृद्धि धन नहीं, बल्कि अपने लोगों का साथ, स्नेह और विश्वास है। सखियों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में त्योहार हमें कुछ पल रुक कर अपनों के साथ हंसने, बातचीत करने और यादें बनाने का अवसर देते हैं। यही छोटे छोटे पल जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाते हैं। हमारे भारतीय त्योहार में अपनों का साथ, अपनों के पल बिताने का महत्वपूर्ण साथ होता है। तो सखियों, संगीत को साज देते हैं, अपनों को आवाज़ देते हैं, तभी तो सभी के हृदय मिलेंगे। और जब आएंगे हमारे अपने तो अंगना में फूल खिलेंगे। सखियों, सुनते हैं एक सुंदर सा गीत।

0: सखियों, आज 14 सितंबर हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस हमें केवल हिंदी बोलने या लिखने की याद दिलाने वाला दिन नहीं है, यह दिन हमें अपनी भाषा से जुड़े उस आत्मीय रिश्तों को मजबूत करने का अवसर देता है जो हमारे विचारों, भावनाओं और संस्कृति को अभिव्यक्ति देती है। सखियों, भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं होती, भाषा में हमारी स्मृतियाँ होती है, संस्कार होते हैं, रिश्ते होते हैं और हमारी सांस्कृतिक पहचान होती है। माँ जब बच्चे को पहली बार पुकारती है, दादी जब कहानी सुनाती है, नानी जब लोरी गाती है, घर में जब कोई कहता है बेटा खाना खा लिया, बेटी अपना ध्यान रखना, इन वाक्यों में केवल शब्द नहीं है, अपनत्व का भाव है। इसलिए हिंदी हमारे लिए केवल एक विषय नहीं बल्कि भावनाओं को सहजता से व्यक्त करने का माध्यम है। आज डिजिटल युग है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, वैश्विक संवाद है। ऐसे समय में हिंदी के सामने कई चुनौतियां भी हैं और कई अवसर भी। आज हिंदी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रही है, डिजिटल मंचों पर हिंदी की सामग्री बढ़ रही है, हिंदी में शिक्षा, पत्रकारिता, सिनेमा, साहित्य, रेडियो और डिजिटल मीडिया सभी क्षेत्रों में नए प्रयोग हो रहे हैं। लेकिन भाषा का विकास तभी संभव है जब हम उसे व्यवहार की भाषा बनाएं, तभी तो हम मातृभाषा में अपनापन ला सकेंगे। क्योंकि जिस भाषा में माँ ने पुकारा, जिस भाषा में पहली बार मुस्कुराए, जिस भाषा में अपना सुख दुख कहा, वह भाषा केवल भाषा नहीं हमारी भावनात्मक पहचान है। सखियों, इसलिए तो कहा जा सकता है हिंदी केवल शब्दों का संसार नहीं, हिंदी तो रिश्तों की मिठास है। हिंदी केवल अभिव्यक्ति नहीं, ये अपनेपन का एहसास है। हिंदी केवल भाषा नहीं, यह हमारी संस्कृति और संस्कारों की सांस है। सखियों, आज हिंदी दिवस के महत्व से जुड़ी चर्चा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है हिंदी अध्ययनशाला की पूर्व आचार्य डॉक्टर गीता नायक जी। चलिए सखियों, उनसे हिंदी से जुड़ी कुछ चर्चा करते हैं।
1: निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियाँ केवल हिंदी के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि अपनी भाषा और अपनी पहचान के गहरे संबंध को रेखांकित करती है कि हिंदी हमारे लिए केवल एक भाषा नहीं बल्कि यह हमारी संस्कृति और भावनात्मक पहचान का भी अभिन्न हिस्सा है। यह केवल संवाद का माध्यम ही नहीं बल्कि यह हमारे भावों को मूर्त रूप देती है, हमारे विचारों को स्वर देती है, हमारी भावनाओं को अभिव्यक्ति देती है और हमारी संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करती है। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस है। यह दिन हमें उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है जब 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। हिंदी आज देश के करोड़ों लोगों के बीच संवाद और आत्मीयता का सेतु है। इसकी सहजता, सरलता और अभिव्यक्ति की व्यापकता इसे जन जन की भाषा बनाती है। हिंदी की खूबसूरती यह है कि इसमें लोक नृत्य की सुंदरी महक है और साहित्य की गहराई भी। इसमें कबीर की निर्भक्ता है तो तुलसी की भक्ति, प्रेमचंद की सामाजिक चेतना है तो महादेवी वर्मा की संवेदनशीलता भी। समग्र सार में कहा जाए तो हिंदी विविध भाषाओं की एक रूपता में सजी अपनत्व की भाषा है। आइए हिंदी दिवस के विशेष अवसर पर बात करते हैं हिंदी के महत्व, उसकी उपयोगिता, उसकी समृद्ध विरासत और बदलते समय में इसके स्वरूप पर और इन सभी पहलुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की हिंदी अध्ययनशाला के आचार्य डॉक्टर गीता नायक जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: नमस्कार नानिका,
1: ये आज हिंदी दिवस है, आपको हिंदी दिवस की अनेक शुभकामनाएं।
2: आप सभी को भी हिंदी दिवस की हार्दिक मंगलकामनाएं।
1: मैं चूंकि आप सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय हिंदी अध्ययनशाला के आचार्य रहे हैं तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि हिंदी केवल एक भाषा है या हमारी संस्कृति, संवेदना, पहचान का भी महत्वपूर्ण आधार है।
2: अनामिका, ये बिल्कुल सटीक प्रश्न किया आपने। हिंदी केवल विचार ही नहीं अथवा संप्रेषण की भाषा मात्र नहीं है, हमारी संस्कृति, संवेदना और अस्मिता की मूल संवाहक भी है। भारत की बहु सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता और भाषाई विविधता के बीच समन्वय स्थापित करने वाली मुख्य कड़ी भी है। यह जनमानस की भाषा है जो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए विकसित हुई है। हिंदी भारतीय मानस की सांस्कृतिक चेतना भी है, उसकी वास्तविक अभिव्यक्ति हिंदी और उसकी समृद्ध लोक बोलियों में ही निहित है। हमारे जीवन मूल्य, परंपराएं, जीवन दर्शन सभी तो हिंदी के शब्दों में रचे बसे हैं। हिंदी भारत के बहुरंगी समाज को एक सूत्र में पिरोने वाली और सांस्कृतिक कड़ी है जो भिन्नता के बीच एकता का बोध कराती है। हिंदी की वास्तविक शक्ति तो उसकी संवेदनशीलता में निहित है। हमारे सुख दुख, प्रेम, करुणा आदि मानवीय संवेदनाएं जिस समस्या से हिंदी में व्यक्त होती है वे अन्यत्र दुर्लभ है।
3: बिल्कुल मैं सही कहा कि हिंदी में जो आत्मीयता है वो अन्यत्र दुर्लभ है। तो मैं 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की परंपरा के पीछे क्या ऐतिहासिक और भाषाई महत्व क्या है?
2: अनामिका 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने बेंगाली लिपि में लिखी हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार की।
3: जी
2: स्वतंत्रता के बाद देश में एकात्मता और प्रशासनिक कार्यों के लिए सर्वसम्मत भाषा की आवश्यकता थी और संविधान सभा ने अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इसके बाद 1953 से प्रतिवर्ष इस तिथि को हिंदी दिवस मनाने की परंपरा आरंभ हुई और हिंदी के भाषाई महत्व के संबंध में एक कहना चाहूंगी विषय बहुत बड़ा है, लेकिन इतना ही कि हिंदी की जो लिपि है वैज्ञानिक है, जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, ये इसकी शक्ति।
3: जी जी मैम, बहुत महत्वपूर्ण बात तो आपने हमें अवगत कराया। मैम, हिंदी को जन जन की भाषा कहा जाता है, देश की एकता और विविधता को जोड़ने में हिंदी की महती भूमिका के बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे?
2: बिल्कुल नानिका, हिंदी भारत की संपर्क भाषा के रूप में सांस्कृतिक और सामाजिक सेतु है। ये भारतीय राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक सौहार्द का प्रमुख स्तंभ भी हुई है। हिंदी स्वतंत्रता सेनानियों का संबंध हुई है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि विभिन्न प्रांतों के क्रांतिकारी, चाहे बंगला, मराठी, तमिल, पंजाबी या गुजराती भाषी क्यों न हो, उन्होंने हिंदी के माध्यम से स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी। और अगर मैं यही कहना चाहूंगी कि हिंदी को जनता तक पहुंचाने में हमारा जनसंचार माध्यम जैसे सिनेमा, समाचार पत्रों ने भी हिंदी को देश के कोने कोने तक पहुँचाया।
3: जी बिल्कुल मैम, सभी के साझे सहयोग से हिंदी देश के कोने कोने तक पहुंची और आज सिरमौर के रूप में हिंदी मानी जाती है। मैम, एक प्रश्न है कि आज सोशल मीडिया, इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिंदी का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है, तो तकनीक और सोशल मीडिया ने हिंदी को मजबूत किया है या उसके स्वरूपों को चुनौती भी पैदा की है?
2: अनामिका, वर्तमान समय की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत ही प्रासंगिक है। आज डिजिटल क्रांति ने हिंदी को जन जन तक पहुंचाकर इसका व्यापक विस्तार किया है।
3: जी,
2: साथ ही इसके मूल स्वरूप और भाषाई शुद्धता के सामने नई चुनौतियां भी खड़ी।
3: जी बिल्कुल,
2: इंटरनेट, सोशल मीडिया और टीवी प्लेटफॉर्म्स ने हिंदी को वैश्विक मंच प्रदान किया है। आज वैश्विक ब्रांड्स और एक कंपनी भी भारतीय बाजार में टिकने के लिए हिंदी सामग्री को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। तकनीकी सुलभता, यूनिकोड, नागरिकी कोड, वॉइस टू टेक्स्ट तकनीक ने हिंदी में लिखना, संवाद करना अत्यंत सहज बना दिया है। और हिंदी के माध्यम से अगर देखा जाए तो नए रोजगार के अवसर डिजिटल मीडिया, ब्लॉगिंग, कंटेंट क्रिएशन, ऑनलाइन पत्रकारिता के क्षेत्र में हिंदी भाषियों के लिए अपार संभावनाओं के द्वार भी खुले हैं।
3: बिल्कुल मैम, हिंदी के लिए अभी इस वर्तमान रूप में अपार संभावना के द्वार खुले, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। मैम, हिंदी में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज रोजगार और करियर की संभावना किस प्रकार बढ़ी है? या हिंदी अब केवल साहित्य तक सीमित रहते?
2: नहीं, आज हिंदी केवल साहित्य और अध्यापन तक सीमित नहीं है। वो मीडिया, डिजिटल तकनीक, कॉर्पोरेट जगत और वैश्विक बाजार में एक सशक्त व्यावसायिक माध्यम बन चुकी है। जैसे ब्लॉगिंग, यूट्यूब, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और डिजिटल जर्नलिज्म में हिंदी कंटेंट राइटर्स एंड क्रिएटर्स की अत्यधिक मांग है। जिसके अतिरिक्त अनुभव, और भाषा प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर एप्स और वेबसाइट का हिंदी में स्थानीयकरण लोकलाइजेशन हो रहा है, जिससे ट्रांसलेटर प्रूफ रीडर AI भाषा डेटा एनालिस्ट जैसे नए पद सृजित हुए हैं और इसके साथ साथ हिंदी विज्ञापन ब्रांडिंग और कॉपी राइटिंग में हिंदी भाषा

0: संवाद लेखन और दबी आर्टिस्ट की मांग में भी असाधन बढ़ती हुई है।
1: क्योंकि मैं हिंदी में विद्यार्थियों के लिए रोजगार और करियर की अपार संभावनाएं पैदा की है। मैम, हिंदी दिवस का एक विशेष अवसर है, आप हमारे युवाओं और आकाशवाणी के श्रोताओं को हिंदी के प्रति प्रेम और सम्मान का कौन सा संदेश देना चाहेंगे?
0: बिल्कुल अनामिका, मैं आकाशवाणी के श्रोताओं को यही संदेश देना चाहूंगी कि हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान, हमारी अस्मिता, हमारा अस्तित्व, चेतना, संस्कारों, पर्व, त्योहार, उत्सव, खान पान, रीति रिवाज, समानिका भी है। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि हम अपने हस्ताक्षर की मातृभाषा हिंदी में करें और दैनिक व्यवहार में इसका सहर्ष उपयोग करें और इस तरह से हम अपनी मातृभाषा का आदर करना हमारा नैतिक उत्तरदायित्व भी है। हम अपनी जड़ों से जुड़कर ही वैश्विक स्तर पर हिंदी को सम्मान दिला सकते हैं। जय हिंद, जय हिंदी।
1: धन्यवाद मैम, आपने हिंदी दिवस के महत्वपूर्ण दिन पर हमारे बीच हिंदी से जुड़ी विशेष चर्चा को साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार, सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो सखियों, अभी आपने सुनी डॉक्टर गीता नायक जी के साथ हिंदी से जुड़ी विशेष चर्चा। सखियों, आज हिंदी दिवस पर आइए हम भी छोटा सा संकल्प लें, हम हिंदी को केवल समारोह की भाषा नहीं अपने व्यवहार की भाषा बनाएंगे। हम अपने बच्चों को हिंदी की अच्छी किताबें देंगे, घर में हिंदी के सुंदर शब्दों का प्रयोग करेंगे, हिंदी कविता, कहानी, लोकगीत और साहित्य को जीवन का हिस्सा बनाएंगे। हम अपने हस्ताक्षर भी हिंदी में ही करेंगे। सखियों, हिंदी हो साथ तो फिर क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही जैसे रोशनी है। आइए सुनते हैं एक सुंदर सा गीत।

सखियों, आज की हमारी चर्चा चार रंगों में रंगी थी। त्योहारों के रंग, खुशियों के संग, मिट्टी के गणेश, प्रकृति का अनुपम संदेश, हमारा हिंदी दिवस भाषा के गौरव के संग और मातृभाषा हिंदी अपनत्व की पहचान के संग। इनमें त्योहार हमें जोड़ते हैं, प्रकृति हमें जीवन देती है, भाषा हमें जड़ों से जोड़ती है। आइए इस गणेश चतुर्थी और हिंदी दिवस के सुंदर संयोग पर हम तीन छोटे संकल्प लें। उत्सव मनाएंगे लेकिन जिम्मेदारी के साथ। गणपति लाएंगे तो प्रकृति का सम्मान भी करेंगे, हिंदी बोलेंगे तो गर्व और अपनत्व के साथ बोलेंगे। माटी से जुड़ें, अपनों से जुड़ें, अपनी भाषा से जुड़ें, यही तो जीवन को सुंदर बनाने का सरल मार्ग है। सखियों, हम आज की महिला सभा को यही विराम देते हैं। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कृपया हमें अवश्य बताइए। हमारा पता है महिला सभा द्वारा आकाशवाणी निदेशक विद्यापति नगर नानाखेड़ा उज्जैन 456010। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र अनामिका को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला सभा कार्यक्रम, हम आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से होगा।

विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, बुद्धि और समृद्धि के देवता भगवान गणेश को नमन करते हुए हमने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत की है इस गीत के साथ। फिल्म का नाम था दर्द का रिश्ता, आवाजें ए हरिहरन और साथियों की थी। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा था और धुन बनाई थी राहुल देव बर्मन ने। आज का ये रंग तरंग कार्यक्रम गणपति बप्पा बोरिया मोरिया के नाम। कहते हैं जहां गणपति का स्मरण होता है वहां शुभता अपने आप चली आती है, और हर नई शुरुआत से पहले जिनका नाम लिया जाता है वे हैं हमारे प्रिय गणपति बप्पा। तो आइए भक्ति और श्रद्धा से भरे इस सफर में अब सुनते हैं कार्यक्रम का ही अगला गीत।

गाने वाले कलाकार हैं शंकर महादेवन और साथी। गीतकार और संगीतकार डॉक्टर विजय भावे। गणेश

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ये आवाजें थी तृप्ति शाकिया और साथियों की। आपने इनकी आवाज में ये गणेश वंदना सुनी। आइए सुनते हैं अगला गीत।

समूह स्वरों में अभी आप सुन रहे थे ये स्तुति, गणेश स्तुति। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला भक्ति गीत। आवाजें हैं अभिजीत सावंत और राहुल वैद्य की।

0: उसका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

सुरेश वाडेकर और साथियों की आवाजों में अभी आपने ये गणपति वंदना सुनी। इसे चंद्रशेखर पांडे ने लिखा और धुन बनाई थी श्याम सागर ने। आइए सुनते हैं ये अगला भक्ति गीत, आवाजें जोनिता गांधी और साथियों की।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अब सुनिए अगला भक्ति गीत आवाज़ें दिव्या कुमार और साथियों की। इसे मुकेश मिश्रा ने लिखा है और तर्ज बनाई है काशी कश्यप ने।

रंग तरंग कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं महेंद्र कपूर, सुरेश वाडेकर, शब्बीर कुमार और हेमलता की आवाजों में फिल्म मरते दम तक का ये गीत। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

0: इस गाने के साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम गणपति बप्पा मोरिया को समर्पित था।
1: रंग तरंग,
0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी सदस्य देशों का आभार व्यक्त किया है। शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने तिरुकुरल के प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की है। उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तिरुकुरल के रूसी अनुवाद की प्रति भेंट करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एधनॉम घेब्रियासिस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगी। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत में कई भाषाओं का होना देश की सबसे बड़ी ताकत है। हिंदी दिवस पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा किसी दूसरी भाषा की प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। ढाका में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ आपसी हितों के आधार पर नए सिरे से काम करना चाहिए। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि ढाका अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। भारत ने T20 महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आज हम याद कर रहे हैं फिल्मकार जीपी सिप्पी को। आज इस कार्यक्रम में हमने चुने हैं उन्हीं की फिल्मों के कुछ गीत। ये पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है सजा। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार सचिन देव बर्मन।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था सजा। और आइए अब सुनते हैं ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत, आवाजें मोहम्मद रफी और गीता दत्त की, फिल्म का नाम 12 o'clock।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज इस कार्यक्रम में हम आपको फिल्मकार जीपी सिप्पी के कुछ फिल्मों से गीत सुनवा रहे हैं। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और साथियों को। फिल्म का नाम है मरीन ड्राइव, गीतकार कमर जलालाबादी और संगीतकार एन दत्ता।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मोहम्मद रफी की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म राज का गीत। शब्दकार शमीम जयपुरी और संगीत दिया है कल्याण जी

मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने फिल्म राज का ये गीत सुना। आइए सुनते हैं एन दत्ता के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा ये दो गाना। स्वर मोहम्मद रफी और गीता दत्त के। फिल्म का नाम है भाई बहन।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म ब्रह्मचारी से युगल स्वर मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के।

0: का मौसम ना कहीं छाई बदरिया, फिर भी मोरे जिया रम चमके, अरे थम थम कोई बिझुरिया।
1: वाह वाह वाह, तोहार जवाब नाही

0: मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर, सुषमा श्रेष्ठ और प्रतिभा को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था अंदाज। इसे हसरत जयपुरी ने लिखा था और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। इससे पहले आपने मुकेश की आवाज में फिल्म बंधन का गीत सुना था। शब्द अनजान के थे और धुन कल्याण जी आनंद जी की थी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनिए राहुल देव बर्मन की संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर के बोल, आवाज किशोर कुमार की और फिल्म का नाम सागर।

आशा भोसले की आवाज में अभी आपने फिल्म शान का ये गीत सुना। इसे आनंद बख्शी ने लिखा था और धुन बनाई थी राहुल देव बर्मन ने।

और ये है इस कार्यक्रम का आखिरी गीत। फिल्म का नाम है पत्थर के फूल, आवाजें लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की।

इस युगल गान के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने आपको फिल्मकार जीपी सिप्पी की फिल्मों से कुछ गीत सुनवाए।

तो प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी तो आज तो हमारे श्रोताओं ने हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी और हिंदी दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं हमें भेजी है। आप सबको भी हमारी तरफ से इन सभी खास पर्वों की ढेरों शुभकामनाएं। हाँ, हमें उम्मीद है आज आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन ये भी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और अपनी व्यस्तता के साथ साथ हमारे साथ इस सुरीला सफर पर भी आप निकलने के लिए तैयार हैं, क्यों है ना? चलिए तो आज के सफर में हम संगीत के लिए क्या लेकर जाने वाले हैं बताइए। जब सफर पर निकले हैं तो गीत तो गाएंगे ही, गीत सुनेंगे भी, लेकिन संगीत के लिए हमारे पास जरूरी नहीं कि सितार हो, तबला हो या बांसुरी ही हो। कभी कभी एक गिलास और एक चम्मच भी आपके गीत की धुन बना देते हैं। कभी घड़ी की टिक टिक आपकी कदम ताल।

आपकी चाल, आपकी हंसी, ट्रेन की छुक छुक, या जो पास पड़ोस में या आसपास में पेड़ पौधों की आवाजें हैं, पशु पक्षियों की आवाजें हैं, हवाओं की आवाजें हैं, वो भी हमारे संगीत का हिस्सा बन जाती हैं। तो आज के सुरीला सफर में सुनिए ऐसे ही कुछ गीत जहां आवाजें सिर्फ आवाजें नहीं रही बल्कि वे खुद संगीत बन गई है ना। तो हम तैयार हैं इस तरह के संगीत के लिए, क्यों आप भी तैयार हैं ना। तो आज की इबारत है हमारी कि क्या कभी आपने गौर किया कि कुछ गीतों में कभी घड़ी की टिक टिक, कभी किसी खेल की आवाज, कभी कदमों की आहट और कभी कोई साधारण सी ध्वनि भी उस गीत की धड़कन बन जाती है। फिल्मी गीतों के संगीतकारों ने अपनी कल्पनाशीलता से ऐसी ही आवाजों और बीट्स को गीत का हिस्सा बनाया और उन्हें संगीत में इस तरह ढाला कि वे उससे अलग महसूस ही नहीं होती, क्यों है ना। तो कहीं टिक टिक मेरा दिल बोले मैं आपको टिक टिक सुनाई देती है, तो कहीं ढल गया दिल में आपको रैकेट और शटल की आवाज गीत संगीत के साथ घुलकर एक अनोखा रंग भरती हुई दिखाई देती है, सुनाई देती है। यानी संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, कभी कभी वो हमारे आसपास की आवाजों में भी छुपा होता है। तो आज के सुरीला सफर में होगा ऐसे ही चुनिंदा गीतों का जिक्र जहां धुन के साथ साथ किसी खास आवाज को भी संगीत का हिस्सा बनाया गया उस संगीतकार के द्वारा जो गीतों को और भी यादगार बना गया। तो ये था हमारा आज का टेक्स्ट उन सभी लोगों के लिए जो हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि हमारे वो श्रोता जो फेसबुक पेज से जुड़ गए हैं उन्होंने हमारे टेक्स्ट को पढ़कर बहुत सारे गीतों का जिक्र यहाँ पर किया है, क्योंकि हमने उन्हें दो उदाहरण ऐसे गीतों के दे दिए थे जहाँ वो इस बात से वाकिफ हो गए कि आज किस तरह के गीत हम इस कार्यक्रम में लेकर आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर एसडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी के बोल से, किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम आराधना। आपको पता है इस गाने में हमें क्या सुनने को मिलने वाला है? ट्रेन की आवाज।

जी हाँ, इस गाने में राजेश खन्ना खुली जीप में चलते हैं और अभिनेत्री यानी शर्मिला टैगोर दार्जिलिंग की जो खूबसूरत टॉय ट्रेन है जो बहुत ही प्रसिद्ध है उसकी खिड़की से उन्हें देखती है। क्यों, याद है ना आपको ये सीन? और गाने की धुन और ताल कुछ इस तरह बनाई गई है जो टॉय ट्रेन की गति और उसकी पटरियों की आवाज के साथ बिल्कुल मेल खाती है और पूरा गाना जो पर्वतीय वादियां हैं और चलती ट्रेन का जो सफर है उसका एहसास हमें इस पूरे गाने में मिलता है सुनने को, है ना? और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, लेकिन उससे पहले आपके संदेश आप तक पहुंचाते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि संगीत केवल सुरों और शब्दों का नाम नहीं, वो तो हमारे आसपास बिखरी उन छोटी छोटी आवाजों में भी छुपा होता है जो अनायास ही मन के किसी कोने को छू जाती है। जब ये ध्वनियां किसी गीत का हिस्सा बनती हैं तो गीत केवल सुनाई नहीं देता बल्कि महसूस होने लगता है। शायद इसीलिए कुछ आवाजें कानों से नहीं सीधे दिल से सुनी जाती हैं। वे हमारे मन की स्थिति को बदल देती हैं। उदासी में उम्मीद, अकेलेपन में साथ और खामोशी में संवाद तो कभी कोई मधुर आवाज बीते हुए प्रेम और यादों के दरवाजे भी खोल देती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कभी घड़ी की सुइयों की टिकटिक, कभी मैदान में किसी खेल की गूंज, तो कभी सन्नाटे को चीरती कदमों की आहट, ये सब केवल ध्वनियां नहीं है बल्कि जीवन की लय हैं। भारतीय सिनेमा के जादुई दौर में फिल्मी गीतों के संगीतकारों ने अपनी अनूठी कल्पनाशीलता से इन्हीं साधारण आवाजों और बीट्स को गीतों का अहम हिस्सा बनाया। उन्होंने उन ध्वनियों को संगीत के ताने बाने में इस तरह पिरोया कि वे गीत में अलग महसूस ही नहीं होती बल्कि उनकी आत्मा बन जाती हैं। इन प्रयोगों से ये साफ होता है कि संगीत केवल बंद कमरों या स्टूडियो में तैयार नहीं होता बल्कि यह हमारे जीवन के हर हिस्से में सांस लेता है। कदमों की आहट से लेकर हवा की सरसराहट तक हर ध्वनि में एक लय है। जरूरत है तो बस संगीतकारों जैसी एक संवेदनशील सोच और पारखी कान की जो शोर के बीच से भी एक सुरीली धुन को खींच लाए और उसे हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दे। कितनी खूबसूरती से आपने अपनी बात रखी है। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत फिल्म अलबेला से जिसका जिक्र हमने अपनी इबारत में किया था। आवाजें लता मंगेशकर और चितलकर यानी सी रामचंद्र की, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, सी रामचंद्र का संगीत है। और इस गाने में क्या सुनाई देता है? हाँ, घड़ी की टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक जो हमारे घर में भी हमें सुनाई देती है और एक मधुर संगीत, खासतौर से रात के सन्नाटे में बहुत ही खूबसूरत संगीत हमें देती भी है ये घड़ी की टिक टिक।

लता मंगेशकर और चितलकर की आवाजें थी, फिल्म का नाम था अलबेला। गाने के आरंभ में आपने घड़ियों की टिक टिक टिक टिक सुनी थी ना, सुनाई दी आपको। हाँ, कभी कभी इस संगीत को बहुत गहराई के साथ सुनना पड़ता है क्योंकि कुछ इफेक्ट्स बहुत ही हल्के से इस्तेमाल किए गए हैं। हाँ, कुछ का इस्तेमाल ज्यादा किया गया है तो शायद उसे इतने गौर से सुनने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ इफेक्ट्स बहुत ही गौर से सुनने पर पता चलते हैं कि हाँ, ये इफेक्ट हमने सुना। और अब दो सवाल हमेशा की तरह आपसे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी पसंद के वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं। हो सकता है आप वाद्य यंत्र नहीं बजाते हों या नहीं शौक रखते हों, लेकिन फिर भी जब आप कोई गीत सुनते हैं, आपने कोई गीत सुना होगा तो आपको लगा होगा कि यहाँ सितार का प्रयोग बहुत अच्छा हुआ, तबले का प्रयोग हुआ, या गिटार बहुत अच्छा लगा, या जल तरंग बहुत अच्छा लगा, या जैसे कि आज हम विषय लेकर आए हैं कुछ ऐसे वाद्य यंत्र जो तबला, सितार, ढोलक इनसे अलग होकर बजाए जा रहे हैं। तो ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र आपको पसंद है, बांसुरी, हारमोनियम, जो आप बजाते भी हैं या पसंद करते हैं। कभी कभी ये होता है कि जब हम घर में गाना गाते हैं ना, या बाथरूम सिंगर बन जाते हैं, तो टीन, कनस्तर, बाल्टी, झाड़ू और भी न जाने क्या क्या चीजों को हम अपना वाद्य यंत्र बना लेते हैं, है ना। होता है ना ऐसा, आपके साथ भी कभी हुआ होगा जरूर। याद कीजिए वो दिन जब आपने टीन, कनस्तर, बाल्टी या किसी भी ऐसी चीज को, मेज को ही अपना वाद्य यंत्र बना लिया और गाना गाना शुरू कर दिया। और हमारा दूसरा सवाल कि आपको अपने आसपास की कौन सी ध्वनियाँ प्रभावित करती हैं जो प्रकृति में हैं, या यूं कहूं कि ऐसी कौन सी ध्वनियाँ हैं जो आपको पसंद आती हैं या परेशान कर देती हैं। कम से कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं को हम शामिल कर सकें उनके विचारों के साथ। और आइए चलते हैं अगले गीत की ओर। फिल्म का नाम है दिल तेरा दीवाना। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, शब्दकार हसरत जयपुरी हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन हैं। इस गाने में शंकर जयकिशन ने खास साउंड इफेक्ट्स का बहुत ही अनोखा और खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। आपने सुना है ना ये गीत, जब बिजली कड़कने की आवाज आती है तो वो सिर्फ एक इफेक्ट नहीं लगती, बल्कि गाने के जो शुरुआती बोल हैं जहां रफी साहब कहते हैं कि बिजली गिरा के आप खुद बिजली से डर गई, और उसके साथ ही बिजली कड़कने की और तेज बारिश की आवाज आती है, और लगभग ये आवाज पूरे गाने में हमें महसूस होती भी है।

तो आप भी महसूस कीजिए इस आवाज को।

0: मोहब्बत की कसम,
1: मोहब्बत की कसम,
0: मोहब्बत की कसम,
1: मोहब्बत की कसम।

एक श्रोता ने लिखा है कि संगीत जो हमें एक दैवीय शक्ति से बांधता सा लगता है, जैसे ही किसी जंगल में आप प्रवेश करते हैं, जंगल की आवाज अलग अलग संगीत पैदा करती है, नदियों के पानी में अलग संगीत होता है, कलकल का संगीत, बहुत मीठी मीठी है संगीत बनने की कहानी, रात के बहते हुए खामोश दरिया में चांद की किरणें खेलती रहती हैं और मन के बियाबान तारों में कुछ धुन यूं ही बजने लगती है, जो कोई हुक हो जी मैं तो गूंज उठेंगे, ये विरही सुर कोशिशों साधे नहीं जाते, क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है, आज गीत की धुन के साथ विविध आवाजें भी अपने अस्तित्व का परिचय करवाएंगी। इस अनोखी सुंदर थीम को आज गणपति बप्पा का आशीर्वाद भी है, गणराज रंगी नाच। तो इस मराठी गीत में बाल गणेश जी ने पैरों में पहनी यानी घुंघरू की रुनझुन रुनझुन, ये बेहद सुरीली आवाज दिल को मोह लेती है। और आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र भी किया है, हो सकता है आपकी पसंद हमारी आज की लिस्ट में शामिल हो। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय बिल्कुल नवीन है लेकिन बहुत ही रोचक है। गीतों में संगीतकारों द्वारा किए गए विभिन्न प्रयोग, उनकी कल्पनाशीलता जिससे गीत शानदार हो गए, तरह तरह की बीट्स के प्रयोग ने गीत को कर्णप्रिय बना दिया है। ऐसे ही बहुत सारे गीतों का जिक्र आपने भी किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे चिड़िया या कोई भी गीत में पक्षियों की आवाज बहुत प्यारी लगती है, जैसे कोयल बोली दिल कहे रुक जा रे रुक जा, पंछियों की आवाजें और चुन चुन करती आई चिड़िया, इस तरह की आवाजें इन्हें बहुत पसंद आती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत में सभी तरह के वाद्य यंत्रों के साथ ही आसपास मौजूद आवाज का प्रयोग कर गीतों की प्रस्तुति को लाजवाब बनाया गया है। पंख होते तो उड़ाती रे गीत में पंछी की मधुर आवाज के साथ पंछी की तरह उड़ते हुए पंख फैलाते हुए किया गया नृत्य बहुत ही आकर्षक भी लगता है। साथ ही संगीत का लाजवाब धुन आसपास के वातावरण को गुंजायमान भी कर देता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सफर में आज गीतों में छुपे एहसास और दिल में भावों को जगाते हुए उन आवाज को सुनना, जैसे हवा की सरसराहट, दरवाजे की आवाजें, सांसों की धड़कन, कुछ मंदिरों की घंटियां, बांसुरी की, समुद्र की डरावनी लहरों की आवाजें और धीरे धीरे गुनगुनाने की आवाजें, ये सभी आवाजें मन के हर भाव को जीवंत कर देती हैं। जीवन का सुख दुख, हंसना रोना, डरना सहम जाना आदि सभी नवरसों जो जीवन में समाहित है वो सभी हमारे साथ है और ये सभी हमें प्रभावित करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और इन गीतों के साथ हम भी खो जाते हैं उन खास संगीत की ओर जो हमारे संगीतकारों ने प्रयोग के तौर पर डाले होते हैं। जैसे कि अगला गीत हम सुनने वाले हैं फिल्म शोले से किशोर कुमार की आवाज में, और इनका साथ दे रही हैं हेमा मालिनी, जब वो कहती हैं चल धन्नो। तो अब आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और राहुल देव बर्मन का संगीत है। इस गाने में आपको चाबुक की आवाज, घोड़े की टापों की आवाज, धर्मेंद्र के गिरने पर साइकिल की आवाज, साइकिल की घंटी की आवाज, बहुत सारे प्रयोग इस गीत में किए गए हैं और आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको भी इन गीतों में ये सभी धुनें सुनाई देंगी।

जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है कि जब स्टेशन से गाड़ी छूट जाती है तो फिर 1 2 3 हो ही जाती है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको जाना है कहीं और आप भागते दौड़ते स्टेशन पहुंचे हैं और आपके सामने से ट्रेन निकल गई है? और वही हुआ जो इस गाने में कहा जा रहा है कि 1 2 3 हो जाती है। हमारे सवाल एक बार फिर से, हमने आपसे पूछा था कि आपकी पसंद के वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, जो रूटीन के वाद्य यंत्र हैं, जैसे कि अगर आप हारमोनियम, तबला और बांसुरी, बहुत सारे माउथ ऑर्गन, सितार, गिटार, बांसुरी, क्या क्या पसंद करते हैं, अगर आप बजाते हैं या बजाना पसंद करते हैं, संगीत के शौकीन हैं तो। लेकिन इसके अलावा कई बार हर आदमी अपने जीवन में जब कोई गाना गाना पसंद करता है, बाथरूम में, कमरे में, एकांत में, तो टीन कनस्तर जो हाथ में आता है, बाल्टी, झाड़ू, उसे भी वाद्य यंत्र बनाकर हम गाना गाने लगते हैं। भाई हमने तो ऐसा कई बार किया है कि टीन कनस्तर बजाकर ही ताल मिला ली है और गाना गा दिया है। तो आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा, याद कीजिए उन पलों को। या आपके बच्चे अगर ऐसा करते हैं तो वो बात हमें बताइए, कम से कम शब्दों में लेकिन रोचक तरीके से। और हाँ, जब बात चली है ध्वनियों की, तो आपको अपने आसपास की कौन सी ध्वनियाँ प्रभावित करती हैं, यानी कौन सी ध्वनियाँ जो पसंद आती हैं और कौन सी ध्वनियाँ आपको परेशान करती हैं आपके घर के आसपास की? हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपने बहुत ही खूबसूरत विषय उठाया है, संगीत में आवाजों की मौजूदगी को महसूस करने का। गीत की दुनिया में सुर और साज की अपनी खूबसूरती है, लेकिन कभी कभी कोई अनघट सी जानी पहचानी आवाज भी गीत को ऐसी आत्मीयता दे जाती है कि वो बरसों तक दिल में बसी रहती है। कदमों की आहट हो, घोड़े की टाप हो, या रेल की छुक छुक, घड़ी की टिक टिक हो, या पायल की रुनझुन, जब ये ध्वनियां किसी धुन में शामिल होती हैं तो गीत सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। हर आवाज अपने साथ कोई दृश्य, कोई मौसम, कोई स्मृति ले आती है। संगीत केवल वाद्य यंत्रों से नहीं बनता, वो तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के शोर में भी कहीं चुपचाप सुर तलाशता रहता है। बस उसे पहचानने के लिए कान नहीं, एक संवेदनशील दिल चाहिए। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भारतीय सिनेमा के संगीतकारों की ये सबसे बड़ी खूबी रही है कि उन्होंने स्टूडियो की चारदीवारी से बाहर निकलकर हमारे दैनिक जीवन के शोर को सुर में तब्दील कर दिया। जब किसी गीत में कोई सहज आवाज, चाहे वो खेल की हो, रसोई की हो, किसी वस्तु की हो, शामिल होती है तो वो केवल एक धुन नहीं रहती कि दृश्य को श्रोता के जहन में जीवंत कर देती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी शॉप रोड टच है तो पूरा दिन वाहनों की आवाजाही रहती है, तो आवाजें आती है, अच्छा भी लगता है। हमें रेडियो सुनने का शौक नहीं है तो पूरा दिन वाहनों की आवाज से हम तंग आ जाते हैं। और अच्छा, आपका कहना है कि आपके आसपास जो ये शोर आता है उससे आप परेशान हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल होते हैं, इस शोर से हम परेशान। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गीत संगीत केवल सुरों का संगम नहीं बल्कि हमारे आसपास की जीवंत ध्वनियों का खूबसूरत विस्तार है। फिल्मों में संगीतकारों ने अपनी अद्भुत कल्पनाशीलता से घड़ी की टिक टिक, खेल के मैदान की हलचल या कदमों की आहट जैसी रोजमर्रा की आवाजों को धुनों में ऐसा पिरोया कि वे गीत की धड़कन बन गई। चाहे वो टिक टिक टिक मेरा दिल बोले हो, या दिल की धड़कन बना हुआ कोई गीत, घड़ी की आवाज हो, या ढल गया दिन, हो गई शाम में बैडमिंटन की रैकेट शटल की लय, ये ध्वनियां संगीत से अलग नहीं बल्कि उसका प्राण महसूस होती हैं। सच ये कि संगीत सिर्फ वाद्य यंत्रों से नहीं, हमारे परिवेश की हर धड़कन में छुपा है। बस उसे महसूस करने वाले कान और सुनने वाले, बुनने वाले दिल की जरूरत है। बहुत सुंदर इबारत हमारे श्रोताओं ने लिखी है, तो चलिए सुनते हैं ऐसा ही गीत जिसका जिक्र हमने भी अपनी इबारत में किया था और अभी अभी इन श्रोता ने भी किया है। फिल्म हम जोली का गीत है, मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन है, और इस गीत में क्या है ये आप जानते हैं। रैकेट और शटल की आवाज, है ना, सुना है आपने कितने तरीके से संगीतकार ने इस गाने में इस धुन को पिरोया है।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि संगीत में साज तो कई तरह के होते हैं, लेकिन जब रोजमर्रा की कोई साधारण सी आवाज किसी गीत में ताल बन जाती है तो गीत यादगार बन जाते हैं। आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है और वही बात आपने भी कही है कि पूरा दृश्य चलने लगता है और सच्ची धुनें बाहर से नहीं बल्कि हमारी जिंदगी की रोजमर्रा के टिक टिक, छुक छुक और छम छम से ही छुपी होती है। बस उन्हें सुनने और महसूस करने के लिए एक संगीत प्रेमी दिल और दिमाग चाहिए होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि नित्य नवीन विषय निर्मात्री का नवीनतम अध्याय प्रशंसनीय, उल्लेखनीय और विचारणीय है। सुरीला सफर मंदाकिनी जी के निर्देशन में नई ऊर्जा से संचालित हो रहा है। नियमित श्रोताओं को स्फूर्तिवान रखने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है। चित्र विचित्र वस्तुओं के ध्वनियों से गूंजती आज की सुरीला सफर का संगीतमय आनंद बना रहेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भारतीय हिंदी फिल्मों के संगीत में अलग अलग संगीतकारों ने पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों के अलावा दूसरी अलग अलग चीजों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को अपनी संगीत रचनाओं में इस तरह पिरोकर ऐसा तिलिस्म रचा जो कि कालजी रचनाओं में शामिल हो गया। आपने भी कुछ गानों का जिक्र किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपकी ये पंक्तियां संगीत को देखने का एक बेहद जादुई और अलौकिक नजरिया देती हैं। ये इबारत हमें एहसास कराती है कि महान संगीतकार केवल वाद्य यंत्रों के मोहताज नहीं थे बल्कि वे हमारे आसपास बिखरी रोजमर्रा की आम आवाजों में भी संगीत ढूंढ लिया करते थे। घड़ी की सुइयों के टिक टिक को दिल की धड़कन बना लेना या खेल के मैदान की टुक टुक को धुन में ढाल देना उनकी अद्भुत कल्पनाशीलता और रचनात्मकता की पराकाष्ठा है। संगीत सिर्फ कानों से सुना नहीं जाता बल्कि वो हमारी जिंदगी की हर हलचल में छुपा होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि महान संगीतकार ओपी नैयर साहब ने अपने बनाए बहुत से गीतों में घोड़ों की टापों की आवाजों को शामिल किया और वो प्रयोग भी कामयाब रहा। और आरडी बर्मन साहब ने तो कंगी, टिन का डिब्बा, शीशे का गिलास, झाड़ू सभी बजाकर मधुर संगीत का निर्माण किया और वो भी सफल हुए। जितना हमें पता है वो सब आप सभी से साझा किया। अब देखना यह है कि आप अपने पिटारे में से कौन सी जानकारियां लेकर आती हैं। भाई हमारी भी जानकारी वही है जो आपकी है, लेकिन हाँ, हम इधर से आप तक पहुंचा रहे हैं और आप उधर से हम तक पहुंचा रहे हैं। तो चलते हैं अगले गीत की ओर। मन्ना डे की आवाज, फिल्म का नाम सफर, इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन और यहाँ पर आपने देखा होगा चप्पू की आवाज आती है, पानी की आवाज, किस तरह से नाव चल रही है और ये आवाज हमें साफ साफ सुनाई देती है इस गीत के जरिए।

श्रोता लिख रहे हैं कि आज की उद्घोषिका मंदाकिनी जी और सभी को नमस्कार। आज का विषय बिल्कुल नवीन लेकिन बहुत ही रोचक है, हमें पसंद आ रहा है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमने बचपन में परात को डफली बनाकर डफली वाले डफली बजा गीत की नकल की जब मम्मी घर में नहीं होती थी, बस एक प्यारी सी दोस्त और हम होते थे। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ही होता है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि डीजे की आवाज मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। अच्छा, एक श्रोता कहते हैं हमारे घर के पास ही दुर्गा मंदिर है, सुबह सोकर उठने से पहले ही मंदिर की घंटियां हमें जगा देती हैं। बहुत ही मधुर स्वर में घंटियों की आवाज आती है और हम उठते ही ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। बहुत सुंदर, यानी हमारे सवालों का जवाब हमारे श्रोता दे रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि चाय के होटल पर पहले बैठते थे तो चाय आने में समय लगता था, तो टेबल बजाना चालू कर देते थे और उसके साथ गीत भी गाना शुरू हो जाता था। बिल्कुल ये होता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हम तो दो डब्बे रखकर तबला बजा लेते हैं, वीणा के तंतुओं द्वारा उत्सव उत्पन्न झंकृत ब्रह्मांडनीय नाद अति सुंदर। एक श्रोता ने लिखा है कि ढोलक बजाना आए या न आए, पर ढोलक देखने के बाद तो दो चार थाप हम भी लगा ही लेते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पूरब और पश्चिम फिल्मों में ओम जय जगदीश हरे आरती में घंटी और शंख ध्वनि, ये आवाज हमें बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बांसुरी की आवाज मुझे हमेशा से बहुत अच्छी लगती है, उसमें न जाने कैसी सादगी और मिठास है कि मन को बिना कुछ कहे छू जाती है। जब बांसुरी बजती है तो लगता है जैसे हवा भी कोई मीठी सी धुन लेकर हमारे पास से गुजर गई हो। उसकी आवाज में एक अपनापन सा है, न कोई शोर न कोई बनावट, बस कुछ सुर और ढेर सारा सुकून है। शायद इसलिए बांसुरी की धुन सुनते ही मन कुछ पल के लिए ठहर जाता है और चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। बहुत सुंदर बात आपने अपने मन की हम तक पहुंचाई है। एक श्रोता लिखते हैं कि पियानो अकॉर्डियन विशेषकर इन्हें पसंद आता है, माउथ ऑर्गन भी, और ये बजाते भी हैं। मैंडोलिन इन्हें पसंद है, सुरजीत और कई सारे वाद्ययंत्रों का आपने जिक्र किया है और आपने विविध भारती के कार्यक्रमों में इन वाद्ययंत्रों को बजाया भी है, इसका भी जिक्र आपने किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के प्रोग्राम में बहुत ही कर्णप्रिय गाने जो अलग अलग वाद्ययंत्रों का प्रयोग मन को आह्लादित करने वाले हैं सुनाई दे रहे हैं। राहुल देव बर्मन साहब ने तो बहुत ज्यादा प्रयोग किए, कहीं चम्मच से भी लाजवाब संगीत उन्होंने बनाया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि हमें थाली चम्मच और मेज, ये वाद्ययंत्र बहुत पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट बहुत अच्छी लगती है, स्वाभाविक भी है, ये चहचहाट तो सभी को मधुर लगती है, लेकिन ये मधुरता कब तक हमें मिलेगी पता नहीं, जब तक मिले भगवान जी को समर्पित और नमन करूंगी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गली मोहल्ले के छोटे मोटे फंक्शन में ढोलक एक आम बात हुआ करती है और कुछ लेडीज एक इकट्ठी होकर भजन कीर्तन या अन्य किसी प्रकार का कार्यक्रम करती हैं, ढोलक उसमें जरूर बजती है, उसमें मन भी लग जाता है और ढोलक बजाने की प्रैक्टिस भी हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही हमारे रोजमर्रा के वाद्य यंत्र भी होते हैं। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आप अपनी बाइक पर गए हों या गाड़ी में गए हों, दोपहिया वाहन पर गए हों या साइकिल पर गए हों और टायर पंचर। तो ऐसा ही गीत आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं फिल्म टैक्सी ड्राइवर से, जहां किशोर कुमार और साथियों ने इस गीत को गाया है। साहिर लुधियानवी के बोल हैं, सचिदेव बर्मन की धुन है, और इसमें यही होता है कि टायर पंचर होता है और फिर उसमें हवा भरी जाती है। बहुत ही ध्यान से जब आप इस गीत को सुनेंगे तो ये संगीत भी आपको सुनाई देगा।

0: की हवा निकल गई।
1: जैक लगाओ, किक किक किक किक, टेपनिंग पहिया, अरे पंपिंग।

जी तो ये मसीबा गीत अभी आपने सुना। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि वैसे तो हमें प्रॉपर ढोलक बजाना नहीं आता, लेकिन फिर भी हम तबला और डोर बजा लेते हैं, ढोलक बजा लेते हैं। इसके अतिरिक्त कुकर की जब सीटी आती है या टॉवल से भी गिटार बजाने का अभिनय कर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि इन्हें गिटार और बांसुरी जो है बहुत पसंद आती है। वही एक श्रोता को हारमोनियम, ढोलक, तबला, मजीरा मंदिर में सत्संग में बहुत साल तक बजाया है। अभी ही 2 महीने पहले रामकथा का आयोजन किया था, तब स्टेज पर पूरे 9 दिन पखावज मंजीरे बजाई, क्या बात है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे बांसुरी और सैक्सोफोन वाद्य यंत्र बहुत पसंद है। और एक श्रोता को मुझे सभी वाद्य यंत्र पसंद है, लेकिन सैक्सोफोन और सितार को जिस तरह हमारे फिल्मी गानों में बजाया गया है तो वो कालजयी बन गए हैं और सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखती है कि मुझे गानों में बांसुरी की आवाज बहुत अच्छी लगती है। पक्षियों का कलरव बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो जब ज्यादा चींची करती है तो गुस्सा भी आने लगता है। अरे क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं हारमोनियम बजाता हूं, चूंकि ये रीड वाला वाद्य यंत्र है अतः इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड भी बजाता हूं। वैसे मुझे संतूर की आवाज भाती है, दिल दिमाग को झंकृत कर देती है। वहीं एक श्रोता को घोड़े की टापों की आवाज अच्छी लगती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बांसुरी की आवाज और टेबल को बजा के हम यूं तो गीत गा लेते हैं और कभी कभी ढोलक की आवाज के साथ भजन भी हम गाते हैं जो कि अच्छे लगते हैं। एक श्रोता को प्रकृति को सुकून देने वाला संगीत सुनना है तो सुबह 5 बजे उठकर बाहर चले जाइए, वहां बहुत सारे पेड़ और चारों तरफ हरियाली होगी, पानी से भरा तालाब फिर नदी होगी, तो आपके मन को कितनी शांति मिलेगी ऐसा जानते हुए जब आप संगीत सुनेंगे तो उस संगीत का तो कहीं उदाहरण दूसरा मिलेगा ही नहीं, ऐसा आप लिखती हैं। और अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम पाकीज़ा, गीतकार कैफी आजमी हैं, संगीतकार गुलाम मोहम्मद साहब हैं। इस गाने के अंत में जो गाड़ी की आवाज़ है यानी सीटी जो बजती है वो बहुत ही खूबसूरत लगती है और दिल को एक अलग ही भाव पैदा कर देती है हमारे दिल में।

0: हम हमेशा ढककर
1: और उसको पिए छान कर उबाल कर।
0: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें।
1: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
0: आओ मिलकर करें प्रयास,
1: शुद्ध पानी हो सबके पास।
2: ये प्रसारण इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। दो बज चुके हैं, आइए अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म संगीत।

आप सुन रहे हैं बाजीराव मस्तानी फिल्म की ये भक्ति वंदना। सुखविंदर सिंह ने इसे गाया था, प्रशांत इंगोले के शब्द थे और धुन थी शेष पुराणिक की।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश का गाया हुआ ये गीत। इंदिवर के शब्द हैं, धुन कल्याण जी आनंद जी की, फिल्म का नाम सरस्वती चंद्र।

0: मुकेश जी गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, 2:10 होने को हैं, प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत में कई भाषाओं का होना देश की सबसे बड़ी ताकत है। आज हिंदी दिवस पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा किसी दूसरी भाषा की प्रतिद्वंदी नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय एकता को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। श्री शाह ने कहा कि ब्रिटिश कानूनों की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लाना सिर्फ शब्दों का बदलाव नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना है। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदी और अन्य सभी भाषाएं तकनीकी विकास के सुनहरे दौर से गुजर रही हैं। श्री शाह ने कहा कि मौजूदा समय में AI भारतीय भाषाओं के आसान अनुवाद के अवसर दे रहा है।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: आज देश भर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। इस अवसर पर आज भोपाल स्थित भारत भवन में 2 दिवसीय भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाम 4 बजे करेंगे। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में देश भर के वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार और कवि मातृभाषा, संस्कृति और भारतीय जीवन मूल्यों पर संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस और उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश में भी 17 सितंबर से सेवा संकल्प अभियान शुरू होगा। इसके तहत उज्जैन में 17 सितंबर को शाम 7 बजे भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान क्षिप्रा नदी के विभिन्न घाटों और महाकाल महालोक क्षेत्र में 25 लाख से ज्यादा दीप जलाए जाएंगे। अभियान का उद्देश्य जनभागीदारी के जरिए सेवा, सुशासन और जन कल्याण का संदेश लोगों तक पहुंचाना है। उधर मैहर में जिला भाजपा कार्यालय में स्थानीय विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी और भाजपा जिला अध्यक्ष कमलेश सोहाने ने पत्रकार वार्ता के जरिए सेवा संकल्प अभियान की जानकारी दी। श्री चतुर्वेदी ने बताया कि इस दौरान रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, रंगोली और चित्रकला प्रतियोगिता सहित धार्मिक स्थलों पर दीप प्रज्वलन के व्यापक आयोजन किए जाएंगे। भगवान श्री गणेश की आराधना का 10 दिवसीय पर्व आज गणेश चतुर्थी के साथ प्रारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत में सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कामना की कि ये पवित्र त्यौहार सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करेगा। इधर प्रदेश में भी गणेश उत्सव उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में आज तड़के भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल का गणेश चतुर्थी के अवसर पर विशेष श्रृंगार किया गया। आगरमालवा जिले में घरों, दफ्तरों, प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक स्थानों पर गणेश प्रतिमाओं की स्थापना के साथ ही गणेश उत्सव शुरू हो गया है। जिले में अनेक स्थानों पर पांडाल बना

बनाकर गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की जा रही है। प्रदेश के गुना जिले में भी 100 से अधिक स्थानों पर गणेश प्रतिमाएं स्थापित होंगी। वहीं पन्ना में गणेश चतुर्थी पर विश्व की सबसे उम्रदराज हथिनी वत्सला की प्रतिमा का टाइगर रिजर्व के अकोला गेट पर अनावरण हुआ।

0: एक कार्यक्रम में किलकिला नदी में धर्मसागर तालाब के पुनर्निर्माण कार्यक्रम का लोकार्पण किया और कटनी में पीएम स्वनिधि योजना के तहत पिछले 10 दिनों में 112 प्रकरणों में ऋण राशि वितरित की जा चुकी है। इस बुलेटिन में इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, अब दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण नींव बताया। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर आगाह किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा, देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की भाषाई विविधता अनेकता के बीच एकता को मजबूत करती है। गृहमंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गुजरात के अनेक जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान। देश भर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल। और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करके और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह को बरकरार रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। एक रिपोर्ट।
3: 2 दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा। भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान लोगों के विकास और ग्लोबल साउथ के हितों को विशेष महत्व दिया। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि सम्मेलन के पहले ही दिन सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना था। पश्चिम एशिया की स्थिति पर ब्रिक्स नेताओं ने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के माध्यम से समस्या का समाधान करने की अपील की। वहीं आम लोगों और नागरिक सुविधाओं की सुरक्षा की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा सभी नेताओं ने हर तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने पर भी सहमति बनी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने तिरुक्कुरल के प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तिरुक्कुरल के रूसी अनुवाद की प्रति भेंट करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। विदेश मंत्रालय ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन में सहयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी विभागों और एजेंसियों का आभार व्यक्त किया है। मंत्रालय ने उन सभी राज्य सरकारों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने ब्रिक्स के विभिन्न बैठकों की मेजबानी की। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन का आयोजन जटिल कार्य था जिसके लिए सरकार और देश के सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास जरूरी थे। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in

0: आईएन पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि सेना के अथक प्रयासों के चलते जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। रक्षा मंत्रालय ने अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है, विरोध प्रदर्शनों में भी गिरावट आई है और पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हुई है। रिपोर्ट में चीन के साथ समग्र स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया है। वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बलों की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी और पारंपरिक प्रशिक्षण क्षेत्रों में 10 संयुक्त शस्त्र ब्रिगेड के आकार के बल तैनात किए गए हैं। भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर सकारात्मक विकास हुआ है, जिससे स्थिरता आई है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। ढाका में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ आपसी हितों के आधार पर नए सिरे से काम करना चाहिए। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के नवी मुंबई में छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2025-26 प्रदान किए। श्री शाह ने हिंदी दिवस के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया।
1: हिंदी शब्द संसाधन, हिंदी टंकन अंशुलिपि, इसके प्रशिक्षण का भी शुभारंभ हुआ है। राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार का भी सबको सम्मानित करने का काम हुआ है। जिन जिन लोगों को राजभाषा कीर्ति सम्मान और राजभाषा गौरव पुरस्कार मिला है, वो सभी को मैं मन पूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
0: गृहमंत्री ने वंदे मातरम को देश का गौरव बताया।
1: वंदे मातरम की उद्घोषणा के साथ न केवल आजादी की उत्कंठता को, आजादी प्राप्त करने की तीव्र भावना को जागृत किया, इसके साथ साथ भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव डालने का काम भी बंकिम चंद्र जी ने किया था। आजादी के बाद भी इसको पूर्ण स्वरूप से स्वीकार करते करते 80 साल हो गए। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने वंदे मातरम को फिर से बार पूर्ण स्वरूप गौरव के साथ सरकारी समारोहों में गाने का काम किया।
0: दो दिन के अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से नवी मुंबई में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य हिंदी और महाराष्ट्र के समृद्ध भाषाई, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक परंपराओं के बीच संबंध को उजागर करना है। सम्मेलन में विभिन्न संस्थानों, संगठनों, बैंकों और मंत्रालयों की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई गई है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है।
2: हिंदी दिवस वो दिन है जब हम सिर्फ एक भाषा का उत्सव नहीं मनाते, बल्कि उस भाव को नमन करते हैं जो हमें शब्दों के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ता है। संत कबीर ने भी कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि हमारे संस्कारों की भी पहचान है। हिंदी ने सदियों से भावनाओं को शब्द दिए हैं। भाषा का वास्तविक गौरव तभी है जब वो ज्ञान को सबके लिए सहज बनाए और समाज को जोड़े। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। इस हिंदी दिवस पर आइए हिंदी को केवल सिर्फ एक दिन के रूप में न याद करें बल्कि इसे बोलें, पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ाएं। साथ ही दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करें क्योंकि भाषा में जितनी स्वीकार्यता होगी वो उतनी ही आगे बढ़ेगी। आकाशवाणी की ओर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत

0: भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2020 के बाद से 9 राज्य में 147 कोयला खंडों की नीलामी की गई है। कोयला मंत्रालय ने बताया है कि इससे लगभग 47,500 करोड़ रुपए का राजस्व और 4,90,000 नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले वित्त वर्ष में आवंटित वाणिज्यिक खदानों से लगभग 3,090 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। भारत के विद्युत मंत्रालय ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को 13 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में आई बाढ़ से नेपाल के जल विद्युत अवसंरचना को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे नेपाल के घरेलू बिजली उत्पादन क्षमता में कमी आई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता उत्पन्न हुई है। राजस्थान में 309 शहरी स्थानीय निकायों के लिए हुए चुनावों की वोटों की गिनती जारी है। अब तक मिले रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। राज्य के 10 नगर निगमों में से भाजपा जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा और उदयपुर सहित 6 में आगे है, जबकि कांग्रेस पाली और बीकानेर में बढ़त बनाए हुए है। भरतपुर में निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार भूमि मालिकों की जानकारी के बिना किए जाने वाले फर्जी भूमि पंजीकरणों को रोकने के लिए एक प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली शुरू कर रही है। ये संपत्ति पंजीकरण को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। केंद्रीय विद्युत और आवास तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका पहुंच गए हैं। ऊर्जा प्रचुरता पर G20 मंत्री स्तरीय बैठक 14 से 16 सितंबर तक आयोजित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के अनेक जिलों में आज तेज बारिश और आंधी तूफान की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, नवसारी और वलसाड़, इन 5 तटीय और अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कच्छ, जामनगर, देवभूमि द्वारका, राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर, बोटाद, अमरेली, भावनगर और सूरत समेत 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट प्रभावी है। इन दौरान 41 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। वहीं राज्य में मॉनसून की नई बारिश से फसलों को संजीवनी मिली है, जिससे किसानों में खुशी की लहर छाई है। राज्य के 35 बांध अपनी पूरी क्षमता से भरने के कारण हाई अलर्ट पर है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने कल तक हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, ओडिशा और बिहार में भी तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अगले 2 दिन तक बारिश जारी रह सकती है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में भगवान गणेश की पूजा की।
2: गणेश चतुर्थी की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री गणेश सबके जीवन में हमेशा शुभ करें, हर व्यक्ति के जीवन में खुशी, उत्साह, उत्सव रहे, इसकी कामना करता हूँ। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद बना रहे।
0: गणेश चतुर्थी की वजह से आज घरेलू शेयर बाजार बंद हैं। कमोडिटी बाजार में आज सुबह के सत्र में कोई कामकाज नहीं हुआ, लेकिन शाम 5 बजे से कारोबार फिर शुरू हो जाएगा। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमेरिकी ओपन पुरुष सिंगल्स खिताब जीत लिया है। फाइनल में ज्वेरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन को हराया। ये 2026 में ज्वेरेव का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले उन्होंने जून में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। भारत ने T20 महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण नींव बताया। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर आगाह किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा, देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की भाषाई विविधता अनेकता के बीच एकता को मजबूत करती है। गृहमंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गुजरात के अनेक जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान और देश भर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है।
4: छलके तेरी आंखों से

0: शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में अभी आपने हसरत जयपुरी का लिखा गीत सुना। स्वर मोहम्मद रफी का था, फिल्म आरजू के लिए। यह आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीत शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है।
1: आंखें ना डालो मुझे कुछ होता है, आंखों में आंखें ना डालो मुझे कुछ होता है, बाहों में बाहें ना डालो मुझे कुछ होता है, बाहों में बाहें ना डालो मुझे कुछ होता है। आंखों में आंखें ना डालो मुझे कुछ हो।

मुझे कुछ होता है, आंखों में आंखें ना डालो, मुझे कुछ होता है। आंखों में आंखें ना।

छुपा लो मुझे कुछ होता।

0: शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में हम आपको शैलेंद्र का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम संगम, आवाज मुकेश की।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए। तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत राजा मेहदी अली खां का लिखा हुआ, संगीत में ढाला है मदन मोहन ने, आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है आपकी परछाइयां।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

कार्यक्रम का अगला गाना मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म आरती से हमने लिया है। इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है और धुन रोशन की है।

0: क्या।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का आप सुनिए ये आखिरी गीत। शंकर जयकिशन का संगीत है, शैलेंद्र के बोल हैं, मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म का नाम है एन इवनिंग इन पेरिस।

0: बन के रहेगा कोई
1: अफसाना। इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: की सहेली
1: सभी सखियों को सभी सहेलियों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार और दीपा आपको भी नमस्कार और बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां।
2: जी बिल्कुल, आपकी शुभकामनाएं स्वीकारते हैं और अपने सभी सखियों को, श्रोता भाइयों को और चंचल आपको भी नमस्कार, हेल्दी नमस्कार। हाँ। और बहुत सारी शुभकामनाएं क्योंकि बहुत खास दिन है आज।
1: बिल्कुल, मुझे इंतजार था कि आपका हेल्दी नमस्कार क्यों नहीं आया।
2: वो कैसे छूट सकता है, वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है। सब चीज चलती रहेंगी, मतलब हर चीज, परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, कभी खुशी वाले दिन होंगे जैसे आज का दिन है।
1: हाँ।
2: त्योहार आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन
1: और इनमें सेहत बड़ी जरूरी है, इसीलिए आपके हेल्दी नमस्कार का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। तो चलिए विषय बताते हैं आज के। आज कथा सुधा में हमारी सखियां और सखा सुनेंगे कहानी बड़े भाई साहब, इसका पहला भाग
2: जी।
1: इसके अलावा आज प्रादेशिक व्यंजनों में हम कश्मीरी व्यंजन की बात करेंगे, नदरी यखनू यानी कमल ककड़ी, उसे कश्मीरी भाषा में नदरी यखनी नदरू यखनी कहा जाता है। तो इससे क्या क्या बन सकता है, इसके क्या क्या व्यंजन बनते हैं, हमारी सखियां हमारे साथ जरूर साझा करेंगी। और खुशी का दिन है भाई, स्पेशल दिन है, खास दिन है, वो क्या है आप बताइए।
2: देखिए आज है हिंदी दिवस और सुबह से हमारे सभी श्रोता सुन भी रहे हैं कुछ खास हिंदी के, हिंदी से, शुद्ध हिंदी से भरपूर वाले शब्दों से भरपूर वाले गीत हम भी यहाँ पर कुछ आपके लिए प्रस्तुत करेंगे और जानेंगे कि क्या इसकी विशेषता है। और साथ में और भी एक खास बात है जो सारी दुनिया,
1: भाई पूरा देश
2: हाँ रहा है,
1: क्योंकि आज बहुत खास दिन है ना दीपा, और ये मेहमान तो हम सबके घर में आते हैं, लेकिन आज जो आने वाले हैं वो सबसे खास मेहमान है, क्योंकि वो है विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति, हमारे गणपति बप्पा, आज उनके आगमन का दिन है।
2: बिल्कुल, और चंचल सच कहूं तो गणपति उत्सव सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये वो पल है जब हम अपने घर में सिर्फ बप्पा की मूर्ति नहीं लाते हैं, हम लाते हैं खुशहाली, तो वो जो हंसी पूरे साल घर में दी रहती है, हम लाते हैं मंगल कि हमारा घर, हमारे अपने, हमारे रहें, सलामत रहें, गणपति उत्सव में हम खुशहाली और मंगल कामनाएं घर पर लेकर आते हैं।
1: बिल्कुल, महाराष्ट्र में जो एक रीति रिवाज जिसे हम कहें कि सब लोग छोटी छोटी सी मूर्तियां अपने घर में लेकर आते हैं और बप्पा आते हैं तो सिर्फ उनकी एक मूर्ति नहीं आती है, घर में खुशियों की रोशनी आती है, भरोसा आता है कि अब जो होगा सब ठीक होगा, बप्पा सारी कहते ना कि तकलीफों को परेशानियों को हर लेंगे, आंगन में रोशनी आती है, दिल में एक अजीब सा सुकून आ जाता है बप्पा के आने से,
2: ये बात
1: बच्चों की जो हंसी है वो थोड़ी तेज हो जाती है, और फिर भाई बच्चों की हंसी या खुशी है या हम सब बड़ों की भी, वो इसलिए भी तेज होती है कि रसोई से मोदक की खुशबू आने लगती है, और ये कह सकते हैं कि एक खासियत है इस पर्व की और असली रोशनी भी है। तो हम सभी बोले ना, दिल से सब मिलकर बोलते हैं ना, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।
2: और बप्पा के आने का मतलब सिर्फ दिए या लाइटें, मतलब कि घर में रोशनी है, सिर्फ ये नहीं, जब मन रोशन होता है ना चंचल, तब हमारी पुरानी नाराजगी भी हम भूल ही जाते हैं कहीं, है ना, सही बात। और जब पूरा परिवार एक साथ आरती भी खड़ा होता है या हमारी सोसाइटी में जब सब एक साथ खड़े हाँ। होते हैं, तो सच में ऐसा लगता है पप्पा हमें यही सिखाने आए हैं कि शुरुआत करने से कभी मत डरो और हर नया काम शुभ है अगर आपकी नीयत साफ है।
1: तो बस बप्पा के आज का जो दिन है इसमें हमने घर को तो खूब सजाया ही है, क्यों ना अपने मन का भी कोना हम थोड़ा सा साफ कर लें, उसे सजा लें प्रेम की भावना से, अच्छाई से, और पुराने जितने भी मतभेद हैं उसे भुलाकर हम भी इस खुशी के उत्सव में शामिल हो जाएं। और महाराष्ट्र में तो 11 दिन तक ये उत्सव चलने वाला है, हम भी शामिल होते हैं।

0: पे तो ये तो हुआ गणपति उत्सव के रंग में डूबा हुआ गीत, और अब बारी है कार्यक्रम में कथा सुधा की। तो सुनते हैं कहानी।
1: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
2: कथा सुधा में आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। आज सुनते हैं इस कहानी का पहला भाग।
3: मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की, वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द का वाक्य 10-20 बार लिख डालते, कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षर से नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिनमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस ना हुआ। वो 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कभी कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या, कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे

कूद रहे हैं, कभी फाटक पर वार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता,

0: तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, एरा गैरा नथू खैरा सभी अंग्रेजी में विद्वान हो जाते हैं। यहां रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं ये विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूं तुम कितने घोंगा हो भाई कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूं, तुम अपनी आंखों से देखते हो मगर नहीं देखते जो तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहा हूं। उस पर भी एक एक दर्जे में दो दो तीन तीन साल पढ़ा रहता हूं। फिर तुम कैसे आशा कर सकते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो दो ही तीन साल लगते हैं। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो?
1: मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं? जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं? मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे दो घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। छटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं? टाइम टेबल में खेलकूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल उठना, 6 बजे हाथ मुंह धोकर नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कॉम्पोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के वो दांव घात, वॉलीबॉल की वो तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में अव्वल आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं, आपकी वो घोर तपस्या कहां गई?

0: मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में प्रथम भी हूं। लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हां, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ा। भाई साहब का वो रोब मुझ पर न रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवाब से ये हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक अब मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी ससहमत बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े।
1: देखता हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजों को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था, बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया, कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी जो चाहे करे पर अभिमान न करे, इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा, उसे यह अनुमान था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहरूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हो। अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशान पड़ जाता है, उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशान खाली न जाए। मेरे फेल होने पर न जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आएगा, जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं, आठ आठ हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी सातवें की जगह हेनरी आठवां लिखा और सब नंबर गायब, सफा चट, सिर्फ भी ना मिलेगा, सिफर भी। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कौड़ियों चार्ल्स, दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है, इन अभागों के नाम भी ना जुड़ते। एक ही नाम के पीछे दोयम तेयम चहारम पंचम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता, और ज्यामिट्री तो बस खुदा की पनाह, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वो तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पिर की बातों के पढ़ने से क्या फायदा? इस रेखा पर वो लंब गिरा तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना तो ये सब खुराफात याद रखनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो चार पन्नों से कम ना हो। अब कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। और जरा सी बात पर चार पन्ने कैसे लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे चार पन्ने में लिखने की जरूरत, मैं तो इसे हिमाकत समझता हूं। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि दुरुपयोग है। व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया। हम जो चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपके पन्ने चार रंगने पड़ेंगे चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? उल्टी बात या नहीं? मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताएंगे।
0: स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर भी यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है।
2: कथा सुधा में आज आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। आज आपने सुना इस कहानी का पहला भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है: छोटे भाई जयंत पात्रिकर, बड़े भाई साहब जी श्याम, संकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: इस संदेश से पहले सखियों आपने कथा सुधा में सुना बड़े भाई साहब की पहली कड़ी और अब एक अंतराल का समय हो चुका है।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली, और इस अंतराल से पहले हमने सुनी कहानी, और उससे पहले हमने बात की गणपति उत्सव की। बहुत सारे संदेश हमारे सखियों ने भी भेजे हैं
1: जी, बहुत सारे आए हैं
0: तो उनके संदेश भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक गीत सुन लें।
1: चलिए।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत और वैसे ही खूबसूरत संदेश भी हमें मिले हैं अपनी
1: बहुत
0: सखी।
1: सारे संदेश, और पुनः हम सभी अपनी सखियों को, श्रोता भाइयों को गणेश चतुर्थी और ये आने वाले 10 दिनों तक जो आप हर्षोल्लास के साथ मनाने वाले हैं इस त्योहार को, उसके लिए शुभकामनाएं देते हैं। और पहला संदेश हम पढ़ रहे हैं कि गणपति की स्थापना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि घर आंगन में खुशियों, शांति और समृद्धि के आगमन का शुभ अवसर है। बप्पा के स्वागत के साथ वातावरण भक्ति और उल्लास से भर उठता है, और साथ में ये भी लिखते हैं कि उनके आगमन से परिवार में प्रेम, एक उत्साह की नई रोशनी फैलती है। और आइए श्रद्धा और विश्वास का हम स्वागत करें इसी भावना के साथ, बहुत सारे संदेश।
0: हाँ, और हमारे एक श्रोता भाई ने या सखी है, इन्होंने ये भी लिखा है कि महाराष्ट्र में ये उत्सव बड़े हर्षोल्लास से, जोरों शोरों से और बहुत बहुत विशाल तरीके से मनाया जाता है। बड़े बड़े पंडालों में गणपति की मूर्ति स्थापित की जाती है, लोग अपने परिवारों के साथ इस मंडप में भी जाते हैं, दर्शन करते हैं और पूरे परिवार के लिए मंगल कामनाएं मांगते हैं। और हमारे एक संदेश में हमारे शोधा बहन लिखती हैं कि हमारे बेटे बहू ने भी गणपति महाराज की स्थापना की है, गणपति भगवान सभी की मनोकामना पूरी करें।
1: और इसी की बातों के साथ एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि बहुत जरूरी है कि हम सब इको फ्रेंडली गणपति का इस्तेमाल करें और जितना हो सके इस बार अपने घर को इको फ्रेंडली अपने घर पर लेकर आए उनकी मूर्ति, और उसी तरह से सजावट भी करें। तो भाई ये बात पे ध्यान रखने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है।
0: तो आपने बात पर ध्यान देने की बात की, मेरा ध्यान गया एक ऐसे संदेश पर जिसमें लिखा गया कि पिछले कई सालों से गणेश चतुर्थी के दिन हम घर पट्टी लाकर गणपति जी की मूर्ति बनाते हैं।
1: क्या बात है।
0: ये अजमेर के श्रोता भाई हमारे

0: होता है। और इन्होंने बताया है कि पूजा के रूम में उनको विराजमान करते हैं, 11 दिनों तक उनकी पूजा की जाती है, मोदक का भोग लगाया जाता है और पूरे विधि विधान से अनंत चतुर्दशी के दिन उनका हम घर में ही अपने बगीचे में विसर्जन भी करते हैं।
1: कितनी अच्छी बात है। देखिए, हमारे ही बीच में अगर एक कोई बात समझा रहा है तो एक और हमारे घर सखी है या श्रोता है जो हमें उस बात को करके भी दिखा रहे हैं। तो अपना परिवार इसी तरह से सखी सहेली का समृद्ध परिवार है।
0: और लगभग ये मिली जुली बात हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है कि घर में हर्षोल्लास का माहौल रहता है, सकारात्मकता आती है, नई ऊर्जा आती है। तो इसी ऊर्जा के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की तरफ।

0: कितने अच्छे शब्द थे इस गीत के और बहुत सुंदर हिंदी का लालित्य इसमें देखने को मिला। और आज 14 सितंबर है और ये सिर्फ एक तारीख नहीं होती दीपा कि बस कैलेंडर पे हमने जो तारीख देखी उस तरह से नहीं है, बल्कि अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान को याद करने का भी बहुत सुंदर अवसर होता है। और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं।
1: बिल्कुल, हिंदी यानी एक ऐसी भाषा जिसमें अपनापन है, भावनाओं की गर्माहट है और दिल की बात को सहजता से कह देने की ताकत भी होती है।
0: बिल्कुल,
1: कभी ये माँ की लोरी बन जाती है और अपने कानों में उतरती है, कभी कविता बनकर मन को छू जाती है और कभी किसी कहानी के किरदारों में हमें अपना जीवन दिखाई देने लगता है, या कभी किसी गीत के बोल जैसे सीधे अपने दिल को उतर जाते हैं ना, बस कुछ ऐसी ही है ये भाषा।
0: और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इस ऐतिहासिक दिन की याद में ही हर साल 14 सितंबर के दिन को हिंदी दिवस के रूप में हम मना लेते हैं। और हिंदी बहुत खूबसूरती सिर्फ उसके इतिहास में नहीं है इसकी, बल्कि उसकी क्षमता में है, जो अलग अलग लोगों को एक दूसरे से जोड़ देती है।

0: बिल्कुल। और हिंदी ने दूसरी भारतीय भाषाओं से बहुत कुछ ग्रहण भी किया है और बदले में उन्हें भी अपने शब्दों और अभिव्यक्तियों से समृद्ध किया है। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है चंचल, कि यहाँ भाषाएं अलग हो सकती है लेकिन भावनाएं हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रहती है।
1: और हिंदी का रिश्ता पता है हमारे फिल्मी गीतों से भी बड़ा गहरा है। हाँ। अभी जो हम गीत सुन रहे थे उसमें बड़ा अच्छा लालित्य था कविता का। और रेडियो पर जैसे ही कोई पुराना गाना बजता है, चाहे उसमें प्रेम हो, विरह हो, जीवन की उम्मीद हो, मतलब हर भावना को बहुत खूबसूरती से हमारे सामने परोसा जाता है और बहुत मधुर संगीत होता है। बरसों पुराने गीत जब हम सुनते हैं ना, तो हमें हमेशा अपने से लगते हैं।
0: बिल्कुल, ये बात तो
1: क्योंकि मिट्टी से जुड़े हुए लगते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और आज हिंदी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है चंचल, दुनिया के बहुत सारे देशों में हिंदी बोली पढ़ी और समझी जाती है। इंटरनेट हो या सिनेमा, टेलीविजन या सोशल मीडिया ने हिंदी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में एक नई भूमिका इन सब ने निभाई है।
1: तो देखो एक कितना सुंदर संदेश हमें मिला है, हिंदी महज भारत की नहीं बल्कि दुनिया की प्रमुख भाषाओं में से एक है। हिंदी भारत की पहचान भी है और सम्मान भी है। और जो अन्य भारतीय अन्य देशों में बजे जो बसे हुए हैं उनको जोड़ने का एक काम करती है। वैसे तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन उन्होंने 10 जनवरी गलत तारीख लिखी है। आगे लिखते हैं कि लेकिन भारत में हिंदी दिवस को एक खास दिन तय किया गया है। भारत में 22 भाषाएं और 72,507 लिपि हैं। बहुत बड़ा एक आंकड़ा है, उन्होंने लगभग कि हम कह सकते हैं कि ऐसा है। और इतनी सारी भाषाओं की विविधता के बीच हिंदी ऐसी भाषा है जो पूरे हिंदुस्तान को जोड़ देती है।
0: ये बात तो बिल्कुल सही है। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि इस दिन हिंदी भाषा के सम्मान, उसके प्रचार प्रसार और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए ये दिन समर्पित है। शिक्षण संस्थाओं में इस दिन हिंदी दिवस पर भाषण होते हैं, निबंध लेखन, वाद विवाद और कविता पाठ जैसी प्रतियोगिताएं ये आयोजित की जाती हैं संस्थानों में। और भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं।
1: और दीपक, कोई भी भाषा तब तक जीवित या समृद्ध रह सकती है तब तक उसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में सम्मान के साथ इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। दूसरी भाषाएं सीखना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अपनी भाषा से जुड़े रहना ये बहुत जरूरी चीज है।
0: बहुत ज्यादा जरूरी है। हम विदेश की भी कई भाषाएं सीखते हैं क्योंकि काम काज के चलते आजकल वैसी भी जरूरत हो गई है। लेकिन बाहर जो देश के विदेश में रहते हैं हमारे परिवार के कोई जन, तो ये देखा सुना है कि वो लोग घर में हमेशा कहते हैं कि नहीं, हमारी जो भाषा है, जो हमारे घर की जो भाषा है हिंदी भाषा, वो अपने बच्चों को आना बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: बिल्कुल, क्योंकि ये भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं होती, हमारी स्मृतियां होती हैं और हमारे संस्कार होते हैं। और देखिए संदेश भी बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं। कितनी सुंदर दो पंक्तियां लिखी हैं हमारे किसी श्रोता ने, निज भाषा उन्नत है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय की सूल। और आगे इन्होंने सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं, बहुत सारे संदेश हैं। लेकिन पहले एक गीत सुन लेते हैं जो इसमें भी हिंदी का बड़ा सुंदर लालित्य देखने को मिलता है।
0: चलिए

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
0: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो भाई अब हम थोड़ी सी व्यंजन की बात कर लें। खाने पीने की बात हुई, मोदक की बात अलग हुई, लेकिन कुछ अलग व्यंजन भी तो होना चाहिए। और क्योंकि अभी श्रृंखला कश्मीरी व्यंजन की है तो कश्मीर में ना कमल ककड़ी बहुत होती है।
3: बहुत होती है और बहुत प्रकार से वो बनी जाती है।
2: हाँ,
3: लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं
2: मतलब इसका सूप भी बना सकते हैं, पकौड़े भी बना सकते हैं, इवन सब्जियां भी बहुत सारे तरह से लोग बनाते हैं अपने अपने तरीके से।
3: और खासतौर पर चंचल जिनको जिनके घर में प्याज और लहसुन नहीं खाया जाता है, नहीं पसंद कर रहे हैं या किसी कारण से कुछ दिनों के लिए बंद है, तो वो नदरू यखनी बना सकते हैं।
2: जी,
3: ये जो कश्मीरी का बहुत ही प्रसिद्ध व्यंजन है, ये दही की ग्रेवी में बनाया जाता है जो कि बिना प्याज लहसुन के, जैसे अभी हमने आपको बताया। क्या लेना है इसमें, 500 ग्राम आप नदरू यानी कमल ककड़ी लीजिए, दही लेना है 500 ग्राम अच्छा सा फेटा हुआ, घी या तेल ले सकते हैं 3-4 बड़े चम्मच, हींग लेना है थोड़ा सा, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, हरी इलायची, ये सब दो तीन, लौंग 4-5, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, सौंठ का पाउडर लेना है छोटा सा चम्मच 1, और सौंफ पाउडर अगर आपको पसंद है तो 2 बड़े चम्मच ले लीजिए, बेसन 1 बड़ा चम्मच, दही को फटने से बचाने के लिए, जो दही को हमें फटना है ना तो फटे ना, इसलिए हमें उसमें डालना है। अब बनाने की विधि यूं
2: है, जो भी हम सामग्री हमने बताई है अपने स्वाद के अनुसार आप इसे थोड़ा सा घटा बढ़ा सकते हैं।
3: बिल्कुल। अब सबसे पहले नदरू को साफ करना होता है क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है।
2: हाँ।
3: तो इसको छील करके अच्छे से धो लीजिए और इसे तिरछा या गोल टुकड़ों में अगर काटते हैं ना तो पूरी अंदर तक की मिट्टी जो
2: उसके छेद में अंदर मिट्टी घुस जाती है, चिकनी मिट्टी होती है,
3: चिकनी होती है, तो वो सब बाहर निकल
2: आसानी से निकल जाएगी।
3: अब उबालना है इसे, तो कटे हुए नदरू को पानी में 10 मिनट तक उबाल लें, इसके बाद इन्हें पानी से निकालकर छान लेना है। अब एक कुकर या कढ़ाई में घी गर्म करें, इसमें हींग और सारे खड़े मसाले जो आपके घर में पसंद किए जाते हैं वो सब डाल लीजिए। फिर मसाला मिलाना है तो उबले हुए नदरू को घी में डालें और 2 मिनट तक भून लीजिए। अब इसमें सौंठ पाउडर, सौंफ पाउडर और थोड़ा सा नमक मिलाकर अच्छी तरह चला लीजिए। थोड़ा पानी डालकर कुकर की 2-3 सीटी आने तक बनाए पका लीजिए, या तब तक कि जब तक कि कमल ककड़ी थोड़ी
2: नरम ना हो जाए।
3: जी, जो दही का मिश्रण अब तैयार करना है, 1 कटोरे में फैटा हुआ दही और बेसन को थोड़ा सा पानी मिलाकर अच्छी तरह फैट लेना है ताकि कोई गांठें उसमें ना पड़े। उसके बाद ग्रेवी बनानी है तो कुकर का प्रेशर जब खत्म हो जाए तो ढक्कन खोल लीजिए और गैस को धीमा करें या चालू रखें और लगातार चलाते

0: हुए दही का मिश्रण इसमें धीरे धीरे कढ़ाई में या कुकर में, अगर आप बना रहे हैं तो कुकर में ही डालना है, लगातार चलाते रहना है ताकि दही इसमें फटे ना, और जब ग्रेवी में उबाल आ जाए और ऊपर घी या तेल ऊपर तैरने लगे तब 5-7 मिनट तक धीमी आंच पर और पकने दीजिए। आपकी नदरू यखनी तैयार है।
1: एक और कश्मीरी व्यंजन हमारे पास आई है विधि इसकी। इसमें बताया गया है कि कमल ककड़ी एक
0: इंग्लिश में लोटस स्टेम भी बोलते हैं।
1: हाँ, और वहाँ की ये पारंपरिक शाकाहारी डिश है और इसे दही की ग्रेवी में पकाया जाता है अक्सर। और इसको पकाने के लिए 2 से 3 कप कटी हुई ताज़ी दही, 1 कप सरसों, लगभग उसी तरह की ये विधि इन्होंने बताई है। और इन्होंने बताया कि मध्यम आकार के टुकड़े काटकर उबाल लें और फिर 10 मिनट तक पानी में उबाल लें, जैसा कि पिछली रेसिपी में भी था। लेकिन इसमें ये बताया गया कि ये खासतौर पर घी या सरसों के तेल में से पकाया जाता है, उससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और जैसा कि इसमें पहले आपने बताया कि बेसन इसलिए मिलाना है ताकि दही
0: दही
1: ना फट जाए,
0: जी।
1: तो अगर कमल ककड़ी आपको बनानी है तो इन सब बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा, क्योंकि हमारे पास रेसिपी सिर्फ सब्जी की आई है, आप कमल ककड़ी के बहुत स्वादिष्ट पकौड़े भी बना सकते हैं, इसका कमल ककड़ी का सूप भी बन सकता है। तो ये तो ही कमल ककड़ी के अलग अलग व्यंजन की बात।
0: कमल ककड़ी और चने की दाल, उसको मिला के दाल भी बनती है।
1: हाँ, तो अलग अलग संयोजन से अलग अलग एक स्वाद तैयार हो जाता है। इसी तरह से हमारी बात रेसिपी, श्रोताओं के संदेश और गीतों को मिलाकर हमारे जो प्रोग्राम का जायका है वो बन जाता है। तो गीत सुन ले,
0: चलिए।

0: प्रेम पुजारी फिल्म के लिए इस गीत को गाया था किशोर कुमार ने, और इस गीत को लिखा था गोपाल दास नीरज ने। और जब मैं इस गीत को सुन रही थी ना, तो मुझे याद है कि आज हिंदी दिवस है, और हमने भी कोशिश की कि हम कुछ ऐसे गीत बजाएं जिसमें हिंदी का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया, ऐसा ही ये गीत था।
1: बिल्कुल
0: और गोपाल दास नीरज ने बहुत सारे गीत ऐसे लिखे हैं ना जिसमें हिंदी की इतनी सुंदर शब्द रचना है, और बाद में उन शब्द रचनाओं के यानी कि जो भी उनके लिखे गीत थे या कविताएं थी, उन्हें इतने सुंदर तरीके से गीतों में ढाला गया ना, वो गीत आज भी यादगार बन गए
1: बिल्कुल।
0: हैं।
1: और नीरज जी के साथ और भी फहरिस्त में लंबी लंबी फहरिस्त है, जैसे कि भरत व्यास, पंडित नरेंद्र शर्मा, कवि प्रदीप, शैलेंद्र, वसंत देव, ये सारे वो गीतकार हैं जिन्होंने हमारी हिंदी फिल्मों के लिए सुंदर रचनाएं दी हैं। चंचल,
0: तो भाई इन रचनाओं को तो हमने सुना, और इतना समय नहीं कि बहुत सारी रचनाएं हम सुना सके, लेकिन कुछ चुनिंदा गीत हमने शामिल किए, और बहुत सारी बातें करते, गीत सुनते, कार्यक्रम का समय पूरा हो गया और घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही हैं कि हमारे जाने का समय हो गया। तो बस लेते हैं विदा,
1: आप सभी को दीपा माहेश्वरी
0: और चंचल वर्मा का
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: श्रोताओं नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। न्यूट्रिशन अर्थात पोषण, इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत, और इस बातचीत की दूसरी कड़ी लेकर हम हाजिर हैं। तो चलिए सुनते हैं। अदिति जी, ये जो कार्यक्रम है, हमारे बहुत सारे श्रोता सुनते हैं, ग्रामीण श्रोता भी सुनते हैं और शहरी श्रोता भी सुनते हैं। पोषण सप्ताह मनाया जाता है, तो पोषण सप्ताह आप अपने पैमाने पर भी मनाती होंगी, क्या कुछ शामिल करती हैं इसमें, किस तरह से लोगों को जोड़ पाती हैं?
1: पोषण सप्ताह सितंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है, 1 से 7 तारीख के बीच में, और ये कई सालों से चल रहा है
0: जी।
1: और इस सप्ताह में हम बहुत जनहित के लिए प्रचार करते हैं, बहुत ज़्यादा रोड स्किट्स होते हैं ग्रामीण लेवल पे या आदिवासियों के लेवल पे, हम जाके वहाँ पे कैंप्स करते हैं या हेल्थ कैंप्स होते हैं सोसाइटीज़ में, ऐसे बहुत सारी चीज़ें चलती है। हर डाइटिशियन अपने तरीके से कुछ ना कुछ करती रहती है, वो चाहे अपने क्लिनिक में थोड़े से छोटे मोटे कैंप हो या कॉलेज में जाके सिखाना हो या कॉरपोरेट जॉब्स हैं जहाँ पे वहाँ पे जाके आहार के ऊपर बातें करनी हो, ताकि लोगों को आहार के बारे में और आहार के महत्व के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले और उनको ये पता चले कि कहाँ और किसके पास जाना है सही जानकारी मिलने के लिए। ये इस चीज़ के लिए हम ये पूरा सप्ताह इस्तेमाल करते हैं। ये हम कई सालों से कर रहे हैं, मगर पिछले कई सालों से पोषण माह ज्यादा करके मनाया जाता है, जो कि सितंबर का पूरा महीना होता है। इसका मतलब अब हम एक हफ्ता नहीं, पूरा महीने भर हम कुछ करते रहते हैं, जैसे कुछ छोटा मोटा कुछ भी हो जो जनरल पॉपुलेशन या लोगों के लिए फायदेमंद हो, ये हम ज्यादा इसके ऊपर ध्यान देते हैं।
0: जी बिल्कुल, भारत सरकार की ओर से एक मुहिम चलाई जाती है, बहुत सारी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, क्योंकि बहुत सारा वर्ग कुपोषण का शिकार है आज भी, तो उन्हें पोषक तत्व मिले और कुपोषण से रहित अपना देश हो जाए, ये एक मुहिम है। और अब हमें बताइए कि ये जो वर्किंग वुमेन होती हैं और जो हाउसवाइफ होती हैं, तो उनके लिए किस तरह के पोषक तत्व जरूरी हैं, किस तरह के न्यूट्रिशन उन्हें लेने चाहिए?
1: अगर हम पोषण के बारे में बात करें और औरतों के बारे में बात करें, तो मेरी हमेशा एक बड़ी शिकायत होती है कि औरतें जो होती हैं वो सबका करने में इतनी मशरूफ हो जाती है, वो हमेशा खुद को भूल जाती है। भले आप हाउसवाइफ हैं या भले आप जॉब करते हैं, दोनों तरीके से आप बहुत ज्यादा काम करते हो
0: जी जी,
1: कोई भी किसी से कम नहीं होता। बहुत बार हमें लगता है अरे ये कुछ नहीं कर रहे, ये तो हाउसवाइफ है, इनको घर संभालना है। नहीं, अगर आप देखें कई बार हाउसवाइफ जो है पूरे दिन में इतना काम करती है, उनको अलग से वर्कआउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
0: जी बिल्कुल,
1: और दोनों के लिए अपना सही वक्त पे खाना, सही मात्रा में खाना बहुत जरूरी हो जाता है
0: जी।
1: अगर आप वर्किंग हैं तो अक्सर ये दिक्कत आती है कि सुबह उठे डब्बा बनाया तो अपना नाश्ता भूल गए, तो अपने नाश्ते का समय निकाल के फुर्सत से बैठ के नाश्ता करना जरूरी है। फिर उसके बाद आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा सही है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। और पूरे दिन में पानी के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वैसे ही घर की जो औरतें हैं जो घर संभालती हैं, उनको ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या वो वक्त पे खा रही हैं, या क्योंकि वो किचन में काम कर रही है बहुत बार छोटा मोटा खाया जा रहा है और उसके वजह से भी तबीयत खराब हो रही है, क्योंकि हमें चखने की तो बहुत आदत होती है। चलो ये खा लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, इसमें दिक्कत हो जाती है
0: जी, बिल्कुल।
1: तो औरतों को अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है, उनको ये देखना जरूरी है कि क्या उनको 7 से 8 घंटे नींद मिल रही है, 2 से 3 लीटर उनका पानी दिन का जा रहा है, क्या उनका शारीरिक काम हो रहा है, जैसे चलना हो गया, जिम जाना जरूरी नहीं है बट कोई तो एक्सरसाइज होनी चाहिए, वो भले 10-15 मिनट हो मगर खुद के लिए वक्त निकालना उतना जरूरी है। और उसके अलावा सही वक्त पे खाना और संतुलित खाना, जहाँ पे वो ध्यान दे कि उनके खाने में प्रोटीन हो, फाइबर हो, आयन युक्त जैसे मोरिंगा हो गया या फिर हलीम या अलीव के बीज हो गए या फिर अनार हो गए, ये थोड़ी सी चीज़ें आपको खाने में होनी चाहिए, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद ठहरता है।
0: जी, आपने कहा पानी पीना चाहिए प्रचुर मात्रा में। कुछ लोगों को देखा पानी एक साथ गट गट गट गट पी लेते हैं, एक बॉटल या दो तीन गिलास पानी, तो ये तरीका सही है? थोड़ा तरीका भी बताइए किस तरह से पीना चाहिए पानी।
1: कुछ लोग बहुत जल्दी में पानी पी लेते हैं, कुछ लोग सुबह उठ के पानी पी लेते हैं और पूरा दिन पानी नहीं पीते। हमारा शरीर इस तरीके से काम नहीं करता
0: जी, सही
1: उसको
0: तरीका।
1: सही वक्त पे पानी की जरूरत होती है। आपको प्यास लग रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, मतलब पानी की मात्रा आपके शरीर में कम हो गई है। प्यास लगने तक राह ना देखिए,
0: बिल्कुल
1: धीरे धीरे थोड़े थोड़े वक्त पे थोड़ी थोड़ी घूंटों में पानी पीजिए। और मैं हमेशा बोलती हूँ पानी हमेशा ग्लास में लेकर पीजिएगा
0: जी जी,
1: ना बॉटल से। आप बैठकर पियो, खड़े रहकर पियो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ग्लास में इसलिए ताकि आपको एक क्षण की क्यों ना हो थोड़ी सी एक पॉज मिल जाए, एक ठहराव मिल जाए, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है भागदौड़ की जिंदगी में, कि आप वो एक दो सेकंड का काम है कि थोड़ा सा रुक लो, थोड़ा ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दो, आप किस तरीके से पूरे दिन में सांसें अंदर बाहर कर रहे हैं, थोड़ा सा ठहराव आने दो, पानी पी लीजिए और फिर अपने काम पे आगे बढ़ जाइए। कहीं अगर हम देखें तो अगर हम 2-3 लीटर की बात करें पूरे दिन में, तो आपको एक ग्लास एक घंटे में धीरे धीरे करके पी लेना चाहिए, धीरे धीरे, ये जरूरी है। गर्म पानी पिए, ठंडा पानी पिए, वो आपके ऊपर है। आप बैठकर पियो, खड़े रह के पियो, वो आपके ऊपर है, मगर धीरे धीरे पीना बहुत जरूरी है।
0: जी, बहुत भ्रांति थी, बहुत बड़ी आपने दूर की। एक गाना सुनते हैं यहाँ पर। जी।

0: और अब हमारे श्रोताओं को बताइए कि आज एक बहुत बड़ी समस्या और है, डायबिटीज के मरीज बढ़ रहे हैं और थायराइड की समस्या ज्यादातर हो रही है, तो क्या आहार के जरिए, सही न्यूट्रिशन के जरिए क्या इस पर नियंत्रण किया जा सकता है?
1: अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो अगर आपके फैमिली में या आपके परिवार में माता पिता को, चाचा चाची को, जो इमीडिएट फैमिली होती है, तुरंत आपके माता पिता, भाई बहन, किसी को भी डायबिटीज़ है, आपको डायबिटीज़ होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको ये जानकारी है तो आपको आपके आहार या पोषण का ध्यान पहले से रखना शुरू कर देना चाहिए। आपके खाने में क्या होना चाहिए ये आप समझ गए तो आप अपने ब्लड शुगर को आराम से मैनेज कर पाओगे, आपको डायबिटीज के लेवल पे आप पहुंचोगे नहीं। अगर आप प्री डायबिटीज के लेवल पे किसी वजह से पहुंच गए, सही आहार से आप उसको रिवर्स कर सकते हो। अगर आपका लेवल डायबिटीज में चला गया और आपको डॉक्टर ने डायग्नोस कर लिया कि आपको डायबिटीज है या आपको शक्कर की बीमारी लग गई है, तो उस वक्त के बाद से आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब वो चला जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। उस लेवल के बाद से आप बस वो शक्कर की मात्रा को कंट्रोल में रख सकते हैं। तब भी आपको आहार की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो टाइप का आपको डायबिटीज है, भले वो जेस्टेशनल डायबिटीज जो कि प्रेगनेंसी में होता है, टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, उसके हिसाब से और आपको कौन सी दवाएं दी जा रही है और आपका करंट ब्लड शुगर कितना है, उस हिसाब से आहार को डिजाइन किया जाता है, ताकि आपका जल्द से जल्द शुगर कंट्रोल में आए, आपको दवाइयां कम लेनी पड़े, या अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो वो अच्छे से आपके ऊपर काम करे कम से कम डोज में। तो आहार इतना हेल्प कर सकता है कि आपका 16-15 ऐसा HbA1c है तो वो 7-6 पे भी ले आ सकते हैं 3-4 महीने में।
0: जी बिल्कुल।
1: बट लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट दवाई ले लेंगे अगर खाना नहीं छोड़ेंगे और यहाँ पे दिक्कत आती है। बिना खाने को ठीक किए आपकी दवाई काम नहीं करने वाली है या कम काम करेगी।
0: बिल्कुल सही बात है, मतलब कि हमारे जीवन में सही और संतुलित आहार का बहुत महत्व है।
1: बहुत महत्व है।
0: अदिति जी, हमें बताइए कि सप्लीमेंट की कितनी जरूरत होती है पोषक तत्वों के साथ साथ? कई बार लोग खाना पीना तो ठीक ठाक रखते हैं, उसके बावजूद उन्हें विटामिन्स की कमी होती है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो सप्लीमेंट किससे लेना चाहिए और कितना इसका महत्व है और कितनी हानि है?
1: सप्लीमेंट कुछ लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, कुछ लोगों के लिए वो जरूरी नहीं है। अगर आप संतुलित आहार ले रहे हैं, आपका रहन सहन सही है, नींद ठीक है, पानी ठीक है, आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं है, तो अक्सर आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। मगर अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं या आपके रिपोर्ट्स में आ गया कि आपको कोई विटामिन या मिनरल की कमी है, तो कभी कभार आपको वो लेने पड़ते हैं।
0: जी।
1: जो भी आप सप्लीमेंट ले वो हमेशा डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह से ले, और डाइटिशियन आपको दवाई नहीं दे सकते हैं, डाइटिशियन आपको विटामिन मिनरल के बारे में जरूर बता सकते हैं, मगर ये विटामिन और मिनरल भी एक समय के लिए लेना चाहिए, एक उसका विशिष्ट रूप होता है जिस तरीके से लेना चाहिए, और विटामिन मिनरल्स ऐसी चीज है जिसका कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है सप्लीमेंट में, तो वो पेशेंट की जरूरत के हिसाब से हम देते हैं, बिना किसी की सलाह के, बस इसलिए क्योंकि विटामिन मिनरल मिल

0: भी विटामिन या मिनरल की कमी बहुत ज्यादा है तब आपको सप्लीमेंट की जरूरत लगती है। उसके साथ साथ आपको आहार को भी आपके ठीक करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो रोज का आहार है वो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आपकी जरूरतें पूरा करेगा। सप्लीमेंट जो कि आपका बैकलॉग है, जो कि आपके शरीर में ऑलरेडी कम है, वो चीज को भरेगा। तो वो सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। वैसे ही जैसे विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का मेन तो धूप से मिलता है, मगर हम आजकल धूप में ज्यादातर जाते नहीं हैं, या फिर हम पूरे कपड़े पहनते हैं या ऐसे कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्रीम्स या कुछ भी शरीर पे, जिससे विटामिन डी अब्सॉर्ब नहीं होता।
1: अच्छा।
0: और खाने में विटामिन डी की मात्रा कम है तो आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप विटामिन डी बहुत, क्योंकि कम है, सबको कम होता है, हम हर रोज लेंगे या हर हफ्ते लेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि विटामिन डी फैट सॉल्युबल है, उससे आपकी बॉडी में विटामिन डी स्टोर हो सकता है और आपको टॉक्सिसिटी हो सकती है। सो बिना सलाह के कभी भी उनको नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज, आप कोई भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं या कोई डाइटिशियन के पास जा रहे हैं, आप जो भी सप्लीमेंट ले रहे हैं, एक चिट्ठी पे लिख के उन डॉक्टर को थमा दीजिए कि मैं ये ऑलरेडी ले रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि दिक्कत ये हो जाती है, आप एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने भी कैल्शियम दिया, किसी और ने भी कैल्शियम दिया, और आपने उनको बताया नहीं, तब भी ज्यादा हो सकता है आपके लिए। तो सप्लीमेंट कभी भी कितने भी आसानी से मिले, कितने भी करीबी रिश्तेदार ने आपको बताए हो, बिना जांच पड़ताल या बिना कोई प्रोफेशनल सलाह के नहीं लेने चाहिए।
1: जी बिल्कुल। एक गाना सुनते हैं यहाँ पर।
0: जी,
1: कौन सा गाना आपके पसंद का?
0: आजकल तेरे मेरे प्यार।
1: जब सेहत सही रहती है तो भाई जाहिर सी बात है मन ठीक रहता है।
0: हाँ,
1: मन में अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे तो प्यार की भावना भी उपजती है। सुनते हैं ये गाना।

0: अदिति जी, हमें बताइए कि कुछ लोगों का ये मानना होता है कि खाने से पहले एक गिलास पानी पी लो, खासतौर से वो लोग जो वजन घटाने की मुहिम चला रहे होते हैं। और कुछ लोगों का ये मानना होता है कि खाने के बीच बीच में पानी पीते जाओ थोड़ा थोड़ा। और कुछ लोग ये मानते हैं कि खाना खाने से पहले ना तो पानी पीना है, ना खाने के दौरान, ना खाने के बाद। ये जरा स्पष्ट कीजिए, क्या करना चाहिए?
1: इस सवाल का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है और मैं वही सोच रही हूँ कि सही अल्फाज क्या है इसके लिए, थोड़ा स्पष्टीकरण देने के लिए, क्योंकि ये सब विचारधारणा है। ये किसी किसी को आप अप्लाई कर सकते हो, हर किसी के लिए नहीं है। सीधी बात है, आपको पानी लगता है, आप पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप खाने के पहले एक गिलास पानी पियोगे, क्या हो जाएगा, आपके खाने पे असर पड़ेगा,
0: भूख कम हो जाएगी।
1: आपकी भूख कम तो हो जाएगी, मगर ऐसा भी हो सकता है आप कम भूख के कारण खाने की कोई विशिष्ट चीज जो आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है, आप उसी को निकाल दो।
0: जी जी,
1: जैसे भूख कम हो गई तो आपने रोटी सब्जी कर ली, दाल छोड़ दी, तो आपको दिक्कत देगा। अगर आप कर रहे हो तो उसके पीछे का शास्त्र समझ लो कि आप पानी पी रहे हो ताकि आपकी थोड़ी भूख कम हो जाए। मगर ऐसा करने के बाद अगर आपको 4 बजे बड़ी जोर की भूख लग रही है तो फिर क्या ही फायदा उस चीज करने का।
0: बिल्कुल,
1: वैसे ही आप पानी आधा घंटे पहले मत पियो, आधा घंटे बाद मत पियो, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। पानी किसको संभाल के पीना चाहिए? कुछ लोग जो होते हैं ना, जो खाना खाने के वक्त पे कम चबाते हैं या उनको चबाना पसंद नहीं आता, तो ऐसे लोग जो है थोड़ा चबा लेते हैं खाना, बाकी पानी पी के उसको थोड़ा सा गटक लेते हैं। मुझे उसका सही अल्फाज नहीं पता, बट उसको पूरा स्वॉलो कर लेते हैं।
0: जी जी जी,
1: तब आपकी खाने की मात्रा बहुत कम हो जाती है और आप पानी से ही आपके खाने को अंदर ढकेल रहे हो। ये आपको तकलीफ देगा और बहुत ज्यादा तकलीफ देगा, आपके डाइजेशन के हिसाब से भी तकलीफ देगा और आपको भूख के हिसाब से भी तकलीफ देगा। ऐसे वक्त पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा सिप सिप करके पानी पी रहे, घूट घूट लेके पानी पी रहे खाने के दौर में, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
0: जी बिल्कुल। और एक सवाल और है, वो ये कि एक वक्त में 2 अनाज खाएं, एक अनाज, जैसे कि या तो दाल चावल खाएं या फिर रोटी सब्जी खाएं। रोटी सब्जी शाम को खा लें, दिन में दाल चावल खा लें, ऐसा लोग बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पूरी थाली, जैसे पुराने जमाने में पूरी थाली सजा के खाई जाती थी, तो आपका क्या कहना है?
1: इसमें सीधी सी बात है, धान धान होता है, आपको आखिर में देखना है धान की मात्रा आपकी थाली में कितनी है। आप अगर रोटी भी कर रहे हैं और चावल भी कर रहे हैं और आपकी आधी थाली उसी से भर रही है तो उसमें दिक्कत है। हमने क्या बात की थी कि थाली में 1/4 धान होना चाहिए, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि आप रोटी सब्जी अलग करें, दाल चावल अलग करें या साथ में करें। प्रॉब्लम ये आती है या दिक्कत ये आती है जब आप उसका प्रमाण बदल देते हो। अगर आपकी थाली में रोटी सब्जी है मगर आप सब्जी को अचार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, और दाल चावल है मगर आप दाल को अचार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो कम मात्रा में,
0: जी जी,
1: तब आपकी थाली का संतुलन बदल जाता है। और 90% लोगों का यही इशू होता है कि उनकी थाली में आधे से ज्यादा धान होता है, एक छोटी मात्रा में सब्जी होती है और बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होता है।
0: जी, खाने का सही तरीका बहुत जरूरी है, और जिसको पित्त की समस्या, एसिडिटी की समस्या हो तो उसे तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत गलत फहमी है लोगों में कि कब क्या खाएं, दो भोजन के बीच में कितना गैप होना चाहिए।
1: इसका कोई एक सरल फॉर्मूला तो है नहीं, क्योंकि हर इंसान अलग होता है। किसी किसी को दिन में 3 बार खाने की आदत होती है, किसी को 5 बार खाने की आदत होती है। मुझे ऐसे लगता है और मैं हमेशा पेशेंट्स को भी यही बताती हूँ कि आपकी जो जिंदगी है, आपका जो रूटीन सेट है, आप उस तरीके से काम करो। अगर आप 3 बार खाते हो 3 बार खा लीजिए, मगर ये देखिए कि वो आहार संतुलित हो। अगर हम बात करें भूख की, दिक्कत ये है शहर में आजकल लोगों को यही समझ नहीं आता भूख कब लग रही है और प्यास कब लग रही है। बस 1 बज गया है तो अभी लंच करने जाना है, ये समझ में आता है। तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को समझना जरूरी है कि मुझे भूख कब लग रही है, मुझे प्यास कब लग रही है।
0: तो क्या जब भूख लगे तभी खाना चाहिए?
1: ऐसा जरूरी नहीं है, शरीर को जरूरत है उसकी समझे और आप अपना रूटीन सेट करें उस हिसाब से। मैं ये कहूंगी पहले तो रूटीन सेट करिए और उस वक्त पे आपके बॉडी को ट्रेन करिए कि आपको उस वक्त पे भूख लगे, मगर भूख लगना उस वक्त पे जरूरी है। बस 1 बजा है इसके लिए मुझे खाना है, ये नहीं होना।

0: चाहिए। मुझे 1 बजे भूख लगनी चाहिए क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, ये होना चाहिए। जब आपको भूख लगेगी, वही अनाज वही थाली आपको अच्छे से, शरीर आपका उसको एब्जॉर्ब करेगा। आपके 2 खाने के बीच में कितना गैप होना चाहिए ये निर्भर करता है आप कितनी मात्रा में खाते हो। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग क्वांटिटी में ज्यादा खाते हैं, खाने की मात्रा उनकी ज्यादा होती है, और कुछ लोग होते हैं जो एक वक्त पे 1 रोटी या 2 रोटी के ऊपर नहीं खा सकते। जो कम खाते हैं उनको कई बार थोड़े थोड़े अंतर पे खाना जरूरी है, तो 2-3 घंटे के अंतर पे आप थोड़ा थोड़ा खा लेंगे अच्छा रहता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी खाने की मात्रा ज्यादा है तो आप दिन में 3 बार खा लोगे आप ठीक रहोगे। अगर आपको जैसे एसिडिटी या गैस की दिक्कत है तो आपको थोड़ा थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। आपको ब्लड शुगर की इश्यू है तब भी आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए ताकि आपका शुगर स्टेबल रहे। अगर आप दिन में 3 बार खा रहे हो जस्ट इसलिए कि अभी ट्रेंड चल रहा है दिन में 1 बार खाने का, आप डायरेक्टली 3 से 1 पर आ गए, वो दिक्कत करेगा।
1: जी जी, अभी 2 टाइम का भी
0: बहुत ज्यादा
1: कि सिर्फ 2 टाइम खाना खा रहा है। यहाँ पर एक जरूरी बात जहन में आई है, वो ये कि कई बार लोग एक साथ खाना खाने बैठते हैं तो सलाद भी रख लिया, दही भी रख लिया, फल भी रख लिया काट के, और पूरी थाली हाँ। भी, तो क्या फल और खाना एक साथ खाना चाहिए या उसे बीच में गैप देना चाहिए?
0: हमेशा मुझे ऐसे लगता है कि फल ऐसी चीज है जो हमारे पूरे खाने में, हम उसे बिना पकाए खाते हैं।
1: जी जी,
0: तो उसे ऐसे वक्त पे खाएं जहां आप उसका मजा अलग से ले पाए।
1: जी,
0: जहां पका हुआ खाना जा रहा है वहां पे वो होना चाहिए। सलाद आपके खाने में जा सकता है, वो कच्चा होता है, मगर सलाद हर किसी को सूट करता है ऐसा नहीं है। इसका मतलब कच्चा खाना सबके लिए है नहीं।
1: जी जी बिल्कुल,
0: आपकी सेहत के हिसाब से, आपके पेट कैसा काम कर रहा है उस हिसाब से आपका सलाद पका हुआ हो या कच्चा होना चाहिए ये देखना आपको जरूरी होता है। फल आपको हमेशा अलग से ही खाने होते हैं, और कभी भी फल के साथ आपके नट्स जाने चाहिए। अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लें कि नॉर्मली लोग 8-9 बजे नाश्ता कर लेते हैं, 1 बजे खाना खाते हैं, और जो रात का खाना होता है वो अक्सर 8-9-10 बजे चला जाता है, तो आपके दोपहर के खाने और रात के खाने में बहुत बड़ी गैप हो जाती है। तो ऐसे वक्त पे इसके बीच में वहां पे फल और आपका जो नट्स है वो बहुत आसानी से इस्तेमाल हो सकता है। अभी आपको ये भी देखना है कि 5 से 7 के बीच में ही आपको समोसे चाट की जरूरत पड़ती है, तो वो भूख लगने के पहले और आपके दोस्त आपको बताने के पहले कि चलो हम जाके समोसा खाते, उस वक्त पे आपका फल और नट्स खा लीजिए और आपकी सेहत बढ़िया रहेगी।
1: जी जी, एक गाना सुने
0: जी,
1: कौन सा?
0: क्यों ना ये जीवन है पिया का घर।
1: जी, इस जीवन का यही है रंग रूप।

0: और कुछ लोगों का ये भी मानना है रोटी के मामले में कि गेहूं की रोटी नहीं पचती है, देर से पचती है, और मोटा अनाज ज्वार बाजरा और नाचनी, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
1: अगर हम गेहूं की बात करें, एक ट्रेंड चल रहा है जहां पे लोग बोलते हैं कि गेहूं बहुत बुरा है। गेहूं हर किसी के लिए बुरा नहीं है। अगर आपको एलर्जीज हैं या आईबीएस आईबीडी जैसे कोई मेडिकल कंडीशन है, तब आपको, या आप गेहूं जब भी खाते हो आपको थोड़ी बहुत डाइजेशन की इश्यू होती है, गैस की इश्यू होती है, तब गेहूं दिक्कत दे रहा है आपको, और तब आपको उसको अवॉइड करना चाहिए।
0: तो वहां
1: मतलब
0: पर
1: आपकी थाली में गेहूं नहीं होना चाहिए या कम मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि वो आपको तकलीफ दे रहा है। बाकियों को गेहूं से दूर रहने की कोई जरूरत नहीं है। कि आप गेहूं कौन से तरीके का यूज कर रहे हो ये देखिए।
0: जी।
1: जिसमें आपके पास खपली गेहूं है जो सबसे बेहतर है, उसके बाद आपके पास अलग अलग तरीके के गेहूं हैं, आप कौन सी वैरायटी यूज कर रहे हो ये भी देखिए। और उसमें आप जो गेहूं के ऊपर का छिलका होता है, ब्रान होता है, वो इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं खाने में, रोटी में, ये देखिए, आप सही रहोगे। रोटी गलत नहीं है, रोटी हर किसी को तकलीफ देती है ऐसा भी नहीं है। अगर हम ज्वार बाजरा की बात करें, मिलेट्स बहुत ज्यादा चर्चा में है एक दो
0: बिल्कुल
1: सालों से, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मिलेट्स हम पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं अपने देश में, आज उसकी मात्रा बहुत बढ़ गई है, मगर लोगों को उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आज भी नहीं आता है। ये जो मिलेट है या मोटे अनाज है, ये बहुत बार आप देखोगे थोड़े सूखे या ड्राई टेंडेंसी के होते हैं। ये कम खाएंगे तब भी आपको एकदम ऐसे लगेगा कि भरा भरा पेट लग रहा है, या पेट बहुत टाइट हो रहा है, या आप और एक ज्वार की रोटी के ऊपर नहीं खा सकते। अच्छे हैं, मगर वो भी सही मात्रा में आपके दिन में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको थायराइड जैसा इश्यू और आप पूरी तरीके से मिलेट्स पे रह जाए, आपको दिक्कत होगी। तो एक संतुलन गेहूं और मिलेट्स के बीच में रखना, चावल के बीच में रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने वो संतुलन जमा लिया तो आपका पेट सही रहेगा। दूसरी चीज मुझे ये हमेशा दिखती है कि कुछ लोग जो होते हैं ना, आंकड़ों के पीछे पड़े रहते हैं। इसका
0: जी
1: मतलब क्या होता है कि उनकी प्लेट में उनको या थाली में उनको दो रोटी चाहिए होती है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो गेहूं की है, ज्वार की है, बाजरा की है। अभी ये दिक्कत है कि एक फुल्का या एक रोटी जो है 20 से 30 ग्राम आटे की बनती है, और एक ज्वार की रोटी जो है 50 से 60 ग्राम आटे की बनती है।
0: बिल्कुल
1: तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपने ज्वार बाजरा जो भी है वो बहुत ज्यादा मात्रा में खा लिया, जहां कि आप रोटी एकदम हल्के फुल्के में काम चला लेते हैं।
0: तो पाचन पर असर पड़ेगा।
1: जी, तो ये लोग सोचते ही नहीं है, क्योंकि ये उन्होंने कभी उस तरीके से सोचा ही नहीं है। तो ये आपको देखना जरूरी है कि आपकी पाचन क्रिया कैसी है, आपका पेट कैसा है, क्या आप मिलेट्स को डाइजेस्ट कर पा रहे हो, और अगर आप मिलेट्स को आपके खाने में रोजमर्रा की जिंदगी में

0: यूज करना चाहते हो या डालना चाहते हो, आप किस तरीके से डाल रहे हो
1: जी।
0: आप अगर मिलेट्स बिल्कुल भी नहीं खा रहे तो तुरंत से पूरे हफ्ते मिलेट्स ना करें, हफ्ते में एक दो बार करें, फिर तीन चार बार करें, धीरे धीरे मिलेट्स की आदत लगाएं। और ज्वार बाजरा नाचनी के आगे भी हमारे पास धान है, उसका भी इस्तेमाल करें, जैसे कोड़ो हो गया, कांग हो गया, पोर्सो हो गया, महाराष्ट्र में वरी हो गया, ये सारे भी तो धान है, वो भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। सूडो मिलेट्स हैं जैसे कि किनुआ हो गया, कुट्टू हो गया, बकवीट जिसे बोला जाता है। किनुआ को तो हिंदी मराठी नाम है नहीं, किनुआ को किनुआ ही बोलते हैं।
1: सामा
0: नहीं, सामा है जो कि होता है महाराष्ट्र में वरी, बार्नयार्ड मिलेट
1: जी जी।
0: तो
1: जी,
0: ये सारी चीजें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। हमें सिर्फ रोटी और उसके आगे ज्वार बाजरा नाचने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है, हमें बस कुछ चीजें पता नहीं है और कुछ चीजें हमें इस्तेमाल करनी नहीं आती। तो आप सही तरीका सीख लो तो हो जाएगा। जब भी आप मोटे धान की बात करें और आप अगर अक्खा धान यूज कर रहे हैं तो उसको अच्छे से 4 से 6 घंटे भिगो के रखना बहुत जरूरी है, और सही मात्रा में पानी डाल के उसको पकाना बहुत जरूरी है। उसके साथ आप किस तरीके की सब्जी खा रहे हो, अगर आप मोटा धान इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके साथ जो सब्जियों में पानी का अंश ज्यादा होता है, जैसे दूधी हो गया, कद्दू हो गया, पेठा हो गया, इसका इस्तेमाल ज्यादा करें, तो वो आपका सूखी रोटी और उसके साथ गीली सब्जी, ये थोड़ा सा बैलेंस आपके पेट के लिए बहुत अच्छा ठहरता है।
1: अच्छा, क्या बात है।
0: तो ये थोड़ा संतुलन आपको समझना चाहिए और आपको धीरे धीरे अपने खाने को उस तरीके से बदलना जरूरी है।
1: एक गाना सुने
0: जी।
1: कौन सा
0: आप भी बता दीजिए कोई गाना।
1: सुनते हैं ये गाना।
0: एक बार

0: जो आप धान की बात कर रही थी, धान में ये सारी चीजें आती हैं। धान में सिर्फ वो चावल जो हम रोज खाते हैं वो नहीं, हाँ। बल्कि कुदो और जो नाम
1: बहुत ज्यादा है। और आप अगर चावल की ही बात करें तो भारत ऐसा देश है जहाँ हमारे पास 150-200 तरीके के चावल है।
0: बिल्कुल,
1: मगर हम एक ही चीज जानते हैं,
0: खुशबूदार
1: सफेद चावल।
0: बिल्कुल,
1: खुशबूदार चावल, बासमती चावल, इतना ही जानते हैं। थोड़ा हमारे जो चावल के अनाज है जो हमारे पास है, जैसे आंबे मोहर है, मट्टा

0: है केरला का या असम का ब्लैक राइस है, जो आपके यहाँ है या कृष्णा का मोद है, आप वो चावल का
1: ब्राउन
0: इस्तेमाल
1: राइस भी
0: करें।
1: एक आता है।
0: ब्राउन राइस आता है, मगर उससे अच्छा हमारे पास बहुत सारे चावल है। अनपॉलिश्ड वैरायटी का चावल इस्तेमाल करें या सेमी पॉलिश्ड वैरायटी इस्तेमाल करें। बहुत खुशबूदार, बहुत फ्लेवरफुल चावल आते हैं हमारे पास। सफेद चावल में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं रहता है, उसका
1: अच्छा
0: सब कुछ निकाला हुआ होता है। बस हल्का सा बी विटामिन आपको मिल जाएगा, बाकी सब वो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट है।
1: क्या बात है, बहुत सही जानकारी आपने दी है। पहले ग्रामीण इलाकों में आज भी
0: आज भी वही
1: धान को
0: इस्तेमाल।
1: उबाल कर चावल बनाया जाता है, वो उसको उसना चावल कहते हैं,
0: हाँ,
1: वो बहुत
0: हमारे यहाँ
1: मोटा
0: उकड़ा
1: होता है।
0: तांदूल बोलते हैं
1: हाँ
0: महाराष्ट्र में, जहाँ हम वही राइस को यूज करते हैं,
1: जी जी जी
0: जिसमें अच्छा ब्रांड भी होता है, विटामिन भी होते हैं,
1: हाँ
0: वो मोटा होता है तो आप कम भी खाते हो।
1: अदिति जी, बहुत जरूरी मुद्दा है आजकल तेल के बारे में, कि पुराने जमाने में तो हम सबको याद है कि सरसों का तेल सब्जियों में इस्तेमाल होता था, और कुछ जगहों पर नारियल का तेल, साउथ में खास तौर से अलग अलग जगहों पर। और आजकल तरह तरह के तेल हैं, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, सनफ्लावर, राइस ब्रॉन, तो बताइए कि कौन सा तेल सब्जियों के लिए सही होता है इस्तेमाल करना।
0: आप जिस जगह रहते हो उस जगह आपके आजू बाजू में कौन से पेड़ ज्यादा है, उस हिसाब से उस इलाके में वो तेल ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट की बारे में बात करें तो वहां पे आपको सरसों का इस्तेमाल ज्यादा मिलेगा। महाराष्ट्र की बात करें या साउथ की बात करें तो नारियल का तेल ज्यादा मिलेगा। आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, तो ये सारे तेल अभी हम सबको मिल रहे हैं। कोई तेल बुरा हम नहीं बोल सकते, हर तेल अपने तरीके से सही है। किसी के लिए वो अच्छा हो सकता है, किसी के लिए वो बुरा हो सकता है। मुख्य क्या होता है कि आपके खाने में तेल की मात्रा कितनी है। आप अगर आपके खाने में, जैसे एक इंसान को पूरे दिन में तेल की मात्रा 3 से 4 चम्मच रखनी चाहिए,
1: ओहो
0: छोटे चम्मच,
1: हो
0: 5 ml के चम्मच, उसके ऊपर नहीं।
1: जी
0: मगर हम कभी गिन के थोड़ी ना तेल इस्तेमाल करते, अंदाजे से। भिंडी की सब्जी को थोड़ा ज्यादा तेल डाल दिया, कोई पत्ते की सब्जी है तो उसमें कम तेल डाल दिया, हम स्वाद अनुसार तेल इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। अगर हम तेलों की बात करें कि कौन सा सबसे अच्छा होता है, सबसे पहले आप देखिए कि आपको मेडिकल इश्यूज है या नहीं। कुछ मेडिकल इश्यूज में कुछ तेल हम मना कर देते हैं, बाकी केस में अगर आपको कोई इश्यूज नहीं है, आप सेहतमंद है, आपको बस आपकी तबीयत का ख्याल रखना है, तो इसका सिंपल तरीका यह है कि आप पारंपरिक तौर से आप जो तेल खा रहे हो उसका इस्तेमाल करें। बाकी तेल भी अपने रूटीन में रखें, उसको थोड़ा सा साइकिल करें। मतलब अगर 1 महीना आप सरसों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा फिर राइस ब्रैन को लेकर आए, फिर आप सरसों पे चले जाए, फिर सनफ्लावर का इस्तेमाल करें। ऐसे थोड़े आप बदलाव लेकर आ सकते हैं। आखिर में आपकी तेल की मात्रा कितनी है ये मायने रखता है।
1: जी
0: कुछ तेल होते हैं जिनको बहुत बुरा नाम पड़ा है, जैसे पाम ऑयल है, क्योंकि ये ज्यादा करके पैकेज फूड बेकरी आइटम्स में इस्तेमाल किया जाता
1: जी
0: है।
1: जी जी
0: तो हाँ, ये बुरा है क्योंकि उसकी जो गुणधर्म है वो आपको तकलीफ दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप पैकेज फूड और प्रोसेस फूड कितना खा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल
0: आखिर में गिन के आप पूरे दिन में तेल कितना खा रहे हो। और तेल भी दो तरीके से हम देखते हैं, नॉर्मल लोग सिर्फ तेल को गिनते हैं, हम डाइटिशियंस दो तरीके से देखेंगे।
1: जी
0: विजिबल सोर्सेस जो कि दिखते हैं, मतलब आपका तेल, घी, बटर, चीज, और दूसरा होता है इनविजिबल सोर्सेस, मतलब दूध में से आने वाला फैट, आपके नट्स में से आने वाला फैट, ये भी तो जरूरी है।
1: जी जी
0: तो अगर आप पूरे दिन में 2 मुट्ठी ड्राई फ्रूट ही खा रहे हैं और आपकी सब्जी तेल में तैर रही है,
1: बिल्कुल
0: तो आप ज्यादा तेल खा रहे हो, आपको तकलीफ
1: होनी
0: होने
1: होनी
0: ही
1: है।
0: वाली है।
1: बिल्कुल
0: आखिर में तेल की मात्रा कितनी है वो ज्यादा मायने रखती है, और अपने तेल को बदलते रहिए। कौन सा तेल अच्छा है, क्या केमिकली रिफाइंड तेल अच्छा है, फिजिकली रिफाइंड अच्छा है, वुड प्रेस्ड अच्छा है, कोल्ड प्रेस अच्छा है, तो फिजिकली रिफाइंड या घानी, वुड प्रेस, कोल्ड प्रेस, ये अच्छे हैं। जितना हो सके केमिकल जो फिल्टर्ड होता है वो थोड़ा सा दूर रखें। अगर शहर में रह रहे हैं या आपको दिक्कत है, आपको एक्सेसिबिलिटी या फाइनेंस का इशू है, तो आप जो भी तेल मिल रहा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियली अफोर्डेबल है तो

0: धनी का तेल, कोल्ड प्रेस ऑयल, वुड प्रेस ऑयल, इसकी तरफ थोड़ा सा मुड़ जाइए। वो तेल थोड़ा सा गाढ़ा भी होता है, तबियत के लिए भी अच्छा होता है और उसमें गुणधर्म भी अच्छे खासे होते हैं।
1: जी जी,
0: तो
1: जी
0: वो इस्तेमाल आप कर सकते हो।
1: जी बिल्कुल, घानी का तेल यानी जो कोल्हू के बैल से निकाला जाता है ताजा तेल, सरसों का तेल खास तौर से होता है। एक गाना सुनते हैं यहाँ पर।
0: जी।

0: और घी के बारे में भी बताइए। घी के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां, लोग चुपड़ के घी खाते हैं कुछ लोग, कुछ लोग कहते हैं कि अरे इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, घी खाते ही नहीं। तो घी क्या है बताइए।
1: घी भी फैट का एक ही रूप है। आप तेल खाओ, घी खाओ, बटर खाओ, चीज खाओ, उसके रूप अनेक है।
0: अच्छा।
1: आखिर में मात्रा आपकी मैटर करती है, जो कि मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि दिन में आपकी 3 से 4 चम्मच तेल होना चाहिए, उसमें घी भी आता है। आप 4 चम्मच घी इस्तेमाल करना चाहते हो या उसमें से 1 चम्मच घी इस्तेमाल करना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। क्या घी खाने से फायदा है? हाँ, पेट के लिए अच्छा है, तबीयत के लिए अच्छा है। आप वेट गेन करने की कोशिश कर रहे हो तब भी आपको फायदेमंद ठहरेगा। अगर आपको ब्लॉकेज इश्यूज है, हार्ट इश्यूज है, या आपको कोई मेडिकल बाकी के कंडीशन है, तो आपको घी को थोड़ा कंट्रोल में रखना जरूरी है। अगर आप घी नहीं खाते हो, क्या आपको कोई

0: नुकसान है? नहीं, बिना घी खाए भी आप अच्छे खासे जिंदगी निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको घी खाना जरूरी है जिंदगी में। तो आखिर में आप कितनी मात्रा में खा रहे हो, ये महत्वपूर्ण है।
1: जला हुआ घी नहीं खाना चाहिए पराठे के रूप में
0: जी,
1: पूड़ी और पराठे के रूप
0: बहुत ज्यादा
1: अदिति जी, घी तेल सब कुछ शामिल हो गया और हर खाने में मिठाई भी शामिल होता है। कुछ लोगों के साथ तो ये दिक्कत है कि हर खाने के बाद उनको मीठा चाहिए, तलब होती है। तो ये मिठाई के खाने के बारे में बताइए कि खाने के बाद, खाने के साथ खाना जरूरी है, खाने से पहले या बाद में, या नहीं खाना चाहिए?
0: अगर आप मिठाई खाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिठाई की जरूरत नहीं है। शक्कर कम खाने से आपकी शक्कर कम नहीं होने वाली। मिठाई भी शक्कर का ही एक अलग रूप है जिसे हम कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं। अगर आपके पूरे दिन में आपके आहार में कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण बहुत ज्यादा है तो मिठाई उसे और बढ़ाएगा। और मिठाई जो है छोटा बम बड़ा धमाका है। छोटे से बाइट में बहुत ज्यादा कैलोरीज होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा फैट भी होता है और उतनी ज्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाते हैं। तो क्या मिठाई जरूरी है? नहीं। अगर आप मिठाई हर खाने के बाद खाना चाहते हो तो ये आपको कम करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, आपकी तबीयत के हिसाब से। तो एकदम से अचानक से अगर आप बंद नहीं करना चाहते, पहले तो दिन में एक ही बार कर लीजिए और फिर उसी मिठाई के थोड़े से हेल्दी रूप थोड़े से देख लीजिए। जैसे आपको खजूर मिल जाएगा, या आपने थोड़ा चना और गुड़ ले लिया, या आपने छोटा चिक्की का टुकड़ा ले लिया, आप इसका इस्तेमाल करें, ना कि गुलाब जामुन या और कोई तली हुई मिठाई, मावा जलेबी, इसका इस्तेमाल करें। जैसे मैंने कहा, आखिर में पूरे दिन में आपने कार्बोहाइड्रेट कितने खाए हैं वो मायने रखता है। कुछ लोग जो है खाने में भी शक्कर और गुड़ का इस्तेमाल बहुत करते हैं, तो मतलब आप चाय में शक्कर गुड़ खा रहे हैं, आपके खाने में गुड़ और शक्कर जा रहा है, और फिर आपकी मिठाई में भी शक्कर है। तो आपने यहाँ फॉर्मूला बना लिया आपका ब्लड शुगर बढ़ाने का।
1: जी जी।
0: इससे आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा क्योंकि आप हर जगह पे मिठाई खा रहे हो। अभी कुछ लोग बोले में तो ब्लड शुगर नहीं है, हम तो जिंदगी भर खा रहे हैं। बात है, हो गए, आपकी तबीयत उतनी अच्छी है, हो गया। मगर क्या ये हर कोई कर सकता है? नहीं, किसी को तकलीफ दे सकता है
1: जी।
0: तो मिठाई भी आखिर में आपको ये देखनी है कि ये मेरे को फायदा देने वाली है। आज के टाइम में हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी मिठाई आ रही है जो कि आपकी तबीयत को भी संभाल सकती है और मीठे की क्रेविंग को भी संभाल सकती है। जैसे डार्क चॉकलेट हो गया, या आप छेना इस्तेमाल करो, रसगुल्ले का छेना वो आप यूज करो,
1: खीर घर में बना के।
0: खीर भी आखिर में दूध और शक्कर ही आई, और उसमें अगर आपने साबुदाना डाल दिया तो खत्म। तो आपने एकदम ऐसा फॉर्मूला बना दिया जहाँ पे शक्कर बढ़ जाएगा। तो ये कितने मात्रा में है, पूरे दिन में कितनी शक्कर गुड़ जा रही है, और ओवरऑल आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक कितना है, इस पे निर्भर करेगा कि क्या आप मीठा खा सकते हो या नहीं। दूसरी चीज ये है कि बहुत ज्यादा मीठा खाने से ना, कुछ लोग कई सालों तक उनको आदत होती है मीठा मीठा खाने की, कार्बोहाइड्रेट खाने की, इसी वजह से उनकी टेस्ट बड्स जो वो भी थोड़े चेंज हो गए। उनको हर चीज उस तरीके से टेस्ट नहीं आती, तो जब वो मिठाई थोड़े दिन के लिए निकल लेते हैं तब उनको वही मिठाई कितनी मीठी है वो पता चलेगी। जैसे कुछ लोग जो मिठाई बिल्कुल नहीं खाते हैं, वो फटक से बोलेंगे आपकी एक चम्मच शक्कर भी बहुत ज्यादा है। वो क्यों बता पा रहे हैं? क्योंकि उनके टेस्ट बड अभी वापस ट्रेन हो गए कि जो निसर्ग में जो चीजें जैसी है वो उनके फ्लेवर्स का मजा उस तरीके से ले ले। तो हमें उस चीजों पर ज्यादा ध्यान दे।
1: मतलब ये भी है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम खाना कम खा लें, मिठाई ज्यादा खा लें,
0: हाँ,
1: तो वो भी ठीक नहीं है।
0: ठीक नहीं है
1: क्योंकि मीठा तत्व तो आपके हाँ, शरीर में जा रहा है जो
0: कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, डाइट भी कर रही हूँ, मगर वेट लॉस नहीं हो रहा है या मेरी शक्कर कम नहीं हो रही है, तभी भी अक्सर गुनहगार वो मिठाई ही होती है।
1: बिल्कुल। तो अब इस मिठाई के साथ ही मीठी मीठी बातों को हम विराम दे रहे हैं। अदिति जी, बड़ी ढेर सारी जानकारी आपने साझा की हमारे श्रोताओं के साथ। एक गाना
0: जी।

पोषण माह के उपलक्ष्य में सेहतनामा कार्यक्रम में आज आपने सुना न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग मिला मंगेश सांगले से। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज।
1: नमस्कार श्रोताओं, FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह है आकाशवाणी उज्जैन। शाम के 5 बज चुके हैं। मैं आपकी रेडियो साथी दृष्टि स्वागत करती हूं सभी श्रोताओं का। समय हो चला है हमारे यूथफुल, एनर्जेटिक और इन्फॉर्मेटिव कार्यक्रम युववाणी का। आज वाणी प्रस्तुत करता है आयशा अंसारी और कीर्ति गोमे।

0: नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त कीर्ति वर्मा।
1: और मैं हूं आयशा। आप सभी को हमारा ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार।
0: से आयशा, आज का दिन थोड़ा खास है क्योंकि आज की तारीख अपने साथ सिर्फ एक त्यौहार या फिर एक खास दिन नहीं, बल्कि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारी यादों के कई रंग लेकर आई है। और इन रंगों और बातों के साथ आज आप सभी श्रोताओं कॉल करें, हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 0734-405-4191।
1: बिल्कुल कीर्ति, और आज का दिन खास इसलिए है क्योंकि आज है 14 सितंबर यानी कि हिंदी दिवस। दोस्तों, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा के रूप में अपनाया था। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, हिंदी को सिर्फ इतिहास की एक तारीख तक सीमित रखना शायद इसके साथ न्याय नहीं होगा, क्योंकि हिंदी तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में सांस लेती है ना।
0: बिल्कुल ऐशा, कभी माँ की डांट में, कभी दादी नानी की कहानी में, तो दोस्तों की हंसी मजाक में, या फिर किसी अपने से कही उस बात में जो सीधे दिल तक पहुँच जाती है। हिंदी सिर्फ शब्द नहीं, एक एहसास है जिसमें हमारी बहुत सी यादें सुरक्षित हैं।
1: और आज इसी तारीख का एक और खूबसूरत रंग भी है जिसे हम मना रहे हैं गणेश चतुर्थी के नाम से। नाम सुनते ही, गणेश जी का याद आते ही, जैसे ढोल की आवाज़, सजावट और गणपति बप्पा के स्वागत की उमंग एकदम दिल में महसूस होने लगती है।
0: बिल्कुल, और ये सिर्फ 10 दिनों का पर्व नहीं आयशा, उमंग, भक्ति और साथ मिलकर खुशियां मनाने का मौका है। भगवान गणेश को ज्ञान, समृद्धि और शुभ शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए उनका आगमन अपने साथ नई शुरुआत और सकारात्मकता का संदेश भी लाता है।
1: और इसकी खूबसूरती ये भी है दोस्तों कि गणपति बप्पा सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं रहते हैं। इन 10 दिनों में वो हर घर में पहुंचते हैं, हमारी गलियों में आते हैं और पूरे मोहल्ले को एक साथ एक सूत्र में जोड़ देते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, कहीं आरती की आवाज है तो कहीं फूलों की सजावट, कहीं प्रसाद की तैयारी है तो, और इन सबके बीच मिट्टी से बने गणेश जी की अपनी ही खूबसूरती है। मिट्टी की वो सादगी जो हमें अपनी परंपरा और प्रकृति दोनों से जोड़ती है, जिसे त्यौहार मनाते हुए अपनी मिट्टी और अपनी जड़ों से भी जुड़ रहे हो, ऐसा लगता है।
1: बिल्कुल सही कहा कीर्ति, मिट्टी के गणेश सिर्फ एक प्रतिमा नहीं लगते हैं, उनमें एक अपना सा, एक अपनत्व महसूस होता है। और शायद त्योहारों की खूबसूरती तब और बढ़ जाती है दोस्तों जब उनमें भक्ति के साथ प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता का भाव भी मिल जाए।
0: बिल्कुल, कितनी खूबसूरत बात है ना आयशा, एक तरफ भाषा जो हमारे विचारों और भावनाओं को जोड़ती है,
1: और दूसरी तरफ है उत्सव जो लोगों को एक साथ लेकर आते हैं।
0: और शायद इसी वजह से आज का हमारा विषय सिर्फ हिंदी दिवस और गणेश चतुर्थी तक सीमित नहीं है, इसमें शामिल है हमारे शब्द, हमारी परंपराएं, हमारे रिश्ते और उनसे जुड़ी हमारी यादें।
1: इसीलिए आज की हमारी इस खास बातचीत को हमने नाम दिया है, नाम है हिंदी दिवस से गणेश चतुर्थी तक भाषा, भक्ति और यादों का सफर। सोचिए, हिंदी का कोई एक शब्द आपको अचानक अपने बचपन में ले जाए, या गणपति की आरती सुनते ही घर का वो आंगन याद आ जाए जहाँ पूरा परिवार एक साथ बैठकर उत्सव मनाता था।
0: बिल्कुल, किसी को गणेश जी की सजावट याद होगी तो किसी को आरती के बाद मिलने वाला प्रसाद, किसी को दोस्तों के साथ उत्सव में शामिल होना याद होगा, और किसी के पास शायद हिंदी से जुड़ा कोई ऐसा किस्सा होगा जिसे सुनकर आज भी मुस्कान आ जाती हो। और आज हम इन्हीं यादों के दरवाजे खोलेंगे दोस्तों, क्योंकि आज आप भी हमारे साथ हैं।
1: जी हाँ दोस्तों, जिस दिन का इंतजार रहता है वो दिन आज आ गया है। आज हम फिर से मिलेंगे एक साथ, आप होंगे उस पार और हम बैठे होंगे इस पार,
0: और इन दोनों किनारों को जोड़ने वाली कड़ी होगी आपकी आवाज और हमारी युववाणी।
1: तो आज सिर्फ रेडियो को सुनिए मत, रेडियो से बातें कीजिए,
0: अपनी यादों की पोटली खोलिए और हमें बताइए हिंदी से जुड़ा ऐसा कौन सा शब्द, वाक्य, कहावत या किस्सा है जो आज भी आपके दिल के करीब है।
1: और गणेश चतुर्थी की वो कौन सी खास बात है जो समय बीतने के साथ भी आज भी वैसी के वैसी ही ताजा है।
0: तो दोस्तों, फोन उठाइए और हमसे सीधे जुड़िए। हमारा फोन नंबर है 0734-405-4191।
1: एक बार फिर से सुन लीजिए दोस्तों नंबर, हमारा नंबर है 0734 4054191।
0: तो अब इंतजार है उस पहले कॉल का,
1: जिसके साथ शायद कोई भूली बिसरी याद लौट आए,
0: कोई पुराना किस्सा फिर से सुनाई दे,
1: और शायद आपकी आवाज सुनकर हमें भी लगे कि ये सिर्फ एक रेडियो कार्यक्रम नहीं है,
0: बल्कि इस पार और उस पार बैठे लोगों की खूबसूरत

0: मुलाकात है।
1: तो नंबर मिलाइए दोस्तों,
0: क्योंकि आज शब्द भी आपके हैं, याद भी आपकी है और मंच भी आपका है।
1: तो चलिए हिंदी के मिठास और गणपति बप्पा की उमंग से सजे हमारे आज के इस खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाते हैं।
0: बिल्कुल, हर शुभ काम की शुरुआत सबसे पहले गणपति जी के स्मरण से होती है। विघ्नहर्ता गणेश, जिन्हें देवताओं में प्रथम पूज्य माना जाता है, तो क्यों ना आज की इस खास शाम की शुरुआत भी उन्हीं के आशीर्वाद से की जाए। तो आइए भक्ति और उमंग से भरते हुए सबसे पहले सुनते हैं गणेश जी की आरती।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। सर,
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: तो श्रोताओं, हमारे फोन की घंटी ने दस्तक दे दी है और सबसे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, युवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाम बताइए अपना और कहां से बात कर रहे हैं।
8: जी मैम, जय महाकाल, आप सभी

0: सबको।
1: जय श्री महाकाल।
0: जय हीरामन बाबा रेडियो श्रोता संघ तहसील पीसागढ़ जिला अशोक नगर मध्य प्रदेश से विनोद नारायण कुशवा बोल रहा हूँ मैं।
1: नमस्ते विनोद जी, सबसे पहले तो आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: जी जी मैम, आपको भी सभी परिवार को, आकाशवाणी परिवार को, अभी श्रोता भाई बहनों को श्री गणेश चतुर्थी और तीज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो विनोद जी, क्या आपने आपके घर में गणेश जी को विराजमान कर दिया है?
0: जी अभी शाम को करेंगे मैम। बड़ी बड़ी मूर्ति लाते हैं, झांकी लगाते हैं ना, तो सभी दोस्त वगैरह मिलकर, परिवार के सभी साथी, आस पड़ोस के सभी लोग मिलकर गणेश जी की स्थापना करते हैं, भजन कीर्तन गाते हैं।
1: अरे वाह, तो क्या आप पिट्टी के गणेश जी लेकर आएंगे?
0: जी।
2: अच्छा विनोद जी, तो ये बताइए कि गणेश जी से और गणेश चतुर्थी से जुड़ी हुई कोई खास याद है जो आप अपने श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहेंगे?
0: मैम थोड़ा सा आवाज जैसा आ रहा है, आप दोबारा बताएंगे
2: प्लीज। विनोद जी आप हमें सुन पा रहे हैं अभी?
0: जी
2: तो गणेश चतुर्थी से जुड़ी कोई खास बात, कोई खास संदेश आप हमारे श्रोताओं को देना चाहते हैं?
0: जी जी, हम सभी श्रोता भाई बहनों से कहना चाहेंगे कि आप जैसे हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो गणेश उत्सव आया है बढ़िया धूमधाम से मनाएं, गणेश जी को स्थापित करें और उनकी पूजा अर्चना करें, जिससे कि हमारे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, श्री गणेश जी और रिद्धि सिद्धि माता जी का आगमन हमेशा बना रहे।
2: जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने। और आपके साथ ही हम सभी श्रोताओं को ये भी संदेश दे देते हैं कि जितनी ज्यादा कोशिश हो मिट्टी के गणेश जी को स्थापित करें और इस त्योहार को प्रकृति के साथ मिलकर मनाएं, ताकि प्रकृति भी हमारा ख्याल रखे, क्योंकि हमारे भारत की तो परंपरा है ना कि प्रकृति का हर एक अंग हमारे लिए देवों के समान है। सही है ना?
0: मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे कि आजकल जो मार्केट से बनी हुई मूर्ति लाते हैं वो मूर्ति सही भी नहीं होती है, पीओपी की होती है, वो विसर्जन करने जाते हैं ना, तो उस टाइम वो गलती भी नहीं है, इससे प्रदूषण फैलता है। सभी श्रोताओं से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो भले अपने घर पर बनाए लेकिन मिट्टी के ही गणेश जी बनाए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जो गणेश जी मिट्टी के बनते हैं उनकी बात ही अलग होती है, और गणेश जी तो अपने गोबर के भी बनते हैं, लेकिन इस समय जो चलन है वो अपने गणेश जी मिट्टी के बनाए और पर्यावरण को दूषित होने से बचाएं।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने विनोद जी।
0: हमारे गणेश जी भी खुशी होंगे कि गणेश जी मिट्टी के बनाएंगे तो गणेश जी भी और ज्यादा खुश होंगे।
1: बिल्कुल सही विनोद जी, बहुत ही गहरी और खूबसूरती बात की आपने, बहुत ही खूबसूरती से अपनी बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद आप युववाणी से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और मैं कहना चाहूंगा, मैं आकाशवाणी उज्जैन हमको घर बैठे इतनी ढेर सारी जानकारी, ज्ञान प्रदक जानकारी हमको घर बैठे ही सीधे रेडियो के माध्यम से पहुंचाता है, उसके लिए आकाशवाणी उज्जैन की पूरी टीम को दिल से धन्यवाद।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो श्रोताओं, आपने हमारी खास बातचीत सुनी, अशोक नगर से हमारे श्रोतागण हमारे साथ जुड़े थे और कितनी खूबसूरत बात बताई है ना उन्होंने मिट्टी के गणेश जी से जुड़ी हुई। मिट्टी के गणेश जी में आपको सबसे खूबसूरत क्या लगता है कीर्ति, बताइए जरा।
3: बिल्कुल आयशा, उनकी सादगी, उनकी बनावट और जो उनकी प्रकृति से जुड़ाव, जो संदेश मिलता है हमें मिट्टी के गणेश जी बनाने से, वो बहुत सुंदर लगता है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। और सभी श्रोताओं, आप कोशिश करिए कि मिट्टी के गणेश घर पर बनाइए। और इसके साथ ही अब वक्त हो चला है एक और कॉलर से जुड़ने का, आइए देखते हैं हमारे साथ ही कॉलर जुड़े हैं। हमारे श्रोता का जो कॉल था वो कट हो गया है, तो आइए उसके पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत और फिर हम अगले श्रोता से बात करेंगे।

0: आइए बात करते हैं हमारे अगले श्रोता से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन केंद्र के युवानी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन और कहां से बात कर रहे हैं?
2: जी नमस्ते, मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
1: नमस्ते प्रेम सिंह जी, कैसे हैं आप?
2: बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके और भी

0: अच्छा लग रहा है। आज हिंदी दिवस और गणेश चतुर्थी के बारे में बात चल रही है।
1: जी जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको गणेश चतुर्थी और तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: जी धन्यवाद, और आपको और सभी श्रोताओं को भी ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: जी बिल्कुल, तो प्रेम सिंह जी, क्या आप गणेश जी लेकर आ गए आपके घर पर?
0: हाँ गणेश जी तो बताना चाहेंगे, मेरी जो छोटी वाली लड़की है ना साक्षी,
1: अच्छा,
0: और बिंदिया ने मिलकर मिट्टी के ही अपने घर पे ही बनाए हैं।
1: अरे भाई, तो बहुत ही सुंदर बात कही आपने।
0: हाँ जी, और उनको मतलब मिट्टी के बनाने के बाद में उन्हें ऐसा कलरफुल बनाया कि सच में गणेश जी सामने बैठे हुए हमको दिखाई दे रहे, ऐसा लग रहा है हमें।
2: क्या बात है, मिट्टी के गणेश जो हमने हाथों से बनाए हो और खासकर बच्चों ने बनाए हो और फिर रंगों से उसे भर देना, बहुत ही खूबसूरत। और बताइए प्रेम सिंह जी,
0: कल पूरे दिन उन्होंने, संडे था ना उनकी छुट्टी थी, तो मतलब दोनों बहनों ने मिलकर पूरा दिन मतलब गणेश जी के नाम किया और ऐसा मतलब गणेश मूर्ति उन्होंने बनाई कि आप मतलब उपयुक्त में बता रहा हूँ कि जो हम बाजार से मूर्ति खरीद के लाते हैं ना, उनकी ऐसी मूर्ति उन्होंने दोनों बहनों ने मिलकर बनाई।
1: नहीं, बहुत ही सुंदर संदेश ये हमें और हमारे श्रोताओं के लिए आपने दिया है कि हर गणेश चतुर्थी पे इसी तरह से मिट्टी के गणेश जी हम हमारे घर पर ही बनाए और सजाएं।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा प्रेम सिंह जी, आपको गणेश चतुर्थी की तैयारी, प्रसाद, आरती इन सब में सबसे अच्छा क्या लगता है?
0: सबसे अच्छा तो हमें गणेश आरती ही लगती है, क्योंकि मैं खुद एक भजन गायक हूँ, तो मैं तो गणेश जैसे कि हाँ बताना चाहिए, जैसे कि कई भी किसी भी शुभ काम को करने से पहले सीधा मतलब गणेश जी का ही मतलब नाम लिया जाता है, और गणेश वंदना के साथ में ऐसा कोई भी काम होता है तो हम शुरू करते हैं, हम क्या मतलब सभी लोग गणेश वंदना से ही मतलब शुरू करते हैं कैसा भी काम।
1: बिल्कुल प्रेम सिंह जी, और मेरी बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है कि मैं आपकी आवाज में ऐसा कोई गणेश जी का भजन सुनूं, क्या आप हमें सुनाएंगे, हमें और हमारे श्रोताओं को?
0: जी बिल्कुल, गणेश वंदना के रूप में तो बहुत सारे भजन है और बहुत सारी गणेश वंदना है, उसमें से एक छोटी सी लाइन आपको सुना दूं मैं।
1: जी जी,
0: मारे कीर्तन रस बरसाना बरसाना, आजी गजानंद आना, मारे कीर्तन में, क्योंकि अगर ज्यादा गाना ज्यादा लंबा अगर भजन गाऊंगा तो काफी छोटा मतलब
2: जी, बहुत सुंदर आपने प्रेम सिंह जी ये भजन गाया, और इसी के साथ आकाशवाणी उज्जैन में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, आपने सुना एक बहुत ही प्रेम भरा भजन प्रेम सिंह जी से, जो हमारे साथ जुड़े थे नागदा से, और इसी के साथ वक्त हो चला है एक और खूबसूरत से गीत का।

0: सच में भाषा, संस्कृति, उत्सव और इन यादों के बिना हम भी कुछ नहीं और आप भी कुछ नहीं। और इसी के साथ आइए वक्त हो चला है हमारे अगले श्रोता से बातचीत करने का। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी नमस्कार, भी आपको भी और पूरी आकाशवाणी उज्जैन की टीम को गणेश चतुर्थी की भी और हिंदी दिवस की भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बताएं प्लीज अपना।
1: जी मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: क्या बात है शिमला में, मौसम कैसा है राकेश जी?
1: शिमला का मौसम बिल्कुल साफ है और ठंडी ठंडी हवा हमारे यहाँ चल रही, और कल बारिश हुई थी लेकिन आज जो है मौसम ठीक है।
0: बहुत बढ़िया, मौसम ठीक है। और गणपति जी के स्वागत की तैयारी हो गई है? गणपति जी ले आए आप?
1: जी जी, कहीं कहीं होते कि हमारे गांव में कहीं नहीं होता इतना, और हाँ जैसे शहरों की बात करें तो हमारे यहाँ तक उतना इतना और हो जाता है गणपति को हम घर पे लाते हैं कहीं पे।
0: अच्छा, तो राकेश जी त्योहारों से जुड़ी कोई खास बात बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
1: जी जी जी, तो त्योहारों से जुड़ी खास बात ये है, जब हमारे कोई भी त्योहार होता, चाहे जैसे कि चाहे गणपति का चतुर्थी हो, चाहे नवरात्रि का वर्ष हो, चाहे दिवाली का वर्ष हो, त्योहार जब हमारा होता तो उत्साहित होते हैं, तो हम त्योहार जो है बड़ी खुशी खुशी से मनाते हैं। और इसमें जो त्योहार में मैं ये बात जोड़ना चाहता हूँ कि जब हम किसी से नाराज होते थे, जब कोई भी त्योहार होता था तो हम नाराजगी हम भूल जाते हैं, तो हम जो है त्योहारों में जो है इतने मगन हो जाते, तो हमें कुछ याद नहीं रहता कि किसने हमें क्या क्या बोला या किसने क्या किया।
2: बिल्कुल, ये तो आपने बहुत ही सही बात कही है कि हम मगन हो जाते हैं त्योहारों में। तो राकेश जी, गणपति बप्पा के आगमन का आपको सबसे ज्यादा इंतजार किस बात का रहता है?
1: सबसे ज्यादा
2: मतलब आरती का या फिर प्रसाद का, सजावट का?
1: आरती का, जैसे कि सबसे बड़ा इंतजार रहता है प्रसाद का। जब हम प्रसाद खाते हैं तो भगवान की गणपति बाबा के नाम का, तो फिर बहुत जो है खुशी से खाते हैं, तो उस बात का इंतजार रहता है कि देखो हमें भी कब कब हमारी बारी आई, कब हमारे हाथों में प्रसाद मिले और कब हम।
2: ये तो बिल्कुल सही कहा राकेश जी, मुझे भी सबसे ज्यादा इंतजार प्रसाद का ही रहता है।
1: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, प्रसाद का जो है इंतजार रहता ही है।
2: अच्छा राकेश जी, वैसे तो गणेश जी से जुड़ी ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जैसे कि महाभारत की, उनके एक दंत होने की, तो आपकी सबसे मनपसंद कथा उनकी कौन सी है?
1: मेरे को उनकी मनपसंद कथा है बचपन की।
2: अच्छा
1: जी, बचपन में जब वो शरारत करते थे तो वो उनकी बहुत उनकी कथा पसंद है, क्योंकि बचपन में जो इतने शरारत करते इतनी शरारत करते थे वो क्या बोलते, बहुत मजा था। जब हम टीवी में गणपति की पापा की कहानी देखते तो उसमें बिल्कुल मजा था देखने में।
0: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपने हमें कॉल किया और हमारे साथ जुड़े, कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: जी जी धन्यवाद।
2: वैसे आयशा गणेश जी का नाम है एक दंत, उनका एक नाम एक दंत भी है, यानी कि एक दांत वाली, लेकिन आखिर उनका एक ही दांत क्यों दिखाई देता है?
0: वैसे कीर्ति, इससे जुड़ी कई कथाएं हमें मिलती हैं, जैसे कि एक प्रसिद्ध कथा है महाभारत से जुड़ी हुई। माना जाता है कि महर्षि वेद व्यास जब महाभारत का वर्णन कर रहे थे तो गणेश जी उसे लिख रहे थे, लेखन लगातार चलता रहे इसलिए गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़कर उसे लेखने की तरह इस्तेमाल किया था।
2: बिल्कुल, यानी कि एक दांत कहानी ये जो सिर्फ त्याग की नहीं, ज्ञान और लेखन के प्रति समर्पण की भी कहानी है, क्यों आयशा?
0: बिल्कुल सही बात है। और श्रोताओं, इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं।
2: नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन केंद्र के युवानी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कहाँ से और आपका शुभ नाम क्या है?
3: जी योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
2: नमस्ते योगेश जी, कैसे हैं आप?
3: बढ़िया है, अच्छा है।
2: सबसे पहले तो आपको गणेश चतुर्थी, तीज की और हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: जी आपको भी और आपके माध्यम से तमाम साथियों को भी।
2: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा तो योगेश जी, क्या आप आपके घर पर गणेश जी लेकर आ गए हैं?
3: जी ये घर पे पर्सनली नहीं मनाते हम, रखते हमारे यहाँ गांव है तो गांव में दो तीन चौक है ना, तो सभी चौक में रखते हैं मिलजुल कर।
2: अच्छा अच्छा,
0: तो योगेश जी इस त्योहार की तैयारी में आपकी कोई खास भूमिका होती है क्या उस चौक के गणपति जी को लाने में?
3: हाँ जी, मतलब साथी लोग सब जाते हैं साथ में और मस्त बढ़िया विराजमान करते हैं।
2: अच्छा योगेश जी, हमें बताइए कि गणेश चतुर्थी की ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना आपको त्योहार कुछ अधूरा सा लगता है?
3: अब देखिए, सभी तो प्रमुख चीजें होती हैं, पूजा अर्चना का काम हो गया, सभी लोगों का शामिल होना हो गया, और ये कहें अब श्रद्धा और भक्ति का काम है तो इसमें तो ऐसा तो हमें ख्याल में नहीं है।
0: जी जी जी, तो योगेश जी आपके तरफ से एक बार बहुत बहुत बधाई दे दीजिए हमारे श्रोताओं को गणेश चतुर्थी की, और कोई खास जी, बात जी, आप कहना चाहें तो बता दीजिए।
3: बिल्कुल, सभी साथियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं, और यही कहेंगे कि गणेश जी तो हमेशा शुभ कार्यों में हमेशा आगे रहे हैं, और यही कहेंगे कि सभी को आशीर्वाद दे, सबके साथ आशीर्वाद बनाए रखे और सभी को खुश रखे।
2: जी योगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, यही मुस्कुराते रहिए और युवाणी से जुड़े रहिए। आगे हम हमारे और भी श्रोताओं से बात करेंगे, पर क्यों ना ऐसा पहले सुन लिया जाए गीत।
0: बिल्कुल, आइए श्रोताओं सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, आज का ये खास कार्यक्रम युववाणी का आप सुन रहे हैं हिंदी दिवस और गणेश चतुर्थी के खास उपलक्ष्य में। और इस खास फोन इन कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एक साधारण सा नंबर डायल कर। हमारा नंबर है 0734405491, जिस पर आप हमारे साथ अपने विचार और अपनी यादें साझा कर सकते हैं। वैसे कीर्ति, गणेश जी की बुद्धिमानी से जुड़ी एक बहुत दिलचस्प कथा है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने गणेश जी और उनके भाई कार्तिकेय से कहा कि जो पूरी दुनिया की पूरी परिक्रमा सबसे पहले करके आएगा वही विजेता होगा। जानती हो ना?
1: बिल्कुल आयशा, अपन इस कथा को आगे यूं ही कंटिन्यू करेंगे, पर पहले आइए श्रोता से बात करते हैं। नमस्कार।

0: आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र के युवाणी कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैडम जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन से। मैडम
0: नमस्ते लोकेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको गणेश चतुर्थी तीज और हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: पहले तो सबसे मैडम जी आपको भी बहुत बहुत गणेश चतुर्थी और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और गणेश जी हमारे इष्ट देवता है और सबसे प्रथम पूजनीय गणेश जी है।
0: बिल्कुल लोकेंद्र जी, तो क्या आप गणेश जी लेकर आ गए आज?
1: हाँ मैडम जी, घर पर गणेश जी लेकर आ गए हैं, स्थापना भी कर दी है, उनका पूजन भी कर दिया है, सब परिवार समेत सभी मिलने मिलकर गणेश जी की पूजा अर्चना की है।
0: बिल्कुल, तो इस पूरी तैयारी में आपका योगदान क्या था योगेंद्र जी?
1: मैडम जी हमारा योगदान तो ये, जैसे घर की महिलाएं आज हरतालिका तीज भी है उसकी भी पूजन की वो तैयारी कर रहे हैं और साथ में गणेश जी की भी तैयारी कर रहे हैं। हमारा तो ये फर्ज बनता है कि इनका मतलब जो सामग्री बाजार से भगवान की सामग्री जो लाकर देना पड़ती है वो साथ में ले जाना है और साथ में लेकर गणेश जी की पूजन की सारी सामग्री लेकर आए हैं हम साथ में, और अभी पूजन मतलब भगवान जी की स्थापना कर दी है।
2: अच्छा, बहुत बढ़िया लोकेंद्र जी। अच्छा एक बात और हमारे श्रोताओं के साथ साझा कीजिए कि बचपन से लेकर आज तक हम गणेश चतुर्थी का त्योहार इसी उत्साह के साथ मनाते आते हैं, लेकिन बचपन वाले त्योहार और आज इस समय के त्योहारों में बहुत फर्क कई बार नजर आता है, तो आप कोई ऐसी बात विचार साझा करना चाहेंगे?
1: हाँ मैडम जी, हमारा भी बचपन है, जैसे कि बचपन में हम जब गणेश जी की स्थापना होती थी, गणेश जी की चतुर्थी आती थी, तो हमारा हम जैसे आज से यहाँ से 50 किलोमीटर दूर बड़नगर में रहते थे पहले, उज्जैन में तो हम बाद में आए हैं, पर वहाँ पर एक रेलवे कॉलोनी में पंडाल बना हुआ था पूरा, वहाँ पर हम गणेश जी की स्थापना करते थे, सवारी भी निकालते थे और सभी से हमारी मतलब जो आसपास के जब हम तो छोटे थे 10-12 साल के, तो वो बहुत ही उत्साह रहता है उस समय में, वो गणेश जी की जब चतुर्थी आती है फिर वो झांकी निकलती है और मतलब अच्छा माहौल रहता है, दोस्तों से मिलना भी हो जाता है, पारिवारिक माहौल भी बन जाता है।
0: जी जी बिल्कुल। अच्छा लोकेंद्र जी, गणपति बापा के आगमन का आपको सबसे ज्यादा इंतजार किस बात का रहता है?
1: गणेश जी की जब स्तुति हम करते हैं मन से स्तुति करना चाहिए और गणेश जी के जो आगमन की जो रहता है वो हमें बहुत अच्छा लगता है।
2: जी बहुत बढ़िया लोकेंद्र जी, आकाशवाणी उज्जैन केंद्र में कॉल करने
1: हिंदी दिवस भी है मैडम, हिंदी दिवस भी है आज।
2: जी जी बिल्कुल, आप कुछ विचार साझा करना चाहेंगे हिंदी दिवस के लिए?
1: हाँ मैडम जी बिल्कुल, हिंदी दिवस हमारी भारत की राष्ट्रभाषा है ये हिंदी, और हिंदी सबसे सरल भाषा है, इसको आप बहुत ही जल्दी सीख सकते हैं, अदर लैंग्वेज वाले जो हैं वो भी इसको हिंदी को भाषा को बहुत जल्दी से सीख लेते हैं, और जहाँ तक मेरा मानना ऐसा है कि आजकल विदेशी पर्यटन जो बाहर से अपने भारत देश में आते हैं वो भी अच्छी शुद्ध हिंदी बोलते हैं, और हमारे यहाँ विदेशी पर्यटन के जो भारतीय विदेशी नागरिक हैं जो भारत के अंदर आते हैं वह हिंदी सीखने के लिए भी आते हैं, कोई कोचिंग सेंटर में या कोई अनुसंधान केंद्र रहता है जहाँ से या ये जो रहता है ना कॉलेज वगैरह हिंदी साहित्य के,
0: बिल्कुल
1: वो वहाँ पर हिंदी सीखने भी आते हैं।
0: जी लोकेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से जुड़े, आपको ढेरों शुभकामनाएं, आप यूं ही मुस्कुराते रहिए और हमसे जुड़े रहिए।
1: जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
3: इसे आयशा हम बात कर रहे थे गणेश जी की बुद्धिमानी से जुड़ी कथा के बारे में।
2: जी,
3: एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने गणेश जी और उनके भाई कार्तिकी से कहा कि जो पूरी दुनिया की परिक्रमा सबसे पहले करके आएगा वही विजेता होगा।
2: बिल्कुल सही। और कीर्ति, यहीं पर ना कार्तिकेय जी जो थे वो अपने वाहन पर बैठे और दुनिया की परिक्रमा लगाने के लिए निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता की 3 परिक्रमा की और कहा कि मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही पूरी दुनिया है।
3: जी बिल्कुल, उनकी बुद्धि और इस भाव से प्रसन्न होकर उन्हें विजेता माना गया।
2: कितनी खूबसूरत सी सीख है ना कि हर चुनौती का जवाब सिर्फ तेजी नहीं है, समझदारी से भी दिया जा सकता है, और साथ ही भावनाएं कितनी प्यारी हैं कि माता पिता ही पूरी दुनिया है।
3: बिल्कुल, इसी के साथ आइए दोस्तों सुनते हैं हमारे आज के कार्यक्रम का अगला गीत।

0: क्या बात है। इस बहुत ही खूबसूरत से गाने के साथ ही आइए श्रोताओं, जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में कॉल करने के लिए नमस्कार। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ अगले श्रोता जुड़ने से पहले ही उनका कॉल कर दिया। शायद मौसम बहुत ही कातिल हो रहा है और मौसम का मजा लेने के लिए वो श्रोता हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं।
1: बिल्कुल, वैसे आयशा आपने सुना होगा कि महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की और उसे लिखने के लिए गणेश जी को चुना, लेकिन लेकिन गणेश जी ने एक शर्त रखी, वेद व्यास बिना रुके बोल रहे हैं।
0: बिल्कुल, लेकिन वहीं पर वेद व्यास जी ने भी एक और शर्त रख दी कि गणेश जी हर श्लोक को पूरी तरह समझने के बाद ही लिखेंगे, इससे उन्हें कठिन श्लोकों पर सोचने का पूरा समय मिल जाता था।
1: बिल्कुल, यानी एक तरफ गति ही तो दूसरी तरफ समझ, और दोनों के बीच में जन्म लेती एक महान रचना महाभारत।
0: बिल्कुल, और इसी के साथ श्रोताओं हमारे साथ फिर से एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन केंद्र में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार, मैं गुजरात से धीरज जबानी।
1: नमस्ते धीरज जी, आपको गणेश चतुर्थी, तीज और हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कैसे हैं?
2: मैं अच्छा हूँ और आकाशवाणी उज्जैन परिवार ऐसा कुशल होगी और हमारे आकाशवाणी उज्जैन के सभी कार्यक्रम के जो श्रोता सुन रहे उनको भी हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हमें हो सके इतना हिंदी बोलना चाहिए। सामने वाला कोई अगर हिंदी नहीं जानता तो हम इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन हो सके तब तक हिंदी बोल सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, हमें प्राथमिकता हमेशा हिंदी को देनी चाहिए। तो आपने बहुत ही सही और खूबसूरत बात कही धीरज जी। वैसे क्या धीरज जी, आपने आपके घर पर गणेश जी को विराजमान कर दिया है?
2: जी मैं समझा नहीं।
1: क्या आप आपके घर पर गणेश जी लेकर आ गए हैं?
2: हाँ जी, हमें गणपति यहाँ गुजरात में अहमदाबाद में हर जगह पर गणपति की स्थापना की है और गणपति को तो गणपति भी बोलते, गणेश जी भी बोलते, विघ्न झुंझाड़ा देव भी बोलते। उनकी स्थापना हुई और हर्षोल्लास से बारिश भी शुरुआत हो गई कल से, तो दो यानी जश्न दो बार बारिश का भी है और गणपति का जो महोत्सव उनका भी है। बहुत अच्छी तरह से लोग ये पर्व मना रहे हैं।
0: बहुत बढ़िया धीरज जी। वैसे गणपति की तैयारियों में आपका क्या क्या खास काम होता है और आपको कौन सी बात बहुत पसंद आती है इस त्योहार में, बताइए जरा।
2: मुझे तो हर तरह की जो गणपति की तैयारी है उनमें हमारा जितना भी हो सके इतना योगदान देते हैं। और जैसे देखा जाए तो मैं मौन रखे गणपति की स्तुति करना चाहता हूँ, ज्यादातर मौन रखे उनका यानी स्मरण करना चाहता हूँ, यानी उनको मनोमन प्रार्थना करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है यानी हमारा मौन उनको स्वीकार है।
0: जी जी बिल्कुल। वैसे आपके घर में गणपति जी के लिए कौन सा खास प्रसाद बनाया जाता है और आज के प्रसाद में बना है?
2: यहाँ अभी तो बनाया नहीं, लेकिन लाडू गणपति के दिन ज्यादा बनते हैं, तो लाडू का या जमण यहाँ बहुत लाडू का महत्व रहते हैं और ज्यादातर हर घर में लाडू का यानी जो प्रसादी के तौर पर यानी ज्यादातर लाडू का विस्तार रहता है।
0: बहुत बढ़िया धीरज जी, आपने बिल्कुल लाडू का नाम लिया और गणपति महोत्सव की बात चल रही है। आप ये मानिए कि गुजरात से यहाँ तक मिठास हम तक पहुँच गई है।
2: जी, और ये जो पर्व है मेरे ख्याल से पहले ज्यादातर महाराष्ट्र में मनाया जाता था, लेकिन आज मेरे ख्याल से भारत का कोई कोना बाकी नहीं है जहाँ आज गणपति का ये महोत्सव नहीं मनाते। सभी भारतीय हर राज्य में ये महोत्सव मनाया जाता है और एक हंसी खुशी का माहौल होता है। और इसके बाद 15 दिन के बाद यानी एक महीने के बाद आएगा हमारा नवरात्रि महोत्सव, जिसमें आप पहले भी गरबा खेलेगी।
1: जी बिल्कुल धीरज जी, हम आएंगे गुजरात में फिर गरबा खेलने।
2: हाँ वो जरूर आना है गुजरात में आना। और वैसे देखा जाए तो उज्जैन में भी गरबा महोत्सव पर्व रखेंगे यानी वहाँ भी डांडिया खेलेंगे आप लोग, लेकिन हमारा गुजरात में आपका सहर्ष निमंत्रण है।
0: जी बिल्कुल, वैसे धीरज जी सही बात है, भारत के त्योहारों की संस्कृति की यही एक खास बात है कि इसके सारे त्योहार हर एक व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के मनाता है और यही भारत की संस्कृति है जो हम सभी को एक धारा में जोड़ती है। आकाशवाणी उज्जैन केंद्र में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद आप दोनों का और आकाशवाणी उज्जैन पर।
0: बहुत ही खूबसूरत वार्ता हमने अभी सुनी धीरज जी के साथ और उनकी लाडू की मिठास हम तक और आप तक भी पहुंची होगी। फिलहाल वक्त है एक और प्यारे से गीत का, आइए इसे सुनते हैं।

0: से आयशा पता ही नहीं चला कि हमारी ये खूबसूरत मुलाकात कब अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंच गई। लगता है अभी तो बात शुरू की थी और अब विदा लेने का समय भी हो गया।
1: बिल्कुल सच में कीर्ति, लेकिन आज की इस मुलाकात में ना सबसे खूबसूरत बात यही रही है कि आज सिर्फ हमने बात नहीं की, हमने आपकी आवाज में आपकी यादें सुनी, आपकी बातें सुनी और आपके अनुभवों को महसूस किया।
0: किसी की बात में हिंदी के पुराने शब्दों की मिठास थी तो किसी की याद में गणेश चतुर्थी की वो रौनक थी, जब घर आंगन में गणपति बप्पा के आने से जैसे हर दिन थोड़ा और खास हो जाता है।
1: और शायद यही तो हमारी भाषा और त्योहारों की खूबसूरती है कि समय कितना भी बदल जाए, जिंदगी कितनी भी आगे निकल जाए, कुछ शब्द और कुछ यादें हमेशा हमारे साथ चलती हैं।
0: बिल्कुल, हिंदी हमें अपनी बात कहने की आज़ादी देती है और हमारे त्योहार हमें एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटने का मौका देते हैं।
1: बिल्कुल, उम्मीद है कि आज का ये सफर आप सभी के मन में कुछ बहुत ही खूबसूरत यादें छोड़ गया होगा।
0: तो अपनी भाषा से जुड़े रहिए दोस्तों, अपने जड़ों से जुड़े रहिए और त्योहारों को, इसी खूबसूरत रौनक को अपने दिल में हमेशा बनाए रखिए।
1: और अगली मुलाकात तक मुस्कुराते रहिए। आपके साथ हम थे कीर्ति
0: और मैं आयशा।
1: सुनते रहिए आकाशवाणी और हमारा अपना कार्यक्रम युववाणी। नमस्कार, नमस्कार।

श्रोताओं, FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह है आकाशवाणी उज्जैन। आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। सुनते रहिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी उज्जैन के साथ।

नमस्कार श्रोताओं, FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह है आकाशवाणी उज्जैन। शाम के 6 बज चुके हैं। मैं आपकी रेडियो साथी दृष्टि स्वागत करती हूँ सभी श्रोताओं का कार्यक्रम भजन संध्या में। आज की ये संध्या सामान्य नहीं, क्योंकि आज वातावरण में है गणपति बप्पा के आगमन का उल्लास और मन में है उनके चरणों का स्मरण। 14 सितंबर को देश भर में मनाई जा रही है गणेश चतुर्थी और भगवान गणेश के जन्मोत्सव का यह पावन पर्व। विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, बुद्धि और विवेक के देवता गणेश जी हमारे जीवन में केवल उत्सव लेकर नहीं आते, बल्कि एक सुंदर संदेश भी देते हैं कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत बाहर से नहीं, पहले भीतर मन से होनी चाहिए। मन में विश्वास हो, विचारों में पवित्रता हो और कर्म में सच्चाई हो तो रास्ते अपने आप सरल होने लगते हैं। आज कई घरों में गणपति की स्थापना होगी, कहीं मंडपों में सजेंगे गणपति, कहीं आरती की घंटियां गूंजेंगी और कहीं मोदक का भोग लगेगा। आइए इस पावन अवसर पर हम भी अपने मन मंदिर में गणपति का स्मरण करें और इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की इस भजन संध्या की।

श्रोताओं, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने अपने उपटन से एक बालक की रचना की और उसमें प्राणों का संचार किया। माता ने उस बालक को अपना द्वारपाल बनाया और कहा कि जब तक मैं अनुमति ना दूं, किसी को भीतर प्रवेश न करने देना। उसी समय भगवान शिव वहां पहुंचे, लेकिन बालक गणेश ने उन्हें भी माता की आज्ञा के कारण रोक दिया। कर्तव्य के प्रति बालक गणेश की दृढ़ता देखकर परिस्थिति ऐसी बनी कि भगवान शिव और गणेश के बीच संघर्ष हुआ। कथा अनुसार भगवान शिव के त्रिशूल से बालक गणेश का मस्तक अलग हो गया और माता पार्वती का क्रोध और शोक देखकर भगवान शिव ने गणेश जी को पुनर्जीवन देने का वचन दिया। फिर हाथी के मस्तक को गणेश के शीश पर स्थापित कर उन्हें नया जीवन मिला और वे देवताओं के प्रथम पूज्य कहलाए। इस कथा में केवल चमत्कार नहीं, एक गहरा संदेश भी है। कर्तव्य के प्रति निष्ठा, माता पिता के प्रति सम्मान और अपनी भूल को स्वीकार कर उसे सुधारने की भावना। शायद इसीलिए गणेश जी की आराधना हमें सिखाती है कि जीवन में शक्ति के साथ विवेक भी आवश्यक है, और यही कारण है कि हर शुभारंभ से पहले हमारे होठों पर सहज ही आता है, गणपति बापा मोरया।

श्रोताओं, एक प्रसिद्ध कथा है जिसमें देवर्षि नारद के माध्यम से गणेश और उनके भाई कार्तिकेय के सामने एक परीक्षा रखी गई। कहा गया कि जो पहले पूरे संसार की परिक्रमा करके लौटेगा वही विजयी माना जाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर सवार होकर संसार की यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की तीन परिक्रमा की। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए माता पिता ही संपूर्ण संसार हैं। उनके इस उत्तर में केवल बुद्धिमत्ता नहीं बल्कि भारतीय जीवन दर्शन की एक गहरी भावना छिपी है। इसीलिए गणेश जी को बुद्धि, विवेक और शुभारंभ के देवता के रूप में स्मरण किया जाता है। उनका बड़ा मस्तक हमें बड़ा सोचने की प्रेरणा देता है। बड़े कान कहते हैं कि पहले सुनो और फिर बोलो। छोटी आंखें एकाग्रता का संदेश देती हैं और उनका वाहन मूषक इच्छाओं पर नियंत्रण का प्रतीक माना जाता है। आज गणपति जी के सामने केवल अपनी इच्छाएं न रखें बल्कि यह भी मांगे कि हे गणपति, हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि प्रदान करें।

श्रोताओं, गणेश चतुर्थी पर घर घर गणपति की स्थापना की जाती है और श्रद्धा से उनकी पूजा अर्चना की जाती है। परंपरा में गणपति की प्रतिमा स्थापित की जाती है और फिर उनका आवाहन करते हुए जल, अक्षत, पुष्प, दुर्वा, धूप और दीप अर्पित किए जाते हैं। गणेश जी को दुर्वा अत्यंत प्रिय मानी जाती है और मोदक का भोग भी विशेष रूप से लगाया जाता है। लेकिन श्रोताओं, पूजा की सबसे सुंदर बात यह है कि भगवान के सामने रखी वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण है उसे अर्पित करने वाली भावना। एक पुष्प भी पर्याप्त है यदि उसमें श्रद्धा हो, एक दीपक भी पर्याप्त है यदि उसमें विश्वास का प्रकाश हो। आरती के समय जब पूरा परिवार एक साथ गणपति जी के सामने खड़ा होता है तो वह केवल पूजा नहीं, वह परिवार के साथ होने का एक सुंदर क्षण बन जाता है। घर में बच्चे मंत्र सीखते हैं, बड़े परंपरा बताते हैं और बुजुर्ग अपने अनुभवों से भक्ति की विरासत आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए गणेश चतुर्थी केवल देव पूजन नहीं बल्कि पीढ़ियों को जोड़ने का पर्व है। आइए आज पूजा करते हुए मन में एक संकल्प रखें कि हमारे घर में ज्ञान हो, वाणी में मधुरता हो और कर्मों में मंगल हो।

श्रोताओं, गणेश चतुर्थी की परंपरा बहुत प्राचीन है, लेकिन आज जिस बड़े सार्वजनिक गणेशोत्सव का रूप हम देखते हैं, उसका आधुनिक इतिहास विशेष रूप से महाराष्ट्र से जुड़ता है। 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेशोत्सव को सार्वजनिक रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय सार्वजनिक गणेश उत्सव ने लोगों को एक साथ आने, सांस्कृतिक कार्यक्रम करने और सामाजिक एकता का अनुभव करने का अवसर दिया। धीरे धीरे यह उत्सव महाराष्ट्र की सीमाओं से निकलकर देश के अनेक हिस्सों में अपनी पहचान बनाने लगा। कहीं विशाल पंडाल, कहीं घरों में छोटी प्रतिमाएं स्थापित हुई, कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम तो कहीं भजन और कीर्तन की परंपरा।

जुड़ी। यानी गणपति एक ही हैं, लेकिन उन्हें मनाने के तरीके भारत की विविधता जितने सुंदर हैं। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की भव्यता और सार्वजनिक आरतियाँ अपनी अलग पहचान रखती हैं, वहीं दक्षिण भारत में उन्हें विनायक चतुर्थी या विनायका चवीथी के नाम से श्रद्धा से पूजा जाता है। कहीं मिट्टी के गणपति घर घर विराजते हैं तो कहीं सार्वजनिक मंडप में, तो कहीं विशेष लोक परंपराओं के साथ यह उत्सव मनाया जाता है। यही तो भारत की सुंदरता है, आराध्य एक, आस्था एक, लेकिन अभिव्यक्ति अनेक।

श्रोताओं, देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग भाषा, अलग वेशभूषा और अलग परंपराएं हैं, लेकिन हर जगह गणपति के नाम की गूंज सुनाई देती है। कहीं मराठी में आरती, कहीं कन्नड़ में विनायक की वंदना, और कहीं तेलुगु में विनायका चौथी की पूजा, और कहीं हिंदी में गणपति बप्पा का जय घोष। लेकिन हर जगह भावना एक ही है, मंगल हो, बुद्धि मिले और जीवन से विघ्न दूर हों। गणपति की मिट्टी की प्रतिमा बनाना और फिर उसी प्रतिमा का विसर्जन करना भी अपने भीतर एक गहरा संदेश रखता है कि जो आया है उसे एक दिन लौटना है। इसीलिए जीवन में संग्रह से अधिक महत्व है सद्भाव और अच्छे कर्मों का। तो इसी के साथ श्रोताओं, आज हम सभी यह संकल्प लें कि हमारे विचार शुभ हों, वाणी मधुर हो और कर्म किसी के जीवन में एक बार पूरे विश्वास से हम ये कह सकें कि गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आपकी रेडियो साथी दृष्टि को दीजिए अनुमति, आज भजन संध्या को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे भक्ति संगीत और ऐसी ही आत्मीय बातों के साथ आकाशवाणी उज्जैन में FM 102.5 MHz और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। सुनते रहिए।

नमस्कार श्रोताओं, एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन। शाम के 6:30 हो चुके हैं। मैं आपकी रेडियो साथी दृष्टि स्वागत करती हूं सभी श्रोताओं का फिल्म संगीत के म्यूजिकल सफर में। आइए श्रोताओं, सुनते हैं आज का पहला गीत फिल्म कल आज और कल से। गायक किशोर कुमार की आवाज़ और गीतकार हसरत जयपुरी, संगीत निर्देशित किया है शंकर जयकिशन ने।

0: श्रोताओं, यहाँ अगला गीत फिल्म बातों बातों में से और गायक हैं अमित कुमार, लता मंगेशकर और पर्ल पद्मसी। गीतकार अमित खन्ना और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।
1: उठ सबके कदम, देखो रम पम पम

FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे थे आकाशवाणी उज्जैन से फिल्म संगीत। श्रोताओं, शाम के 6:40 होने को हैं और कुछ ही देर में आकाशवाणी भोपाल से आजकल क्षेत्रीय समाचार एकांश भोपाल का कार्यक्रम अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

और सार्वजनिक स्थानों पर नशा मुक्ति से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन कर युवाओं और विद्यार्थियों को इस अभियान से जोड़ा गया है। डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते हुए QR कोड के माध्यम से लगभग 2,46,000 ऑनलाइन ई प्लेस भी कराए गए। यह अभियान आधुनिक तकनीक के उपयोग और युवाओं की व्यापक भागीदारी का उदाहरण है। नशा मुक्त समाज के निर्माण में कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा नशे से दूरी है जरूरी जैसे विशेष अभियान संचालित कर नशे के खिलाफ जन जागरूकता का व्यापक संदेश दिया गया है। पुलिस की सहभागिता से इस अभियान को समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने में मदद मिली। इसी तरह विभिन्न विभागों, पुलिस, सामाजिक संगठनों, शिक्षण संस्थाओं और नागरिक तथा समाज के बीच समन्वय स्थापित कर नशे के विरुद्ध व्यापक वातावरण तैयार किया जा रहा है। नशे के अवैध कारोबार पर नियंत्रण और समाज में नशे के प्रति जन जागरूकता दोनों स्तरों पर प्रयास किए जाने से अभियान अधिक प्रभावी बनता है। विभागीय प्रयासों के माध्यम से नशा मुक्ति के क्षेत्र में जागरूकता के साथ साथ उपचार और पुनर्वास की व्यवस्थाओं को भी मजबूत किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य नशे की चपेट में आए व्यक्ति को अपराधी या उपेक्षित व्यक्ति के रूप में देखने के बजाय उसे उपचार और पुनर्वास की आवश्यकता वाले व्यक्ति के रूप में सहयोग देना है। मध्य प्रदेश का संदेश स्पष्ट है, नशे से दूरी।

0: और सार्वजनिक स्थानों पर नशा मुक्ति से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन कर युवाओं और विद्यार्थियों को इस अभियान से जोड़ा गया है। डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते हुए QR कोड के माध्यम से लगभग 2,46,000 ऑनलाइन ई प्लेस भी कराए गए। यह अभियान आधुनिक तकनीक के उपयोग और युवाओं की व्यापक भागीदारी का उदाहरण है। नशा मुक्त समाज के निर्माण में कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा नशे से दूरी है जरूरी जैसे विशेष अभियान संचालित कर नशे के खिलाफ जन जागरूकता का व्यापक संदेश दिया गया है। पुलिस की सहभागिता से इस अभियान को समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने में मदद मिली। इसी तरह विभिन्न विभागों, पुलिस, सामाजिक संगठनों, शिक्षण संस्थाओं और नागरिक तथा समाज के बीच समन्वय स्थापित कर नशे के विरुद्ध व्यापक वातावरण तैयार किया जा रहा है। नशे के अवैध कारोबार पर नियंत्रण और समाज में नशे के प्रति जन जागरूकता दोनों स्तरों पर प्रयास किए जाने से अभियान अधिक प्रभावी बनता है। विभागीय प्रयासों के माध्यम से नशा मुक्ति के क्षेत्र में जागरूकता के साथ साथ उपचार और पुनर्वास की व्यवस्थाओं को भी मजबूत किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य नशे की चपेट में आए व्यक्ति को अपराधी या उपेक्षित व्यक्ति के रूप में देखने के बजाय उसे उपचार और पुनर्वास की आवश्यकता वाले व्यक्ति के रूप में सहयोग देना है। मध्य प्रदेश का संदेश स्पष्ट है, नशे से दूरी।
1: सीहोर जिले के शासकीय माध्यमिक विद्यालय महुआ खड़ी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर चयनित विद्यालयों की सूची में स्थान प्राप्त किया है। जिले के विद्यालय का राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होने से जिला शिक्षा विभाग ही नहीं संपूर्ण प्रदेश के लिए गौरव एवं प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। दरअसल ये उपलब्धि जिला प्रशासन, जिला शिक्षा विभाग, विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं समुदाय के समन्वित प्रयासों का परिणाम है, जिन्होंने इस ग्रामांचल के छोटे से स्कूल में स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता, हरित परिसर निर्माण एवं व्यवहार परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया है। अब यह चयनित विद्यालय पुरस्कार प्राप्ति के साथ ही स्थापित श्रेष्ठ प्रथाएं अन्य विद्यालयों के लिए प्रेरणा स्रोत एवं अनुकरणीय मॉडल जरूर बन गया है। इस स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री सतीश त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि शीघ्र ही नई दिल्ली में आयोजित होने वाले समारोह में चयनित विद्यालय को प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा तथा विद्यालय में स्वच्छ एवं हरित गतिविधियों को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु प्रोत्साहन राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इस बारे में जिले के DPC श्री RR उइके ने जानकारी देते हुए बताया कि
2: बड़े हर्ष का विषय है कि शासकीय माध्यमिक विद्यालय महुआखेड़ी तकीपुर स्वच्छ रैंकिंग राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ एवं हरित विद्यालय योजना के अंतर्गत पुरस्कार हेतु चयन हुआ है। इसमें विद्यालय के स्टाफ एवं जिला प्रशासन एवं जिला शिक्षा अधिकारी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ।
1: सीहोर जिले से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं प्रदीप सिंह चौहान।
3: अगली खबर है सीधी से, जहां जिले में एक शिक्षक को राष्ट्रीय पुरस्कार एवं 2 से अधिक शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सीधी संवाददाता सचिंद्र मिश्र।
4: शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सीधी का नाम राष्ट्रीय पटल पर पहुंच गया। जिला प्रशासन के प्रयासों से सीधी जैसे जिले का नाम रोशन हुआ है। इसके लिए कलेक्टर विकास मिश्र ने शिक्षक दिवस पर पुरस्कृत शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिले के लिए आज गौरव का दिन है। जिले में एक शिक्षक को राष्ट्रीय पुरस्कार एवं 2 से अधिक शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कलेक्टर विकास मिश्र ने बताया है कि कंजबार स्कूल के शिक्षक शैलेन्द्र सिंह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में सम्मानित किया है, जबकि राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल व मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीधी के शिक्षकों को सम्मानित किया है। दिल्ली में राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजबार के शिक्षक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक शैलेन्द्र प्रताप सिंह को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया, जबकि शिक्षक शैलेन्द्र सिंह ने नवाचार के जरिए कंजबार के सरकारी विद्यालय की तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रयासों से विद्यालय का नामांकन 69 से बढ़कर 202, नियमित उपस्थिति 44 से बढ़कर 96% हुई और 26 ड्रॉपआउट विद्यार्थियों का पुनः नामांकन कर विद्यालय को 0 ड्रॉपआउट बनाया गया। करीब 500 TLM, QR आधारित शिक्षण, FL बगीचा और पोषण वाटिका जैसे नवाचार भी उनकी उपलब्धियों में शामिल रहा है। वहीं सीधी जिले के शासकीय हाई स्कूल बभनी के शिक्षक सतीश कुमार पांडे और शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय अमरपुर के प्राथमिक शिक्षक राकेश कुमार द्विवेदी सहित अन्य को भोपाल में राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार, 2026 से सम्मानित किया गया। सतीश कुमार पांडे ने कोरोना काल में करीब 480 विद्यार्थियों को ऑफलाइन शिक्षा से जोड़े रखा। मोबाइल

0: की सुविधा से वंचित बच्चों तक संसाधन पहुंचाए, बल्कि शिक्षा को बढ़ावा दिया और कमजोर विद्यार्थियों के लिए नवाचारी शिक्षण पद्धतियां अपनाई है। उनके प्रयासों से विद्यालय में ड्रॉप आउट शून्य रहा है। वहीं राकेश कुमार द्विवेदी ने शाला त्यागी बच्चों के पुनः नामांकन, नियमित उपस्थिति और बुनियादी शिक्षा के स्तर से सुधारने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। उनके नवाचारी प्रयासों से बुनियादी साक्षरता 25% से बढ़कर 85% और संख्या ज्ञान 22 से बढ़कर 82% तक पहुंचा है। देश भर के 48 चयनित शिक्षकों में शामिल शैलेन प्रताप सिंह का राष्ट्रीय सम्मान और सीधी के शिक्षकों का राज्य स्तरीय सम्मान जिले के लिए निश्चित रूप से गर्व और प्रेरणा का विषय है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सीधी से मैं सचिंद्र मिश्र।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन में अब हम चलते हैं रीवा जिले की तरफ, जहां बलराम कृषि महोत्सव के अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि वैज्ञानिक परिचर्चा आयोजित की गई। इस संबंध में विस्तार से जानकारी दे रही हमारी रीवा संवाददाता आरती श्रीवास्तव।
2: बलराम कृषि महोत्सव के अवसर पर रीवा कृषि विज्ञान केंद्र में कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा आयोजित की गई। बलराम कृषि महोत्सव के माध्यम से किसानों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने, उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने तथा खेती को अधिक लाभकारी एवं टिकाऊ बनाने के लिए प्रेरित किया गया। फसल सुरक्षा, कीट एवं रोग प्रबंधन, संतुलित पोषण तथा मौसम के अनुरूप कृषि कार्यों के संबंध में भी जानकारी दी गई। इस दौरान जिले में हाल ही में हुई अतिवृष्टि से प्रभावित फसलों की स्थिति को देखते हुए परिस्थितियों के अनुसार वैकल्पिक एवं उपयुक्त फसलों का चयन, खेत प्रबंधन, फसल पुनर्स्थापना तथा आगामी फसल की तैयारी के संबंध में किसानों को आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन दिया गया। किसानों को एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाने की सलाह देते हुए समझाइश दी गई है कि एकीकृत कृषि प्रणाली के अंतर्गत फसल उत्पादन के साथ ही पशुपालन, उद्यानिकी, मत्स्य पालन, पुष्प उत्पादन, सब्जी उत्पादन एवं अनाज उत्पादन जैसी गतिविधियों को अपनाकर किसान अपनी आय के विभिन्न स्रोत विकसित कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रीवा से मैं आरती श्रीवास्तव।
1: हमारी अगली खबर है शिवपुरी से, जहां गाजर घास जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस वर्ष अभियान की थीम गाजर घास पर नियंत्रण, स्वस्थ पर्यावरण हमारा संकल्प रखी गई। इसके तहत गाजर घास मुक्त भारत अभियान भी चलाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं शिवपुरी से हमारे संवाददाता रंजीत गुप्ता।
3: शिवपुरी जिले में कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग के संयुक्त तत्वावधान में बीते दिनों गाजर घास जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस वर्ष अभियान की थीम गाजर घास पर नियंत्रण, स्वास्थ्य पर्यावरण और हमारा संकल्प रखी गई। इसके तहत गाजर घास मुक्त अभियान भी चला। जिले में चलाए गए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों और आम नागरिकों को गाजर घास के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना रहा। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा गांव-गांव एवं विभिन्न स्थानों पर जाकर किसानों से संपर्क किया गया और गाजर घास नियंत्रण के उपाय बताए गए। इस अभियान के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर M.K. भार्गव ने किसानों और ग्रामीणों को बताया कि गाजर घास एक अत्यंत हानिकारक खरपतवार है। इसके संपर्क में आने से एलर्जी, दमा, खांसी, त्वचा रोग और आंखों में जलन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। यह फसलों की उपज को घटाती है, मिट्टी की उर्वरता कम करती है और जैव विविधता को नुकसान पहुंचाती है। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन में अब हम रुख करते हैं सतना जिले की तरफ, जहां जल जनित एवं संक्रामक रोगों के संभावित फैलाव को देखते हुए कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सतना संवाददाता लाल बहादुर तिवारी।
4: सतना जिले में जल जनित और संक्रामक रोगों को संभावित फैलाव को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार S. ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिले में गठित समिति द्वारा जिले में हैजा, आर्थ्रोसिस, पैचिस, पीलिया, मस्तिष्क ज्वर सहित अन्य जल जनित संक्रामक रोगों की रोकथाम, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, पेयजल की शुद्धता, स्वच्छता व्यवस्था तथा मच्छर मक्खियों के नियंत्रण पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। अधिसूचित क्षेत्र के में बाजारों, उपहार ग्रहों, भोजनालयों, होटलों, दुकानों और खाद्य प्रतिष्ठानों में खाद्य एवं पेय पदार्थों की विशेष जांच की जा रही है। बासी मिठाइयां, नमकीन, सड़े गले फल, सब्जियां, दूषित तथा अनुपूरक खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध है। गंदगी वाले स्थानों में नियमित सफाई कराई जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अस्वच्छ नालों, तालाबों, कुओं और बावड़ियों के पानी का उपयोग पेयजल के रूप में न करने तथा हैंडपंप एवं ट्यूबवेल के पानी का उपयोग करने की सलाह दी गई है, ताकि बीमारियों से बचा जा सके। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी।
1: अगली खबर है शिवपुरी जिले से, जहां 2,922 करोड़ रुपए से स्वीकृत 188 किलोमीटर लंबे ग्वालियर शिवपुर ब्रॉड गेज प्रोजेक्ट का काम लगभग 90% पूर्ण हो चुका है। आगामी वर्ष 2027 में जिले वासियों का ब्रॉडगेज का सपना साकार हो जाएगा। पेशे श्योपुर से हमारे संवाददाता अश्विनी पालोठिया की यह रिपोर्ट।
5: श्योपुर जिले को बहुत जल्दी ब्रॉडगेज का सपना साकार होने वाला है। मार्च 2020 में आए कोरोना के दौरान श्योपुर से ग्वालियर ट्रैक नैरो गेज को बंद कर दिया गया था। 188 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक पर 100 साल पहले कोयला और भाप से चलने वाली रेल के लिए बिछाई गई पटरियों को उखाड़ने का टेंडर किया गया था। कोरोना काल हो जाने के बाद पटरियों को उखाड़ने का काम जल्दी शुरू किया गया। केंद्र सरकार द्वारा 2010-11 में स्वीकृत हुए 188 किलोमीटर के ग्वालियर श्योपुर का ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट के लिए 2922 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी। पिछले 6 सालों में ग्वालियर से श्योपुर तक का ब्रॉडगेज का काम लगभग 90% पूर्ण हो चुका है। जिले वासियों को आगामी वर्ष 2027 में ब्रॉडगेज का सपना साकार हो जाएगा। इसकी शुरुआत पिछले दिनों ग्वालियर से केलारस और केलारस से बीरपुर के लिए मेमो ट्रेन का संचालन किया गया था और आगामी दिनों में ये श्योपुर तक चलाई जाएगी। इसके बाद इस ट्रैक पर ब्रॉडगेज का सपना साकार शुरू हो जाएगा। इसका इंतजार श्योपुर वासियों को काफी दिनों से है। साथ ही रेलवे द्वारा एक और प्रोजेक्ट पर काम करना भी शुरू कर दिया गया है। इसमें झांसी से सीपरी, सीपरी से श्योपुर, श्योपुर से सवाई माधोपुर रेल लाइन के सर्वे तीव्र गति से किया जा रहा है। आगामी दिनों में श्योपुर से देश के किसी भी जगह जाने के लिए ट्रेन उपलब्ध रहेगी। प्रादेशिक समाचार के लिए श्योपुर से अश्विनी कुमार पालोठिया।
1: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन।
1: महात्मा गांधी ने कहा, हिंदी राष्ट्रीयता के मूल को सींचती है और उसे दृढ़ करती है। देश का कोई भी सच्चा प्रेमी हिंदी का तिरस्कार नहीं कर सकता। दुनिया से कह दो, गांधी अंग्रेजी नहीं जानता।

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। शाम के 7 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है। नई दिल्ली में दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करने और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा का निर्बाध प्रवाह बनाए रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगेलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। रक्षा मंत्रालय ने वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर स्थिरता आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सेना के अथक प्रयासों के कारण जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में वियतनाम के विदेश मंत्री ले हुआई ट्रुंग के साथ भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दोनों देशों के बीच राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा भारत में निर्मित रक्षा उपकरणों की आपूर्ति बढ़ाने पर चर्चा हुई। वियतनाम भारत की लुक ईस्ट, आसियान, हिंद प्रशांत महासागर और ग्लोबल साउथ नीतियों में महत्वपूर्ण साझेदार है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ यूक्रेन की स्थिति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में दो दिन के हिंदी दिवस और 6वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
1: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर ये सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
0: श्री शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने मिजो संस्कृति को संरक्षित रखते हुए हिंदी सीखने का आह्वान किया है। उन्होंने आज आइजोल में हिंदी दिवस समारोह में ये बात कही। मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की और देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता बढ़ सकती है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन। शाम के 7:05 हो चुके हैं। श्रोताओं, आइए आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। शाम 7:21 पर सुनिए अपनी बोली मालवी में कार्यक्रम माटेरी बात। रात 8 सुनिए भोपाल से अनुप्रसारित कार्यक्रम सुर्खियों में। रात 8:15 पर सुनिए आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से फिल्म संगीत। रात 8:45 पर दिल्ली से अनुप्रसारित समाचार संध्या। रात 9 आप सुन सकेंगे न्यूज एट 9। रात 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम उर्दू समाचार। और रात 9:30 पर सुनिए पब्लिक स्पीक दिल्ली से रिले। रात 10 सुनिए भोपाल से अनुप्रसारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और रात 10:30 पर सुनिए शास्त्रीय संगीत का विशेष कार्यक्रम राग रजनी। रात 11 दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित होंगे। रात 11:10 से सुनिए FM गोल्ड के कार्यक्रम। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। आइए आपको कल दिनांक 15 सितंबर सन 2026 मंगलवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। सुबह ठीक 5:50 पर प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी। प्रातः 6 दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित होंगे। सुबह 6:05 पर विविध भारती मुंबई से सुनिए कार्यक्रम वंदनवार। सुबह 6:35 पर आप सुन सकेंगे रामचरितमानस गान। सुबह ठीक 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता। प्रातः 7 आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से सुनिए कार्यक्रम महाकाल वंदन। सुबह 7:20 पर सुनिए आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से अनुप्रसारित प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन। ठीक 8 सुनिएगा दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित समाचार प्रभात। कल सुबह 8:15 पर सुनिए मॉर्निंग न्यूज। और ठीक 8:30 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम उज्जैनी आरजे। कल सुबह 9:30 पर सुनिए नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स। सुबह 10 आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से सुनिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कल दोपहर 11 विविध भारतीय मुंबई से सुनिए कार्यक्रम रंग तरंग। दोपहर 12:05 पर कार्यक्रम यादों की महफिल। दोपहर 1 आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सुरीला सफ़र। दोपहर 2 भोपाल से अनुप्रसारित फिल्म संगीत। दोपहर 2:30 पर पुनः विविध भारतीय मुंबई से सुनिए सदाबहार नगमे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। और दोपहर 3 विविध भारतीय मुंबई से सुनिए सखियों का विशेष कार्यक्रम सखी सहेली। दोपहर 4 सुनिए कार्यक्रम हलो फरमाइश। कल संध्याकालीन सभा में शाम 5 आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से सुनिए कार्यक्रम युववाणी। शाम 6 सुन सकेंगे भक्तिमय कार्यक्रम भजन संध्या। शाम 6:30 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल। शाम 7 दिल्ली से समाचार अनुप्रसारित होंगे। शाम 7:21 पर आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से सुनिए कार्यक्रम मालवी गीतारी गूंज। रात 8 सुनिए भोपाल से अनुप्रसारित कार्यक्रम सुर्खियों में। रात 8:15 पर आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। रात 8:45 पर दिल्ली से अनुप्रसारित समाचार संध्या। रात 9 सुनिए कार्यक्रम न्यूज एट 9। रात 9:15 पर सुनिए उर्दू समाचार। रात 9:30 पर आप सुन सकेंगे उर्दू कार्यक्रम कहकशा भोपाल से अनुप्रसारित किया जाएगा। रात 10 सुनिए भोपाल से अनुप्रसारित फिल्म संगीत। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। और कल रात 11 दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। और रात 11:10 से आप सुन सकेंगे FM गोल्ड के कार्यक्रम।

यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। शाम के 7:10 होने को है और थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: बोल बोल के थक गया।
2: क्या हुआ?
1: नया किडबैक चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले
2: ले आ गया नया किडबैक।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हिंदी दिवस पर अमित शाह ने हिंदी को प्रतिस्पर्धी नहीं संवाद की कड़ी कहा। सेवा संकल्प अभियान की तैयारियां जारी, मुख्यमंत्री ने की समीक्षा। उज्जैन में 17 सितंबर को 25 लाख से ज्यादा दीप जलाए जाएंगे। प्रदेश में उत्साह उमंग के साथ गणेश उत्सव आरंभ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित जनप्रतिनिधियों ने स्थानीय कलाकारों से खरीदी मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं। और राज्य के पश्चिमी हिस्से में बारिश का जोर, उज्जैन और नीमच सहित 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल के फूल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाया करती है। उन्होंने कहा कि अगर एक भी पंखुड़ी खो जाए तो पूरे कमल की सुंदरता कम हो जाया करती है। श्री शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं का पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए। गृहमंत्री ने आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया। गृहमंत्री ने कहा कि भारत में कई भाषाएं और बोलियां हैं, लेकिन भारतीय भावनाओं और देश की आवाज एक रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाषाई विविधता देश की ताकत है और हिंदी अलग अलग भारतीय भाषाओं के बीच बातचीत का प्रभावशाली पुल बन सकती है, जिससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी।
6: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं। किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर ये सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
5: ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण आधार है। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करने, विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह को बरकरार रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया था कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस और उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश में भी 17 सितंबर से सेवा संकल्प अभियान शुरू होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान का आयोजन प्रदेश के हरेक ग्राम एवं नगर स्तर पर अधिक से अधिक जन सहभागिता सुनिश्चित करते हुए उत्साहपूर्वक किया जाए। 17 सितंबर को आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों के प्रत्येक वार्ड में शाम 7 बजे एक साथ दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। उज्जैन में भी भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान क्षिप्रा नदी के विभिन्न घाटों और महाकाल महालोक क्षेत्र में 25 लाख से ज्यादा दीप जलाए जाएंगे। आपको बता दें कि अभियान का उद्देश्य जनभागीदारी के जरिए सेवा, सुशासन और जन कल्याण का संदेश लोगों तक पहुंचाना है। अभियंता दिवस के अवसर पर कल लोक निर्माण विभाग द्वारा भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में राज्य स्तरीय अभियंता दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। लोक निर्माण से लोक कल्याण की अवधारणा पर आयोजित समारोह में अधोसंरचना निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और उल्लेखनीय योगदान देने वाले अभियंताओं, अधिकारियों, संयुक्त दलों तथा समारोह में मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया पुरस्कार, विश्वकर्मा पुरस्कार, विक्रमादित्य पुरस्कार, रानी दुर्गावती पर्यावरण हितेशी पुरस्कार और राजा भोज पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
5: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। भगवान श्री गणेश की आराधना का 10 दिवसीय पर्व गणेश चतुर्थी के साथ आज से प्रारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर संस्कृत में सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कामना की कि ये पवित्र त्यौहार सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करेगा। इधर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में तो वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बैतूल में स्थानीय कलाकारों से मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं खरीदी। उन्होंने प्रतिमा के लिए 3,000 रुपए का ऑनलाइन भुगतान भी किया। श्री खंडेलवाल ने स्थानीय कलाकारों से प्रतिमा खरीदने को उनकी कला और रोजगार को बढ़ावा देने का माध्यम बताया। वहीं श्री चौहान ने प्रदेशवासियों को गणेश उत्सव की बधाइयां दी।
7: सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की अनंत शुभकामनाएं। गणपति बप्पा वो आप सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करें। लेकिन मैं जो दृश्य देश भर में देख रहा हूं वो अद्भुत है। जिन युवाओं के बारे में, किशोरों के, यहाँ तक के बच्चों के बारे में ये बात कही जाती है कि इस जमाने में सोशल मीडिया और रील बनाने में व्यस्त रहते हैं, उनको हमारी संस्कृति और जीवन मूल्यों से बहुत लेना देना नहीं है। ये गलत है। आज देश भर की सड़कों पर मैं देख रहा हूँ युवा, नौजवान, किशोर, बच्चे कई दिनों से लगे हैं गणपति बप्पा की प्रतिमा की स्थापना के लिए, गणेश उत्सव मनाने के लिए।
5: इधर गणेश चतुर्थी पर आज प्रदेश में भी आस्था और उत्सव का अलग ही रंग दिखाई दिया। उज्जैन के महाकाल मंदिर से लेकर इंदौर के खजराना और बड़ा गणपति मंदिर, मंदसौर के द्विमुखी चिंताहरण गणपति मंदिर और सतना, रतलाम, टीकमगढ़, ग्वालियर तथा बैतूल तक के मंदिरों और गणेश पंडालों में

द्विमुखी चिंताहरण गणपति मंदिर में करीब 8 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा का विशेष आकर्षण बना हुआ है। गणेशोत्सव के दौरान यहां 12 दिनों तक विशेष पूजन, हवन और महाआरती के आयोजन होंगे। रतलाम में भी सुबह से ही गणेशोत्सव का उत्साह देखने को मिला है। ग्वालियर में गणेश प्रतिमाओं की खरीदारी के लिए बाजारों में भीड़ देखने को मिली। इस बार मिट्टी की गणेश प्रतिमाओं की मांग यहां भी देखी गई। सतना के सिंधी कैंप स्थित मीरानी कॉलोनी में भी आज गणेशोत्सव की शुरुआत हुई। यहां स्थापित होने वाली गणेश प्रतिमा रविवार देर रात जबलपुर से यहां पहुंची। उधर जबलपुर जिले के बोलाई गांव के करीब 300 वर्ष पुराने सिद्धवीर खेड़ापति हनुमान मंदिर में हनुमान जी के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा विराजमान हुआ करती है। गणेश चतुर्थी पर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसी तरह सीहोर के गणेश मंदिर में भी गणेश चतुर्थी के साथ 12 दिवसीय गणेशोत्सव शुरू हुआ। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के साथ आयोजन की शुरुआत की गई। आज हरतालिका तीज पर्व भी है। इस दिन महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि, अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखा करती हैं। वहीं नव युवतियां भी अच्छे घर और अच्छे वर की कामना के लिए तीज पर्व मनाया करती हैं। बाद मौसम की करते हैं। प्रदेश में मानसून एक बार फिर पश्चिमी हिस्से में सक्रिय हो गया है। कल इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर संभाग के कई इलाकों में बारिश हुई। बड़वानी में नदी नाले उफान पर आ गए। वहीं टीकमगढ़ में बांध के गेट खोलने पड़े। मौसम विभाग ने आज उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, राजगढ़, गुना और श्योपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। सागर में अवैध शराब की घटना से मुरैना में आबकारी विभाग सक्रिय हो गया है। विभाग ने नागरिकों से अवैध शराब की सूचना देने की अपील की है। झाबुआ जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 6 के उप निर्वाचन की प्रक्रिया के प्रेक्षण के लिए सेवानिवृत्त IAS शेखर वर्मा को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। और मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने खंडवा जिले के मूंदी स्थित 132 KV सब स्टेशन में 50 MVA क्षमता का अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर ऊर्जीकृत किया है। इस बुलेटिन में अपनी अभी इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। अभी आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
1: चलो
0: कहाँ
1: एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: नमस्कार श्रोताओं, एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर ये है आकाशवाणी उज्जैन। शाम के 7:21 हो चुके हैं। मैं आपकी रेडियो साथी दृष्टि स्वागत करती हूं सभी श्रोताओं का। समय हो चला है निमाड़ी लोकगीतों और मालवी बोली से सजे कार्यक्रम माटेरी बात का। आज प्रस्तुत करता है दिया उमठ।

राम राम साहब, मैं दिया उमट। आज आपकी अपनी ग्राम सभा में मार्टिनी बात में आप सभी लोग और को स्वागत है। सब मजा में तो हो, किस तरह का दिन कट रहा है या यूं कूं कैसा कहीं मजा चल रहा है। मार्टिनी बात में मार्टी की मन की गांव की और गांव में जैसा लोकगीत गाए हैं वह भी आज मैं लेके आई हूँ सीधा गाँव से ही पर। और मैं हर बार लेके आऊँ हैं सीधा गाँव से ही पर, जो आप लोग हो सुनो रोज की तरह अपनी ग्राम सभा में मालवी समाचार ने उनका बाद में अपन अपनी गाँव की। आज तो गणेश चतुर्थी भी है, इको फ्रेंडली गणेश जी के स्तर बने, कई कई फायदा रही भी सुनागा, घनी सारी जानकारी भी मिलेगी। पर पहला सुनो मालवी समाचार।

में हिंदी दिवस मनायो जा रो है। उज्जैन में सेवा संकल्प अभियान का तहत 17 सितंबर के 25 लाख से ज्यादा दीप जलाया जाएगा। भगवान श्री गणेश की आराधना का 10 दिन पर्व गणेश चतुर्थी का 7 आज से प्रारंभ हो गया है। आज देश भर में हिंदी दिवस मनायो जा रो है। 1949 में अनिदिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी के देश भर की आधिकारिक भाषा का तौर पर अपनायो गयो थो। अन्य अवसर पे आज भोपाल स्थित भारत भवन में 2 दिन को भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान को आयोजन करियो जाएगो। एको शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सांजे 4 बजे करेगा। 2 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर के वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार और कवि मातृभाषा संस्कृति और भारतीय जीवन मूल्य पे संवाद होयो। सेवा संकल्प अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस पे और उनके सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरा हुआ का अवसर पे प्रदेश में भी 17 सितंबर से सेवा संकल्प अभियान शुरू होएगा। अनिल का तहत उज्जैन में सांजे 17 सितंबर के सांजे 7 बजे भव्य दीपोत्सव का आयोजन करो जाएगा। अनि दौरान शिप्रा नदी का विभिन्न घाट होर पे महाकाल महालोक क्षेत्र में 25 लाख से ज्यादा दीप जलाया जाएगा। अभियान को उद्देश्य जन भागीदारी का जरिया सेवा सुशासन और जन कल्याण को संदेश लोगों तक पहुंचाना है। उधर मैहर में जिला भाजपा कार्यालय में स्थानीय विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी और भाजपा जिला अध्यक्ष कमलेश सुहाने ने पत्रकार वार्ता का जरिया सेवा संकल्प अभियान की जानकारी दी। श्री चतुर्वेदी ने बताया कि अनि दौरान रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, रंगोली और चित्रकला प्रतियोगिता सहित धार्मिक स्थान पर दीप प्रज्वलन का व्यापक आयोजन किया जाएगा। उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस पे अनेक उनका सार्वजनिक जीवन का 25 साल पूरा होगा का अवसर पर 17 सितंबर के सेवा संकल्प अभियान शुरू होगा। अनि का तहत उज्जैन में सांजे 7 बजे भव्य दीपोत्सव को आयोजन करो जाएगा। शिप्रा नदी का विभिन्न घाट होर और महाकाल महालोक क्षेत्र में 25 लाख से ज्यादा दीप जलाया जाएगा। अभियान को उद्देश्य जनभागीदारी का जरिया सेवा सुशासन और जन कल्याण को संदेश लोगों तक पहुंचानो है। दीपोत्सव के लिए पूरा क्षेत्र के 7 सेक्टर और 250 सब सेक्टर में बांटे गए है। करीब 11,000 ब्लॉक तैयार किया जा रहा है, जिनमें 225-225 दीप लगाया जाएगा। हर ब्लॉक पे 2 वॉलंटियर्स की तैनाती होगी और करीब 25,000 लोग आयोजन में भागीदारी करेगा। हर सब सेक्टर में दीप, तेल, मोमबत्ती, माचिस, कपूर और दूसरी जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। गणेश उत्सव भगवान श्री गणेश की आराधना का 10 दिन पर्व गणेश चतुर्थी का 7 आज से चालू हो गयो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्य अवसर पर देशवासी ओर से अपनी शुभकामना दी। सोशल मीडिया पर संस्कृत में सुशोभी साझा करता हुआ उनने कामना करी है कि यह पवित्र त्यौहार सभी का जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह को संचार करे। इधर प्रदेश में भी गणेश उत्सव उत्साह का साथ मनाया जा रहा है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में आज तड़के भस्म आरती का दौरान भगवान महाकाल का गणेश चतुर्थी का अवसर पर विशेष श्रृंगार करो गयो। आगरमालवा जिला में घर, दफ्तर, प्रतिष्ठान और सार्वजनिक स्थान पर प्रतिमा होर की स्थापना का साथ ही शुरू हो गयो है। जिला में अनेक स्थान पर पांडाल बनाकर प्रतिमा होर की स्थापना की जा रही है। पुलिस विभाग फेरबदल प्रदेश में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुए है। शासन ने 10 IPS और राज्य पुलिस सेवा का 127 अधिकारी होर समेत कुल 137 पुलिस अफसर होर का तबादला करियो है। गृह विभाग ने कल देर रात इनका आदेश जारी करिया, जिसमें DSP, SDOP, CSP और SEP स्तर के अधिकारी शामिल है। कई अधिकारी होर के पुलिस मुख्यालय में मैदानी पद पर भेजे गए है, जबकि कई अफसर होर की दूसरी जिला में नई जिम्मेदारी तय करी गई है। तीज पर्व आज हड़ताली का तीज पर्व है। अनिदिन महिला होर अपना परिवार की सुख समृद्धि, अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु का लिए निर्जला व्रत कर रहे हैं। वहीं नव युवती होर भी अच्छा घर और वर की कामना का लिए तीज पर्व मनाए हैं। आगर मालवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला में हड़ताली का तीज पूरी श्रद्धा भक्ति का साथ मनाया जा रहा है और महिला होर निराहार उपवास का साथ ही रात भर जाग के बालू रेती से बनाया गया शिवलिंग और पार्वती तथा गणेश जी की पूजा करे है। मौसम प्रदेश में मानसून एक बार फिर पश्चिमी हिस्सों में सक्रिय हुई है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटा का दौरान उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, राजगढ़, गुना और श्योपुर में भारी बारिश को अलर्ट जारी करो है। एक अलावा भोपाल, रायसेन सहित 48 जिला होने में हल्की और तेज बारिश होने का अनुमान है। मालवी समाचार समाप्त।

मालवी समाचार का बात सुनो। ग्राम सभा में माटीरी बात में निमाड़ी लोकगीत, जेकी शुरुआत हम हमेशा लोकगीत का साथ करा है, तो आपके लिए प्रस्तुत है निमाड़ी लोकगीत।

0: सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: नमस्कार, मैं हूं अदिति सक्सेना और आज हम बात करेंगे हमारे प्रिय आराध्य श्री गणेश जी के बारे में, लेकिन एक ऐसे विषय के साथ जो हमारी आस्था के साथ साथ हमारे पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है। गणपति बप्पा मोरया। गणेश चतुर्थी हमारे देश के सबसे लोकप्रिय और उत्साह से भरे त्योहारों में से एक है। घर घर में गणपति जी का स्वागत होता है, सजावट होती है, आरती होती है और पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गणपति जी की मूर्ति बनाते समय हम पर्यावरण का भी ध्यान रख सकते हैं? जी हाँ, इसका एक सुंदर तरीका है पर्यावरण अनुकूल गणपति जी। पर्यावरण अनुकूल गणपति की मूर्तियाँ मुख्य रूप से शुद्ध मिट्टी, प्राकृतिक रंगों और ऐसी सामग्रियों से बनाई जाती हैं जो पानी में आसानी से घुल सकें और प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं। वहीं दूसरी ओर प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी से बनी मूर्तियों को पानी में घुलने में अधिक समय लगता है। इनमें इस्तेमाल होने वाले कुछ रासायनिक रंग और अन्य पदार्थ जल स्त्रोतों को प्रदूषित कर सकते हैं। इससे जलीय जीवों और हमारे पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए जब हम मिट्टी से बने गणपति जी को चुनते हैं तो हम केवल एक मूर्ति नहीं चुन रहे होते, बल्कि प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहे होते हैं। पर्यावरण अनुकूल गणपति जी का सबसे बड़ा लाभ है जल संरक्षण और जल प्रदूषण को कम करना। इसके अलावा मिट्टी की मूर्ति को घर पर ही एक बाल्टी या बड़े पात्र में विसर्जित किया जा सकता है। इससे नदियों, तालाबों और झीलों में होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है। और सबसे खूबसूरत बात तो यह है कि विसर्जन के बाद उस मिट्टी का उपयोग पौधे लगाने के लिए किया जा सकता है। सोचिए, जिस मिट्टी से हमने गणपति जी का स्वागत किया, उसी मिट्टी से एक नया पौधा जन्म ले। यह केवल विसर्जन नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ एक नई शुरुआत है। हम गणपति उत्सव को और भी पर्यावरण अनुकूल बना सकते हैं। सजावट के लिए प्लास्टिक की जगह फूल, कपड़े, कागज, लकड़ी, मिट्टी और प्राकृतिक सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। अनावश्यक शोर और अत्यधिक आतिशबाजी से बच सकते हैं और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रख सकते हैं। आखिर भगवान गणेश हमें बुद्धि और विवेक का आशीर्वाद देते हैं, तो क्यों ना इस बार हम अपनी भक्ति के साथ अपनी बुद्धिमता और जिम्मेदारी भी निभाएं। आइए इस गणेश चतुर्थी एक छोटा सा संकल्प लें, गणपति जी की भक्ति भी करेंगे और प्रकृति की रक्षा भी करेंगे, क्योंकि सच्ची श्रद्धा वही है जिसमें हमारी आस्था के साथ साथ हमारी धरती भी सुरक्षित रहे। तो इस गणेश चतुर्थी कहिए, बप्पा भी आएंगे, खुशियां भी लाएंगे और जाते जाते प्रकृति को भी मुस्कुराएंगे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।
1: गणेशोत्सव और गणपति स्थापना आज घणो ही पावन पर्व है, पवित्र दिन है। धार्मिक आस्था का साथ साथ गांव की एकता, स्वच्छता, पर्यावरण, सामाजिक सहभागिता पे भी जोर देनो है। गणेशोत्सव को पर्व आता ही गांव गांव में उत्साह और उमंग को वातावरण दिखाई देवा लगी। गांव में क्यों शहर, सिटी, कस्बा, हर तरह कॉलोनी, घर, आंगन सजाए है। मंदिरों, सार्वजनिक स्थान और पे भी तैयारी हो रही है और चारों तरफ सुनाई

गणपति बप्पा मोरिया। भगवान गणेश के विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और बुद्धि विवेक का देवता का रूप में पूजे जाइए। किन्हीं भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश का स्मरण करवा की परंपरा हमारा समाज में लंबा टाइम से चलती आई रही है। गणेश चतुर्थी को दिन विधि विधान से भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करी जाइए। स्थापना का समय परिवार या गाँव का लोग एकत्रित होकर पूजा अर्चना करे और सुख समृद्धि शांति और अच्छा स्वास्थ्य की कामना करे। गाँव में गणपति स्थापना खाली धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि सामूहिक सहभागिता और सामाजिक एकता को अवसर भी बन जाए है। बच्चा, युवा, महिला और बुजुर्ग सभी अपनी अपनी भूमिका निभाइए। कोई सजावट करे, कोई प्रसाद की व्यवस्था करे, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ले तो कोई साफ सफाई की जिम्मेदारी संभाले है। गणेशोत्सव का दौरान पंडाल और आसपास का क्षेत्र में स्वच्छता रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम समाप्त होवा का बाद इनंग उनंग कचरों नहीं फेंकनो है। गीला और सूखा कचरा के अलग अलग रखो और पूजा सामग्री को उचित प्रबंधन करो। गांव में गणपति स्थापना का साथ यदि एक छोटो सो स्वच्छ गणेशोत्सव सुंदर गांव अभियान भी चलाया जाए तो यह पर्व समाज का लिए और भी उपयोगी बनी सके। जैसा कि इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा पर्यावरण संरक्षण का साथ हमारी आस्था और परंपरा के जोड़ों को सुंदर माध्यम है। इको फ्रेंडली गणेश जी का लाभ जल प्रदूषण कम हुई है। मिट्टी से बनी प्रतिमा विसर्जन का बाद पानी में आसानी से घुल जाए है। इनमें नदी, तालाब और अन्य जल स्रोत में प्रदूषण कम हुई है। जली जीव उनकी सुरक्षा हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस और रासायनिक रंग की बनी मूर्ति होर का कारण पानी की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। प्राकृतिक मिट्टी और प्राकृतिक रंग की प्रतिमा जली जीव के अपेक्षाकृत सुरक्षित हुई है। प्राकृतिक रंग होर को उपयोग इको फ्रेंडली प्रतिमा होर में हल्दी, गेरू, चावल और फूल होर से बनी प्राकृतिक रंग को इस्तेमाल करियो जा सके है। इनमें हानिकारक रसायन को उपयोग कम हुई है। मिट्टी की प्रतिमा विसर्जन का बाद मिट्टी में मिली जाइए। कई लोग होर बीज वाला गणेश भी बनाए हैं जो को विसर्जन गमला में करके बाद में पौधों उगायो जा सके है। प्लास्टिक और कृत्रिम सामग्री से बचाओ। सजावट और प्रतिमा में प्लास्टिक, थर्माकोल जैसी सामग्री को कम इस्तेमाल करवा से कचरों घटायो जा सके। परंपरा का साथ पर्यावरण संरक्षण। गणेश उत्सव हमारे प्रकृति का प्रति जिम्मेदारी को संदेश भी दे है। एकालिए पर्यावरण अनुकूल गणेश उत्सव आस्थाओं पर्यावरण संरक्षण को सुंदर संगम है। गणेश उत्सव के बारे में हमने तो जानियो, इको फ्रेंडली गणेश जी का बारे में जानियो। गणेश जी सुख समृद्धि का देवता है, यो हम सबके मालम है। पर एक साथ ही एक और भजन आप सुनो गणपति बप्पा का ऊपर।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: गणेश जी की बात हमने घनी सारी कर ली और गणेश जी की बात करवा के कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि गणपति बप्पा का बारे में हम सब के मालूम है कि वी कैसा देवता है, सुख समृद्धि घनी सारे फ़ायदा मिले हैं उनकी पूजन से, श्रद्धा से। और उनका बात अगर मैं बात करूं कि गणपति बप्पा का बात कौन आएगा या कई हुआ वालों है, तो गणपति बप्पा का बात अभी घना दिन है, पर थोड़ी सी जानकारी जो लेके आई हूँ संजा पर्व की। तो संजा पर्व मालवा और मध्य प्रदेश की एक पारंपरिक लोक सांस्कृतिक परंपरा है जिसके विशेष रूप से किशोरी होन और बालिका हो श्राद्ध पक्ष का दौरान मनाए हैं। यह पर्व लोक कला, प्रकृति, परिवार और सामूहिकता से जुड़े हुए हैं। मालवा में एक संजा या सांझा भी का बोलियो जाए है। श्राद्ध पक्ष की शुरुआत का साथ घर की दीवार होर पे गोबर से संजा की आकृति बनाई जाई है। मैं फूल पत्ती और रंग प्राकृतिक सामग्री से सजाई जाई है। रोज सांजे बालिका और एकत्र होके संजा का लोकगीत गाए और पूजा अर्चना करे। संजा की आकृति में फूल पत्ती, चांद, सूरत, पशु पक्षी, पेड़ पौधा और ज्यामिति आकृति बने हैं। अलग अलग दिन में अलग अलग आकृति बनवा की परंपरा कई क्षेत्रों में देखने के मिले है। पर्व का दौरान बालिका और मिलकर गीत गाई है जिनमें लोकगीत और लोक कला की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े हैं। संजा को जो महत्व है, संजा खाली एक धार्मिक परंपरा नहीं है बल्कि मालवा की लोक संस्कृति और लोक कला की पहचान है। एका माध्यम से बेटी होर के रचनात्मक, स्वच्छता, प्रकृति से जुड़ाव और सामूहिक जीवन को अनुभव मिले हैं। आज संजा की पारंपरिक कला के संरक्षित करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आधुनिक समय में ऐसी कई लोक कला धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब आप सब सोच ही रहा होगा कि संजा में भी घना सारा दिन है फिर भी हुई सब बातें क्यों कर रही है। तो सभी बातें जैसे कर रही है ताकि आप और भी गांव का ही नहीं बल्कि सिटी

में भी संजा दीवाल हो पे बनाई सको है, हमारी लोक परंपरा लोकगीत के आगे बढ़ सको है। घनी सारी जगह मांडना भी मांडे है, घनी सारी अलग अलग तरह का काम हुई है, तो आप भी सब करी सको है। एक बात एक और गीत, फिर और थोड़ी सी बात, तो टेम भी हुई गयो है, टेम भी होवा जा रहे है। टेम खाली 7:21 से 8 बजे तक रहे आप सबके वाला में, तो सुनो एक और गीत।

आज है साथ ही साथ 14 सितंबर माने कि हिंदी दिवस। हर साल 14 सितंबर के हिंदी दिवस मनाया जाइए। यो दिन हिंदी भाषा के सम्मान प्रचार प्रसार और ओका महत्व के समझवा का अवसर दे है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और ओकी लिपि देवनागरी निर्धारित करी गई है। अब आप सब सोच रहे होगा मालवी का कार्यक्रम में हिंदी क्यों, पर हिंदी हमारी राजभाषा है। एक साथ ही हिंदी भारत में व्यापक रूप से बोली जाइए, समझी भी जाए है, भाषा और में से एक है, या केवल संवाद को माध्यम नहीं है बल्कि भारतीय साहित्य, लोक संस्कृति, पत्रकारिता, सिनेमा और जनसंचार में भी गहराई से जुड़ी हुई है। हिंदी का माध्यम से देश का अलग अलग क्षेत्र में लोगों का बीच संवाद और विचार को आदान प्रदान आसान हुई है, संचार आसान हुई है, आम लोगों तक जानकारी सरल भाषा में पहुंचाई जा सके, शिक्षा और सुविधा मातृभाषा या परिचित भाषा में सीखने का कई विद्यार्थियों के लिए अधिक सहज हुई है। लोक संस्कृति को संरक्षण, लोकगीत, कहावत, कहानी और परंपरा भाषा का माध्यम से सुरक्षित रहे, जन जागरूकता बढ़े है, सरकारी योजना हो, स्वास्थ्य, कृषि और सामाजिक मुद्दों की जानकारी अधिक लोगों तक पहुंचाई जा सके, साहित्य के बढ़ावा मिले हैं, रोजगार और मीडिया में उपयोगिता घनी रहे, पत्रकारिता, रेडियो, टीवी, टेलीविजन, मीडिया, लेखन, अनुवाद जैसा कई क्षेत्र उनमें हिंदी को घनो ही महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी कई अलग अलग भाषाई क्षेत्र का लोक का भी संपर्क भाषा के रूप में उपयोग में भूमिका निभाई है। मालवी बोली को हिंदी से किस तरह का जुड़ाव है, थोड़ी बात हमें पे भी कर ला, पर टाइम तो हुई ही गयो है। मालवी मध्य प्रदेश का मालवा में बोली जाइए, ये सब आपके मालूम है क्योंकि मालवी आपकी और हमारी मातृभाषा का रूप में भी आप समझी सको है। एको हिंदी से गहरो संबंध जैसे हैं कि मालवी को हिंदी की पश्चिमी हिंदी की बोली होर का निकट की एक क्षेत्रीय बोली मानी जाइए। हालांकि भाषा वैज्ञानिक वर्गीकरण में एक राजस्थानी समूह से भी जोड़ी जाइए, इसलिए मालवी की अपनी स्वतंत्र भाषिक पहचान भी है। शब्दों की समानता रहे है, जैसे मालवी में बड़ी संख्या में ऐसा शब्द मिले हैं जो हिंदी में भी प्रचलित रहे हैं। देवनागरी लिपि, मालवी सामान्य देवनागरी लिपि में लिखी जाए है, जिनमें हिंदी का साथ लिखित जुड़ाव आसान हुई है। मालवी का लोकगीत, लोक कथा, कहावत और मुहावरा हिंदी साहित्य और लोक संस्कृति की समृद्ध करे है। आकाशवाणी, लोक कार्यक्रम और स्थानीय मीडिया का मालवी को प्रयोग लोक तक संदेश अधिक सहजता से पहुंचे है। जैसा कि हूँ रोज आऊ है, मैंने कि हूँ रोज तो नहीं आ पाऊँ है, पर जदे भी आऊँ है आपका लिए मालवी को कार्यक्रम लेके आऊँ है, हमारी जगह हमारा साथी और आई हो तो भी मालवी को कार्यक्रम लेके आई है। तो घनी सारी अलग अलग खूबी हो और अलग अलग भाषा की रहे, अलग अलग बोली की रहे, पर अपन बात कर अगर मालवी की, तो मालवी की मिठास ने मालवी से जो जुड़ाव हो ये, जो मालवी प्यारी लगे है, ऐसी तो कहीं की बोली हो ही नहीं सके हमारा लिए। एक बात अगर हम बात करा गांव का तीज और त्यौहार की, क्योंकि अभी तीज त्यौहार को टाइम चली रही है, पर गांव में तीज त्यौहार घने ही अलग तरीका से मनाया जाइए, अलग लोक परंपरा रहे, अलग लोक गीत रहे। गांव में तीज त्यौहार खाली धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक मेल जोल, लोक संस्कृति और आपसी भाईचारा का अवसर भी हो। खेती किसानी पर आधारित ग्रामीण जीवन में त्यौहार और को अपनो विशेष महत्व रहे। त्यौहार पर लोग घर आंगन की सफाई और सजावट करे है, परिवार में रिश्तेदार एक दूसरा का घर जाके शुभकामना और मिठाई दे है। हालांकि बात खाली गांव की नहीं करा, तो अन्य मामला में शहर की भी करा, तो कई की भी जगह समाज में तीज त्यौहार घना ही खुशहाली से लोक परंपरा, लोकगीत के आगे बढ़ावा को घनो ही अच्छो माध्यम मान्यो जाइए। मालवा क्षेत्र में, बल्कि मालवा क्षेत्र मैंने कि हमारा क्षेत्र में तीज त्यौहार का साथ मालवी लोकगीत, कहावत होन, पारंपरिक पकवान और लोक रीति हो जुड़ी हुई है। सावन का टेम पे झूला, हरियाली, लोकगीत गांव को वातावरण को खास बना दे है। गणेश उत्सव जैसे अब चल रही है, जन्माष्टमी जो निकली है, नवरात्रि जो आएगी, दीपावली जो आएगी और होली भी जो बाद में आएगी, और संजा जैसा पर्व भी ग्रामीण जीवन में सामुदायिक सहभागिता बढ़ाई है। त्यौहार से घना सारा फायदा हो, कोई बोले नहीं कि खाली त्यौहार में बहुत सारे लोगों की अलग अलग सोच रहे, पर मुंह मानू कि सामाजिक एकता, लोग मिलजुल के त्यौहार मनाए हैं, लोक संस्कृति को संरक्षण, लोकगीत, नृत्य, पहनावो, भोजन, परंपरा अगली पीढ़ी तक पहुंचाइए। खुशी और सकारात्मक रोजमर्रा की व्यस्तता से अलग लोग हर का साथ आवा की खुशी बांटवा को अवसर मिले हैं। स्थानीय कलाकार उनके मंच, लोक कलाकार, गायक और कारीगर उनके अपनी प्रतिभा दिखावा को अवसर मिले है, एक अलग मंच मिले है, और सबसे बड़ी बात कि तीज त्यौहार से रोजगार मिले है। गांव की अर्थव्यवस्था के सहयोग मिले, स्थानीय बाजार, हस्तशिल्प, मिठाई, सजावट और छोटा व्यवसाय में त्यौहार होने के समय कम मिले है। तो चलो टाइम भी हो गया।

हमारे घनी सारी जानकारी देने रहे हैं। 7:21 से 8 बजे तक आकाशवाणी उज्जैन का केंद्र से आपके ग्राम सभा में रोज कार्यक्रम सुने हैं। तो राम राम साहब, नमस्कार।

श्रोताओं, एफ एम 102.5 मेगाहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे थे आकाशवाणी उज्जैन। और कार्यक्रम माटेरी बात को यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी उज्जैन के साथ। श्रोताओं, रात के 8 बजने को हैं और कुछ ही देर में आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम सुर्खियों में अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी भोपाल से अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत की अध्यक्षता में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत प्रभु दयाल, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
3: भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया। यह सम्मेलन कई अर्थों में अभूतपूर्व रहा। सफलताओं के पैमाने पर यदि देखा जाए तो बिना किसी विवाद के घोषणा पत्र का, शब्दावलियों का चयन और जिन विषय वस्तुओं को उठाया गया वह आने वाले दिनों में विश्व राजनीति में अपनी छाप छोड़ने में सक्षम होगा, ऐसा हम मानते हैं। हमारे साथ आज इस विषय पर चर्चा के लिए आमंत्रित हैं पूर्व राजदूत प्रभु दयाल। प्रभु दयाल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
4: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि कूटनीतिक दृष्टि से 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या सब रही, और विशेष रूप से अपने देश भारत के लिए एक आयोजनकर्ता के रूप में यह कितना संतोषप्रद रहा।
4: देखिए, मेरे विचार में नई दिल्ली में संपन्न हुआ जो ये 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था
3: जी,
4: इसमें जो यूनैनिमिटी से डिक्लेरेशन अडॉप्ट हुआ वो डिप्लोमेटिक स्फीयर में वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते कद और राजनीतिक इन्फ्लुएंस का एक ऐतिहासिक अध्याय साबित हुआ है। घोर में ये देखिए, भू राजनीतिक ध्रुवीकरण, पश्चिम एशिया में युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के साये के बावजूद, इतनी सब डिफिकल्टीज के बावजूद भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का परिचय देते हुए न केवल सम्मेलन को सफल बनाया बल्कि अपनी अध्यक्षता में एक साझा सर्वसम्मति भी स्थापित की। देखिए, ये एक कंसेंसस बनाना ऐसे मीटिंग में जहां तरह तरह के डेलीगेशंस हैं जिनमें आपस में मनमुटाव है, ये यूनानिमिटीज बनाना, कंसेंसस से ये डिक्लेरेशन पास कराना बहुत बड़ी बात है। और एक आयोजक के रूप में भारत को इसको काफी संतोष देते हैं। वो ये है कि जैसे बहुत से अलग अलग, जब मैंने बताया उनके कॉम्बैटेंट्स के बीच में मध्यस्थता करना, अब देखिए ईरान और यूएई के बीच में बहुत टकराव है लेकिन उनमें मीटिंग कराए, वैश्विक वित्तीय और प्रशासनिक सुधार

0: कराना, जिसके बारे में बहुत बातचीत हुई, ग्लोबल साउथ की आवाज उठाना, ये सब जो है भारत की बड़ी अचीवमेंट्स है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कुछ देशों की ये कोशिश रहती है कि ब्रिक्स को अमेरिका विरोधी बनाओ, एंटी अमेरिका ब्लॉक। तो भारत ने ये पूरी तरह से दिखाया कि हम इसको एंटी अमेरिका फ्रंट नहीं बनाना चाहते हैं, हम इसको ग्लोबल साउथ के विकास, यानी जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे एनर्जी, फर्टिलाइजर, इन सब के क्षेत्रों में एक कोऑपरेशन का मंच के रूप में बनाए रखना चाहते हैं।
1: प्रभुदयाल जी, जैसे भारत के बारे में कहा जाता है कि परस्पर विरोधी दिखते हुए लोग, वेशभूषा, भाषा, खान पान सब कुछ अलग होते हुए भी भारत अपने आप में एक है, वही आपने अपने शब्दों का चयन करते हुए कहा कि जो यूनिटी यहाँ से निकल के आई है, परस्पर विरोधी दिखने वाले नहीं, वास्तव में विरोध रखने वाले पक्ष एक मंच पर, एक साथ, एक घोषणा पत्र पर, एक एक शब्द के लिए लंबी चर्चा हो जाती है और उस शब्द को बदला जाए उस पर विरोधाभास दिखता रहता है, इस बार ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे कौन सी रणनीति रही, यानी इसे आपने कहा कि बड़ा ही अद्भुत स्ट्रेटेजिक रुख रखते हुए वो कायम किया गया, यहाँ थोड़ा सा इसे स्पष्ट करें कि कैसे ये शब्दावली एक बनी रही, सबकी सहमति रही, कुछ भी हटाना घटाना जोड़ना नहीं पड़ा।
0: इसमें हमारे डिप्लोमेट्स की बहुत कड़ी मेहनत साफ दिखती है। ये जो कंसेंसस बना है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये दो दिन में बन गया जब ये ब्रिक्स सम्मेलन 12-13 को हुआ, नहीं
1: जी।
0: इसमें बहुत पहले से काम चला जा रहा है और लगभग 350 मीटिंग्स की गई जो भारत के डेलीगेशन ने दूसरे डेलीगेशन के साथ
1: जी, जी।
0: करी, और इसकी वजह से ये कंसेंसस बना हर पैराग्राफ पे। देखिए ये कोई एक दो पैराग्राफ का डिक्लेरेशन नहीं है, बहुत बड़ा डिक्लेरेशन
1: जी।
0: तो इसमें ये जो कड़ी मेहनत हमारे डिप्लोमैट्स ने की है, उससे ये कंसेंसस बना है और मेरे विचार में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें कई चीजें हैं जो अहमियत रखती है, एक तो जैसे ब्रिजिंग डिवाइड, जो विरोधाभास के पोजिशन उनके बीच में सर्वसम्मति का मॉडल बनाया, जैसे मिडल ईस्ट में ईरान और यूएई जिसका हमने जिक्र किया था
1: जी, जी।
0: उसके भी बड़े गहरे मतभेद थे, इसके बावजूद भारत की मध्यस्थता ने इनको साथ बिठाया और इनमें बातचीत कराई। इसके अलावा देखिए ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती देना, जैसे यूएनएससी में रिफॉर्म्स करने की बात, या आईएमएफ में रिफॉर्म्स करने की बात है, या वर्ल्ड बैंक में करने की, ये सब ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट से रिलेटेड है। भारत जो बार बार कहता है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़े सख्त शब्दों में कहा कि ये ग्लोबल जो है सिचुएशन, इसको एक पिरामिड ऑफ प्रिविलेज से बदल कर एक प्लेटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप को हमको उसको बनाना है।
1: यहाँ पर यदि हम प्रधानमंत्री के विशेष रूप से सम्मेलन के साथ साथ जो विभिन्न वैश्विक नेताओं के साथ उन्होंने द्विपक्षीय बातचीत की, उनकी तरफ आपको ले चलना चाहें और श्रोताओं के नजरिए से समझना चाहें, क्या सब बातें हुई ब्रिक्स के साथ साथ? प्रधानमंत्री ने दुनिया के, कह लें कि सबसे शक्तिशाली देशों में से एक, चीन और रूस दोनों यहाँ साथ हैं, दोनों के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत हुई, अन्य महत्वपूर्ण नेताओं के साथ भी चर्चा हुई है, कुल क्या नतीजा निकल कर आता दिख रहा आपको विविध देशों के साथ बातचीत के साथ?
0: जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग कंट्रीज के जो डेलीगेशन थे उनके लीडर्स से जो बातचीत की, वो भारत की सक्रिय, संतुलित और बहुयामी, यानी मल्टी लेटरल और मल्टी अलाइंड पॉलिसी, वो उसका प्रमाण है। जैसे फॉर एग्जांपल रूस, चीन, ईरान, यूएई, साउथ अफ्रीका, ये सब ऐसे देश हैं जो दुनिया में बहुत महत्व रखते हैं, किसी न किसी तरह से उनकी बहुत अहमियत है, और उनके डेलीगेशन के साथ बैठकर जैसे व्यापार, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, एनर्जी, हायर टेक्नोलॉजी, इन सब पे बात हुई, ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ देखिए ग्लोबल साउथ की नुमाइंदगी की हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने ये जो सब वैश्विक संस्थाओं में सुधार की बात की और जैसे विकासशील देशों की हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर दिया, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज गया है जिससे भारत वैश्विक मंच पर ग्लोबल साउथ के सबसे बड़े प्रोपोनेंट के रूप में उभरा है। और मेरे विचार में देखिए ये

0: सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हो गई है लड़ाई झगड़े की वजह से
1: जी.
0: जो मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो रही है उससे एनर्जी सप्लाई फर्टिलाइजर सप्लाई और ट्रेड इफेक्ट हुआ है रशिया यूक्रेन वॉर से जो फूड सप्लाई बिकॉज यूक्रेन एक बहुत बड़ा फूड प्रोड्यूसर है उसकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात पे जोर दिया बार बार कि ये सप्लाई चेन्स को बनाए रखना बहुत जरूरी है और खास तौर पे जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं उनका बहुत नुकसान हो रहा है इन सप्लाई चेन्स के बंद हो जाने से. साथ ही साथ देखिए जैसे व्यापार के निवेश में तेजी पर जोर दिया गया जैसे यूएई के साथ और कुछ बड़े पार्टनर्स के साथ जो हमने बातचीत की वो ऊर्जा और एक तरह से बुनियादी ढांचा से संबंधित जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे ग्रीन फील्ड एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट है इन सब में जो इन्वेस्टमेंट्स इंडोनेशिया फिलीपींस साउथ अफ्रीका अफ्रीका के और देश इन सब के साथ जो ये बातचीत हुई द्विपक्षीय इसमें जो रक्षा और डिजिटल इश्यूज पे कोऑपरेशन पे जो बात है इसके ढांचे के नए द्वार खुल रहे हैं.
1: प्रभुदयाल जी हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे व्यापार आपसी बढ़ाने के साथ साथ सदस्य देशों के बीच कारोबार बढ़ाने की वकालत करते हुए कुछ देशों की ओर से आवाज उठी कि अपनी करेंसी में क्यों ना हम कारोबार करें इसका क्या भविष्य आगे आपको दिख रहा है ब्रिक्स के इस सम्मेलन से.
0: ब्रिक्स में मुद्दत से एक आवाज उठाई जा रही है कि एक ब्रिक्स करेंसी होनी चाहिए भारत उसके पक्ष में नहीं है लेकिन भारत चाहता है कि जो ये कंट्रीज हैं ब्रिक्स की ये अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड करें वो तो बहुत अच्छा हो जाएगा. जैसे हम रशिया के साथ मुद्दत से रूपी रूबल ट्रेड को आगे बढ़ावा दे रहे हैं ऐसे सब कंट्रीज के साथ जैसे यूएई के साथ भी काफी लोकल करेंसी में ट्रेडिंग को बढ़ावा मिला है तो अगर ये लोकल करेंसी में ट्रेडिंग बढ़ती है तो इससे डॉलर पे जो डिपेंडेंस है वो कम होगी और जो ये ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं उनका बड़ा फायदा होगा. तो न सिर्फ भारत ने बट कई देशों ने इस बात पर जोर दिया कि ये लोकल करेंसीज में ट्रेडिंग को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है.
1: बैठक के दौरान परस्पर विरोधी दृष्टि रखने वाले जिनका अतीत में कह लें कि सिर्फ निजी हित रहा वहीं प्रधानमंत्री ने कई अवसर पर कहा कि हमें अपनी क्षमताओं को हथियार नहीं बनाना चाहिए विशेष रूप से यदि हम मिनरल्स को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाना चाहें संकेत से थोड़ा आगे निकलते हुए तो इस तरह के विचारों का कैसा स्वागत होता अंतर्राष्ट्रीय पटल पर विश्व राजनय पर असर होता दिख रहा आपको.
0: असली बात यह है कि चाइना का कंट्रोल है क्रिटिकल मिनरल और चाइना ने कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं जिससे क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हुआ तो भारत ने जो ये आवाज उठाई कि भाई ये क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन नहीं होना चाहिए बात ऐसी है जिससे कई देशों तक गूंज गई और उन्होंने समर्थन किया क्योंकि उन सबका नुकसान हो रहा है तो मेरे विचार में ये कहना बहुत जरूरी था.
1: यहाँ पर वैश्विक संस्थाओं में सुधार की बात प्रधानमंत्री बार बार करते रहे और इस बार भी उन्होंने दोहराया है अन्य देशों के प्रतिनिधियों की ओर से इस मसले को लेकर क्या विचार आए.
0: ये जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं
1: जी
0: इन सब में सुधार करना बहुत आवश्यक है. अब सबसे ज्यादा तो जरूरी है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म. अब यूनाइटेड नेशंस की जो स्थापना है वो 1945 में की गई थी तब से तो दुनिया बदल गई कितने डेकेड्स गुजर गए लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वैसी की वैसी बनी. अच्छा अब जो इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर है और उस वीटो पावर से क्या होता है कि उनके जो व्यूज हैं उसके खिलाफ कोई प्रपोजल हो उसको वीटो कर देते हैं तो नेचुरली इससे तो ग्लोबल सिस्टम का बड़ा नुकसान होता है. तो भारत बार बार ये कहता आ रहा है कि इस सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म बहुत जरूरी है. भारत सबसे बड़ा पॉपुलेशन के टर्म्स में है कंट्री 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इतनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लोबल सिस्टम तो क्यों नहीं परमानेंट मेंबर बने. लेकिन क्योंकि जिनके पास वीटो पावर है वो अपने हित में इस तरह के वीटो एक्सरसाइज कर देते हैं जिसमें रिफॉर्म नहीं हो पाता. लेकिन जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं और जो दुनिया के और इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं जो P5 के मेंबर नहीं है उनका ये फर्ज है कि आवाज उठाएं और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में

0: रिफॉर्म्स कराएं।
1: यदि हम सार संक्षेप के रूप में दो से तीन पंक्तियों में समझना चाहें कि 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य स्वर और संदेश क्या है, तो वह अपनी ओर से आप क्या आकलन करते हुए कहना चाहेंगे?
0: मेरे विचार में सबसे बड़ा सिग्नल जो गया है
1: जी,
0: वो ये कि भारत का महत्व अब बहुत बढ़ता जा रहा है ग्लोबल स्फीयर में, और इसी वजह से ऐसा एक कन्वेंशन ऑर्गेनाइज हो सकती है भारत में जिसमें अनेक देश शरीक हुए, वो उनमें भी एक यूनानिमिटी और कंसेंसस भारत बनाने में सक्षम रहा है। ग्लोबल साउथ का सपोर्ट करने वाला भारत सबसे आगे खड़ा हुआ देश है।
1: भारत की जो प्राचीन नीति रही है वसुधैव कुटुंबकम की, और भारत की जो नीति रही है सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि उसी सोच के साथ 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ, कह रहे हैं हमारे आज के विशेषज्ञ प्रभुदयाल जी। श्रोताओं की ओर से प्रभुदयाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत उपयोगी और अच्छी जानकारियां आपने दी हैं,
0: बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत की अध्यक्षता में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत प्रभुदयाल, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: नमस्कार श्रोताओं, FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये है आकाशवाणी उज्जैन। शाम रात के 8:15 हो चुके हैं और फिल्म संगीत के सुमधुर सफ़र में मैं आपकी रेडियो साथी दृष्टि स्वागत करती हूँ सभी श्रोताओं का। आज की फिल्म संगीत की है शाम कुछ खास है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस कलाकार की जिसने हिंदी सिनेमा में सिर्फ सितारा बनने की कोशिश नहीं की बल्कि अपनी अलग पहचान बनाने का रास्ता चुना। एक ऐसा अभिनेता जो कभी आम आदमी बनकर पर्दे पर आया, कभी सामाजिक रूढ़ियों से सवाल करता दिखाई दिया, कभी अपनी आवाज़ में प्यार के रंग घुलता सुनाई दिया, तो कभी अपने लिखे शब्दों से दिल जीतता नजर आया। जी हाँ श्रोताओं, आज का फिल्म संगीत समर्पित है बहुमुखी प्रतिभा के धनी आयुष्मान खुराना को। 14 सितंबर को जन्मे आयुष्मान के जन्मदिन के इस खास अवसर पर आइए सुनते हैं उनके सफ़र की कहानी, चंडीगढ़ से मुंबई तक, रियलिटी शो से बड़े पर्दे तक, और एक अभिनेता से लेकर गायक और गीतकार तक।

श्रोताओं, किसी सितारे की कहानी अक्सर उसकी पहली फिल्म से शुरू होती दिखाई देती है, लेकिन आयुष्मान खुराना की कहानी उससे बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। 14 सितंबर 1984 को चंडीगढ़ में जन्मे आयुष्मान का मूल नाम निशांत खुराना है। बचपन से ही उन्हें लिखने, पढ़ने और मंच से जुड़ी गतिविधियों में दिलचस्पी थी। कॉलेज के दिनों में उन्होंने थिएटर किया और अपने भीतर के कलाकार को पहचानना शुरू किया, लेकिन उनका रास्ता सीधे मुंबई की चमकती दुनिया तक नहीं पहुंचा। उन्होंने पहले रेडियो और टेलीविज़न की दुनिया में अपनी जगह बनाई। फिर आया साल 2004, जब एक युवा आयुष्मान ने हिस्सा लिया एमटीवी रोडीज़ के दूसरे सीज़न में। यह सिर्फ एक रियलिटी शो नहीं था, बल्कि उनके लिए मनोरंजन की दुनिया में पहला बड़ा दरवाज़ा था। आयुष्मान ने यह प्रतियोगिता जीती और यहीं से उनकी पहचान बनने लगी। इसके बाद उन्होंने टेलीविज़न पर बतौर होस्ट अपनी अगली शैली विकसित की। उनकी सहज बातचीत, हास्य और आत्मविश्वास ने उन्हें युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाया। लेकिन श्रोताओं, उनके मन में एक सपना अभी भी बाकी था, बड़े पर्दे का सपना, और इसी सपने को पूरा करने के लिए शुरू हुआ उनका मुंबई का संघर्ष।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म मेरी प्यारी बिंदु से। गायक परिणीति चोपड़ा और सोनू निगम की आवाज़, गीतकार कौसर मुनीर के बोल और संगीत निर्देशन सचिन जिगर का। श्रोताओं, आयुष्मान की कहानी की खूबसूरती यही है कि वे सफलता के लिए सिर्फ अभिनय पर निर्भर नहीं थे। उन्होंने टेलीविज़न होस्टिंग, रियलिटी शो किए, रेडियो से जुड़े और अपनी आवाज़ को भी अपनी पहचान का हिस्सा बनाया। धीरे धीरे मुंबई में उनके लिए अभिनय के दरवाजे खुलने लगे, लेकिन फिल्मों में प्रवेश आसान नहीं था। आखिरकार वर्ष 2012 में उन्हें वह मौका मिला जिसका उन्हें इंतज़ार था, निर्देशित सुजित सरकार की फिल्म विकी डोनर, और उन्हें मिली मुख्य भूमिका। फिल्म का विषय उस दौर के लिए बेहद अलग और संवेदनशील था, और आयुष्मान ने एक सामान्य शरारती लेकिन दिल के एक साफ युवा की भूमिका निभाई। फिल्म सफल हुई और आयुष्मान की अदाकारी को खूब सराहा गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी फिल्म के गीत पानीदा रंग में आयुष्मान की आवाज़ ने श्रोताओं के दिल में जगह बना ली, और यह गीत उन्होंने गाया और इसके संगीत निर्माण में भी उन्होंने योगदान दिया, इसलिए उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर मिला। यानी पहली ही फिल्म में अभिनेता भी, गायक भी और गीतकार के रूप में भी पहचान मिली। श्रोताओं, यहीं से यह साफ हो गया था कि कलाकार बॉलीवुड में सिर्फ भूमिका निभाने नहीं आया है, यह कलाकार कई रंग बिखेर

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म विकी डोनर से। गायक आयुष्मान खुराना की आवाज़, गीतकार आयुष्मान खुराना और रोचक कोहली के बोल, और संगीत आयुष्मान खुराना और रोचक कोहली द्वारा निर्देशित। श्रोताओं, FM 102.5 MHz और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी उज्जैन से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। साथियों, हर शुरुआत सफलता की सीधी रेखा से नहीं होती। विकी डोनर के बाद आयुष्मान की कुछ फिल्में उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं रहीं, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। और फिर आया साल 2015, फिल्म दम लगा के हईशा ने उनके करियर को एक नई दिशा दी। इसके बाद आयुष्मान ने ऐसी फिल्में चुनी जिसमें मनोरंजन के साथ साथ समाज की कोई ना कोई सच्चाई भी दिखाई देती। बरेली की बर्फी, शुभ मंगल सावधान, बधाई हो, हर फिल्म में एक अलग कहानी और एक

अलग आयुष्मान दिखाए गए। फिर 2018 में आई फिल्म अंधाधुंध, और इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसे पियानो वादक का भूमिका निभाई जो कहानी के रहस्यों में उलझता चला जाता है। उनकी बॉक्स ऑफिस पर यह शानदार सफलता और उनके अभिनय को एक नया आयाम मिल गया, और इसी दौर में फिल्म मिली बधाई हो, और इसने भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की। वर्ष 2019 में आर्टिकल 15, ड्रीम गर्ल और बाला जैसी फिल्मों ने उनके प्रयोगों को और मजबूत किया। एक तरफ सामाजिक मुद्दे, दूसरी तरफ कॉमेडी, कहीं रोमांस, कहीं थ्रिलर, आयुष्मान लगातार अपनी सीमाएं तोड़ते रहे, और यही विविधता धीरे धीरे उनकी सबसे बड़ी पहचान बनने लगी।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म दम लगा के हईशा से, गायक पापोन और मोनाली ठाकुर की मधुर आवाज़, गीतकार वरुण ग्रोवर के बोल और संगीत अनु मलिक का। श्रोताओं, आयुष्मान खुराना की खासियत सिर्फ यह नहीं कि वे अलग अलग किरदार निभाते हैं, उनकी खासियत यह है कि वे कला के कई माध्यमों को एक साथ जीते हैं। अभिनय के साथ साथ संगीत उनके सफ़र का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। उन्होंने अपने फिल्मों में कई गीतों को अपनी आवाज़ दी। पानीदार रंग तो उनकी पहचान का हिस्सा बन चुका है, लेकिन उनकी रचनात्मकता यहीं नहीं रुकी। हिंदी दिवस पर जन्मे आयुष्मान कविताएं लिखते हैं, गीत लिखते हैं, संगीत से भी जुड़े हैं और मंच पर अपनी प्रस्तुति से सभी दर्शकों को जोड़े रखते हैं। यही कारण है कि आयुष्मान को केवल अभिनेता कहना उनकी प्रतिभा को थोड़ा सीमित कर देना होगा। उनकी फिल्मों का चयन भी उनकी अलग सोच को दर्शाता है। शुभ मंगल ज़्यादा सावधान जैसी विषय ने समाज में लैंगिक पहचान और स्वीकार्यता पर बातचीत को मुख्य धारा में जगह दी और आर्टिकल 15 जैसी फिल्म ने सामाजिक भेदभाव जैसे गंभीर विषय पर दर्शकों को सोचने के लिए मजबूर किया। उनके अभिनय को कई बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अंधाधुंध के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला और फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड भी उनके नाम रहा। वर्ष 2020 में टाइम्स ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया। श्रोताओं, यह सिर्फ स्टारडम नहीं है, यह अपने हुनर को लगातार नया रूप देने की कहानी है।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म अंधाधुन से। गायक अमित त्रिवेदी की आवाज़ और गीतकार जयदीप सहानी के बोल और संगीत निर्देशित किया है अमित त्रिवेदी ने। श्रोताओं, बात उस आयुष्मान की जो कैमरे के सामने जितना सक्रिय हैं उतना ही सामाजिक सरोकारों से जुड़ाई दिखाई देते हैं। उनकी फिल्मों में अक्सर ऐसे विषय दिखाई देते हैं जिन पर समाज में खुलकर बातचीत करना आसान नहीं होता, चाहे शरीर को लेकर बनी धारणाएं हों, परिवार और रिश्तों की बदलती सोच हो या फिर सामाजिक भेदभाव का मुद्दा। आयुष्मान ने अपने किरदारों के माध्यम से इन विषयों को मुख्य धारा तक पहुंचाया। यही वजह है कि उनकी पहचान सिर्फ एक मनोरंजन कलाकार की नहीं रही। वर्ष 2023 में उन्हें भारत के लिए यूनिसेफ नेशनल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यह भूमिका बच्चों के अधिकारों और उनके हितों से जुड़े सामाजिक संदेशों को आगे बढ़ाने से जुड़ी है। वहीं वर्ष 2026 में उनकी फिल्म आर्टिकल 370 को बेस्ट फीचर फिल्म नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक रियलिटी शो के प्रतियोगिता से शुरू हुआ सफर, एक टेलीविजन होस्ट बना, फिर एक गायक, अभिनेता और आज एक ऐसा कलाकार बन चुका है जिसकी आवाज़ मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक संवाद का माध्यम भी बन रही है। श्रोताओं, आयुष्मान खुराना की कहानी हमें खूबसूरत बात सिखाती है कि अपनी पहचान बनाने के लिए हमेशा भीड़ के साथ चलना ज़रूरी नहीं, कभी कभी अपनी अलग राह चुनना ही आपकी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है।

0: श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म शुभ मंगल ज्यादा सावधान से। गायक आयुष्मान खुराना की आवाज, गीतकार वायु के बोल और संगीत तनिष्क बागची और वायु का। श्रोताओं, आयुष्मान खुराना के जन्मदिन पर हम उन्हें यही शुभकामनाएं देंगे कि उनकी कला के रंग यूं ही खिलते रहें, आवाज़ यूं ही गूंजती रहे और उनका सफ़र यूं ही नए किरदारों और नई कहानियों से भरता रहे। आज इस खूबसूरत संदेश के साथ आपकी रेडियो साथी दृष्टि को दीजिए अनुमति। जुड़े रहिए आकाशवाणी उज्जैन के साथ और हम फिर आपसे मिलेंगे एक नई कहानी और कुछ यादगार गीतों के साथ FM 102.5 MHz और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। श्रोताओं, 8:45 होने को हैं और कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या का अनुप्रसारण किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, 8:45 होने वाले हैं। अब समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करते हैं, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की, कहा भारत ने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। अमरीकी विश्लेषक ने कहा दिल्ली घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता को दर्शाता है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता प्रकट की और देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी।
3: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा था जब दो बड़े संघर्ष जारी हैं, गहरे मतभेद हैं और विभिन्न देशों के विचारों तथा हितों में काफी टकराव है। इसके बावजूद हम ऐसे वक्तव्य पर सहमति बनाने में सफल रहे जिस पर सभी ने सहमति जताई। इस वक्तव्य में शांति, सुरक्षा, स्थिरता, दीर्घकालिक आपसी समझ, वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं के सुचारू प्रवाह, ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति तथा नागरिकों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा का आह्वान किया गया है।
2: डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
3: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
2: नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल समापन के बाद समूह में भारत के नेतृत्व की कई सदस्य देशों ने तारीफ की है। भारत की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित दो दिन का सम्मेलन कल संपन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
4: ब्रिक्स में 11 बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं जो दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40% हिस्सा हैं। ब्रिक्स देशों ने शनिवार को सम्मेलन में एकमत से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित दुनिया नेता शामिल हुए। नई दिल्ली घोषणा पत्र में भारत की अध्यक्षता की तारीफ की गई और सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत सरकार और लोगों की प्रशंसा की गई। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने ब्रिक्स अध्यक्ष के तौर पर भारत के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि नई दिल्ली ने बेहद सफल सम्मेलन आयोजित

0: किया है। चीन की सरकारी मीडिया और नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को ग्लोबल साउथ देशों के बीच बेहतर गुणवत्ता के सहयोग और एकजुटता के लिए सकारात्मक कदम बताया। रूस ने ब्रिक्स सहयोगी देशों के साथ समावेशी विकास उन्मुखी साझेदारी के लिए मॉस्को के समर्पण की फिर से पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरस ने भी भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की तारीफ की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी नई दिल्ली घोषणा पत्र की तारीफ की है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगेलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकारिता को दर्शाता है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सहअध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति को स्वीकृति दी गई है। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच करीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
5: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर ये सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
1: श्री अमित शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
6: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: इस अवसर पर राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर आज जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल कर ली है। आज राज्य के 10,245 वार्डों के लिए मतगणना हुई। इनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल हैं। भाजपा ने जयपुर, कोटा, उदयपुर और भीलवाड़ा नगर निगमों में बहुमत हासिल कर लिया है, जबकि अलवर में वो आगे चल रही है। बीकानेर में कांग्रेस को बहुमत मिला है और अजमेर तथा पाली में पार्टी आगे है। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेनदेन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेन देन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रुपए या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी भाग लेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेत्किन ने भारत और मर्कोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति प्रकट की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
7: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। एक रिपोर्ट।
8: परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की और देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है। परिषद ने बाग जिला परिषद के सदस्य जावेद आरिफ अब्बासी की गिरफ्तारी पर भी चिंता प्रकट की। परिषद ने कहा है कि सार्वजनिक अधिकारों से संबंधित मुद्दों को शांतिपूर्ण ढंग से उठाना मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार है। परिषद ने आरिफ अब्बासी पर किसी भी आरोप को पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से निपटाने का आह्वान किया और कहा कि यदि उनकी हिरासत के लिए कोई स्पष्ट कानूनी आधार नहीं है तो उन्हें बिना किसी देरी के रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की है कि गुजरात ने मिष्टी योजना के अंतर्गत कच्छ में 27,000 हेक्टेयर में मैंग्रोव पौधे लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पर्यावरण मंत्री ने जाखो स्थित वैज्ञानिक नर्सरी का भी दौरा किया। इस अवसर पर वन्यजीव संरक्षण और चीता परियोजना के अंतर्गत वन विभाग के लिए 33 निगरानी और बचाव वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और अब बात मौसम की। गुजरात में आज तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र के कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
9: राज्य में भावनगर के वल्लभीपुर में आज 6 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि आनंद के बोरसद में 5.5 इंच और अहमदाबाद में 3.5 इंच बारिश से आम जनजीवन पर असर पड़ा। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया। इस बीच वाहन चालकों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ा। पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण राज्य में सीजन की औसत 80% बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के कारण राज्य के 35 डैम हाई अलर्ट पर है। दूसरी ओर बारिश के कारण लंबे ब्रेक के बाद खरीफ की फसल को नया जीवन मिला है। मनोज सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कल तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में भी कल इसी तरह के मौसम की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से गणेशोत्सव पारंपरिक तरीके से मनाने और प्रदूषण कम से कम करने की अपील की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
10: महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का उत्सव बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ। भक्तों ने प्रार्थना, आरती, भक्ति गीतों और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ भगवान गणेश का स्वागत किया। मुंबई में लालबाग सराजा, गणेश गली, तेजुकाया और जीएसबी जैसी मशहूर मूर्तियों के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ और ट्रैफिक को संभालने के लिए पुलिस, रेलवे और बेस्ट ने खास इंतजाम किए हैं। कई जिलों में एक गांव एक गणपति पहल को अपनाया गया। इस साल शोर शराबे वाले प्रदूषण को कम करने पर जोर दिया जा रहा है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की, कहा भारत ने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता प्रकट की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar hails successful conclusion of BRICS summit in New Delhi, says India showed strong convening power. Global leaders praise BRICS summit for strengthening cooperation among developing nations and advancing priorities of Global South. US-based analyst says New Delhi declaration reflects India's ability to build consensus. India approves 18-hour power supply to flooded Nepal till December end amid hydropower crisis. Human Rights Council of Pakistan occupied Jammu and Kashmir expresses concern over prolonged protest and unrest in the region. And Ganesh Chaturthi been celebrated across the country with grandeur, devotion and festive gaiety. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today lauded the successful conclusion of the BRICS Summit 2026 in New Delhi, saying that the world saw the strong convening power of India as most of the heads of state were present to represent the countries. Talking to the media, Dr. Jaishankar said that it is important to recognize that this BRICS Summit was taking place in a very polarized world.
12: BRICS Summit was taking place in a very polarized world where there are two major conflicts with very strong opinions and interests. Even in the midst of this polarization, we actually forged a consensus, which was West Asia, Middle East conflict. We were able to get out a statement which everybody agreed, a statement urging peace, security, stability, long-term understanding, the smooth flow of global trade, of supply chains, energy, and of the protection of civilians and civilian infrastructure.
11: The minister stated that the BRICS countries were very clear that any act of terrorism is a criminal act, and it also explicitly recognized the unacceptability of the Pahalgam attack. Condemning the terrorism, Dr. Jaishankar said that BRICS emphasized zero tolerance for terrorism and rejected double standards in countering it.
12: The BRICS was very clear that any act of terrorism is criminal, and they in fact explicitly recognized Pahalgam attack. They condemned terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism, and emphasized the zero tolerance for terrorism, rejected double standards in countering it.
11: India's leadership of BRICS has won praise from several member countries following the successful conclusion of the 18th BRICS summit in New Delhi. The two-day summit held in the national capital under India's chairmanship concluded yesterday. BRICS comprises 11 major emerging economies representing nearly half of the world's population and around 40% of the global GDP. The BRICS countries unanimously adopted the New Delhi Declaration 2026 at the summit on Saturday, with Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping among the world leaders attending. The New Delhi Declaration also commended India's chairship and expressed appreciation to the government and the people of India for hosting the summit. We have a report.
13: South Africa, Russia, China. China, Brazil and United Arab Emirates welcomed India's efforts to strengthen cooperation within the grouping and advance the priorities of the Global South. President of South Africa, Cyril Ramaphosa, praised India's leadership as BRICS chair, saying New Delhi hosted a very successful summit and managed to bring member countries together to adopt the New Delhi Declaration despite doubts over reaching consensus. China's state media and leadership hailed the New Delhi Declaration as a positive step for higher quality cooperation and solidarity among Global South nations. On the declaration, Russia reaffirmed

0: reaffirmed Moscow's dedication to an inclusive, development-oriented partnership with BRICS partner countries. Russian Foreign Ministry reiterated Moscow's commitment to strengthening multilateralism and multipolarity, to upholding international law, including the purposes and principles of the UN Charter in their entirety. Uruguay's Foreign Minister Mario Lubetkin said, BRICS New Delhi Declaration addresses the core needs of the Global South and provides a practical framework for tackling shared global challenges. UN Chief Antonio Guterres praised India's BRICS presidency and congratulated Prime Minister Narendra Modi on India's holding the BRICS chairship for the fourth time. The World Health Organization also praised the New Delhi Declaration. Director General of the World Health Organization, Tedros Adhanom Ghebreyesus, appreciated the commitment to universal health coverage and resilient health systems. US-based analyst has described India's hosting of the 18th BRICS summit as a success, saying the substantive New Delhi Declaration reflects New Delhi's ability to build consensus among countries with differing views. Michael Kugelmun, a senior fellow for South Asia at the Atlantic Council, said the declaration reflects India's growing convening power and the increasing appeal of the BRICS grouping. The declaration expressed serious concern over unilateral tariff and non-tariff measures, saying they distort global trade and violate World Trade Organization rules. It also stressed the need for cooperation on terrorism, conflict prevention, and peaceful resolution of disputes. During its year-long chairship, India focused on strengthening economic and development cooperation, promoting the interests of developing countries, and giving greater voice to the Global South in global affairs. Swati Rakheja, Akashwani News, Delhi.
1: This is Akashwani giving you the news.
2: Want more news? Follow us on X at AIR News Alerts and subscribe to News on Air Official on YouTube.
1: Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the fifth edition of the Semicon India 2026 at Yashobhoomi, New Delhi on Wednesday. It will bring together over 600 exhibitors, 300 international companies and delegations from more than 40 countries. The exhibition will feature 6 country pavilions and 12 state government pavilions, along with a dedicated startup pavilion. The government has approved export of power for 18 hours a day to Nepal Electricity Authority till the 31st of December this year. The Minister of Power said the approval has been given for up to 600 megawatt of export through Muzaffarpur, Dalkebar line, and up to 54 megawatt through Tanakpur and Mahendranagar line. The recent floods have caused significant damage to hydropower infrastructure in Nepal, reducing its domestic power generation capacity and creating an additional requirement for electricity. The ministry said that the approval will help Nepal meet its power requirements during this difficult period and further strengthen the close and long-standing energy cooperation between India and Nepal. The Indian Air Force's first Dronathon 2026 commenced today at the Pokhran Field Firing Range in Jaisalmer. The three-day event aims to strengthen the national goal of Atmanirbhar Bharat and enhance the Indian Air Force operational capabilities in the unmanned systems domain. It brings together domestic manufacturers to showcase their capabilities and advancements in unmanned aerial systems, UAS, and counter-UAS technologies. The Human Rights Council of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir has expressed concern over prolonged protest and unrest in the region, particularly in the Rawalakot and the districts of Poonch and Sudhnoti. The rights body said the demonstrations have now completed 100 days, creating uncertainty and affecting the wider region. It warned that any further delay in meaningful dialogue could deepen public frustration, mistrust and instability. The Council has urged the Pakistani authorities and all concerned stakeholders to begin immediate and result-oriented talks, exercise restraint, and pursue a peaceful and democratic resolution. This is Akashwani, and you are listening to the news at 9.
2: Stay in the know wherever you are. Follow us on X and Threads at AIR News Alerts.
1: In Rajasthan, the ruling Bharatiya Janata Party got an overall lead in the urban local body elections held across the state. Counting of votes took place today for 10,245 wards across the state. The urban local bodies include 10 municipal corporations, 47 municipal councils, and 252 municipalities. The BJP has secured a clear majority in the municipal corporations of Jaipur, Kota, Udaipur and Bhilwara while leading in Alwar. In Bikaner, the Congress has secured a clear majority while the party is also leading in Ajmer and Pali. In Bharatpur, independents have registered a major victory, winning 38 of the 65 votes. In Jodhpur Municipal Corporation, both the BJP and the Congress have won 44 seats each out of 100. Among the 47 municipal councils, the BJP got lead in 21, while the Congress is ahead in 17. Similarly, of the 252 municipalities, the BJP has won 144, while the Congress has secured victory in 92. Union Home Minister Amit Shah today said that India's culture and literature are like a lotus, with each regional language representing one of its petals. He said even if one petal is lost, the beauty of the entire lotus diminishes. He stressed that Hindi should play a central role while ensuring due respect and dignity to all regional languages. Mr. Shah was speaking after inaugurating the two-day Hindi Divas 2026 at the 6th Akhil Bharatiya Rajbhasha Sammelan at Navi Mumbai.
3: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav announced that Gujarat has achieved a major environmental milestone by completing mangrove plantation across 27,000 hectares in Kutch under the Mishti scheme, accomplishing a significant portion of its 29,000 hectare target. The minister, along with his team, visited the scientific nursery in Jakhau, which was established to raise mangrove and seaweed species adapted to local tidal conditions, with active participation from local coastal communities and the Border Security Force. Speaking to reporters today, Mr. Yadav highlighted key initiatives to preserve coastal biodiversity in Gujarat and protect endangered wildlife. Ganesh Chaturthi has been celebrated today across the country with great devotion. The day marks the birth of Lord Ganesh, who is a symbol of wisdom, prosperity and good fortune. Also known as Vinayak Chaturthi or Ganesh Utsav, the day marks the beginning of 10-day-long festivities during which people place clay idols of Lord Ganesh at their homes and worship them. President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi have extended the greetings to the people on the occasion of Ganesh Chaturthi. The 10-day Ganesh Utsav began across Maharashtra, including Mumbai today. We have more from a Mumbai correspondent.
4: Ganesh Chaturthi celebrations began with great enthusiasm across Maharashtra, with devotees welcoming Lord Ganesha amid prayer, aarti, devotional songs and chants of Ganpati Bappa Moriya. In Mumbai, large crowds gathered for darshan of prominent idols including Lal Baksa Raja, Ganesh Galli, Teju Kaya and GSB. Special arrangements have been made by the police, railways and BEST to manage crowds and traffic. In Pune, the five prestigious Manase Ganpati and other mandals welcome Bappa amid traditional celebrations. Similar festivities were reported from Sindhudurg, Ratnagiri, Nagpur, Nasik, Latur and other districts with Dhol Tasha, Tutari and Sanai Saughade adding to the festive atmosphere. Across the state, thousands of household and public idols were installed with the One Village, One Ganpati initiative adopted in several districts. This year, the focus is on traditional celebrations and reducing noise pollution. Health, blood donation, cultural and welfare programs are also being organized alongside the festivities. Madhuri Pange, Akashwani News, Mumbai.
1: The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Haryana, Chandigarh and Delhi tomorrow. Similar weather conditions also expected to prevail over Kerala, Mahe, Punjab, South Interior Karnataka, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal for tomorrow. The Met Department said that thunderstorms and lightning conditions will continue over Andaman and Nicobar Islands, Bihar, Jammu and Kashmir, Ladakh, Jharkhand, Odisha and Rajasthan to the next 2 to 3 days. In men's cricket, India will take on Afghanistan in the second T20 International at the Arun Jaitley Stadium in Delhi tomorrow. The match will begin at 7:30 p.m. Indian Standard Time. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar hailed successful conclusion of BRICS summit in New Delhi, says India showed strong convening power. Global leaders praised BRICS summit for strengthening cooperation among developing nations and advancing priorities of Global South. US-based analyst says New Delhi declaration reflects India's ability to build consensus. India approves 18-hour power supply to flooded Nepal till December end amid hydropower crisis. Human Rights Council of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir expresses concern over prolonged protests and unrest in the region. Ganesh Chaturthi has been celebrated across country with grandeur, devotion and festive gaiety. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And that is all in the news at 9. Good night.
5: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबरा मीटिंग के कामयाब इनेकाद की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत ने कायल करने की जबरदस्त सलाहियत का मुजाहरा किया है। आलमी रहनुमाओं ने भी तरक्की पजीर मुल्कों में इश्तराक को मुस्तहकम करने और आलमी खित्ते जुनूब की तरजीहात को आगे बढ़ाने पर ब्रिक्स सरबरा मीटिंग की सताइश की है। अमरीका में मुकीम तज्जिया निगार ने कहा है कि नई दिल्ली एलामिया इत्तेफाक राय पैदा करने की भारत की सलाहियत की अक्कासी करता है। भारत ने पनबिजली पैदा करने के बहरान के दौरान सैलाब से मुतासर नेपाल को दिसंबर के आखिर तक 18 घंटे बिजली फराहम करने को मंजूरी दी है। इंसानी हकूक से मुतालिक पाकिस्तान की काउंसिल ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में तवील अरसे से जारी मुजाहिरों और बदमनी पर तशवीश का इजहार किया है। और गणेश चतुर्थी का त्यौहार मुल्क भर में अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबरा मीटिंग 2026 के कामयाब इख्तिताम की सताइश की। उन्होंने कहा कि दुनिया ने भारत की मौसर सिफारतकारी और क़यादत का बखूबी मुशाहिदा किया, क्योंकि ज़्यादातर ममालिक के सरबराहान अपने अपने मुल्कों की नुमाइंदगी के लिए मीटिंग में मौजूद थे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यह समझना ज़रूरी है कि ब्रिक्स सरबरा मीटिंग ऐसे वक्त मुनक़िद हुई जब दुनिया में इख्तलाफात और ग्रुपबंदी मौजूद है। इसके अलावा दुनिया में दो बड़े तनाज़ात के साथ बड़े पैमाने पर इख्तलाफ राय और मफादात भी कारफरमा हैं। उन्होंने कहा कि तमाम ममालिक अमन व सलामती, इस्तेहकाम, तवील मुद्दती बाहमी मफाहमत, आलमी तिजारत में आसानी, सप्लाई चेन तवानाई और शहरियों नीज सिविलियन बुनियादी ढांचे के तहफ्फुज़ के हवाले से एक मुश्तरक बयान पर इत्तेफाक करने में कामयाब रहे। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि मीटिंग में 32 वफूद शरीक हुए, जिनमें 11 रुकन ममालिक, 10 शराकत दार ममालिक, 4 इलाकाई तंजीमें और 7 बैनुल अक्वामी तंजीमें शामिल थीं। वजीर खारजा ने कहा कि ब्रिक्स ममालिक इस बात पर बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि दहशतगर्दी की कोई भी कार्रवाई एक मुजरिमाना अमल है। उन्होंने मजीद कहा कि ब्रिक्स ने वाज़ेह तौर पर पहलगाम दहशतगर्दाना हमले को नाकाबिले कबूल करार दिया। नई दिल्ली में 18वीं ब्रिक्स सरबरा मीटिंग के कामयाब इनेकाद पर कई रुकन ममालिक ने भारत की ब्रिक्स क़यादत की तारीफ की है। भारत की सदारत में मुनक़िद हुई दो रोज़ा सरबरा मीटिंग गुज़श्ता रोज़ कौमी राजधानी में इख्तिताम पज़ीर हुई। इस दौरान हफ्ते के रोज़ ब्रिक्स ममालिक ने मुत्तफ़िका तौर पर नई दिल्ली एलामिया 2026 अपनाया। इस सरबरा मीटिंग में रूस के सदर व्लादिमिर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग समेत कई आलमी रहनुमाओं ने शिरकत की। पेश है एक रिपोर्ट।
6: ब्रिक्स सरबरा मीटिंग के दौरान जनूबी अफ्रीका, रूस, चीन, ब्राज़ील और मुत्तहदा अरब इमारात ने ब्रिक्स में इश्तराक मुस्तहकम करने और आलमी खित्ते जनूब की तरजीहात को आगे बढ़ाने की भारत की कोशिशों का खैर मकदम किया। जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा ने भारत की ब्रिक्स सदारत की तारीफ करते हुए कहा कि नई दिल्ली ने कामयाब तरीके से सरबराह मीटिंग की मेज़बानी की और इत्तफाक राय पर पहुंचने से मुतालिक खदशात के बावजूद नई दिल्ली आलामी पर रुकन ममालिक को आमादा करने पर कामयाब रहा। चीन के सरकारी मीडिया और क़यादत ने नई दिल्ली आलामी को आलमी खित्ते जनूब के मुल्कों में आला दर्जे के इश्तराक और यकजहती से मुतालिक मुस्बत कदम करार दिया। रूस ने आलामी पर मास्को के अज़्म को दोहराते हुए ब्रिक्स हलीफ मुल्कों के साथ शमूलियाती और तरक्की पर मरकूज साझेदारी के तई अहदबस्गी का इजहार किया। अमरीका में मुकीम तजिया निगार ने 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग की भारत की मेज़बानी को कामयाब करार देते हुए कहा कि नई दिल्ली आलामिया से मुख्तलिफ नजरियात के हामिल मुल्कों के दरमियान

0: लाने का अहम जरिया है ताकि तआवुन जिद्दत तराजी मैन्युफैक्चरिंग सरमायाकारी और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत तैयार करने को फ़रोग दिया जा सके। तीन रोज़ा कॉन्फ्रेंस में आला सतह के कलीदी खुतबे पैनल मुबाहसे और हिकमत अमली से मुतालिक अहम इजलास होंगे। इनमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे में उभरते हुए रुझानात और अहम मौजूआत खुसूसी तौर पर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ये प्रोग्राम भारतीय और बैनुल अक़वामी कंपनियों को कारोबारी शराकतदारी सरमायाकारी के मौके टेक्नोलॉजी में ताउन और सप्लाई चेन के रवाबित दरियाफ्त करने का अहम मौका फराहम करेगा। इससे भारत की हैसियत एक काबिल एतमाद आलमी सेमीकंडक्टर शराकतदार के तौर पर मजीद मुस्तहकम होगी। हुकूमत ने नेपाल बिजली अथॉरिटी को इस साल 31 दिसंबर तक रोजाना 18 घंटे बिजली बरामद किए जाने की मंजूरी दी है। वजारत बिजली के मुताबिक नेपाल को मुजफ्फरपुर धलकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और तनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक बिजली फराहम की जाएगी। हालिया सैलाब से नेपाल के पन बिजली बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके बायस मुल्क के अंदर बिजली पैदा करने की सलाहियत कम और बिजली की इजाफी जरूरत पैदा हो गई है। वजारत ने कहा कि इस मंजूरी से नेपाल को मुश्किल हालात में अपनी बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के दरमियान देरीना तवानाई तावुन मजीद मुस्तहकम होगा। वजारत ने मजीद कहा कि भारत नेपाल की मदद के लिए और तवानाई के शोबे में दोतरफा तावुन को मजीद मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि भारत की सकाफत और अदब कमल के फूल की मानिंद है, जिसकी हर पंखुड़ी मुल्क की मुख्तलिफ इलाकाई जबान की नुमाइंदगी करती है। उन्होंने कहा कि अगर एक भी पंखुड़ी ज़ाय हो जाए तो पूरे कमल की खूबसूरती कम हो जाती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदी को मरकजी रोल अदा करना चाहिए, ताहम तमाम इलाकाई जबानों को भी मुनासिब इज्जत वक़ार और एहतराम दिया जाना चाहिए। जनाब शाह नवी मुंबई में दो रोज़ा हिंदी दिवस 2026 और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे।
1: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: मरकजी वजीर दाखिला ने कहा कि अगरचे भारत में बहुत सी जबानें और बोलियां हैं, लेकिन भारत का जज्बा और मुल्क की आवाज एक रहनी चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और वियतनाम के उनके हमनसब ली हुई ट्रुंग ने आज नई दिल्ली में मुश्तरक तौर पर 19वें भारत वियतनाम मुश्तरक कमीशन मीटिंग की सदारत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया के नतायज पर मरकूज इस मीटिंग में भारत और वियतनाम के सियासी, दिफाई और सलामती से मुतालिक तआवुन को मजबूत बनाने और भारत में तैयार करदा दिफाई साजो सामान की फराहमी बढ़ाने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। फरीकैन ने तिजारत, सरमायाकारी और सप्लाई चेन के उमूर पर भी तामीरी बातचीत की और बाजार तक रसाई को मजीद वसत देने के बारे में तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक की समंदरी मसनूआत, जरी मसनूआत और अद्वियात के शोबों में भी तआवुन और बाहमी तिजारत पर तबादला ख्याल किया गया। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल और जमहूरिया यूरोगुए के वजीर खारजा मारियो लुबेटकिन ने भारत और मरकोसुर के दरमियान तरजीही तिजारती समझौते को वसत देने के लिए मुजाकरात शुरू करने का ऐलान किया। दोनों वजीरों ने मौजूदा समझौते को बाहमी दिलचस्पी के मजीद शोबों तक वसत देने पर इत्तेफाक किया। इसका मकसद भारत और मरकोसुर के दरमियान इक्तसादी ताल्लुकात को मजीद वसत देना और दोनों फरीकों के निजी शोबों के लिए ज्यादा फवायद और नए मौके फराहम करना है। राजस्थान में हुक्मरां भारतीय जनता पार्टी ने रियासत में होने वाले शहरी मुकामी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में मजमूई तौर पर बढ़तरी हासिल कर ली है। आज रियासत के 10,245 वार्डों के लिए वोटों की गिनती हुई। शहरी मुकामी बल्दियाती इदारों में 10 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, 47 म्यूनिसिपल काउंसिल और 252 म्यूनिसिपैलिटीज शामिल हैं। बीजेपी ने जयपुर, कोटा, उदयपुर और भिलवाड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वाजे अक्सरियत हासिल कर ली है, जबकि अलवर में भी वो आगे चल रही है। बीकानेर में कांग्रेस ने वाजे अक्सरियत हासिल की है, जबकि अजमेर और पाली में भी कांग्रेस आगे है। भरतपुर में आजाद उम्मीदवारों ने बड़ी कामयाबी हासिल की। आजाद उम्मीदवारों ने 65 में से 38 वार्ड में जीत हासिल की है। पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर पीओजेके की इंसानी हकूक

0: ने खित्ते में खासतौर पर रावलकोट और पुंछ और सुधनूती जिलों में तवील अरसे से जारी एहतजाज और बदमनी पर तश्वीश का इजहार किया है। इंसानी हकूक काउंसिल ने कहा कि मुजाहिरों को अब 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, जिससे गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है और पूरा खित्ता मुतासर हो रहा है। काउंसिल ने खबरदार किया कि बामानी मुजाकिरात में मजीद ताखीर से अवाम में मायूसी पैदा हो सकती है, नीज अदम एतमाद और अदम इस्तेकाम मजीद गहरा हो सकता है। काउंसिल ने पाकिस्तानी हुकाम और तमाम मुतालिका फरीकों से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर बामानी और नतीजा खैज मुजाकिरात शुरू करें, सब्र तहमुल का मुजाहरा करें और पुरमन व जमहूरी हल तलाश करें। हुकूमत ने कहा है कि फौज की मुसलसल कोशिशों की वजह से जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी की सूरत हाल पूरी तरह काबू में है। 2025-26 की अपनी हालिया सालाना रिपोर्ट में वजारत दिफा ने कहा कि फौज की इन कोशिशों की वजह से तशद्दुद और मुजाहिरों में कमी आई है और पथराव का खात्मा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल की सिक्योरिटी की सूरत हाल में नुमाया तब्दीली आई है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज मुल्क भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। भगवान गणेश की पैदाइश की याद में मनाया जाने वाला यह त्यौहार दानाई, खुशहाली और नेकबख्ती की अलामत है। इसे विनायक चतुर्थी या गणेश उत्सव भी कहा जाता है। इस मौके पर 10 रोजा तकरीबात का एहतमाम किया जाता है, जिसके दौरान लोग भगवान गणेश की मूर्तियां अपने घरों में नसब करते हैं और इसकी पूजा करते हैं। सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। इस दौरान महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से आलूदगी कम करते हुए रिवायती अंदाज में गणेश उत्सव मनाने की अपील की है। जनाब फडणवीस मुंबई में अपनी सरकारी रिहायशगाह वर्षा में भगवान गणेश की मूर्ति नस्ब करने और उसकी पूजा करने के बाद नामानिगारों से गुफ्तगू कर रहे थे। मुंबई समेत महाराष्ट्र भर में 10 रोजा गणेश उत्सव आज से शुरू हो गया है। तफसील हमारे मुंबई के नामानिगार से।
1: महाराष्ट्र भर में 10 रोजा गणेश उत्सव आज से शुरू हो गया है। अकीदतमंद भगवान गणेश का खैर मकदम कर रहे हैं और भक्ति गीतों के साथ उनकी पूजा आरती कर रहे हैं। पुलिस, रेलवे और बेस्ट की जानिब से भीड़ और ट्रैफिक को मुनज्जम करने के लिए खसूसी इंतजाम किए गए हैं। पूरे महाराष्ट्र में घरों और अवामी मकामात पर हजारों गणेश मूर्तियां नस्ब की जा रही हैं। गणेश उत्सव के दौरान सेहत कैंप, खून के अतिये के कैंप मुनक़िद किए जा रहे हैं और सकाफती तकरीबात के साथ साथ फलाह व बहबूद के प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जा रहे हैं। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: भारतीय महकमे मौसमियात ने पूरी गुजरात रियासत में आज मतला अबर आलूद रहने की पेशगोई की है। रियासत के 250 तालुकों में आज मूसलाधार बारिश हुई, जिससे नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। महकमे मौसमियात ने सौराष्ट्र के चंद जिलों में आज शदीद बारिश से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: गुजरात में आज शदीद बारिश हुई। भावनगर के वल्लभपुर में आज 6 इंच बारिश दर्ज की गई। वहीं आनंद जिले के बोरसद में 5.5 इंच और अहमदाबाद में 3.5 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई। मूसलाधार बारिश की वजह से कई नशेबी इलाकों में पानी भर गया। गुज़श्ता 2 दिन के दौरान गुजरात में बारिश के पूरे मौसम के दौरान होने वाली बारिश की 80% बरसात हुई है। बारिश की वजह से रियासत के 35 डैम्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दूसरी जानिब लंबे वक्फे के बाद इस बारिश से खरीफ की फसलों में दोबारा जान पड़ गई है। अहमदाबाद से मयूर सोलंकी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने कल अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक केरला, माहे, पंजाब, कर्नाटक के जुनूबी अंदरूनी इलाके, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी कल इसी तरह के मौसमी हालात रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान अंडमान निकोबार जजायर, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबरा मीटिंग के कामयाब इनकाद की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत ने कायल करने की जबरदस्त सलाहियत का मुजाहरा किया है। आलमी रहनुमाओं ने भी तरक्की पजीर मुल्कों में इश्तराक को मुस्तहकम करने और आलमी खित्ते जुनूब की तरजीहात को आगे बढ़ाने पर ब्रिक्स सरबरा मीटिंग की सताइश की है। अमेरिका में मुकीम तजियाकार ने कहा है कि नई दिल्ली ऐलामिया इत्तेफाक राय पैदा करने की भारत की सलाहियत की अक्कासी करता है। भारत ने पन बिजली पैदा करने के बहरान के दौरान सैलाब से मुतासरा नेपाल को दिसंबर के आखिर तक रोजाना 18 घंटे बिजली फराहम करने को मंजूरी दी है। और गणेश चतुर्थी का त्यौहार मुल्क भर में आज अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार दोस्तों, आपके हमारे साप्ताहिक मंच पब्लिक स्पीक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, आज की शुरुआत एक ऐसे सवाल से जो हर माता पिता के दिल को छूता है। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क का अधिकतर विकास करीब करीब 90% तो उसके शुरुआती 5 वर्षों में ही हो जाता है। जी हाँ, यही वो समय होता है जब बच्चे के भविष्य की इबारत लिखी जा रही होती है। लेकिन अफसोस, कई बार सही जानकारी न होने की वजह से हम अनजाने में अपने बच्चों से उनका वो सुनहरा कल छीन लेते हैं जिसके वो हकदार हैं। बच्चों को पालने का अर्थ उनका निर्माण करना है, और इसी निर्माण की दो मजबूत कड़ियां हैं, सही पोषण और मानसिक प्रोत्साहन। इसी बेहद जरूरी और संवेदनशील विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, और हमारा आज का विषय है बाल विकास पोषण और प्रारंभिक प्रोत्साहन, यानी न्यूट्रिशन एंड अर्ली स्टिमुलेशन फॉर चाइल्डहुड डेवलपमेंट। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है, हमारे साथ हैं यूनिसेफ इंडिया की पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल दिल्ली के बाल रोग एवं नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट। आप दोनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।
1: नमस्कार
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप मिलाइए हमारे स्टूडियो के लैंडलाइन नंबर, लेकिन पहले 011 यानी दिल्ली का कोड, और फिर 2331048 23717117 23717106 और 2331444, और फिर आप हमसे पूछिए अपने सवाल। व्हाट्सएप नंबर है हमारा दोस्तों 9289094044, इस पर भी आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं, और आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlert पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है, और अब हमें आपकी फोन कॉल्स का है इंतजार। तो सबसे पहले चलिए बात शुरू करते हैं डॉक्टर पांडे से, जो यूनिसेफ इंडिया की पोषण विशेषज्ञ हैं। आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि आमतौर पर यह कहा जाता है डॉक्टर पांडे कि बच्चों के जो शुरुआती 1000 दिन हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उनके पोषण के बारे में और उनके दिमागी और शारीरिक विकास को लेकर। ये क्या धारणा है और कितना सच है?
2: नमस्कार, पहले तो आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें मैं एक और बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, एक बहुत, हम लोग अभी जब ये डिस्कस कर रहे हैं तो अभी हम पोषण माह मना रहे हैं जो कि 9 सितंबर से ही शुरू हुआ है, और जो आपने बात की 1000 दिनों की, तो ये 1000 दिन बेसिकली ये कॉन्सेप्ट अराउंड 2007 और 8 के करीब आया था, जिसमें हम कहते थे कि 2270 दिन प्रेगनेंसी के और 365 मतलब पहले 2 वर्ष जो हैं ये हम सातीनों ऐड करते हैं तो हम कहते हैं ये पहले 1000 दिन है। अब ये जो पहले 1000 दिन है ये एक बच्चे के शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास का नींव रखते हैं, और बच्चा आगे जाके कैसा होगा ये उस पर जो केयर हम इस ड्यूरेशन में दे रहे हैं माँ को और बच्चे को, सिर्फ बच्चे को नहीं बल्कि माँ को भी, वो उसके फ्यूचर को डिटरमिन करता है। तो फर्स्ट 1000 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आपने इशू बोला कि अर्ली स्टिमुलेशन, तो इस पीरियड में माँ को भी सपोर्ट करना प्लस बच्चे को स्टिमुलेट करना एक कॉन्सेप्ट है हमारे फर्स्ट 1000 डेज।
0: जी, और हमारे साथ जुड़ गए रायबरेली उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता रमा शंकर वाजपेयी। जी वाजपेयी,
3: मैं ये पूछना चाहता था कि इंटरनेट और जंक फूड के जमाने में क्या बाल विकास और पालन पोषण सही ढंग से हो पाएगा, कृपया बताएं।
0: जी डॉक्टर बिष्ट,
1: नमस्कार और आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाजपेयी जी, आपने तो बहुत सही बात कर ली, और आपने मतलब जो दुविधा जो समाज और देश और विश्व इस समय जूझ रहा है वो जंक फूड है। जंक फूड का जिस तरह से विज्ञापन किया जाता है, जिस तरह से बढ़ाया जाता है, और जंक फूड के जितने भी हानिकारक दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं उन सब पे आपने सही बात की, ये बहुत बहुत गलत बात है। जंक फूड जैसे कि पैकेज फूड है, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, पैकेट चिप्स, बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूटी, जो भी आप जिस भी तरह के हैं, इन सबसे बिल्कुल जो आहार है बिल्कुल सही नहीं है और न्यूट्रिशन पोषण के लिए बहुत बहुत हानिकारक है।
0: जी, तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर पांडे की जो पूरक आहार है, जिसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फूड, यानी माता के दूध के बाद जो ठोस आहार देना शुरू होता है, उनमें किन तत्वों का होना बहुत जरूरी समझा जाता है, माना जाता है या है?
2: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न का, बिकॉज ये एक ऐसा व्यवहार है जिसमें हमने बहुत धीमा इम्प्रूवमेंट देखा है ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट टू डिकेड्स। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की बात करते हैं तो उसमें हम दो तीन चीज़ें देखते हैं। हम ये देखते हैं कि क्या बच्चे को सही समय पे शुरुआत की गई, मतलब 6 महीने के बाद से, क्या बच्चे को क्वांटिटी और क्वालिटी जो मिल रही थी वो सही मात्रा में मिल रही थी, और क्या बच्चे को उतनी बार खिलाया जा रहा था, और अगर खिलाया जा रहा था तो क्या क्या चीज़ें उसको खिलाई जा रही थी। तो अब आपका जो प्रश्न आता है, और हमारे इन आंकड़ों में बहुत सुधार नहीं आया है, और उसका कारण कहीं ना कहीं अनभिज्ञता भी है। और क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं बच्चा 6 महीने का है तो उसको हम क्या ही दे सकते हैं, बच्चे को माँ का दूध ही मिलना चाहिए, बट यहीं पे गड़बड़ी है, क्योंकि वो पहला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रैपिड फेज होता है। तो इस समय बच्चे को माँ के दूध के साथ कुछ कुछ ऊपरी आहार जो कि घर में बनता है, और अभी जो और जो घर में हम क्या देते हैं, हम दाल चावल दे सकते हैं, हम आपके ये नट्स और सीड्स जो होते हैं इनको पीस के दे सकते हैं, कुछ भी साबुत नहीं देना है क्योंकि उसको मसल के देना है। जो सॉफ्ट फ्रूट्स हैं वो हम बच्चे को खिला सकते हैं, जैसे केला है, आम है, और हम बच्चे के खाने में दूध तो रहेगा ही रहेगा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम नॉन वेजिटेरियन प्रेफर करते हैं तो उसको भी बहुत मैश्ड प्यूरीड फॉर्म में हम बच्चे को शुरुआत कर सकते हैं, धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ानी है। तो ये सब मिलेगा तभी, और हर दिन मिलना है, ये भी नहीं है कि एक बार हफ्ते में या 30 दिन में एक बार, ये अगर बच्चे को हर दिन मिलेगा तो उसका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो आवश्यकता है वो शायद पूरी हो सकती है।
0: जी, ये तो बात हुई पोषण की, और चूंकि हमारे विषय में शामिल है आज प्रोत्साहन भी, तो डॉक्टर बिष्ट आप ये कृपया हमें बताइए कि ये शुरुआती प्रोत्साहन या अर्ली स्टिमुलेशन जिसे कहा जाता है, ये है क्या?
1: थैंक यू। एक तो संपूरक आहार के लिए जैसे मैडम ने कहा कि संपूरक आहार के साथ साथ कई बार हम इसको वीनिंग फूड कहते थे, तो वीनिंग का मतलब ये होता है कि आपने दूध धीरे धीरे कम करना है, दूध की मात्रा कम नहीं करनी है। जो पहले 6 महीने आपने केवल स्तनपान किया था, उसके साथ दूध अगले 2 साल तक आपको सतत निरंतर स्तनपान कराते रहना है, और धीरे धीरे करके जैसे मैडम ने कहा आपको संपूरक आहार की मात्रा पहले कुछ चम्मचों से लेके, फिर आधी कटोरी से लेके, फिर 9 महीने में पौना कटोरी से लेके, और 1 साल पे 1 कटोरी दिन में 3 बार देने की व्यवस्था है, जिसमें आप तरह तरह के जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, जैसे कि अनाज है, दालें हैं, दूध है, घी है, कुछ फ्रूट्स हैं, तो इस तरह की जो डाइवर्सिटी है उसको देना बहुत जरूरी है। ये जो स्टिमुलेशन का पार्ट है, प्रोत्साहन का जो पार्ट है, वो खान पान से लिया जाए, तो उसको खाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए वो एक बहुत जरूरी बात है, कि खाने का समय जो हो वो ऐसा समय हो जो पारिवारिक समय हो, सब मिलके खा रहे हो, ऐसा नहीं हो कि भाई तुझे जल्दी काम करके निपटा के मैं ऑफिस निकलने वाली हूँ या निकलने वाला हूँ, या चलो इसको खिलाते फिर हम कहीं घूमने जाएंगे, या इसको रख दो, तो वो जल्दबाजी में नहीं कर सकते। और वो बच्चे के जो समय है, जब उसकी भूख है, उसके हिसाब से होना चाहिए, और कुछ धीरे धीरे के अनुशासित होता रहता है वो समय के साथ। प्रोत्साहन में जो दूसरा एक जो आप कर रहे हैं अर्ली स्टिमुलेशन, वो मानसिक प्रोत्साहन है, और अर्ली स्टिमुलेशन में हम खाने के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बच्चे को किस तरह से बातें करी जा रही है, खाने के समय उससे बात करते हैं, और कई बार हम उसको कहानी सुनाते सुनाते सुनाते खिला रहे हैं, और आज ये हुआ था, वो हुआ था, आपने हमने देखा एक बूढ़ी अम्मा आई थी और ये हुआ, तो इस तरह के जो दादी अम्मा और कहानी

0: सुना सुना के बातें करते थे, उससे बच्चे की बोलचाल में आती है, भाषा में होता है, और उसके जो न्यूरल कनेक्शन बढ़ते हैं व्यवहार से लेके सब, उनमें उसमें प्रोत्साहन तो मिलता ही है और डेवलपमेंट भी बढ़ जाता है।
1: जी डॉक्टर पांडे, आपसे ये सवाल है हमारा कि बच्चों में जो ये समस्याएं होती हैं कि उनका कद ठीक से न बढ़ पाना उम्र के मुताबिक, या उनका वज़न जो है बहुत कम रह जाना, स्टंटेड ग्रोथ जिसे कहते हैं, वज़न बहुत कम रह जाना यानी अंडर वेट हैं या स्टंटेड ग्रोथ है तो कद नहीं बढ़ा उनका, तो ये समस्याएं हैं, तो इसमें यूनिसेफ ने क्या इन्हें पहचाना है और इसके लिए क्या उपाय किए हैं, ये हमारा प्रश्न रहेगा। लेकिन इधर हिसार हरियाणा से हमारे एक श्रोता जुड़ गए हैं हमारे साथ, राजेंद्र, तो पहले सुन लेते हैं इनका सवाल।
2: मनीष जी को भी नमस्कार और डॉक्टर साहब को भी, इनको भी नमस्कार।
1: शुक्रिया जी, नमस्कार।
2: मैं नहीं जानने से बच्चे बीमार हो जाते हैं, या नमोनिया एक मुख्य बीमारी है जो बच्चों को अक्सर, तो इसके बाद खाने पीने में क्या सावधानियां रखी जाए और जो बच्चों को आगे चल के सही रहे 1000 दिन में, और दूसरा आजकल बच्चे जो छोटे बच्चे 2 साल के ही मोबाइल के बहुत ज्यादा शौकीन हो गए, मोबाइल वगैरह नहीं रह सकते, इसके बारे में जानना था आगे मोबाइल क्या असर दिमाग पे डाल सकता है इसके बारे में।
1: जी, तो इन्होंने दरअसल 2 बड़े महत्वपूर्ण सवाल जो हैं वो मिला दिए हैं, और ये हमारे जो आपसे नियमित प्रश्न होने वाले थे उनमें पहले से शामिल हैं। एक तो ये है कि निमोनिया की खैर इन्होंने जो बात की वो एक बात है, और दूसरी ये है कि जो हम स्टिमुलेंट्स की बात कर रहे हैं, तो कई बार माता पिता ये समझ लेते हैं कि अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है, उसको पसंद नहीं आ रहा है, सो एज ए स्टिमुलेंट इट इज आई मीन एप्ट और राइट और करेक्ट टू इंट्रोड्यूस देम टू सम यू नो मीडिया और रील्स और टेलीविजन। तो ये कितना सही है, कितना उचित है या गलत है, इनका सवाल भी इससे जुड़ा हुआ। डॉक्टर बिष्ट,
0: राजेंद्र जी, आपके दोनों सवाल ही जैसे बोला है मुनीष जी ने बहुत सही है। निमोनिया के से मैं बात करता हूँ, क्योंकि एक चिकित्सक होने के समय से निमोनिया एक काफ़ी जानलेवा बीमारी थी, और हमारे अभी भी जो शिशुओं की मृत्यु दर है उसका जो मुख्य कारक है उसमें दस्त और निमोनिया अभी भी मेजर कारण होते हैं, और उसका निवारण से लेके उसका रोकथाम के लिए सरकार अलग अलग तरह के कार्यक्रम कर रही है। टीकाकरण एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसमें हम बहुत तरह के टीके लगाते हैं जो खतरनाक निमोनिया से बचाने के काम करते हैं, मगर जो मौसमी बीमारियां हैं, मौसमी वायरल निमोनियाज हैं, वो निमोनियाज होते हैं, उनमें आपको यही है कि जिसको खांसी जुकाम बुखार हो उन लोगों से बचा के रखिए, और निमोनिया जैसे कोविड था, इन्फ्लुएंजा है, H1N1 है, इन सब बीमारियों को आगे फैलने ना दीजिए। अगर एक बार निमोनिया हो जाता है राजेंद्र जी, जैसे आपने कहा है, तो किस तरह का है, तो अगर किसी को बार बार निमोनिया हो रहा है कि क्या उसको सांस में तकलीफ है, जिसको हम एस्मा कहते हैं, और बार बार बार बार सांस में निमोनिया होना या भाप लगाने की जरूरत पड़ना, नेबुलाइजर की जरूरत पड़ना, वो एस्मा है, उसमें वातावरण में कुछ बदलाव की भी जरूरत पड़ सकती है। दूसरा आपका जो सवाल था कि टीवी और मीडिया का जो टीवी उनका मोबाइल का जो शौक है, मोबाइल के शौक के लिए 0 स्क्रीन टाइम है 2 साल से कम बच्चे के लिए, तो आप अपने परिवार में, आप बड़े हैं, आप अपने परिवार में अपने लोगों को बताइए कि इससे मानसिक जो विकास होता है वो बहुत कम हो जाता है, कनेक्शन नहीं बन पाते हैं, और आगे जाके बच्चे की जो कैपेबिलिटीज है, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज है, वो कम हो सकती हैं। तो आप 2 साल तक तो 0-0 है, उसके बाद हम कहते हैं कि जब जैसे स्कूल जा रहे हैं और हमें लगता है कि कुछ पढ़ाई लिखाई के लिए भी काम होता है, और आजकल हमने कोविड में देखा है कि एक माध्यम बन गया है शिक्षा का भी, तो नेट और इंटरनेट भी, तो उसमें हमने 2 घंटे से ज्यादा का स्क्रीन टाइम किसी को भी अलाउ नहीं करेगा।
1: जी, हमारे एक और श्रोता हमसे जुड़ गए हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। तो धर्मवीर जी बताइए क्या है आपका प्रश्न।
3: जी नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: नमस्कार
3: डॉक्टर साहब, जैसे पौष्टिक आहारों में आप बताते हैं दूध दही पनीर मक्खन घी, ये अब कुछ दिन पहले ही देखिए आपने समाचार में सुना कि ये हमारे पौष्टिक आहार ये भी नकली हमारे सामने आ रहे हैं, तो आम इंसान तो भ्रम में रह जाएगा कि हम कौन सा ले कैसा खाएं, पनीर नकली, खोया भी नकली, अभी मक्खन भी नकली आया था, वो तो हमारे हमने ही खरीद लिया था गलती से, तो फिर इसको वापिस करा, तो इसके लिए क्या सावधानी बरते हैं, और क्या ये जंक फूड में भी ये नकली देते हैं, तो जहर पे जहर, नीम कतरा करेला नीम तला, तो ऐसे ये डबल डबल जहर हमारे पे बच्चे को हंजाने में खाने पड़ जाते हैं।

0: जी धर्मवीर जी, हालांकि ये जो आपका प्रश्न है ये एक अलग दिशा का प्रश्न है और हमारे आज के विषय से थोड़ा अलग है। हालांकि बहुत ही गंभीर ये समस्या है और बराबर अखबारों में और अन्य मीडिया के माध्यमों से इस समस्या जो है उजागर हो रही है, लेकिन डॉक्टर पांडे आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में?
1: धर्मवीर जी, आई थिंक एक जो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये बात पता है कि बाहर जो कई बार जो मिल रहा है वो सही नहीं है। तो सबसे बड़ी शुरुआत तो यही है कि हम जो भी हम एज डॉक्टर्स जो मैसेज देते हैं कि भाई जितना हो सके आप घर घर का बना खाना खाइए। कंप्लीट प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन शायद नहीं हो पाएगा, बट फिर भी अगर हम जागरूक हैं तो शायद हम अपना बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं, अपने बच्चों को हम बचा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जानकारी है, इस जानकारी को अब आपको सही दिशा में ले जाना है। बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें नहीं खानी। और बाकी जैसा मुनीश जी ने कहा कि ये बहुत ब्रॉडर सिस्टमिक चेंजेस की तरफ भी डायरेक्ट कर रहा है, तो मे बी आज का कॉन्वर्सेशन इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा।
0: बहरहाल धर्मवीर जी शुक्रिया, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमसे पूछा। और सासाराम बिहार से हमसे जुड़ गए हमारे श्रोता अमित उपाध्याय जी। अमित जी क्या सवाल है आपका?
2: जी जीतेंद्र जी विशेषज्ञ हैं, पहले नमस्कार। मैं मेरा एक सवाल था कि जैसे कि जो बाहर में बहुत सारे लोग रहते हैं एकल परिवार में, तो उनको समय नहीं दे पाते हैं। तो एक मैं बोल रहा था कि डिसिप्लिन चार्ट थोड़ा सा बता देते कि कैसे हम लोग कुछ समय अगर बच्चों को सुबह में या शाम को थोड़ा सा भी समय देते हैं ताकि बच्चों को मानसिक विकास हो सके। जो 5 साल जो आपने जिक्र किया कि 5 साल तक खासकर, तो कैसे हम लोग इसको फॉलोअप कर सकते हैं? क्योंकि हम लोग थक जाते हैं या उतना समय नहीं दे पाते हैं भागम धाम के जिंदगी में, लेकिन चाहते हैं कि बच्चे का विकास भी हो। तो हम लोग कैसे क्या इसको एक डाइट चार्ट के तरह अनुसार डिसिप्लिन की तरह की कैसे इसको हम लोग क्या क्या कर सकते हैं बच्चों को, थोड़ा सा इस पर एक बार डिस्कशन हो जाए।
0: जी जी जी, डॉक्टर बिष्ट से हम ये जानना चाहेंगे जैसा कि आपका सवाल है, और खास तौर पर ये आपने न्यूक्लियर फैमिलीज जो एकल परिवार हैं जिनमें बड़े बूढ़े माता पिता नहीं हैं, सिर्फ माता पिता और बच्चे हैं छोटे, तो वहाँ वो कैसे फिर इस समस्या से निजात पाएं या कैसे क्या समाधान हो? दरअसल कहना
3: अमित उपाध्याय जी, ये तो इस नए समाज की और एक अर्बन समाज की एक दुविधा है कि हमें एक जो संयुक्त परिवार के फायदे थे और संयुक्त एक कंप्लीट होलसम फैमिली जो होती है जिसमें दादा दादी नाना नानी चाचा बुआ सब होते हैं, वो सब नहीं हो पा रहे हैं। मगर जहाँ तक सवाल है कि एक परिवार में जहाँ पे माता पिता हैं और भाई बहन हैं, तो उनमें जो स्टिमुलेशन है क्योंकि मानसिक रूप से करने के लिए उसको व्यवहार, मैंने पहले भी कहा, उसको स्टिमुलेट होना चाहिए। तो माँ बाप के पास समय से आप उनको जितना भी समय मिलता है आपको, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं होता कि बच्चा 24 घंटे में से 23 घंटे बिगड़ माँ बाप के रह रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो आपको जो संरक्षण देना है और जो साथ देना है बच्चे का वो तो है ही। तो अगर जितने भी घंटे मिल रहे हैं आपको, 10-12 घंटे जितने मिल रहे हैं, उस वक्त आप अलग अलग समय बच्चे के साथ बात कर रहे हैं, बच्चों को कहानियां सुना रहे हैं, बच्चों को कुछ कुछ उनको स्टिमुलेट कर रहे हैं, छोटे छोटे गेम्स दे रहे हैं, छोटे छोटे जैसे छुपन छुपाई का गेम खेल रहे हैं, कई बार पकड़ पकड़ाई खेल रहे हैं, कई बार कट्टा कट्टा खेल रहे हैं, आप कुछ भी चौकस खेल रहे हैं, तो आप कुछ भी गेम खेल रहे हैं। कई बार हम उन्हें छोटा छोटा जंप कराते हैं, लॉन्ग जंप कराते हैं, पोशअप खेलते हैं, खींचाखाची करते हैं। दीज आर ऑल स्टिमुलेशन गेम्स विच वर जो हम आराम से पहले से गांव में करते थे, रसाकसी कर रहे थे, थोड़ा बहुत हल्की सी कुश्ती भी टाइप की कर रहे थे, जूटी बूटी, तो ये सब था जो बच्चे को स्टिमुलेट करता था। कई बार चीजें छुपा देते थे, उनको ढूंढ के लाने के लिए बोलते थे। दीज आर गेम्स विच यू कैन डू, एंड सर्टेनली हम ये नहीं कह रहे कि आपको मोबाइल में दिखा के उनसे सारे गेम सिखाने और करने, आप घर पे बैठ के जो पहले हम काम करा करते थे कर सकते, पेड़ के आगे आंगन में पेड़ के पीछे छुप गए ये सब करना, दैट इज ऑल। आंख में बंद करके आप कर रहे हैं, वो जो आंख मिचोली थी वो बहुत अच्छा खेल था क्योंकि उसमें बच्चों को अंधेरे में भी आंख बंद करके भी चलने का छूने का स्टिमुलेशन मिलता था।
0: जी डॉक्टर साहब, और ये हमारे श्रोता हिमाचल प्रदेश से शिमला से हमसे जुड़े हैं और पूछना चाह रहे हैं शिमला से राकेश जी। जी कहिए क्या है आपका सवाल?
4: जी नमस्कार सर, और मैं राकेश बात कर रहा हूँ पहाड़ी क्षेत्र कोटखाई शिमला से। तो मैं हमारे जो है सेब का जो है फल होता है, तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, जब हम बच्चों को फल फ्रूट खाते हैं तो किस तरह से खिलाने चाहिए? कई बार हम बच्चों की आदत होती है कि फल ऐसे ही खा लेते हैं, कि क्या फल जो है धो के खाना कितना आवश्यकता है? जैसे कि खासकर जो है हमारे एप्पल होगी,

0: डॉक्टर पांडे।
1: तो देखिए, अगर आपका बच्चा छोटा है, पहली बात तो है कि अगर बच्चा 6 से 8 महीने का है, उसको हम कहते हैं ना थोड़ा सा सेमी सॉलिड, मतलब वो जो चम्मच से गिराने पे थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा निकले। अब आप जो सेव की बात कर रहे हैं, जो ग्रो होता है, छोटे बच्चों को इवन छोटे छोटे मैश अगर आप काट के देंगे पीसेस, तो उसके गले में फंस सकते हैं। सो बहुत केयरफुल रहिए छोटे बच्चे को, जब तक बच्चा अपने उंगली से पकड़ के उसको, उसके दांत ना निकल आए, वो च्यू ना कर पाए, तब तक उसको कटा हुआ कोई पीस नहीं देना है, बिकॉज निगलने और गले में फंसने की संभावना होती है। शुरुआती महीनों में उसको मैश्ड फ्रूट्स ही देने। आपने सेब की बात की, नॉर्मली सेब हम देर से शुरू करते हैं, शुरुआत हम कहते हैं कि हम केला दे सकते हैं, हम आम दे सकते हैं, जो सॉफ्ट चीजें होती हैं जो निगली जा सके बच्चे के द्वारा, वो देनी चाहिए। शुरुआती उसमें सेब और सेब की फांके नहीं देनी चाहिए, बिकॉज ये कड़े होते हैं। उसी तरह आप अनार की भी वो नहीं देने हैं आपको। तो ये कुछ सुझाव है हमारी तरफ से।
0: जी जी, दिल्ली से हमारे श्रोता हैं संजय जी। संजय जी, क्या है आपका प्रश्न?
2: निश्चित दायरे में एक जगह बना दी जाए सरकार की ओर से, ताकि बच्चों की देख रेख करे काम के दौरान, जब माता पिता काम पर हो, ताकि जो है बहुत अच्छे से बच्चों की देख रेख करे, काम के बाद माता पिता ले जाए, और उस हिसाब से उनका टैक्स वगैरह थोड़ा कटे, या तो काम के हिसाब से जैसा सैलरी होगी उस हिसाब से डिसाइड कर दे पैसों का, ताकि, क्योंकि कर्नाटक में अभी कुछ दिनों पहले हुआ था प्राइवेट एक।
0: जी जी जी जी जी, आइए, आपने एक अच्छे उदाहरण दिए। और बात दरअसल हो रही है कि जो बच्चे हैं बहुत ही छोटी उम्र के, तो उनका जो पोषण है वो कैसा हो, और उनको जो शुरुआती प्रोत्साहन है वो कैसे दिया जाए। दोस्तों, हमारे स्टूडियो की फोन लाइन्स खुली हैं, आप मिलाइए हमारे स्टूडियो लाइन नंबर, लेकिन पहले जरूर ये 0 और फिर नंबर 2331048, या व्हाट्सएप पर आप चाहें तो सवाल आप हमें भेज सकते हैं। अभी मैंने देखा हमारी स्क्रीन पर उभरा था व्हाट्सएप का एक प्रश्न, और व्हाट्सएप का नंबर है दोस्तों 9289094044। तो इस पर भी आप हमें अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं बाल विकास, पोषण और प्रारंभिक प्रोत्साहन विषय पर, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ यूनिसेफ इंडिया की पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल के बाल रोग एवं नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट। जी हाँ, तो हमारे एक और श्रोता हमसे जुड़ते दिखाई दे रहे हैं हमसे, और व्हाट्सएप पर है ये सवाल हर्षवर्धन जी का। हर्षवर्धन जी पूछना चाहते हैं कि बच्चों को आहार कितने माह बाद देना चाहिए। हालांकि आहार तो मैं समझता हूँ डॉक्टर पांडे की, उन्हें जन्म के फौरन बाद ही
1: हाँ,
0: दिया
1: exactly,
0: आहार यदि कहें, लेकिन शायद पूरक आहार के विषय में,
1: तो वो 6 महीने के बाद ही देना चाहिए।
0: जी जी जी, तो हर्षवर्धन जी का जो ये प्रश्न था, तो हम आपको ये बता दें कि 6 माह बीत जाने के बाद, यानी कि तब तक वो जो शिशु है वो माता का दूध पीता है, और उसके बाद आप उसे ये जो संपूरक आहार या पूरक आहार पे जिसे कहा जाता है वो दे सकते हैं।
3: मुझे एक इसमें अन्नप्राशन और
0: जी
3: जो हमारी एक पुरानी व्यवस्था परंपरा थी, तो उसमें पहले से हमारे पूर्वजों को पहले से ही पता था कि अब बच्चा तैयार हो गया है, अब उसमें दांत आने लगे हैं, अब वो चबाने की शक्ति आने लगी है, तो उसे कुछ कुछ ठोस आहार देते था, उसके लिए अन्नप्राशन जैसी कुछ परंपराएं थी।
0: अन्नप्राशन को दरअसल हमारे यहाँ
3: फेस्टिवल,
0: हमारी संस्कृति में एक संस्कार में गिना गया है, जैसे विवाह संस्कार है, तो उसी तरह अन्नप्राशन सबसे पहला।
1: और एक इसमें बात और है कि अन्नप्राशन में कई बार हम लोग फील्ड में जो देखते हैं वो कहते हैं चटा देना, बट चटाने के बाद खिलाना भी है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हर्षवर्धन जी ने बात की, कि कई बार चटाना इज नॉट सफिशिएंट, हमें बच्चे को खिलाना है माँ के दूध के साथ।
0: जी जी जी। और दोस्तों, आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल हमें पोस्ट कर सकते हैं, और हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। हमें आपकी फोन कॉल्स लगातार मिल रही हैं, आपके सवाल हम तक पहुंच रहे हैं, और डॉक्टर बिष्ट आपसे ये जानना चाहूंगा मैं, हालांकि एक श्रोता ने भी पूछा था लेकिन वो थोड़ा उनका अंदाज

0: कुछ अलग था इस सवाल को लेकर। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो स्क्रीन टाइम है, यानी ये जो मोबाइल है या टेलीविजन का देखना और बच्चों को भोजन कराना, क्या ये मानसिक विकास को प्रभावित करता है?
1: देखिए, जैसा जिस परिस्थिति में आजकल के एकल परिवार से बात हुई थी और उनके पास सीमित समय है, और कई बार हम जो रिस्पॉन्सिव फीडिंग होती है जिसमें बच्चे के हंगर क्यूज से संबंधित खाना खिलाना है और हम अपने समय के अनुसार खिलाना चाहते हैं, तो कई बार हम एक फोर्स फीडिंग करने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ ऐसा मतलब इमेजिनरी या ऐसा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ बच्चा स्तब्ध हो जाए या फिर जड़ जाए, जड़ मत हो जाए और टीवी देखता रहे और हम उसके मुंह में कुछ कुछ डालते रहे। तो इस तरह के एक डेज्ड और जॉम्बी टाइप के हालत में हम बच्चे को खिलाते रहते हैं, वो उस पर ना तो उसे खाने का स्वाद पता चलता है, ना उसे खाने का टेस्ट टेक्सचर पता चल रहा है, और वो उस वक्त जो खाने का जो मजा लेना है वो नहीं ले पाता। तो वो ऐसे बच्चे बाद में भी जो खाना, उनको फूड फैटिज्म भी ज्यादा होता है और उनको खाना खिलाने से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है वो ज्यादा होती है।
0: तो डॉक्टर पांडे, आपसे हमारा एक सवाल था, वो चूंकि श्रोता का हमारा कॉल आया तो वो अनुत्तरित रहा, तो यूनिसेफ ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं बच्चों का जो कद ना बढ़ना या वजन की जो समस्याएं होती हैं उसको लेकर?
2: तो दो चीजें हैं, एक हम टर्म यूज करते हैं, टेक्निकल टर्म है स्टंटेड, मतलब बच्चे का हाइट कम रह गई। स्टंटिंग एक महीने दो महीने में नहीं होती, ये क्रॉनिक कंडीशन है लंबे समय। तो जो फर्स्ट 1000 डेज का जो आपने प्रश्न पूछा था वो कई बार स्टंटिंग को एड्रेस करता है। हम माँ को पहले 2 साल को केटर करें तो बच्चा हमारा कुपोषित नहीं होगा। ये तो स्टंटिंग का हो गया। स्टंटिंग को चेंज करना मुश्किल है। हम यहाँ पे सरकार के साथ काम करते हैं, सरकार की योजनाओं से जुड़े हुए हैं, और एक एरिया है क्योंकि स्टंटिंग लॉन्ग टर्म है तो उसमें आपका विमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी, आपका फूड फीडिंग प्रैक्टिसेस, इलनेस, अगर कोई जैसे हमारे का काफी उन्होंने प्रश्न पूछे, बीमारी है बच्चे को तो हमने कैसे केयर किया, हमारा जो वातावरण में सफाई स्वच्छता है, तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। तो स्टंटिंग को हम बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, बट हम डेफिनेटली प्रिवेंटिव बिहेवियर्स को एज यूनिसेफ प्रमोट करते हैं गवर्नमेंट के प्रोग्रामों के साथ। एक एरिया है जिसमें हम लोगों ने काफी काम किया है और अपनी तरफ से योगदान देने का प्रयास किया है, वो है सीवियर वेस्टिंग या फिर सैम बच्चा जो कि बहुत अति कुपोषित है। उसके लिए हम लोग कुछ अस्पतालों के साथ मिलकर काम करते हैं, हम ट्रेनिंग्स करते हैं, हम लर्निंग फील्ड से लाते हैं, हर स्टेट की अपनी एक यूनिक लर्निंग है और उस लर्निंग को हम गवर्नमेंट के साथ शेयर करते हैं कि क्या उस लर्निंग को हम और स्केल अप कर सकते हैं। और ये मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कई स्टेट्स ने सैम प्रोग्राम अच्छे से सक्सेसफुली चला रहे हैं सरकार के मार्गदर्शन में, और प्लस हमसे जितना तकनीकी सहयोग दिया जा सकता है वो हम अपने लेवल से दे रहे हैं।
0: अच्छा डॉक्टर बिष्ट, क्या ये जो पोषण जो है ये सिर्फ शारीरिक विकास पर ही प्रभाव डालता है या मानसिक विकास को भी प्रभावित करता है?
1: जैसा मनीषी आपने शुरुआत में ही कहा, ये पहले 1000 दिन का जो डेवलपमेंट है या आहार है वो उसके मानस, क्योंकि दिमाग बनता ही पहले 5 साल के अंदर है, 90 से 95% तक मैं कहूँगा कि दिमाग जो है वो पहले 5 साल बनता है। जन्म पे बच्चे का जो हेड सरकमफेरेंस होता है वो तकरीबन 33 होता है और 5 साल पे 50 सेंटीमीटर होता है, और उसके बाद जो हमारा अभी एडल्ट है वो 52 से 53 सेंटीमीटर ही होगा। तो आपसे जो सिर्फ 2-3 सेंटीमीटर ही हेड और बढ़ेगा, तो बाकी दिमाग का जितना बढ़ना होता है वो पहले 5 साल में ही होता है और सारे कनेक्शंस भी तभी बन रहे होते हैं।
0: जी, यूनिसेफ इंडिया की पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल के बाल रोग एवं नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट आप हमारे स्टूडियो में पधारे, हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। और हम अपने सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद करते हैं। कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें हमेशा की तरह इसी मेल पर भेज सकते हैं, पता है हमारा airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को आप दोबारा सुनना चाहें तो आइए हमारी वेबसाइट पर, वेबसाइट है newsonair.nic.in, इस पर आप लॉग इन कर सकते हैं। पब्लिक स्पीक का ये अंक दोस्तों यहीं समाप्त होता है, आप हमें दीजिए इजाजत। मैं हूं मुनीश शर्मा, आज्ञा लेते हैं आपसे, नमस्कार।
1: नमस्कार।

नमस्कार, इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं सुनीता सिंह। दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। दिन भर की आपाधापी अब धीरे धीरे अपने पैर समेट रही है और रात की खामोशी में दिल की आवाज कुछ और साफ सुनाई देने लगती है। ऐसे में अगर हम गीत सुने तो वो गीत सिर्फ गीत नहीं रहते हैं, वो कभी बीती हुई याद बन जाते हैं, कभी किसी अपने की आवाज बन जाते हैं और कभी मन के उस कोने का पता हमें देते हैं जहां हम दिन भर नहीं पहुंच पाते हैं। तो आज की इस सुकून भरी रात में आइए खोलते हैं यादों की वो खिड़की जहां से संगीत भीतर उतरता है इन सारे एहसासों को समेटे हुए। आपकी पसंद, आपके एहसास और आपकी फरमाइशों के साथ, आपकी फरमाइश में सुरों की ये खूबसूरत महफिल अब करते हैं आपके नाम। और हमें मालूम है कि आप जानना चाह रहे होंगे कि जो पहला गीत है वो हमने किस फिल्म से चुना है और किन दोस्तों की फरमाइश पर चुना है। ज़्यादा इंतज़ार तो इसी बात का होता है कि किन दोस्तों की फरमाइश है। तो चलिए, इंतज़ार नहीं करवाते, आपको बताते हैं कि ये जो गीत है वो हमारे किन दोस्तों की पसंद पर है। ये पहला खत मेरे हाथ में है, भिलाई नगर से आया हुआ। लिखने वाले श्रोता हैं प्रमिला श्याम कुंवर, अनुश्री, अशोक, दीपक और आसमा श्याम कुंवर। और ये खत है छत्रपति संभाजी नगर से। लिखने वाले श्रोता हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। और इसी गीत को पसंद करते हैं डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बीबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। तो आप सबकी फरमाइश पर कार्यक्रम का पहला गीत हमने चुना है हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। बहुत ही खूबसूरत सा गीत है। फिल्म का नाम है आँखियों के झरोखों से। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है। उसकी आवाज आ रही थी दिल के पास, देर तक कुछ ख्वाब गुफ्तगू करते रहे।

हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ों में ये खूबसूरत सा गीत आपने सुना। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं शर्मीली फिल्म का गीत। आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की हैं। इस गीत को लिखा है नीरज ने और संगीतबद्ध किया है SD बर्मन ने। अनुरोध आप सबका है। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गम्हाणकर राही, सरिता गम्हाणकर, प्रिंस और एकांश गम्हाणकर। और बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गम्हाणकर, श्वेता सुमित गम्हाणकर, ध्वनि गम्हाणकर परी। और बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गम्हाणकर, प्रणीता और टुक टुक। ये चिट्ठी आई है शेरकोट ज़िला बिजनौर से। लिखने वाले श्रोता हैं मोहम्मद वक़ार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। एक ख्वाब, एक रोशनी, एक महक, एक रागिनी, एक तेरे होने के कितने नाम हैं मेरी दुनिया में।

0: कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर है। मानोरा महाराष्ट्र से ध्रुव कुमार, गिरी, ज्योति, तेजस, प्रणीता, शैलेश, सोनम और धनुषपुरी। ये खत आया है कालका से शुभचंद्र बजाज, महेश बजाज और बिट्टा बजाज का। सेक्टर 67 मोहाली से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा। और बुरहानपुर मुकाम पोस्ट मुहद से इसी गीत को पसंद करते हैं मुशर्रफ खान तड़वी, जरीना मुबारक, परवेज, रोज़मीन, तैमूर, भैया तड़वी, रीना मुशर्रफ तड़वी, रोजूबाई तड़वी, सनी बाबू, परू तड़वी और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं बंदिश फिल्म का गीत। आवाज़ें किशोर कुमार और आशा भोंसले की हैं, बोल आनंद बख्शी के और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।
1: रंग भरे मौसम
0: तेरे साथ जिंदगी गुनगुनाती हुई चलती है, तेरे साथ जिंदगी गुनगुनाती हुई चलती है और चलता है मेरे पीछे हसरतों का काफिला।

गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

और श्रोताओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी फरमाइश कार्यक्रम में। आइए, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं। कभी कभी फिल्म का नाम है। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीतबद्ध किया है खय्याम ने और आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की हैं। अनुरोध आप सबका है, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, गोला बाजार बक्सर से इसी गीत को पसंद करते हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और मीका बिरक, पटेल नगर मलोट पंजाब से ये खत आया है रमेश कुमार जाजूरिया, रानी जाजूरिया, गगनदीप जाजूरिया, बेबी आरजू जाजूरिया और गीता रानी जाजूरिया का। और ये खत है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले।

और आरती जोंत लेगी। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं कभी कभी फिल्म का ये गीत। ये जो सांसों का सिलसिला है ना तुमसे, तुम ही इस जिंदगी के तमाम हासिल हो।

आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मुन्ने खां का सारंगी पर बजाया राग वाचस्पति। तबले पर संगत की है मनोज पाटीदार ने।

0: राग रजनी। अभी आप शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम सुन रहे थे। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना मुन्ने खां का सारंगी पर बजाया राग वाचस्पति। तबले पर संगत की थी मनोज पाटीदार ने। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय रात के 11 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करते हैं समाचार। पहले आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके बाद अंग्रेजी में। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्र अध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देश, 10 साझेदार देश, 4 क्षेत्रीय संगठन और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉ जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
2: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
3: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर आज जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेन देन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेन देन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रूपये या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। पिछले सप्ताह हमले में क्षतिग्रस्त हुई सऊदी अरब की एक महत्वपूर्ण तेल पाइपलाइन मरम्मत के लिए 3 से 5 सप्ताह तक बंद रह सकती है। 7 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन ले जाने वाली ये पाइपलाइन सऊदी अरब के लिए लाल सागर के रास्ते तेल निर्यात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सऊदी अरब ने गुरुवार के हमले के लिए ईरान समर्थित मिलिशिया के ड्रोन हमलों को जिम्मेदार ठहराया है। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी की जीत झूठ की गूंज पर सच्चाई की जीत का सबूत है। श्री मोदी ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के तहत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बिरी टाकर ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कांस्य पदक जीत लिया है। टोक्यो में उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Renuka. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today lauded the successful conclusion of BRICS Summit 2026 in New Delhi, saying that the world saw the strong convening power of India as the most of the heads of state were present to represent their countries. Talking to the media, Dr. Jaishankar said that it is important to recognize that this BRICS summit was taking place in a very polarized world.
5: BRICS summit was taking place in a very polarized world where there are two major conflicts where there are very strong opinions and interests. Even in the midst of this polarization, we actually forged a consensus, which was West Asia, Middle East conflict. We were able to get out a statement which everybody agreed, a statement urging peace, security, stability, long-term understanding, the smooth flow of global trade, of supply chains, energy, and of the protection of civilians and civilian interests.
4: The minister stated that the BRICS countries were very clear that any act of terrorism is a criminal act, and it also explicitly recognized the unacceptability of the Pahalgam attack. Condemning the terrorism, Dr. Jaishankar said that BRICS emphasized zero tolerance for terrorism and rejected double standards in countering it. India's leadership of BRICS has won praise from several member countries following the successful conclusion of the 18th BRICS summit in New Delhi. The two-day summit held in the national capital under India's chairmanship concluded yesterday. BRICS comprises 11 major emerging economies representing nearly half the world's population and around 40% of global GDP. The BRICS countries unanimously adopted the New Delhi Declaration 2026 at the summit on Saturday, with Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping among the world leaders attending. The New Delhi Declaration also commended India's chairship and expressed appreciation to the government and people of India for hosting the summit. Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude to the people of Rajasthan following the BJP's victory in the urban local body elections. In a social media post, the Prime Minister said the party's win is a testament to the triumph of truth over the echo of lies. Mr. Modi said the people of Rajasthan have once again made it clear that they fully support the policies of good governance and development under the double engine government. This will not only propel the state to new heights of progress, but also strengthen the government's resolve to bring prosperity to the lives of every individual, he added. Union Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah has said that Chhatrapati Shivaji Maharaj made Swaraj, Swadharma and Swabhasha, self-rule, one's faith and one's own language, the fundamental elements of Swaraj. Addressing Hindi Divas 2026 and the 6th All India Official Language Conference in Mumbai today, the Union Home Minister highlighted Maharashtra's rich linguistic and cultural heritage. He said, Shivaji Maharaj gave Marathi prominence in administration and created a strong repository of terminology in the language, which became an important foundation of governance during the era of Hindavi Swaraj. Greeting people on Hindi Divas and Ganesh Chaturthi, Mr. Shah described their celebration on the same day as a Manikanchan Yog, an auspicious coincidence. The festival of Ganesh Chaturthi is being celebrated today across the country with great devotion. The day marks the birth of Lord Ganesha, who is a symbol of wisdom, prosperity and good fortune. Also known as Vinayaka Chaturthi or Ganesh Utsav, the day marks the beginning of 10-day-long festivities during which people place clay idols of Lord Ganesh at their homes and worship them. President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi have extended their greetings to the people on the occasion of Ganesh Chaturthi. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Modi today attended the Ganesh Chaturthi celebration at the residence of Union Minister Piyush Goyal in New Delhi. The government has approved export of power for 18 hours a day to Nepal Electricity Authority till the 31st of December this year. In men's cricket, India will take on Afghanistan in the second T20 International at the Arun Jaitley Stadium in Delhi tomorrow. The match will begin at 7:30 p.m. Indian Standard Time. And with that, we end this news bulletin.